0: भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।

हमारे साथ साधना में एक घटना हुई। पांचवें या छठवें दिन जहां गुफा है ऋषि गंगा के पहले हम वहां थे, आपको हमने बताई शायद एक दिन सुबह आके, तो वहां छोटी सी खिड़की है गुफा में लगी थी, अंदर पूजा करके साधना करके वहीं लेट जाते थे। तीन चार कंबल, ठंडी बहुत थी तो तीन चार कंबल गए को लगभग 20-25 कंबल थे, तो गेर के लगा लिए ताकि हवा ना आए ठंडी, तकिया लगा ली और चार पांच कंगल कंबल। पहले दिन महाराज जी ही हमें उड़ा गए, बोले नहीं तो सुबह पता लगे साधना में ही टबक गए। हम कहे महाराज जी यदि मान लो ये कंबल ना इतने रखें तो क्या होगा, बोले आइसक्रीम बन जाओगे। तो पहले गेर के कंबल लगाए पर तीन चार का। अच्छा जब हम आए थे 6 तारीख को तब भयंकर ठंडी, उसी दिन बर्फ गिरी। 7 तारीख को वहां बैठे अंदर तो सोए, 4 दिन ही गुजरे होंगे 5। पांचवें दिन अब वहां तो था नहीं कोई, ये 2 बच्चे रहते थे और यहां नीचे सबसे नीचे जहां से अंदर प्रवेश करते वहां सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई। तो वहां तो ये 2 बच्चे बगल में एक आंगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए, तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहां सामान रखा था पूजा पाठ का, तो वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2.5 बजे भयंकर जोर से लात मारी वो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, एक आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके, भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था तो वो टॉर्च जलाई हमने, बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए पर थोड़ा मन में तो आया, तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। हाँ, अच्छा ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा सन्यासी बाबा से कि आज ये लात किसने मारी, बोले यहां पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे ये कौन थे, बोले बेटा ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ। एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है, साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सप्त ऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है। साधु को अपना कोई निजी दुख नहीं होता, साधु को तो दूसरों का दुख ही अपना दुख लगता है। और वो साधु तो वही है मेरे पागलो, तुम भी साधु हो सकते यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया है, दूसरों के लिए करुणा है, तो तुम भी साधु हो। साधु के अंदर तो होता है। माँ अवतार बाबा के बारे में हम उतना तो जानते नहीं थे, एक हमारे बहुत प्रिय हैं, परिवार जैसे, बल्कि भारत सरकार में वो बहुत बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं, झारखंड के हैं, देवघर के, और हमारे बहुत आत्मीय हैं श्री निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी। उनके साथ कभी कभी हम बैठते तो वो कभी कभी हमको लाहिड़ली महाशय की चर्चा सुनाते थे रात को, इतना तो हम जानते, संतों का नाम सुन रखा था, इतना नहीं जानते थे। फिर उनको जानने के बाद
और अभी आते ही उनकी बात हुई, जब हम साधना के लिए आ रहे थे तो दिल्ली गए, हमारे चेला की शादी हो गई, एक चेला चुग गौ, नीतेंद्र की शादी थी और बढ़िया है, जितने चेला चुके हैं बेहतर है, यहां भी हम नंबर लगेंगे इस तरफ भी, आजकल राजपाल बोल रहे हैं अब यही नंबर पे हैं, तो बढ़िया है, होना भी चाहिए। साधु यदि इंद्रियों को ना साधो तो शादी ठीक है, बेहतर है, इंद्रियों को ना साध पाओ तो भगवान को और संसार को धोखा देने से बेहतर है घरवाली को धोखा दो, तुम धोखा मत देना, पाप पड़ेगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, धोखा शब्द गलत हो गया, मतलब करो लेकिन याद रखना भरोसा उतना हो कितना, जितना एक छोटे से बालक को अपनी मां पर भरोसा होता, छोटे से बच्चे को मां जब लेती है खिलाती है, कभी कभी खिलाती है तो क्या करती, वो कभी कभी खिलाते खिलाते ऐसे ऐसे करते ऊपर उछालती, कभी कभी, और ऊपर उछालती तो बच्चा रोता नहीं है क्योंकि उसे पता है नीचे कोई संभाल लेगा, उल्टा खिलखिलाता है और नीचे मां की गोद में आ जाता है। ऐसे ही तुम जीवन में रहना, कभी कुछ ऊपर जाना भी पड़े, कभी संकटों में फंसना भी पड़े तो घबराना मत, खिलखिलाना, क्योंकि तुम्हें साधने वाला परमात्मा बैठा, भगवान बैठा साधने वाला, बालाजी बैठे साधने वाले, और सुनो भगवान भूखा सुलाते नहीं जगाते, भगवान कभी भूखा। हम आज सुबह सुबह एक कथा पढ़ रहे थे पूज्य श्री मलुकदास जी की, आहा, ऐसा नहीं कि मलुकदास जी नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, मानते तो थे, पर कभी कभी संत इसलिए लीला करते कि दूसरों को दिखाया जा सके, हम लोगों को सीखने के लिए, महात्मा है लीला करते रहते, उल्टी सीधी लीला है, जैसे एक ब्रज के बहुत सिद्ध महात्मा थे, उनके पास कोई भी कुछ सामान देने जाता था वो हवन कुंड में डाल देते थे, तो कोई बहुत अच्छा भगत एक महंगी चुनरी लाया राधा जी के लिए और रूहानी इत्र लाया, रूहानी बड़ा महंगा पाकिस्तान का इत्र है, लाहौर का रूहानी बड़ा महंगा, राजा रहा होगा तो वो लाया अपने गुरु के पास, चुनरी भी दी वो रूहानी इत्र भी दिया, महात्मा ने लिया दोनों हवन कुंड में डाल दिया, राजा का दिमाग खराब, कैसा बाबा है हम इतनी महंगी चीज लाए इसने हवन कुंड में डाल दी। अब साधारणतया यहां बुद्धि यही चलेगी कि हमारी वस्तुओं की कोई कीमत ही नहीं, हमारे भाव की कोई कीमत ही नहीं, लेकिन जब वो राजा अटारी पर पहुंचा बरसाने में किशोरी जी के दर्शन करने राधा रानी के, तो क्या देखता है जो चुनरी वो लाया था वो किशोरी जी को डली हुई और खुशबू उसे इत्र की आ रही। महात्मा लीला करते हैं, तो महात्मा यदि कुछ करें कभी उल्टा करें, और उल्टा चलना ही पड़ता है, और याद रखना मां जब तक उल्टा नहीं चलती तब तक बेटा सीधा चलना नहीं सीखता, मां उल्टा चलती है, आजा बेटा आजा आजा आजा आजा बेटा आजा, जब आजा बेटा कहती है तो छोटा बच्चा पर मां की तरफ दौड़ता है फिर वो सीधा चलना सीखता है, मां जब उल्टा चलना सीख करती है तो बेटा सीधा चलना सीखता, ऐसे ही महात्मा कभी कभी उल्टा चलता है तब तुम सीधे चलते हो। लीलाओं पे कभी भरोसा संदेह नहीं रखना चाहिए, महात्मा पर गुरु पर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, निसंदेह रहना चाहिए। तो मलुकदास जी नास्तिक तो नहीं थे लेकिन लीला के लिए उन्होंने लीला की कि एक गांव में महात्मा आए, महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे तो वो कथा सुना रहे थे, भगवान सर्व सामर्थवान है शक्तिवान है, भगवान भूखा उठाते हैं सुलाते नहीं, ये भगवान की अहेतु की कृपा है, भगवान अकारण करुणा करने वाले करुणा वरुणालय हैं, भक्त वांछात हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया कि आपका भगवान सच में खिलाता है, बोले बिल्कुल

देते तब माँ के स्तनों में दूध किसने दिया? भगवान ने दिया। अब दांत हुए तो वो अन्न भी देगा, उस पर संदेह क्या करना। तो इन्होंने कहा कि क्या भगवान खिलाता है? बोले खिलाता है। और तो मलुकदास जी ने कहा यदि हम ना खाएं तो? बोले तब भी भगवान खिलाएंगे। मलुकदास जी बोले सुनो बाबा जी, हम आज प्रण ले रहे हैं, आज हम खाएंगे नहीं, देखते हैं तुम्हारा भगवान खिलाता कि नहीं, और यदि तुम्हारा भगवान खिला देगा तो हम तुम्हारे चेला बन जाए, नहीं खिलाएगा तो तुम हमारे बन जाना। महात्मा जी भी रहे होंगे हमारे जैसे उबड़ खाबड़। बोले लगी सर, वो तैयार। बोले तैयार। अच्छा सच्चाई का जमाना तो भरोसा बातों पर होता ही था। महात्मा बोले शाम को आना, भगवान ने खिलाया कि नहीं। तो मलुक जी घर गए, घरवाली ने कहा पत्नी ने भोजन पालो, 12 बज गए, इन्होंने कहा आज नहीं खाएंगे, आज हमारा व्रत है, संकल्प है। पत्नी ने हंसते हुए कहा आज तक व्रत नहीं रहे, अब क्या व्रत रहोगे, पूरी जिंदगी बिना व्रत के निकाल दी, अब क्या व्रत रहोगे। लगता है पति देव किसी बात में नाराज। तो पत्नियों की माताओं की आदत होती मीठी मीठी बातें, खा लो जी आज हमने बढ़िया देखो आपके लिए सब्जी बनाई है, भटा का बैगन का भरता बनाया, लो जी पालो जी। इसने सोचा कहीं घरवाली कसम बसम रख दे, खा नहीं पड़े नियम टूट जाएगा, हमें बाबा का चेला बनना पड़ेगा, बाबा हमारा चेला नहीं बनेगा। और घरवालियां होती हैं ऐसी, हनी होती हैं हनी। आज हम आपको भक्ति के तीन दुश्मन के बारे में बताना चाह रहे हैं। कल हमने भक्त के तीन लक्षण बताए, भाव, भरोसा, बोलापन। लेकिन भक्ति के तीन दुश्मन भी हैं, नोट करना प्रिय साधको। भक्ति का पहला दुश्मन है कुसंग। क्या है? कुसंग। अजामिल को कुसंग मिला, परम वैष्णव त्रिकाल संध्या करने वाला पंडित आचार्य कुसंग के चक्कर में नास्तिक हो। तो भक्ति का पहला शत्रु कौन है? कुसंग। भक्ति का दूसरा शत्रु है अहंकार, मैं। ये मैं बहुत खतरनाक है, मेरे पागलों, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दबा लगी। मैं की हवा बहुत खतरनाक, अहम की हवा बहुत बेकार होती है। भक्त के अंदर ये नहीं होना चाहिए मैं, भक्त के अंदर होना चाहिए भगवान। अभिमान नहीं, भगवान अंदर, भगवान बैठा हो, कुछ भी हो वे, यही भाव मन में रहना चाहिए। सब भगवान करवा रहे, सब भगवान कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं और भगवान कर रहे हैं। और कोई कहे वाह आपके कारण ऐसा हो गया, सब भगवान की कृपा है, हर पल ये चित्त में बना रहे। और याद रखना शब्दों के जादूगर बहुत है। तुम लोग बाहर से तो कहते हो, हम किसी के घर, हमने कई बार ये बात बताई आज फिर बता, मुंबई में एक बहुत अच्छा चेला है हमारा, उसने एक कोठी बनाई बहुत अच्छी, उसके हम घर गए, कोठी को देखकर हम भी बड़े प्रसन्न हुए। तो हमने पूछा ये किसकी है? आपकी ही है आपकी। हमने कहा तू क्या कर रहा है? आपकी है तो तुम क्या कर रहे हो? फिर नहीं उसने कभी जिंदगी में कहा कि आपकी है, कुछ भी कहो आपकी। गाड़ी पूछो किसकी? आपकी है, आपकी है, आपकी। ये हम लोग ना बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। मंदिरों में भी यही हाल है, शाम को आरती गाते ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन।

0: इतनी अच्छी आरती है, आ क्या लागे मेरा, और लोग भी इतने भाव से गाते कि भगवान विष्णु को नारायण को लगता
1: यही अच्छा भगत है।
0: ऐसे आंख बंद के क्या लागे
1: बाहर आके कहता गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी, जेब कट गई है मेरी।
0: बताओ अभी कह रहा था सब तेरा है, अब ये मेरा हो गया, कन्फर्म कर भाई। बिंदु जी थोड़ी हो कि बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा बन, ये चेला थोड़ी हो कि तीन तीन लुगाई चलेंगे, पटेल साहब थोड़ी हो, पटेल साहब थोड़ी हो, एक तरफ कहीं रहो। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास बहुत पुराना, बाहर से संसारी रहो अंदर से सन्यासी हो जाओ, बाहर से जगत के रहो अंदर से भगवान के हो जाओ, बस सीधा सा सूत्र है, सीधा सा खेल है। तो दुश्मन है भक्ति के तीन, पहला कुसंग, दूसरा अहंकार और तीसरा आलस। कल करेंगे। और कबीर क्या कहते, काल

0: कल करता तो आज कर।
1: क्या तिल के दानों का प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं? क्या तिल के दानों का प्रयोग करके आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? क्या तिल के तेल या दानों का प्रयोग करके शनि की साढ़े साती को समाप्त कर सकते हैं? क्या है तिल का शनि से संबंध और क्या है तिल के चमत्कारी उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: यू शुडन्ट हैव टू चूज बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
2: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
3: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
0: ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: आज फुटबॉल के महाकुंभ का शुभारंभ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगी ओपनिंग सेरेमनी। 39 दिन तक चलेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर का रंग। उत्तर भारत को गर्मी से मिलेगी राहत। अगले दो दिन बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी राज्यों में भी होगी बारिश। दिल्ली में आधी बारिश का अनुमान। चारधाम यात्रियों का उत्साह बरकरार। अब तक 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। नोएडा हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने से पहले अंतिम ट्रायल पूरा। 15 जून से शुरू होंगी उड़ानें। वडोदरा में पहले मेड इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमान का सफल ट्रायल। टाटा और एयरबेस डिफेंस ने मिलकर किया निर्माण। आज आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर। मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर। अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
12: आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का होगा आगाज। अमेरिका कनाडा मैक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। पहली बार तीन देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच। ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में खेले जाएंगे मैच। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका के न्यूजर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। मैक्सिको, टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा है फुटबॉल विश्व कप का फीवर। केरला में गलियों सड़कों से घरों तक दिख रहा है फुटबॉल का क्रेज। चहेते खिलाड़ियों की तस्वीरों से पटेल आके। भगवान बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज रहा उत्तराखंड का चमोली। बद्रीनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार। पिछले साल 25 जून को पार हुआ था 10 लाख दर्शन का आंकड़ा। इस बार 10 जून तक ही 10 लाख श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। भक्तों की भीड़ के साथ यात्रा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार। श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने में जुटा प्रशासन। खराब मौसम के बीच भी कम नहीं हुआ भक्तों का जोश। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी। लगातार बारिश, बर्फीली हवाएं और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। यात्रा को लेकर इंतजामों से संतुष्ट दिखे श्रद्धालु। सफाई, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन के इंतजामों की तारीफ की। केदारनाथ में अब तक लगभग 12 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ब्रिटेन से आए कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर में दर्शन पूजन किए। कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। असाधारण बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए आर्मी मेजर अर्षदीप सिंह गिल। मेजर गिल ने जीएनटी को सुनाई 48 घंटे चले जोखिम भरे ऑपरेशन की कहानी। गृह जनपद रीवा पहुंचे सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी का रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। 3 गोली लगने के बाद भी आतंकी को किया था ढेर। राष्ट्रपति से मिला शौर्य चक्र। अकोला के शहीद प्रवीण जंजाल को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र। सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन में छलका मां का दर्द तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सहारा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दिखा आस्था और भक्ति का संगम। पेची अम्मन मंदिर में आयोजित पारंपरिक वैकासी कोडाई महोत्सव में जुटे श्रद्धालु। महोत्सव के दौरान जीवंत हुई प्राचीन परंपराएं। पारंपरिक तरीके से बनाए गए प्रसाद उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में जुटते हैं श्रद्धालु। तमिलनाडु की समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रतीक है वैकासी कोडाई महोत्सव। इस दौरान

तमिलनाडु की समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रतीक है वैकासी कुड़ाई महोत्सव। इस दौरान अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का होता है आयोजन। थूथुकुड़ी में 27वें ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त जोश। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का स्वागत। खेल को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह। बड़ी संख्या में लोग मुकाबला देखने के लिए पहुंचे। पुरुषोत्तम मास के मौके पर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची राज्य मंत्री बाबा जडेजा। दर्शन पूजन किए। इस पवित्र मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु रही मौजूद। रिवावा जडेजा को गुलाल लगाकर सम्मानित किया। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी। एयरपोर्ट ने इंडिगो के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया अंतिम ऑपरेशनल रेडीनेस एक्टिवेशन और ट्रांजिशन ट्रायल। ट्रायल में विमान के उड़ने लैंड करने से लेकर दोबारा उड़ान भरने तक की हर प्रक्रिया का होगा परीक्षण। व्यवस्था तकनीकी प्रणाली एजेंसी के समन्वय की जांच की गई। परीक्षण में विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज ग्राउंड पावर यूनिट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और कार्गो संचालन जैसी सुविधाओं की भी की गई जांच। विमान में कैटरिंग ग्राउंड हैंडलिंग ईंधन भरने से जुड़ी प्रक्रियाओं का भी किया गया परीक्षण। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच प्रक्रिया की भी की गई जांच। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 15 जून से शुरू होने वाली है कमर्शियल उड़ानें। एयरपोर्ट पर पहले चरण में बनाया गया एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। आज दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश की है उम्मीद। आंधी तूफान बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचने वाला है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से 14 जून तक दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना। प्री मॉनसून बारिश से अगले कुछ दिन में तापमान 40 डिग्री से नीचे आने की उम्मीद। फिलहाल सूरज की तेज तपिश के बीच हीट वेव से जूझ रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए भी जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि का जताया अनुमान। मुंबई के लिए गर्मी और उमस के बीच राहत भरी खबर। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद आ सकती है मॉनसून की बारिश। मॉनसून के कारण केरल में 14 जून तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी। कोलकाता में मूसलाधार बारिश। मॉनसून की एंट्री के साथ तापमान में दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के भलेसा में भारी भूस्खलन। थात्री किलोथरन हाईवे पर यातायात पर असर। भूस्खलन के बीच जान माल का नुकसान नहीं मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके में संस्कारशाला के नाम से समर कैंप का आयोजन। इस समर कैंप में बच्चों को सिखाए जा रहे हैं नैतिक मूल्य। सनातन धर्म मंदिर में आयोजित इस संस्कार शाला में बच्चों को सिखाए जा रहे मंत्र और भजन। बच्चों ने याद किया हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयां। हिरण के लिए सुरक्षित आश्रय बना भुवनेश्वर का लोक भवन परिसर। लोक भवन में हरियाली के बीच बढ़ रही है हिरणों की संख्या। परिसर में आजाद घूमते हिरण बढ़ा रहे हैं लोक भवन मैदान की सुंदरता। परिस्थिति की संतुलन के साथ साथ प्रशासन और वन्य जीवों के बीच बना रहे हैं अनोखा बैलेंस। केरल के मशहूर हिल स्टेशन पलक्कयम में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। राज्य सड़क परिवहन निगम के बजट टूरिज्म सेल ने जारी की नई स्मारिका। शिमला में सैलानियों के स्वागत के लिए इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आयोजन। जगह जगह देखने को मिल रहे हैं हिमाचल की संस्कृति के रंग। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर महिलाओं ने दी शानदार प्रस्तुति। उत्साह और उल्लास से भर गया पूरा माहौल। समर फेस्टिवल का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। पारंपरिक नाटी नृत्य में स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते दिखे पर्यटक। फेस्टिवल के दौरान हिमाचल के तरह तरह के व्यंजनों के भी लगे स्टॉल्स। लोगों ने चखा स्थानीय जायका। शिमला समर फेस्टिवल के दौरान डॉग शो का भी

0: सर्जन डॉग्स के कर्तव्य में बच्चों ने दिखाई खास दिलचस्पी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: क्या तिल के दानों का प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं? क्या तिल के दानों का प्रयोग करके आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? क्या तिल के तेल या दानों का प्रयोग करके शनि की 7.5 को समाप्त कर सकते हैं? क्या है तिल का शनि से संबंध और क्या है तिल के चमत्कारी उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Right field, and it will...
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज।

0: Today.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हनुमान जी की ऐसी स्तुति के बारे में जिसका पाठ करने से स्वास्थ्य की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और स्वास्थ्य की मुश्किलों में सुधार होता है। आज बात करेंगे हनुमान बाहुक के बारे में, हनुमान बाहुक के महत्व के बारे में और हनुमान बाहुक के प्रयोग करने के नियमों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए या निजात पाने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना किस प्रकार लाभकारी मानी जाती है। देखिए, हनुमान जी भक्ति के और शक्ति के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी का मतलब जहां भक्ति और समर्पण से अपूर्व शक्ति है, ये सरल भक्ति से और प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए हनुमान जी के जो नाम हैं उसमें से इनका एक नाम लक्ष्मण प्राण दाता भी है। हनुमान जी के अगर आप विशेष मंत्र पढ़ें और विशेष स्तुतियों का पाठ करें तो आपको स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। और इनमें भी अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है। कठिन से कठिन रोग हो, कठिन से कठिन बीमारी हो, स्वास्थ्य में सुधार ना हो पा रहा हो, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अगर हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। हनुमान बाहुक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो ये तो आपने समझ लिया कि हनुमान बाहुक हनुमान जी की एक विशेष स्तुति है और स्वास्थ्य के मामलों में हनुमान बाहुक का पाठ किया जाता है। तो अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक की महिमा क्या है। देखिए, हनुमान बाहुक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक स्तुति है। कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास जी को पीड़ा हुई तो उन्होंने इस पीड़ा को शांत करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं के लिए हनुमान बाहुक का पाठ अमोघ है, अचूक है। खास तौर से अगर आपके शरीर में दर्द है या दर्द संबंधी कोई समस्या है तो उसमें इसके पाठ से जल्दी लाभ होता है। अगर कोई ऐसा रोग हो गया है जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा है
तो हनुमान बाहुक रोग का नाश कर देता है। यानी बहुत बार आपने देखा होगा कि राहु की महादशा में या राहु की अंतर दशा में बीमारी का कारण और निवारण ये दोनों समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अगर हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो रोग शांत हो जाते हैं, रोग का डायग्नोसिस हो जाता है और आदमी उचित इलाज से ठीक हो जाता है। हनुमान बाहुक का पाठ कैसे करेंगे इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो आपने ये तो जान लिया कि हनुमान बाहुक का पाठ करने से स्वास्थ्य की गंभीर से गंभीर समस्याएं बेहतर हो जाती हैं। आखिर हनुमान बाहुक का पाठ कैसे करेंगे? हनुमान जी का एक चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हों, साथ में श्री राम का चित्र या उनकी मूर्ति भी स्थापित करिएगा। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और एक छोटे से लोटे में या साफ गिलास कटोरी में पात्र में जल भरकर रखें। पहले भगवान राम की स्तुति करें, भगवान राम से कृपा करने की प्रार्थना करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिले। अब हनुमान बाहुक का पाठ करें और पाठ करने के बाद प्रार्थना करें कि श्री राम और हनुमान जी की कृपा से रोग दूर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो। पाठ के बाद उस पात्र का थोड़ा सा जल रोगी को पिला दें, खुद अगर रोगी हैं तो थोड़ा सा जल खुद पी लें, बाकी बचा हुआ जल शरीर के रोग वाले हिस्से पर लगाएं और बाकी जल पौधे में डाल दें। आप रोज सुबह हनुमान बाहुक का पाठ इस तरीके से कर सकते हैं या रोज शाम को भी आप हनुमान बाहुक का पाठ इस तरीके से कर सकते हैं। इससे सुधार बहुत ही जल्दी होगा और अगर प्रारब्ध है बाकी तो निश्चित रूप से आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो आज हमने आपको बताया स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और जीवन में सुधार के लिए हनुमान बाहुक की महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर स्वास्थ्य की समस्या का कारण पता न चल पा रहा हो, किस कारण से बीमार हैं समझ में ना आ रहा हो, तो रोज शाम को शिव जी के मंदिर में घी का दीपक 11 दिनों तक जलाएं। स्वास्थ्य की समस्या का कारण भी पता चलेगा और उसका निवारण भी होगा। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं
तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: आज फुटबॉल के महाकुंभ का शुभारंभ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगी ओपनिंग सेरेमनी। 39 दिन चलेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर का रंग। देश के करोड़ों लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, उत्तर भारत में अगले दो दिन बारिश का अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में भी होगी बारिश, दिल्ली में आंधी बारिश का अनुमान। मुश्किल मौसम पर आस्था भारी, चारधाम में अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम में करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। नोएडा हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने से पहले अंतिम ट्रायल हुआ पूरा, 15 जून से शुरू होंगी उड़ानें। रक्षा क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धि, वडोदरा में पहले मेड इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमान का सफल ट्रायल, टाटा और एयरबस डिफेंस ने मिलकर किया निर्माण। आ जाएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रायल, मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर, अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, सभी ग्रहों में से अगर कोई एक ऐसा ग्रह है जिससे लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा भय बना रहता है, तो वो है शनि। तो आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे कि किस तरीके से तिल के दान से शनि की शांति होगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: शनिवार के दिन अपने भोजन में काले चने शामिल करिएगा। शनिवार को भोजन में काला चना प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शनि संबंधी स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा।
0: तो तिल से शनि ग्रह की किस तरह से शांति होगी उसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। पंडित जी से फिलहाल पूछ लेते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है।
1: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि जो तिल के दाने होते हैं, तिल के दानों का प्रयोग करके आप शनि ग्रह की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण होते हैं, इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है। तिल के बीज दो तरीके के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में लगभग दोनों एक समान होते हैं, लेकिन शनि के लिए जब हम तिल का प्रयोग करते हैं तो शनि के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक और केशवर्धक, बाल को बढ़ाने वाला, वायु की समस्या को दूर करने वाला और रोगों को हटाने वाला होता है। तिल के जो दाने हैं वो संतान उत्पत्ति की क्षमता को मजबूत करते हैं और शरीर में कैल्शियम बढ़ा देते हैं। सामान्यतः पूजा के दीपक में और पितरों के काम में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के तेल का भी प्रयोग होता है और तिल के दानों का प्रयोग भी किया जाता है। काला तिल जो है वो शनि से संबंधित माना जाता है, तो अगर जीवन में शनि से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो काले तिल का प्रयोग करके उस दिक्कत को, उस समस्या को दूर किया जाता है।
0: तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, धन हानि से बचाव करें, नुकसान हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही होगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, रोजगार में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, जैसे कि कहते हैं कि शनि से सबको बहुत ज्यादा डर लगता है, न्याय के वो देवता हैं, लेकिन उसके कारण आयु और रोगों की भी समस्या होती है। अगर किसी की जिंदगी में ऐसा हो रहा है तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं?
1: शनि जो होता है वो लोगों की आयु का भी स्वामी है और लोगों को रोग और बीमारियां देने में भी शनि की बड़ी भूमिका होती है। तो अगर आयु की समस्या है, रोगों की समस्या है शनि के कारण, तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइएगा और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः या शनि चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद तिल के लड्डुओं का दान करिए या थोड़ा सा काला तिल कुछ पैसा रख करके किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा। आपके आयु की रक्षा होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर स्वास्थ्य की लंबी समस्या है या शनि की वजह से आयु बाधा है तो इस उपाय को करने से आपको लाभ होगा।
0: तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है।
1: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती दिख रही हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, वाद विवाद ना करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न अनुज कुमार ने हमें लिखा है और अनुज हमें मेल लिखते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1981। जन्म का समय दोपहर में 3:22। जन्म स्थान है मेरठ। अनुज कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बार बार पैसे रुपए को लेकर के दिक्कतें होती रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। अनुज आपकी कुंडली में राहु की जो स्थिति है वो बार बार आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में दिक्कतें पैदा करती है। राहु को अगर बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो सकती हैं। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। और एक स्तुति होती है काल भैरव अष्टक, काल भैरव अष्टक, इसका रोज शाम को पाठ करें या रोज शाम को सुनें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त दूसरा सवाल लेने का हो गया है, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर अपने प्रश्न आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न ममता अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और ममता जी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 12 फरवरी 1979। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं आगरा से। ममता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता, कुछ न कुछ समस्याएं मुझे रोज लगी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। ममता जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य की स्थिति अभी फरवरी 2027 तक बहुत अच्छी नहीं है। फरवरी 2027 तक शांति और सावधानी बनाए रखिए, कोई छोटी मोटी सर्जरी भी इस समय में हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य और जीवन बेहतर है, कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करिए और रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: पंडित जी अगर शनि की वजह से दुर्घटना, मुकदमा या अपयश की स्थिति हो तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ अचूक उपाय?
1: देखिए शनि आयु के सबसे बड़े कारक हैं, लेकिन शनि जीवन में दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं। मंगल से संबंध हो गया, सूर्य से हो गया, केतु से हो गया, या शनि की वजह से लीगल हैसल्स मुकदमे परेशान करते हैं, या शनि अगर ज्यादा नकारात्मक है, शनि की दशा आ गई तो जीवन में अपयश या बदनामी की स्थितियां बनती हैं। तो अगर आपके जीवन में दुर्घटना, मुकदमा, अपयश की स्थिति है तो तिल के दानों के प्रयोग से इस मुश्किल को कैसे दूर करेंगे? शनिवार को एक चुटकी काला तिल जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए और इसके बाद सूर्य देव को काला तिल मिले हुए जल से अर्घ दीजिए। शाम के समय में तिल से बनी हुई खाद्य सामग्री का दान करिए। आप तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं या भोजन में तिल छिड़क करके उसका भी दान कर सकते हैं। और शनिदेव का एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम शं क्रूराय नमः, ओम शं क्रूराय नमः, इस मंत्र का जप करें। ये प्रयोग निरंतर 3 शनिवार को आप करें तो दुर्घटनाओं से, अपयश से और मुकदमे की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा।
0: पंडित जी, अगर शनि ग्रह के कारण रोजगार की समस्या आ रही हो और एक एक पैसे के लिए व्यक्ति मोहताज हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है?
1: कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, उसका करियर जब हम देखते हैं कुंडली में तो शनि से उस करियर को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि शनि के हिसाब से उसका करियर कैसा रहेगा। आप नौकरी करते हो, प्रोफेशनल हो, व्यापार करते हो, इसके पीछे भूमिका होती है सैटर्न यानी शनि की। तो अगर शनि की वजह से रोजगार में आपके दिक्कतें हैं और पैसे रुपए की बड़ी कठिनाई है, बड़ा कष्ट है, क्या उपाय करेंगे? शनिवार को शाम को एक विशेष प्रयोग करें। नीम की या शमी की लकड़ी ले लें, उसको तिल के तेल डाल करके तिल के तेल की सहायता से प्रज्वलित करें, जलाएं और अब तिल के दानों से 108 बार आहुति देंगे। हर आहुति पर कहेंगे ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ये करें और ये प्रयोग हर शनिवार की शाम को तब तक करते रहें जब तक आपके रोजगार की समस्या दूर ना हो जाए। इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए आप हवन सामग्री में भी तिल मिलाकर उससे भी हवन कर सकते हैं। तो लगभग हर शनिवार को अगर आप हवन करें तो निसंदेह रोजगार की, नौकरी की, व्यापार की मुश्किलें हल हो जाएंगी।
0: तो बातचीत पंडित जी से यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, सेहत इस समय आपकी कुल मिलाकर ठीक दिख रही है, धन की प्राप्ति होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में शनि की वजह से विष योग या कोई बुरा योग बन रहा हो तो ऐसे में क्या डरने की जरूरत है, और इस परिस्थिति में तिल से जुड़े क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं?
1: देखिए, शनि चंद्र का संबंध विष योग, शनि राहु का संबंध नंदी योग, शनि सूर्य का संबंध ये भी नकारात्मक है। तो अगर शनि के कारण विष योग बना हो या कोई बुरा योग बना हुआ हो तो क्या उपाय करेंगे तिल के दानों से? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और जल में काला तिल डालेंगे। कम से कम एक चुटकी काला तिल डालकर जल में आप तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर शनिवार की शाम को बहते हुए पानी में जरा सा काला तिल मिलाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी कुंडली के बुरे योग समाप्त हो जाएंगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
0: पंडित जी, शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो तो उस परिस्थिति में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि शनि से सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है?
1: देखिए, इस समय की बात करें तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है। तो अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो क्या करें? रोज सुबह स्नान के जल में काले तिल के दाने डालें, चुटकी भर काला तिल जल में मिलाएं और उस जल से स्नान करें। घर से निकलते समय कुछ तिल के दाने चबा करके निकलें और हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा निरंतर आप करते रहें तो शनि की 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
0: आगे बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, नया कारोबार इस समय शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नई नौकरी का योग बन रहा है, धन का लाभ होगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो पंडित जी से बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल उनसे पूछ लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न हमें विजय कुमार शर्मा जी ने लिखा है, जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1960। जन्म का समय दोपहर में 1:10। जन्म स्थान है जोधपुर। मेल लिखते हैं जयपुर से। विजय जी कह रहे हैं कि संतान के जीवन को लेकर चिंताएं बहुत हैं, संतान के साथ तालमेल नहीं है, संतान का व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत अच्छा नहीं है, तो आने वाला समय मेरे लिए, मेरी संतान के लिए कैसा रहने वाला है। विजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जो संतान है, आपका जो पुत्र है, वो आपसे दूर ही रहेगा। उनका सेटलमेंट जयपुर से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक उनके साथ तालमेल का प्रश्न है, इस साल के जुलाई के बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। और ये आप जान लीजिए कि आपके कठिन समय में जब आपको सेवा सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके पुत्र की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाला समय आपका ठीक है। थोड़ी चिंता को कम करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो इस पर आप अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें सविता जी ने लिखा है और सविता जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1971। जन्म का समय सुबह के 10 बजे। जन्म स्थान है भुज, कच्छ, गुजरात। ये कह रही हैं कि पारिवारिक जीवन में बहुत अशांति है, पति के साथ, बच्चों के साथ चीजें बहुत गड़बड़ हैं और जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मैं सुखी नहीं हूं, तनाव बना रहता है। तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी पारिवारिक मुश्किलें कम हो जाएं? सविता जी, देखिए मामला इतना जटिल नहीं है, इतना कठिन नहीं है। आप परेशान ज्यादा हैं, आपका तनाव ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पति वार को सवेरे पुखराज धारण करें और रोज सुबह पूजा के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, परिवार की अशांति दूर हो जाएगी।
0: पंडित जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि दीपक जलाने में तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, क्या ये शुभ फलदायी है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए तिल का तेल?
1: जी देखिए, सामान्यतः आप पूजा में जो दीपक जलाते हैं, सबसे पहले तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाना ज्यादा सही माना जाता है। अगर घी का दीपक नहीं जला सकते, शुद्ध घी का, क्योंकि शुद्ध घी महंगा बहुत है, तो अगर शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते तो ऐसी स्थिति में आप तिल के तेल का दीपक भी पूजा स्थान पर जला सकते हैं। पूजा के कार्यों में तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल एक पवित्र तेल है और इसका किसी भी तरह के पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। सरसों के तेल का प्रयोग नॉर्मल पूजा में करना वर्जित है, मना है। तो सरसों के तेल का प्रयोग केवल दीपावली के समय, शनि संबंधी पूजा में या शनि संबंधी मंत्रों में किया जाएगा। अन्यथा सामान्य रूप से आप जो पूजा करते हैं उसमें शुद्ध घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी पूजा सरल होगी, सफल होगी।
0: तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में परिवर्तन और सुधार के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं पर ध्यान बनाए रखना होगा, साल के अंत तक संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
1: बहुत बार भोजन के दौरान, नाश्ते के दौरान हम दूसरे व्यक्ति का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे व्यक्ति का भोजन ग्रहण करने से क्या कोई नुकसान होता है? अगर दूसरा व्यक्ति अशुभ संस्कारों वाला है या अपने मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता है तो ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के भोजन में निगेटिव एनर्जी होगी जो आपको परेशान करेगी। कोई अच्छा व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, उसका भोजन ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति स्वभाव से अच्छा नहीं है या आपको पता है कि उसके मन में आपके लिए बुरे विचार हैं, ऐसे व्यक्ति का भोजन ग्रहण मत करिएगा।
0: अब पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
1: शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी।
0: बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि साल 2026 में अलग अलग राशि के लोगों के लिए बृहस्पति की स्थिति कैसी रहेगी। आज की गुडलक राशि है धनु। आपके लिए बृहस्पति साल के आरंभ में और अंत में आपके लिए अनुकूल रहेंगे। साल के मध्य में जुलाई से अक्टूबर के समय में बृहस्पति फेवरेबल नहीं होंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
0: और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है।
1: जी, अब आप माता पिता हैं, आपके बेटे को संतान नहीं हो रही है या आपकी बेटी को संतान नहीं हो रही है, यानी आपकी संतान को संतान होने में समस्या हो रही है, तो क्या करें? घर में नियमित रूप से चंदन के सुगंध की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें और संतान जहां सोती है जिस कमरे में, वहां गाय और बछड़े का एक चित्र लगा दें या उसकी एक मूर्ति लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा उपाय माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चे के संतान की प्राप्ति के लिए।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: Good news today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: तस्वीर, खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव

0: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: अच्छे संस्कार भी किसी की पहचान को स्थापित करने में सहायक होते हैं। इसी को लेकर दिल्ली में पिछले कुछ साल से बच्चों के लिए संस्कार समर कैंप का आयोजन किया जाता है, जहां बच्चों को कई तरह की सही शिक्षाएं मिलती हैं।
2: गर्मी की छुट्टियों का सही उपयोग किस तरह किया जा सकता है, वो यहां देखा जा सकता है। श्लोक और मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, एक साथ मिलकर सब भजन गा रहे हैं। साथ में भजन या बॉलीवुड के भक्ति भाव वाले गानों पर डांस भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके के सनातन धर्म मंदिर की है, जहां समर कैंप के तहत इस संस्कार शाला का आयोजन किया गया है। यहां बच्चों को वो बातें सिखाई जा रही हैं जो व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी हैं।
3: और आप तमाम बच्चों को फिलहाल देख पा रहे हैं, और ये समर कैंप की संस्कार शाला हर रोज यूं ही चल रही है एक महीने के लिए। तमाम बच्चे मेरे साथ में हैं, पिछले दो हफ्ते से वो लगातार आ रहे हैं। क्या कुछ सीखा आपने? क्या नाम है आपका?
4: उज्जवल।
3: उज्जवल, उज्जवल किस क्लास में हो आप?
4: सिक्स्थ।
3: सिक्स्थ में। यहाँ क्या क्या सीखा आपने?
4: मैंने यहाँ पे मंत्र सीखे और भजन सीखे, डांस सीखा।
3: आपका नाम क्या है?
5: भव्या।
3: भव्या किस क्लास में हो आप?
5: मैं कॉलेज के फोर्थ ईयर में हूँ।
3: कॉलेज के फोर्थ ईयर में हो आप? अच्छा, तो क्या सीखा आपने यहाँ पर?
5: यहाँ पे हमने मंत्र सीखे कि किस तरीके हमें सुबह उठ के हर चीजें करनी चाहिए, जैसे हमें अपनी सुबह की शुरुआत कैसे, किन मंत्रों से करनी चाहिए, स्नान के टाइम पे हमें कौन से मंत्र बोलने चाहिए, पूजा घर में जाके हमें क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, किस तरीके से वो हमारे संसार में सबसे पहले गुरु होते हैं। हमने यहाँ पे राम जी की चौपाइयाँ सीखी हैं, गीता जी के श्लोक अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे।
3: ये देख रहे हैं आप कि ये बच्चे अगर घर में रहते हैं छुट्टियों में या कहीं घूमने चले जाते तो शायद ही इन सब चीज़ों को सीख पाते, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि कहीं नहीं जाएंगे, समर कैंप में संस्कार शाला में आएंगे।
2: यहाँ बच्चों को श्लोक और मंत्र सीखने को मिल रहा है, सुबह उठते ही किस मंत्र का उपयोग करना चाहिए, तो नहाने से पहले किस मंत्र को बोलना चाहिए, ये सब कुछ ये बच्चे जान चुके हैं।
6: गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सरयू, क्षेप्रा, ब्रह्मपुत्रा, सभी नदियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका जल मेरी बाल्टी में आए, मैं आपसे स्नान करूँ।
2: मंत्रों के अलावा इन बच्चों को रामायण की चौपाई का ज्ञान भी यहाँ मिलता है। हनुमान चालीसा तो इन्हें याद ही हो चुका है। इस समर कैंप में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी मिल रहा है। दिन की शुरुआत से लेकर सोने से पहले तक क्या कुछ करना चाहिए। इस संस्कार शाला का आयोजन करने वाले रोहित खुराना के मुताबिक पिछले 5 साल से वो लगातार मंदिर में ऐसे समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हर रोज 80 से 100 बच्चे इस समर कैंप का हिस्सा बनते हैं।
7: बच्चों, सीधा आती पाती, कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ लो।
8: फोन से बचाना है और अपने संस्कार से जोड़ के रखना है, ताकि बच्चे ग्राउंडेड रहें, सेवा का मतलब समझें, सेवा भावना का मतलब समझें और उनका मन भी शांत होए। क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी बड़ी एक्सपेक्टेशन है हमारे अपने बच्चों से, वो यहाँ भी जीत जाएं, स्विमिंग क्लासेस भी जाएं, लॉन टेनिस भी खेलें, पढ़ाई में भी अच्छा करें। तो बच्चों कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है और हम इस माध्यम से ये बच्चों को दे रहे हैं।
2: यहाँ समर कैंप की शुरुआत में बच्चों को लाना पड़ रहा था, लेकिन अब समर कैंप का हिस्सा बनने बच्चे खुद खुशी खुशी आते हैं।
9: जो बड़े हो गए हैं, बड़ा तना मोड़ना बड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चे जो हैं, कल को भारत का भविष्य इनके हाथ में आने वाला है। इनका अगर हम निर्माण करेंगे, फाउंडेशन निर्माण करेंगे, तो कल को एक हमारा अच्छा भारत हमारे सामने आएगा। इस लक्ष्य को लेकर के हम बच्चों का निर्माण करते, 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन अपने आप बच्चे आके करवाते हैं।
2: हर साल 1 महीने के लिए लगने वाले इस संस्कार समर कैंप की खासियत ये है कि इसके लिए बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। साथ ही इस दौरान मोबाइल से उनकी दूरी भी बनती है, यानी गर्मी की छुट्टियों में एक साथ कई तरह के फायदे इन्हें मिलते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं उस चावल को जिसे हम रोज खाने की थाली में देखते हैं। कंबोडिया की एक महिला कलाकार चावल के दानों से ऐसी तस्वीर बना रही है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है।
10: इन खूबसूरत कलाकृतियों को देखकर पहली नजर में कोई नहीं कह सकता कि ये चावल के दानों से बनी है। रंग बिरंगे चावल के दानों को बेहद क्रिएटिव अंदाज में सजाकर ये नायाब कलाकृति बनाई है कंबोडिया की आयशा ने। राजधानी नामपने में रहने वाली आयशा और उनकी टीम पहले चावल के दानों को अलग अलग रंगों में रंगती हैं, फिर स्केच पर गोंद लगाकर एक एक दाने को बड़े करीने से चिपकाया जाता है। इस काम में बड़े धैर्य और बारीकी की जरूरत होती है। एक बड़ी पेंटिंग को पूरा करने में कई दिन और कभी कभी कई महीने भी लग जाते हैं। पहले मैं चिपचिपे चावल से बने केक बेचती थी, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। तब मैंने सोचा कि चावल की असली कीमत को कला के जरिए दुनिया के सामने लाया जाए। कला की दुनिया में आयशा की शुरुआत भी दिलचस्प है। उन्हें कला में कभी औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने चावल के दानों को ही अपनी पहचान बना लिया। आज उनकी पेंटिंग में कंबोडिया की संस्कृति, ऐतिहासिक इमारतें और पारंपरिक अप्सरा नृत्य की झलक दिखाई देती है। इन पेंटिंग को कीड़ों और पानी से बचाने के लिए विशेष परत चढ़ाई जाती है। छोटी पेंटिंग कुछ डॉलर में बिक जाती है, जबकि बड़ी और ऑर्डर पर बनने वाली कलाकृतियों की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच सकती है। आयशा अपनी कला को सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए सीख का जरिया भी मानती है। कंबोडिया की वॉकिंग स्ट्रीट पर लगने वाले बाजार में आयशा की ये कलाकृतियाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करती हैं। चावल का एक एक दाना आयशा के हाथों में कला की पहचान बन जाता है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि कंबोडिया की संस्कृति और रचनात्मकता का एक ऐसा संदेश है जो पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
11: कभी कभी दिल का फैसला सबसे अलग होता है, और इस वीडियो में एक प्यारे से पपी के सामने कई बच्चे बैठे हैं और उसके पास किसी को भी चुनने का मौका है, लेकिन वो बिना देर किए सीधे एक खास बच्चे की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये नज़ारा देखते ही वहाँ मौजूद लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। पपी और बच्चे के बीच का ये अनोखा जुड़ाव बता रहा है कि सच्चा लगाव शब्दों से नहीं, एहसास से पहचाना जाता है। वफादारी और प्यार की बात हो तो डॉग का नाम सबसे पहले आता है। इस वीडियो में एक डॉग पूरे 6 महीने बाद अपने मालिक से मिलता है। जैसे ही वो अपने मालिक को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो धीरे धीरे पास आता है और फिर प्यार से उनसे लिपट जाता है। इस दौरान उनकी आंखों और हरकतों में छुपा अपनापन साफ नजर आता है। ये भावुक मिलन दिखाता है कि जानवर भी रिश्तों को उतना ही गहराई से महसूस करते हैं जितना इंसान। बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेने में है। इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा खेत में भरे पानी और मिट्टी के बीच मस्ती करता नजर आ रहा है। पानी में बच्चा चारों तरफ घूम रहा है और हर पल का खुलकर आनंद ले रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि असली खुशी महंगे खिलौनों में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ बिताए ऐसे बेफिक्र पलों में छिपी होती है। ये दृश्य हर किसी को अपना बचपन याद दिला रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
12: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
13: कसते तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज, पहली बार तीन देश मेजबान, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीम, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर।
4: प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर के लिए राहत की खबर, अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचर्स को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।
3: रक्षा क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धि, वडोदरा में पहले मेड इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमान का सफल हुआ ट्रायल, टाटा और एयरबस डिफेंस ने मिलकर किया निर्माण।
4: पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, सहारनपुर में 10,000 से ज्यादा घर सोलर पैनल से कर रहे हैं 34 मेगावाट बिजली उत्पाद, घट रहे बिजली के बिल, बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता।
3: हिमाचल में समर डॉग फेस्टिवल का आयोजन, अनूठे अंदाज में सज धज कर शो में शामिल होने पहुंचे डॉग्स, शो देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग।
4: आज आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर, मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर, अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग टोस्ट लेकर।
4: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: शुभ समाचार की शुरुआत बारिश के साथ करेंगे, मॉनसून ने देश के कई राज्यों को अपने आगोश में ले लिया है, इस बीच उत्तर भारत में भी फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, इससे देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है, तो दिल्ली में भी फुहारों ने दस्तक दे दी है, और कहां कहां हो रही है बारिश आगे आपको बताएंगे।
4: तो शिमला की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से रंग संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है, ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 में देश भर से आए पर्यटक और स्थानीय लोग बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये 5 दिवसीय उत्सव शुक्रवार तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर स्थानीय व्यंजन और कला प्रदर्शनियों तक कई आकर्षण जो है वो शामिल हैं, और क्या रंग बिखेर रहे हैं यहाँ आगे आपको दिखाएंगे।
3: बिल्कुल गीतिका, देखिए कल दिलजीत दोसांझ की फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज होने जा रही है, इम्तियाज अली की ये रोमांटिक पीरियड ड्रामा देश विभाजन के बैकड्रॉप पर आधारित नजर आती है, जिसमें विभाजन के दंश से पीड़ित एक बुजुर्ग की अपनी प्रेमिका के लिए मोहब्बत के लिए कसक नजर आती है। इसी फिल्म से जुड़ा एक नया गाना क्या कमाल है जारी कर दिया गया, और इसमें क्या खास संदेश आगे आपको बताएंगे।
4: तो फुटबॉल का महाकुंभ सच चुका है, फीफा वर्ल्ड कप की आज से शुरुआत होने जा रही है, फीफा के इतिहास में पहली बार तीन देश मिलकर संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं, पहली बार 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, इतना ही नहीं ये पहला मौका है जब किसी वर्ल्ड कप में 100 से ज्यादा मैच हो रहे हैं। आज रात 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी के साथ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा, इसकी गूंज भारत में भी सुनाई देने लगी है, इसको लेकर यहाँ क्या है रोमांच ये भी आगे आपको दिखाएंगे।
3: बिल्कुल देखिए आज रंग में लौटेंगे वैभव सूर्यवंशी, सभी फैंस को उम्मीद है, दरअसल आज इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच श्रीलंका के दाम्बुला में मैच होने जा रहा है, और इसमें एक बार फिर से निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं, कैसी है उनकी तैयारियां और कितने बजे से मैच होने जा रहा है आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की नो बड़ी गुड न्यूज।
4: आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो रहा है, पहली बार तीन देश संयुक्त कर रहे हैं मेजबानी, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक प्रतियोगिता चलेगी, फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुल 104 मैच होंगे।
3: शिमला समर फेस्टिवल के दूसरे दिन स्थानीय परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली। महिला कलाकारों के समूह ने पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। पारंपरिक परिधानों में सजी सवरी महिलाओं के समूह ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर महिलाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही साथ पारंपरिक नाटी नृत्य में स्थानीय कलाकारों के साथ पर्यटक थिरकते नजर आए।
4: दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके में संस्कार शाला के नाम से समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में बच्चों को नैतिक मूल्य जो है वो सिखाए जा रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर में आयोजित इस संस्कार शाला में बच्चों को मंत्र और भजन सिखाए जा रहे हैं। वहीं बच्चों ने हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयां भी याद की।
3: भारत में बने पहले एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान ने गुजरात के वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। ये ऐतिहासिक मील का पत्थर भारतीय रक्षा और विमानन क्षेत्र में मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारत में अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया गया हो। इसे एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TACLSL द्वारा भारतीय MSME के सहयोग से बनाया जा रहा है।
4: दिल्ली NCR में भीषण लू और 43 डिग्री से अधिक तापमान से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और सक्रिय प्री मॉनसून गतिविधियों का प्रभाव दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा, जिससे हल्की बारिश और गरज चमक और तेज हवाएं चलने के अनुमान है।
3: थूथुकुड़ी में 27वें ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। वहीं पर प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का भाई खेल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग मुकाबला देखने के लिए पहुंच रहे।
4: अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लापुर टेस्ट में जड़े गए शतक का टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल को मिला बड़ा फायदा। ICC की जारी टेस्ट की बल्लेबाजों रैंकिंग में गुल दो पायदान की छलांग लगाकर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं इस टेस्ट में 81 रन की पारी खेलने वाले भारतीय टीम के ऋषभ पंत को भी एक स्थान का फायदा मिला है और वो टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग से 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
3: कभी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका टेस्टेड आइबिस पक्षी अब फिर से आसमान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चीन के यांगस्कियन काउंटी में संरक्षण की लगातार कोशिशों का शानदार नतीजा निकलकर सामने आया है। ओरिएंटल जेम यानी पूर्व का रत्न कहलाने वाला ये पक्षी अपनी सफेद कलगी और हल्के गुलाबी पंखों के कारण बहुत आकर्षक नजर आता है।
4: देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म बंटवारा 1947 का मोशन पोस्टर सामने आते ही चर्चा में आ गया। पहले लाहौर 1947 नाम से चर्चित रही यह फिल्म अब नए नाम के साथ रिलीज होगी। आमिर खान की इस फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी।

0: तो देखिए शुभ समाचार में आज मौसम बाहर की बात करेंगे। तपती धूप और गर्म हवाओं से जूझ रही दिल्ली को आखिरकार राहत की सौगात मिल ही गई। एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से राजधानी का जो मौसम है वो अचानक करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में छाए बादलों ने सूरज की तपिश को कम कर दिया तो ठंडी हवाओं ने लोगों को सुकून का एहसास कराया। कहीं हल्की फुहारें पड़ी तो कहीं पर बादलों की आवाजाही ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। आज और कल बारिश, तेज हवा और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और देखिए इस खबर से दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों के चेहरों पर राहत भी नजर आ रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने न सिर्फ तापमान में गिरावट दर्ज कराई बल्कि सुबह और शाम के मौसम को भी काफी सुहाना बना दिया। हालांकि मौसम विभाग का कहना यह है कि ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है और अगले कुछ दिनों तक बादल, तेज हवाएं और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पूरी तरीके से मॉनसून दस्तक देगा 1 से 2 हफ्तों के बाद। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जो नजारा देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है और तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कल शाम भी लगातार आंधी चलती रही, थोड़ी बारिश भी देखने को मिली और उसी के साथ थोड़ा तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तमाम इलाकों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से रिमझिम बारिश अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में देखने को मिली। उत्तर भारत में धीमे धीमे अब मानसून जो है प्रवेश कर रहा है और कुछ ही दिनों बाद पूरी तरीके से मानसून प्रवेश कर जाएगा।
1: और चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया है, बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली है। बादल दिल्ली वालों के लिए हल्की राहत लेकर आए हैं। दिल्ली में आसमान में छाए बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। बादल दिल्ली वासियों के लिए हल्की राहत जरूर लेकर आए हैं जिससे गर्मी से उन्हें राहत मिलेगी और इसका असर कुछ कम जो है वो महसूस होने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। तापमान 45 के पार पहुंच चुका था लेकिन इन हल्की फुहारों से दिल्ली का मौसम बेहद सुहाना हो गया है।
0: देखिए भीषण गर्मी से उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है जिसके चलते पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत सभी उत्तरी राज्यों में मौसम बदल सकता है और गर्मी से निजात मिल सकती है।
2: गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हीट वेव से लोग परेशान हैं। लेकिन कल शाम से ही मौसम में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। पहले तो दिल्ली एनसीआर में बादलों ने डेरा जमाना शुरू किया, फिर देर रात हल्की बारिश राहत का पैगाम लेकर आ गई। हालांकि तापमान में उतना बदलाव देखने को नहीं मिला लेकिन मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। उसका कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से आज और कल पूरे उत्तर भारत में आंधी और बारिश का अनुमान है।
3: पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिग्निफिकेंट वेदर रहेगा। इवन हेल स्टॉर्म एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं JNK HP उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, बेच यूपी, उसके साथ जो हवाओं की गति है वो भी 50 से 60 किलोमीटर, इवन 60 से 70 किलोमीटर रहने का भी अनुमान है। उसके बाद जब एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो कल से जो हीट वेव वेट हो जाएगी और जो टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो 3 से 5 डिग्री तक गिर सकते हैं।
2: बारिश और तेज हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार तक लोगों को ये राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि की भी संभावना है जिससे पहाड़ी इलाकों और तीर्थ यात्राओं पर असर देखा जा सकता है। IMD के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 25 जून से 30 जून के बीच मॉनसून की बारिश होने के आसार हैं। तब तक आने वाला वेस्टर्न डिस्टरबेंस कुछ समय के लिए ही सही बारिश और तापमान में गिरावट का पैगाम लेकर आ सकता है जिससे मौजूदा हीट वेव की स्थिति से थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ ऐसे ही हालात पूरे उत्तर भारत में भी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है जबकि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में झमाझम बादल बरसे हैं, मोटी मोटी बूंदे आसमान से गिरी हैं, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देहरादून के पास मशहूर हिल स्टेशन मसूरी है, जहां पर इन दिनों अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा है कि मौसम में आए इस बदलाव के बाद मसूरी घूमने वालों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि तमाम लोग जो पहाड़ों का रुख लगातार कर रहे हैं, उनको ये बारिश की भी सौगात मिल गई। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बारिश के बाद तापमान में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है और पहाड़ों पर भी इस प्रकार बारिश का जबरदस्त लुत्फ लेने के लिए तमाम पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखें।

0: तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शिमला। शिमला की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से रंग संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 में देशभर से आए पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये 5 दिवसीय उत्सव शुक्रवार तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर स्थानीय व्यंजन और कला प्रदर्शनियों तक की कई आकर्षण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे।
1: पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक धुन पर थिरकते सैकड़ों पांव, क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई ताल से ताल मिलाने को बेताब। हिमाचल प्रदेश को करीब से जानना है तो यहाँ आइए शिमला, जहाँ इन दिनों समर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यहाँ पारंपरिक पोशाक में हिमाचल की संस्कृति संजोए लोग मिलेंगे, पहाड़ी खान पान और लोकगीतों और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी शिमला यात्रा को यादगार बना देगी।
2: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम और अपने जिस आबोहवा के लिए मशहूर है वो देखते ही बनता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में यानी कि टूरिस्ट सीजन गर्मियों का चल रहा है और ऐसे में शिमला में घूमने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बार आयोजित की जा रही हैं जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का उसकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। और ख़ास तौर पर इस बार के आयोजन बेहद अलग है। आप पारिवारिक जो लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर अगर आते हैं तो शिमला शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ लिया जा सकता है, यहाँ पर जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखी जा सकती है, यहाँ का कल्चर देखा जा सकता है, संस्कृति देखी जा सकती है। तमाम चीज़ों को जो है सहज कर संजो कर रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ अहम हो जाती है, वो है यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव यानी कि समर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है।
1: इस बार शिमला समर फेस्टिवल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई नई एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं। इस बार समर फेस्टिवल में पहली बार हॉट एयर बलून, जॉय राइड जैसे विकल्प भी खोजे गए हैं और उन्हें भी शामिल किया गया है।
3: सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जैसे हेल्दी बेबी शो है और एक शिमला में एक डॉग शो भी हुआ करता था उसका भी रिवाइवल किया है। और टूरिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्शन के लिए जैसे हॉट एयर बैलून है, एक हमारी जॉय राइड का भी हम एक कंसेप्ट पे थोड़ा विचार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि टर्बुलेंस और मौसम के कुछ इश्यूज हैं बट उसको भी मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, जो हमारी 7 हिल्स है उसको भी हम एक उसके भी एक जॉय राइड की हैसियत से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
1: इसके साथ ही पर्यटकों के लिए पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक लोक नृत्य, डॉग शो, पहाड़ी कवि सम्मेलन जैसे प्रयोग भी किए गए हैं, जिन्हें न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे शानदार होता है शाम का नजारा, जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की जान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। इसमें पारंपरिक लोकगीतों और लोक नृत्यों के साथ साथ बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली गायकों की शानदार प्रस्तुति सबको थिरकने पर मजबूर कर देती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए गुड न्यूज टुडे आप लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि आपके आसपास कोई खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को आप शेयर करने की ये हमारी अपील है। हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को लगातार गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं। और देखिए इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ाते हुए

0: इस वक्त हम हैं मेघालय में, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक बेहद खूबसूरत स्टेट है। मानो ऐसा लगता है जैसे यहाँ की पहाड़ियां बादलों की चादर में लिपटी हुई हैं। हवा में नमी है, खामोशी है और एक ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। हम शिलांग से कुछ किलोमीटर दूर पूर्वी खासी पहाड़ियों की उस ऊंचाई पर खड़े हैं, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे धरती अचानक खत्म हो गई हो और आगे सिर्फ आसमान बचा हो। नीचे गहरी घाटियां हैं, दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ और उनके ऊपर तैरते बादल। ये है लैतलुम कैनियन, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर खुद बनाती है। और शायद यही वजह है कि यहां आने वाला हर शख्स कुछ देर के लिए यहां ठहर जाना चाहता है। यहां पर बोले जाने वाली एक लोकल भाषा है खासी, और खासी भाषा में लैतलुम का मतलब होता है पहाड़ियों का अंत। लैतलुम सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि इसकी असली पहचान है यहां की फिजाओं में पसरी खामोशी। यहां न शहरों का शोर है, न भीड़ भाड़ का दबाव, सिर्फ हवा की आवाज, पहाड़ों की विशालता और प्रकृति का अनंत विस्तार। वैसे तो लैतलुम घूमने के लिए साल भर यहां लोग आते रहते हैं, लेकिन बेहतर महीना अक्टूबर से मई के बीच का रहता है, जब यहां का मौसम सुहावना होता है। ये खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट शिलांग से करीब 45 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर हैं तो यकीनन आपको ये जगह बेहद पसंद आएगी। लैतलुम से लगभग 130 किलोमीटर दूर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप इस स्टेशन से ही टैक्सी बुक करके 3 घंटे का सफर तय कर लैतलुम पहुंच सकते हैं। मेघालय की अनगिनत खूबसूरत जगहों में लैतलुम एक ऐसा ठिकाना है जो आपको याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी में छिपी है। तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, यहां आकर सीनिक ब्यूटी निहारिए और उस एहसास को अपने साथ लेकर जाइए।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए एक व्लॉग, फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए फुटबॉल महाकुंभ के रंग।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: दिस इज रेडियो रीइमेजिन्ड विद ट्यूनइन, यू गेट म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। हियर फ्रॉम स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, Talk Sport.
5: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
4: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज, पहली बार 3 देश हैं मेजबान, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीम, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर।
1: प्राइवेट स्कूल्स की महिला टीचर्स को भी मिलेगा चाइल्ड केयर लीव, दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना।
2: रक्षा क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धि, वडोदरा में पहले मेड इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमान का सफल ट्रायल, टाटा और एयरबस डिफेंस ने मिलकर किया है निर्माण।
1: पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, सहारनपुर में 10,000 से आधा घर सोलर पैनल से कर रहे हैं 34 मेगावाट बिजली उत्पादन, घट रहे हैं बिजली के बिल, बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता।
2: हिमाचल में सवर डॉग फेस्टिवल का आयोजन, अनूठे अंदाज में सज धज कर शो में शामिल हुए डॉग्स, शो देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग।
1: आज आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर, मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर, अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और शुभ समाचार में अब बात होगी फुटबॉल की। फुटबॉल का महाकुंभ सज चुका है, फीफा वर्ल्ड कप की आज से शुरुआत होने जा रही है। फीफा के इतिहास में पहली बार तीन देश मिलकर संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं। पहली बार 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। अब तक किसी एक टूर्नामेंट में 32 टीमें ही खेलती रही हैं। और इतना ही नहीं, ये पहला मौका है किसी वर्ल्ड कप में 100 से ज्यादा मैच हो रहे हैं। और आज रात 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी के साथ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। इसकी गूंज देश में भी सुनाई देने लगी है।
1: देश पर फुटबॉल फीवर चढ़ चुका है। किसी ने अपने चहेते स्टार की जर्सी पहन रखी है तो कई अपनी टीम को सपोर्ट करने गाजे बाजे के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। केरलम के हर घर की तस्वीर फुटबॉल के महाकुंभ का रोमांच बयां कर रही है। किसी ने अपने घर की दीवार को चहेते स्टार की तस्वीरों से पाट दिया है तो कहीं पूरी गली ही फुटबॉल के रंग में रंग चुकी है। केरलम की तमाम सड़कें दुनिया के धुरंधर फुटबॉलर की तस्वीरों की होर्डिंग्स से सज चुकी हैं। जमीन से लेकर पानी तक आज से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, फुटबॉल का महाकुंभ है। रोमांच की तो ये अभी शुरुआत ही है। आज से यानी 39 दिनों तक हर दिन सिर्फ फुटबॉल का जादू चलेगा। एक तरफ जहां लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान दिग्गज अपने करियर के आखिरी और सबसे बड़े महामुकाबले के लिए तैयार हैं, तो दूसरी ओर जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान जैसी टीमें पहली बार वर्ल्ड कप के मंच पर अपना इतिहास लिखने के इरादे से आई हैं। फीफा के इतिहास में पहली बार है जब तीन देश मिलकर इस महाकुंभ की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका के 11 शहर मैच की मेजबानी करेंगे, जबकि मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। सिर्फ ग्रुप स्टेज में ही कुल 72 रोमांचक मैच खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब 32 नहीं 48 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है, मतलब हर ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सबसे अच्छी टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगे। इसके बाद राउंड ऑफ 32 और फिर राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मैच खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल 10 से 12 जुलाई तक खेले जाएंगे। 2 सेमीफाइनल मैच 15 और 16 जुलाई को होंगे। तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ 19 जुलाई को मियामी में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को अमेरिका के न्यूजर्सी में खेला जाएगा। मैच का रोमांच शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। तीन देशों में टूर्नामेंट होने की वजह से फीफा विश्व कप 2026 की 3 अलग अलग ओपनिंग सेरेमनी होगी। पहली ओपनिंग सेरेमनी मैक्सिको में होगी। शकीरा और बर्ना बॉय इसमें मुख्य कलाकार के तौर पर परफॉर्म करेंगे। दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में आयोजित की जाएगी। कनाडा के मशहूर कलाकार माइकल बबल के साथ एलेसिया कारा और एलेनिस मोरिसेट जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। इस सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही भी अपना जलवा बिखेरेंगी। तीसरी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। इसमें खास तौर पर केटी पेरी और के पॉप ग्रुप ब्लैक पिंक की सदस्य लिसा परफॉर्म करेंगी। मैच के शुरू होने से 90 मिनट पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी। भारत में ओपनिंग सेरेमनी 11 जून रात 11 बजे से देखा जा सकता है, जबकि टूर्नामेंट का पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच रात 12:30 पर शुरू होगा। तो दिल थाम कर बैठी, बस चंद घंटे का इंतजार और फिर फुटबॉल के महाकुंभ में पूरे 39 दिनों तक हर पल हर लम्हे रोमांच के सागर में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ब्राजील में फुटबॉल के जुनून की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ के बाजारों में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, फैंस के बीच ब्राजील की जर्सी और फुटबॉल खरीदने की होड़ देखने को मिल रही है। शहर के बाजारों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों के पास जो है पीले और हरे रंग के सामान की मांग अचानक बढ़ गई है, क्योंकि देखिए बच्चे और बड़े सभी अपने पसंदीदा रंग दिखाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर खिलाड़ी ही नहीं बल्कि फैंस भी गियर अप हो चुके हैं। बाकी दुनिया की तरह रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर फीफा को लेकर जबरदस्त जुनून देखने को मिल रहा है। फैंस को उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि 5 बार की चैंपियन टीम अपना 6ठा ऐतिहासिक खिताब जीतने की काबिलियत रखती है, तो शायद इस बार फिर से जीत जाए। तो देखिए बस कुछ घंटों का इंतजार है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एक्शन शुरू होने जा रहा है, लेकिन हफ्तों पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप की दीवानगी दुनिया के सिर चढ़कर बोलने लगी। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस दीवानगी में रोमांच का तड़का लगा रहे हैं मेक्सिको जू के फ्यूचर टेरर।

इस तरह की भविष्यवाणी से उनका अनूठा रिश्ता रहा है। फुटबॉल पंडित ऑक्टोपस से ये सिलसिला शुरू हुआ था और इस साल तो कई नए भविष्यवक्ता अभी से लाइमलाइट में हैं। मसलन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेक्सिको के मैच की भविष्यवाणी करते हुए हाथियों ने मेक्सिको के झंडे के पास फूट को चुना, जबकि गोरिल्ला ने स्पेन और उरुग्वे की शर्ट के साथ भावी विजेता का ऐलान किया। खास बात ये रही कि मेक्सिको दक्षिण कोरिया मैच की भविष्यवाणी में कैपिबारा ने ड्रॉ का नतीजा दिया, क्योंकि किसी भी टीम का बॉक्स नहीं खुला। हालांकि बाद में मैको प्रजाति के इस खास तोते ने चेक गणराज्य के मुकाबले मेक्सिको को भावी विजेता करार दिया। चेक गणराज्य के खिलाफ भविष्यवाणी में एक प्यूमा ने गेंद को दक्षिण कोरिया की तरफ धकेला, जबकि जिराफ ने कोलंबिया की बजाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को चुना। हालांकि ये इवेंट फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े आयोजनों का ही हिस्सा है। हाँ, ग्वाडलजारा ज़ू में हमने फुटबॉल के नतीजे बताने वाले इवेंट किए। इसमें कुछ जानवरों ने अपनी पसंद की टीम को चुनकर हिस्सा लिया। उन्हें ये लगा कि ये टीमें ग्वाडलजारा ज़ू में होने वाले मैच और हमारे देश मेक्सिको के मैच जीतेंगी। ये बहुत रोमांचक था, हमने बहुत मजा किया, जानवरों ने भी बहुत अच्छे से हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि हम सभी ने अच्छा समय बिताया। यूं तो असली एक्शन 11 जून से शुरू होगा, लेकिन

0: को चुना। हालांकि ये इवेंट फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े आयोजनों का ही हिस्सा है। हाँ, ग्वाडलजारा जू में हमने फुटबॉल के नतीजे बताने वाले इवेंट किए। इसमें कुछ जानवरों ने अपनी पसंद की टीम को चुनकर हिस्सा लिया। उन्हें ये लगा कि ये टीमें ग्वाडलजारा जू में होने वाले मैच और हमारे देश मेक्सिको के मैच जीतेंगी। ये बहुत रोमांचक था, हमने बहुत मजा किया, जानवरों ने भी बहुत अच्छे से हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि हम सभी ने अच्छा समय बिताया। यूं तो असली एक्शन 11 जून से शुरू होगा, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने से पहले ही मेक्सिको जू के ये भविष्यवक्ता एक्शन में आ गए हैं। दिलचस्प ये भी रहेगा कि जब ये टीम
1: मैच 14 जून को बर्मिंघम में होगा, जहां उसका सामना पाकिस्तान से होगा। 24 दिन तक चलने वाले इस घमासान में 12 टीमें रेस में हैं। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। महामुकाबले से पहले सभी टीमें जोश में हैं और टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीमों के उत्साह और जज्बे को बयां करती कुछ तस्वीरें देखिए।
2: हिस्टोरिक एपिक, दिस इज वेयर आवर गेम बिगन एंड दिस इज वेयर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लेटर इट प्रॉमिसेस टू स्केल टू न्यू हाइट्स। The Waterloo Bridge, which is where we are as the 10th edition of the ICC Women's T20 World Cup is upon us. It's 5 days away and we can't wait to get started.
3: और आइए बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की। दरअसल आज इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच श्रीलंका के दाम्बुला में मैच होने जा रहा है और इसमें एक बार फिर से निगाहें जो है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं। वैभव, ट्रायंगुलर सीरीज के पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज सभी फैंस को ये उम्मीदें हैं कि आज वो रंग में वापस लौट सकते हैं। वैसे उम्मीदें ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा से भी होंगी, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाया था और टीम को श्रीलंका ए के खिलाफ 8 रनों से जीत भी दिलाई।
1: और चलिए अब बात टीम इंडिया के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा की कर लेते हैं, जो इन दिनों आध्यात्म के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित पापनाशम मंदिर के दर्शन किए और सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इस यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, कुंभकोणम के बीचों बीच शांति का अनुभव, पापनाशम का वो मंदिर जहां श्री राम ने 108 शिवलिंग स्थापित किए थे।
3: अब आपको भारतीय सेना के दमखम की एक तस्वीर दिखाते हैं। भारत में बने पहले एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने वडोदरा में पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी की है और ये भारतीय एविएशन और डिफेंस के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। इस टेस्ट फ्लाइट से भारतीय वायुसेना के पहले मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट को परखा गया, जो सभी मानदंडों पर खरा उतरा है। बेशक भारत सरकार के मेक इन इंडिया विजन के तहत C-295 इंडिया प्रोग्राम एक गेम चेंजर है। यह पहला मौका है जब प्राइवेट सेक्टर भारत में कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहा है। इस प्रोग्राम में एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कई भारतीय एमएसएमई की भी अहम भूमिका रही है।

0: एक दिन पहले ही बुधवार को आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज हुआ, जो शाहरुख खान को भी खूब पसंद आया। आलिया के एक्टिंग के शाहरुख खान काल हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर आलिया की खूब तारीफ की। इसके साथ ही अल्फा सोशल मीडिया पर एक और वजह से सुर्खियां बटोर रही है। एक फ्रेंच फिल्म का क्लिप शेयर कर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि अल्फा ओरिजिनल नहीं, कॉपी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: 18वां जन्मदिन मुबारक।
2: थैंक यू पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी।
3: एक दिन पहले रिलीज हुए अल्फा के टीजर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी।
1: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
2: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
3: पहली बार पर्दे पर एक्शन कर रही आलिया ने अपने स्टंट से फैंस को कायल कर दिया।
1: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
3: टीजर से साफ है कि अल्फा में आलिया एक ऐसी असैसिन का किरदार निभा रही है जिसे उसके पिता ने बचपन से ही ट्रेन किया है।
1: सबसे पीर
3: नेक्स्ट जनरेशन

0: स्टेशन सोल्जर के तौर पर एक किलिंग मशीन के रूप में तैयार किया है, जिसके लिए किसी की जान लेना उसके बाएं हाथ का खेल है। आलिया के अंदाज ने फैंस के साथ साथ शाहरुख खान को भी अपने अभिनय का कायल बना दिया है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है। अपने एक्स अकाउंट पर अल्फा का टीजर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, बहुत बढ़िया आलिया, लोगों का दिल तोड़ने से लेकर हड्डियां तोड़ने तक पिछले कुछ साल में तुम्हारा स्किल सेट लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अल्फा लोगों का दिल जीतेगी और सीक्वल के लिए कुछ विलेन भी बचा कर रखेगी। जाओ और कमाल कर दिखाओ, सिग्मा गर्ल। शाहरुख ने इस पोस्ट में अल्फा के सीक्वल का भी हिंट दिया है। हालांकि मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जाहिर तौर पर अल्फा का सीक्वल फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा।
1: 34वां फ्लोर, 3418।
2: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
1: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
2: तो ये सब मेरे पोते के लिए नहीं था?
1: अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके?
0: जहाँ तक अल्फा के टीजर की बात है तो इसमें अब तक दो किरदार नजर आए हैं, आलिया और बॉबी देओल, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं। शाहरुख खान ने बॉबी देओल की भी तारीफ की है। शाहरुख ने आगे लिखा है, लॉर्ड बॉबी, जब आप खलनायक के रोल में होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारा प्यार, शिव और उनकी टीम को भी शुभकामनाएं। इस टीजर में फिल्म की तीसरी अहम किरदार शर्वरी वाघ की झलक नहीं दी है। मुमकिन है अल्फा के अगले टीजर में वो नजर आए। खैर, शाहरुख खान की तारीफ के अलावा अल्फा का टीजर एक और वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। यूजर्स के बीच बहस इस बात पर हो रही है, अल्फा ओरिजिनल है या कॉपी। सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है ये वीडियो क्लिप।
2: पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, it really means a lot to me.
0: इस वीडियो क्लिप में अल्फा के टीजर में दिखाए गए रेस्टोरेंट सीन की तुलना 1990 में आई फ्रेंच फिल्म ला फेमे निकिता से की जा रही है। कई यूजर्स ने दावा किया है कि अल्फा और ला फेमे निकिता के इस सीन में काफी हद तक समानता है। कहा जा रहा है कि अल्फा की कहानी का मूल आधार ला फेमे निकिता जैसा ही लग रहा है। दोनों फिल्मों की कहानी एक ऐसी युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली संगठन या मेंटर द्वारा भर्ती किया जाता है। फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म ला फेमे निकिता का डायरेक्शन फ्रेंच फिल्म मेकर ल्यूक बेसन ने किया था। एनी पेरिलॉर्ड, मार्क ड्यूरेट अहम किरदार में नजर आए थे। वही अल्फा में बॉबी देओल, आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ के अलावा अनिल कपूर मुख्य भूमिका में है। फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हैप्पी बर्थडे।
3: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए कृष्णा अभिषेक की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: हेलो, हाँ जी भाई, क्या हाल है राज भाई? क्या बैंकॉक? नहीं नहीं, बैंकॉक नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं कश्मीरा के बिना नहीं जाऊंगा, कश्मीरा के बिना नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, आप लोग जाओ।
5: अरे हाउ स्वीट यार, मेरे बगैर तो बैंकॉक नहीं जाएगा। इतना बोल रहे राज भाई तो चले ही जाते।
6: और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
3: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: Ugh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
1: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just 10 bucks.
0: 10 bucks for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after game one.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: भव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
10: गुड न्यूज टुडे
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
10: गुड न्यूज टुडे
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
15: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज। पहली बार 3 देश हैं मेजबान, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें। भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर। अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। रक्षा क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धि, वडोदरा में पहले मेड इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमान का सफल हुआ ट्रायल, टाटा और एयरबस डिफेंस ने मिलकर किया निर्माण। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, सहारनपुर में 10,000 से ज्यादा घर सोलर पैनल से कर रहे हैं 34 मेगावाट बिजली उत्पादन, घट रहे हैं बिजली के बिल, बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। हिमाचल में समर डॉग फेस्टिवल का आयोजन, अनूठे अंदाज में सज धज कर शो में शामिल होने पहुंचे डॉग्स, शो देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं ने गर्मी में दी राहत, आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हनुमान जी की ऐसी स्तुति के बारे में जिसका पाठ करने से स्वास्थ्य की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और स्वास्थ्य की मुश्किलों में सुधार होता है। आज बात करेंगे हनुमान बाहुक के बारे में, हनुमान बाहुक के महत्व के बारे में और हनुमान बाहुक के प्रयोग करने के नियमों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए या निजात पाने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना किस प्रकार लाभकारी मानी जाती है। देखिए, हनुमान जी भक्ति के और शक्ति के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी का मतलब जहां भक्ति और समर्पण से अपूर्व शक्ति है, ये सरल भक्ति से और प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए हनुमान जी के जो नाम हैं उसमें से इनका एक नाम लक्ष्मण प्राण दाता भी है। हनुमान जी के अगर आप विशेष मंत्र पढ़ें और विशेष स्तुतियों का पाठ करें तो आपको स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। और इनमें भी अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है। कठिन से कठिन रोग हो, कठिन से कठिन बीमारी हो, स्वास्थ्य में सुधार ना हो पा रहा हो, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अगर हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। हनुमान बाहुक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन हानि से बचाव करें, नुकसान हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, रोजगार में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती दिख रही हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि हनुमान बाहुक हनुमान जी की एक विशेष स्तुति है, और स्वास्थ्य के मामलों में हनुमान बाहुक का पाठ किया जाता है। तो अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक की महिमा क्या है। देखिए, हनुमान बाहुक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक स्तुति है। कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास जी को पीड़ा हुई तो उन्होंने इस पीड़ा को शांत करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं के लिए हनुमान बाहुक का पाठ अमोघ है, अचूक है। खास तौर से अगर आपके शरीर में दर्द है या दर्द संबंधी कोई समस्या है तो उसमें इसके पाठ से जल्दी लाभ होता है। अगर कोई ऐसा रोग हो गया है जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा है तो हनुमान बाहुक रोग का नाश कर देता है। यानी बहुत बार आपने देखा होगा कि राहु की महादशा में या राहु की अंतर दशा में बीमारी का कारण और निवारण ये दोनों समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अगर हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो रोग शांत हो जाते हैं, रोग का डायग्नोसिस हो जाता है और आदमी उचित इलाज से ठीक हो जाता है। हनुमान बाहुक का पाठ कैसे करेंगे इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, वाद विवाद ना करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। सेहत इस समय आपकी कुल मिलाकर ठीक दिख रही है, धन की प्राप्ति होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी,
स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आपने ये तो जान लिया कि हनुमान बाहु का पाठ करने से स्वास्थ्य की गंभीर से गंभीर समस्याएं बेहतर हो जाती हैं। आखिर हनुमान बाहु का पाठ कैसे करेंगे? हनुमान जी का एक चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हों। साथ में श्री राम का चित्र या उनकी मूर्ति भी स्थापित करिएगा। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और एक छोटे से लोटे में या साफ गिलास कटोरी में पात्र में जल भरकर रखें। पहले भगवान राम की स्तुति करें, भगवान राम से कृपा करने की प्रार्थना करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिले। अब हनुमान बाहु का पाठ करें और पाठ करने के बाद प्रार्थना करें कि श्री राम और हनुमान जी की कृपा से रोग दूर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो। पाठ के बाद उस पात्र का थोड़ा सा जल रोगी को पिला दें। खुद अगर रोगी हैं तो थोड़ा सा जल खुद पी लें, बाकी बचा हुआ जल शरीर के रोग वाले हिस्से पर लगाएं और बाकी जल पौधे में डाल दें। आप रोज सुबह हनुमान बाहु का पाठ इस तरीके से कर सकते हैं या रोज शाम को भी आप हनुमान बाहु का पाठ इस तरीके से कर सकते हैं। इससे सुधार बहुत ही जल्दी होगा और अगर प्रारब्ध है बाकी तो निश्चित रूप से आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। नया कारोबार इस समय शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नई नौकरी का योग बन रहा है, धन का लाभ होगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और जीवन में सुधार के लिए हनुमान बाहु की महिमा के बारे में।
अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर स्वास्थ्य की समस्या का कारण पता न चल पा रहा हो, किस कारण से बीमार हैं समझ में न आ रहा हो, तो रोज शाम को शिव जी के मंदिर में घी का दीपक 11 दिनों तक जलाएं। स्वास्थ्य की समस्या का कारण भी पता चलेगा और उसका निवारण भी होगा। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: किसी से सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता बता, जरूरत है? अरे जो स्वयं जय हनुमान
1: ज्ञान गुण सागर,
0: जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हो, और जो स्वयं राम दूत अतुलित
1: बल धाम,
0: स्वयं बल के धाम हो, ज्ञान के समुद्र हो, तुम बताओ क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो ना, कटारा नहीं ना। पर धन्य हनुमान जी, ज्ञान के सागर बल के धाम, फिर भी पूछ किससे रहे? बूढ़े जामवंत जी से। क्यों? शिक्षा देने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, आने वाले हमारे चेलो सीख लो, कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव पड़े होते हैं। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे। चौपाई कहती है, जामवंत के
1: वचन सुहाए,
0: गाइए, सुनी हनुमंत
1: हृदय
0: भाए। अच्छा ये कौन, कभी भी बड़ों की बात सुनकर के तुरंत जवाब नहीं देना कि ये गलत है ये ऐसा है। कोई आदमी गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम लोग, हमें कोई बड़ा सलाह दे, अरे अब रहने दो, अब तुम चुप रहो, दिमाग खराब ना करो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा ना। क्या? सुनी हनुमंत
1: हृदय अति भाए।
0: वो बात अलग है कि लंका में जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी की नहीं सुनी। उन्होंने तो कहा था कि इतना करूं तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है? बाघ को जारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, तीसरा लंका को जलाया, चौथा विभीषण से दोस्ती की, पांचवा राक्षसों को मारा। बताओ इतने काम हनुमान जी ने रास्ते में किए लंका जाकर, पर सुनी किसकी? जामवंत जी की। और जामवंत जी ने कहा क्या था? इतना ही करना, देख के आना। अब देख के आना ये तो कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जितनी चाबी भांदो उतने ही चलते। हमारा एक चेला था, हमने उससे कहा बेटा चाय उठा देना, तो उसने ली और चाय उठा दी, पर चाय तो उठाई पर मैं डंका की उठाई। तो हमने कहा भाई चाय उठाने को कहा था? बोले गुरुजी चाय ही है। अरे हमने कहा कप में तो डाल दो, खोपड़ी में डाल दो, हमारी नरेली में डाल दो, जो आज्ञा गुरुजी, आपने वो तो कहा ही नहीं था। बताओ, हमका धन्य है बेटा। हमने कहा अब हम कह रहे हैं बेटा खोपड़ी में चाय डाल दो, उसने चाय डाल दी और चाय ठंडी हो गई। अरे हमने कहा अब चाय डाल तो दी, हमें तो दे जा। बोले वो तो तुमने कहा ही नहीं गुरुजी। अरे हमने कहा क्या उल्लू आदमी है, हमने कहा अब तो कह दिया, अब चाय दे दे। चाय दे गया, हमने कहा भैया ये खोपड़ी उठा ले, तो नारियल की खोपड़ी जिसमें हम चाय पीते हैं उठा के ले गया। अब हमने कहा बेटा धोएगा कौन, मेरा कक्का? पता है क्या बोला गुरुजी, ये तो आपने कही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना कहो उतना ही करते हैं। पर हनुमान जी बुद्धिमान है, हनुमान जी को समझ आ गया कि जामवंत जी ने कहा जाके जानकी माता की खबर लेकर के आना है, पर उस खबर पाने के रास्ते में जो रास्ते में पड़े उन्हें रास्ते से दूर हटाना है। पर धन्य है हनुमान जी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी जामवंत जी की सुन रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते। हनुमान जी बताओ जामवंत जी की सुन रहे हैं, वो दूसरी बिरादरी के हैं, हनुमान जी दूसरी बिरादरी के हैं, फिर भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, माँ बाप कुछ कह दें तो उल्टा जवाब देते हैं, इतना ही अंतर है। इसलिए वो हनुमान है, हम लोग साधारण हैं। लेकिन मेरे पागलो, अगर हनुमान जी को मानना है तो हनुमान जी की भी मानना है, और हनुमान जी की यही मानना है मेरे पागलो कि हम लोगों को हनुमान जी की तरह जीना है। हनुमान जी कैसे जी रहे,

0: हनुमंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। हनुमान जी के हृदय में गदगदता आ गई। दूसरी बात और समझने जैसी, हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों की बातों को सुनकर हर्षित भए। क्यों? ज्ञान है, जहां से भी मिले प्रेम पूर्वक ले लेना चाहिए। बुरा ना मानना मेरे पागलो, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। जो मिले उसे हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से पालेना। हनुमान जी वचन सुनकर दुखी नहीं हुए, खुश हुए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनकर के दुखी होते हैं, अपने से बड़ों की बातें सुनकर दुखी होते हैं, पर हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हर्षित भए, मन में प्रसन्नता। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं। ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, तीन कारण हैं दुख के, वैसे तो अनेक हैं पर मुख्य तीन हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन बताओ, बताओ। ले तुमने बत्ती से दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, ये भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। अब तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहो। मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा लगता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या, दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हाँ जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है, किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो दो बैंड बाजा बजाने वाले गए, एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ, अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है। तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था, एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है, लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, दो घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह पर, एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक एक यजमान के घर दो पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना, और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले, हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5,000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले, हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है, आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है, तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या, एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो, तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले, दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो।
1: Order for Jennifer C.
2: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
1: Yeah. Can you handle that much caffeine?
2: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Oh, really? That's great.
2: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Yeah, you just said that.
2: Did you say I just said that?
1: Yeah, I'm cutting you off.
2: I can't have any more? Why not?
3: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
4: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
5: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
6: News Pack, Rah Sachai Ki, Raat 9 Baje. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त

0: जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
2: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ। जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती।

0: होती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन 4G 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने 4G 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
2: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस 4G 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
3: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से 4G 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
4: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये 4G 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है 4G 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है 4G 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
5: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ 4G 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले 4G 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
6: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये 4G 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: 4G 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां 4G 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
7: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है 4G 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, 4G 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: 4G 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने 4G 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: 4G 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं 4G 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये 4G 360 जरूर ट्राई करें।
9: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
0: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
11: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
12: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
14: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
15: I have had no luck lately. Wait, Lady Luck?
16: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
15: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
17: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
18: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
19: Teaching and learning is evolving. A master's degree in education technology and instructional design at WGU puts you at the forefront of that change. Learn more at wgu.edu.
20: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
23: अविश्वास में विश्वास बसता है
21: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
24: गुड न्यूज टुडे
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
23: अविश्वास में विश्वास बसता है
21: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
24: गुड न्यूज टुडे
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
27: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
26: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज। पहली बार 3 देश मेजबान, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें। भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर। अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचर्स को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, सहारनपुर में 10,000 से ज्यादा घर सोलर पैनल से कर रहे 34 मेगावाट बिजली उत्पादन। घट रहे बिजली बिल, बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता। हिमाचल प्रदेश में समर डॉग फेस्टिवल का आयोजन ऊंटे अंदाज में, सज धज कर शो में शामिल होने के लिए पहुंचे डॉग्स, शो देखने बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं ने दी गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
6: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, नोएडा गाजियाबाद में छाए काले बादल, चल रही धूल भरी आंधी। दिल्ली एनसीआर में 12 जून को बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना, 60 से 70 किलोमीटर की प्रति किलो घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। आज दिल्ली समेत हरियाणा में तेज बारिश होने की उम्मीद, आंधी तूफान और बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए भी जारी किया अलर्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि होने का जताया अनुमान। पंजाब में बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी आंधी। अंबाला में आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को राहत। अंबाला में भारी बारिश से कई जगहों पर हुआ जलभराव, पानी भरने से वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। अयोध्या में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से लोगों को मिली राहत। देहरादून में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। मुंबई के लिए गर्मी और उमस के बीच राहत भरी खबर, मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद आ सकती है मानसून की बारिश। मानसून के कारण केरला में 14 जून तक भारी बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी। कोलकाता में मूसलाधार बारिश, मानसून की एंट्री के साथ तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के भले समय भारी भूस्खलन, थाथरी किलोथरन हाईवे पर यातायात पर असर। भूस्खलन के बीच जानमाल का नुकसान नहीं, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का होगा आगाज। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। पहली बार तीन देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैचेस। ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। अमेरिका के 11, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में खेले जाएंगे मैच। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। मेक्सिको, टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा फुटबॉल विश्व कप का फीवर। केरला में गलियों, सड़कों से घरों तक दिख रहा फुटबॉल का क्रेज। तो वहीं चहेते खिलाड़ियों की तस्वीरों से पटे इलाके। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से किया गया पूजन। बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। बाबा भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। यूके से आए कश्मीरी पंडितों ने अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ी। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। यात्रा को लेकर इंतजामों से संतुष्ट नजर आए श्रद्धालु। सफाई, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन के इंतजामों की तारीफ की। केदारनाथ में अब तक लगभग 12 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। असाधारण बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए आर्मी के मेजर अर्षदीप सिंह गिल। मेजर गिल ने जीएनटी को सुनाई 48 घंटे चले जोखिम भरे ऑपरेशन की कहानी। गृह जनपद रीवा पहुंचने पर सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी का रेलवे स्टेशन पर किया गया स्वागत। 3 गोली लगने के बाद भी आतंकी को किया था ढेर। अकोला के शहीद प्रवीण जंजाल को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र। सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन में छलका मां का दर्द, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सहारा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दिखा आस्था और भक्ति का संगम। तो वहीं पेचियम्मन मंदिर में आयोजित पारंपरिक वैकासी कोडाई महोत्सव में जुटे श्रद्धालु। महोत्सव के दौरान जीवंत हुई प्राचीन परंपराएं। पारंपरिक तरीके से बनाए गए प्रसादोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में जुटते हैं श्रद्धालु। तमिलनाडु के समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रतीक है वैकासी कोडाई महोत्सव। इस दौरान अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का होता है आयोजन। थूथुकुड़ी में 27वें ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का स्वागत। खेल को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह। बड़ी संख्या में लोग मुकाबला देखने पहुंचे। प्रवासी फ्लेमिंगो बर्ड से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी। बड़ी संख्या में पहुंचे पक्षी। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका में हजारों की संख्या में आए प्रवासी फ्लेमिंगो देखने के लिए लग रही है भीड़। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति। 10,000 से ज्यादा घर बना रहे 34 मेगावाट बिजली। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल। हर महीने 3.5 करोड़ रुपए की ऊर्जा का उत्पादन। सूरज की रोशनी से घट रहे बिजली बिल। सूरज की रोशनी से घट रहे बिजली बिल, बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता। इंदौर में ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के प्रतिनिधियों ने होलकर कालीन ऐतिहासिक धरोहर का दौरा किया। तो वहीं इंदौर के इतिहास, संस्कृति और राजवाड़ा के महत्व के बारे में जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के भलेसर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। तो वहीं स्कूलों में बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए किया जागरूक। जयपुर में 66वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। भुवनेश्वर में फूड एग्रो और बायोटेक समिट का शुभारंभ किया गया। ओडिशा के राज्यपाल हुए शामिल। श्रीनगर में इम्यूनोकॉन 2026 सम्मेलन का आगाज। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
25: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
25: ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज, पहली बार तीन देश मेजबान अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीम, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में, अच्छी फसल और मौसम के लिए हर उत्साह के साथ मनाया जाता है ये पर्व। अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, सहारनपुर में 10,000 से ज्यादा घर सोलर पैनल से कर रहे हैं 34 मेगावाट बिजली उत्पादन, घट रहे बिजली के बिल, बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता। हिमाचल में समर डॉग फेस्टिवल का आयोजन, अनूठे अंदाज में सज धज कर शो में शामिल होने पहुंचे डॉग्स, शो देखने बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं ने दी गर्मी से राहत, आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून और अंबाला से चंबा तक मस्तानी मौसम की। देखिए, खासतौर से तपती धूप और गर्म हवाओं से जूझ रही दिल्ली को आखिरकार राहत की सौगात मिल गई है। अब एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजधानी का मौसम आज सुबह अचानक करवट लेता हुआ नजर आया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है। आसमान में छाए बादलों ने सूरज की तपिश को कम किया तो ठंडी हवाओं ने लोगों को सुकून का एहसास भी कराया। कहीं हल्की फुहारें पड़ी तो कहीं बादलों की आवाजाही ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। वहीं मौसम के जानकारों के अनुसार उनका मानना है कि आज और कल बारिश, तेज हवाएं और बादलों की आवाजाही वहीं बनी रहेगी, लिहाजा दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों के चेहरों पर राहत साफ तौर पर दिखाई दे रही है और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही राहत दिखाई देने वाली भी है। तो साथ ही उत्तराखंड में देहरादून और हरियाणा में अंबाला तक पड़ी बौछारों में मौसम के बदले मिजाज की झलक साफ देखी जा सकती है। इसके कारण न सिर्फ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है बल्कि मौसम भी काफी सुहाना नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है इस बीच की ये जो बदलाव है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण है और अगले कुछ दिनों तक बादल, तेज हवाएं और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ मौसम में बदलाव की तस्वीरें देखिए, ये वीडियोज हम आपको दिखा रहे हैं और मस्तानी मौसम का आप भी मजा लीजिएगा।

0: और अब आपको राजधानी दिल्ली की आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। आज सुबह आसमान में छाए बादलों और ठंडी हवा के झोंकों से दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया। बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली है। बादल दिल्ली वालों के लिए हल्की राहत जरूर लेकर आए हैं। देखिए, दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन फिलहाल जो मौसम है उसने करवट लिया, यू टर्न लिया और आज मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में आसमान में बादल छाए हैं और ठंडी हवाओं के साथ तेज झोंकों ने मौसम को काफी ज्यादा सुहाना बना दिया है, खुशनुमा बना दिया है। बादल दिल्ली वासियों के लिए हल्की राहत लेकर आए हैं, जिससे गर्मी का असर कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन अब अच्छा हो जाएगा, यानी तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार भी दिल्ली को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज आंधी तूफान के साथ बारिश की भी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल बारिश के साथ तेज आंधी तूफान की संभावना है, जबकि 14 जून से 16 जून की अगर हम बात करें तो आसमान में बादल छाए रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। IMD के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के औसत से 2 डिग्री अधिक है। हालांकि आज भी कुछ इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पे अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। तो चलिए, दिल्ली का मौसम जरूर खुशनुमा बन गया है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा भी जुड़ गई हैं। सीधा मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि दिल्ली में जो तापमान था वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और अब आज सुबह मौसम ने यू टर्न ले लिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को थैंक्स यहाँ पर बोलना पड़ेगा। आप जहाँ पर मौजूद है, किस तरह का वहां पर मौसम बना हुआ है मनीषा, और आने वाले कुछ दिनों तक क्या ऐसा ही मौसम बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है?
1: बिल्कुल सरगम, आपने सही बोला। तापमान हालांकि इतने ज्यादा नहीं थे, 40 डिग्री के आसपास जो है तापमान बने हुए थे, लेकिन जिस तरीके से धूप लगातार हो रही थी, उमस की जो स्थिति थी वो लगातार बनी हुई थी, उस कारण लोगों को गर्मी सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन अब उनके लिए एक राहत जो है वो जरूर मिलने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा मंगलवार को भी तेज आंधी जो है दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में दर्ज की गई। कल भी अगर हम बात करें तो कल भी इसी तरीके से शाम के समय थोड़ी सी आंधी जो है अलग अलग इलाकों में आई और सुबह के टाइम थोड़ी बूंदाबांदी जो है वो भी देखी गई, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कल ही सक्रिय हो चुका है पहाड़ी राज्यों में और उसका असर जो है अब देखने को मिलने वाला है सभी पहाड़ी राज्यों पर भी और मैदानी राज्यों पर भी। और 2 दिन तक अब लोगों को राहत जो है वो वाकई में मिलेगी, क्योंकि तापमान बढ़ चुके थे, लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वो राहत जो है IMD ने उनको जारी कर दी है कि आज जो है शाम होते होते, हालांकि अभी की अगर मैं बात करूं लगभग 12:45 बजे का इस वक्त समय हो रखा है, धूप ऊपर है लेकिन वो गर्मी का एहसास आपको नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ जो कल सक्रिय हुआ है उसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी कमी जो है आई है और साथ ही साथ हवाएं लगातार चल रही है जिससे लोगों को उमस जो है वो महसूस नहीं हो रही है, इसलिए गर्मी भी उनको जो है कम थोड़ी सी लग रही है। लेकिन आज शाम होते होते वापस से जो है तेज आंधी जो है दिल्ली NCR में देखी जाएगी, साथ ही साथ बारिश होगी और 2 दिन तक लोगों को राहत जो है वो मिलने वाली है। लेकिन बारिश का

0: तेज बारिश आंधी तूफान का अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन बात अगर यहाँ पर मॉनसून की करें, क्योंकि उसका इंतजार जो है वो दिल्ली एनसीआर वालों को बहुत लंबे समय से है और वो रहता भी है, दक्षिण भारत में तो ये सक्रिय हो गया है, हालांकि वहां भी थोड़ा देर से आया है। मॉनसून को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कितना इंतजार दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा उसके लिए? मनीषा,
1: वही मैं सरगम बता रही थी कि मॉनसून का इंतजार अभी हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि केरल में भी मॉनसून जो है वो थोड़ी देरी से दस्तक दिया है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी जो है थोड़ा सा देरी से मॉनसून जो है वो जरूर पहुंचेगा। क्योंकि अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो केरल से इसकी शुरुआत हुई, तमिलनाडु के जो है सारे अधिकतम हिस्से जो है मॉनसून कवर कर चुका है, कर्नाटक में जो है मॉनसून पूरी तरीके से दस्तक दे चुका है और उसके साथ ही अब महाराष्ट्र के आधे हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच चुका है। और वही मॉनसून जो है धीरे धीरे गति के साथ आगे बढ़ता है, तो पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, हर एक राज्य नॉर्थ ईस्ट के जो है वो पूरी तरीके से
0: बिल्कुल मनीषा साफ तौर पर मॉनसून जो है उसका इंतजार हम सभी को है। और जब मॉनसून की फुहारें आएंगी तो गर्मी से राहत लंबे समय के लिए हम सभी को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीषा। तो देखिए, भीषण गर्मी से उत्तर भारत में लोगों का जो हाल है वो बेहाल है। ऐसे में आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो गया है, वो एक्टिव हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ले लीजिए, यूपी समेत सभी उत्तरी राज्यों में मौसम जो है उसने यू टर्न ले लिया है और गर्मी से निजात मिलती हुई सभी को नजर आ रही है।
2: कल शाम से ही मौसम में बदलाव की भयार देखने को मिल रही है। पहले तो दिल्ली एनसीआर में बादलों ने डेरा जमाना शुरू किया, फिर देर रात हल्की बारिश राहत का पैगाम लेकर आ गई। हालांकि तापमान में उतना बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। उसका कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज और कल पूरे उत्तर भारत में आंधी और बारिश का अनुमान है।
3: पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिग्निफिकेंट वेदर रहेगा, इवन हेल स्टॉर्म एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं JNK, HP उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, उसके साथ जो हवाओं की गति है वो भी 50 से 60 किलोमीटर, इवन 60 से 70 किलोमीटर रहने का भी अनुमान है। उसके बाद जब एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो कल से जो हीट वेव वेट हो जाएगी और जो टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो 3 से 5 डिग्री तक गिर सकते।
2: बारिश और तेज हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार तक लोगों को ये राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिससे पहाड़ी इलाकों और तीर्थ यात्राओं पर असर देखा जा सकता है। IMD के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 25 जून से 30 जून के बीच मॉनसून की बारिश होने के आसार हैं। तब तक आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ समय के लिए ही सही बारिश और तापमान में गिरावट का पैगाम लेकर आ सकता है, जिससे मौजूदा हीट वेव की स्थिति से थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ ऐसे ही हालात पूरे उत्तर भारत में भी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है, जबकि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए अब बात माउंटेन टूरिज्म की कर लेते हैं। देखिए, एक तो मैदानी इलाकों में गर्मी और उस पर स्कूलों में गर्मी की छुट्टी, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहाड़ों का लगातार रुख कर रहे हैं। मनाली, डलहौजी समेत हिमाचल के कई पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग एडवेंचर टूरिज्म से लेकर धार्मिक पर्यटन का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं।

0: कहीं पैराग्लाइडिंग का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, कहीं बंजी जंपिंग सैलानियों को सुकून का एहसास करा रहा है। हिमाचल की मनाली इन दोनों सैलानियों से गुलजार है। खासतौर पर मनाली के पास मौजूद सोलांग वैली इन दिनों रोमांच के शौकीनों का प्रमुख डेस्टिनेशन बनी हुई है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने पर्यटक यहां पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं।
1: बहुत मजा आया, बहुत हाइट लगी थी, बट द एक्सपीरियंस वॉज बेसिकली वर्थ इट। पहली बार इतनी हाइट पे था।

0: थ्रिल वॉज द बेस्ट थिंग।
1: मैं यूपी अयोध्या से आया हूँ तो सर हमने मनाली का नाम काफी सुना था, आके भी कुछ अच्छा लगा, लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आई, बाकी तो बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमने सारी एक्टिविटी भी की, सोलांग वैली में भी अच्छा लगा, यहाँ का नेचर वेदर सब कुछ बहुत अच्छा लगा।
2: बहुत अच्छा लगा, डर भी लगा और अच्छा भी बहुत ज्यादा लगा। मैं रोहतांग पास गया
1: जी
2: और मनाली में मैंने साइट सीइंग के लिए।
3: हिमाचल का चंबा भी अपनी कुदरती सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रैकिंग करते हुए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं।
4: डलहौजी की सबसे ऊंची पहाड़ी डैनकुंड पे हूँ, जो कि समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ भी जो पहाड़ी है, डैनकुंड की पहाड़ी है, यहाँ पे पर्यटक जो है सफेद फूलों के, डेजी के फूलों के बीच में जो है खूब मस्ती कर रहे हैं।
3: डलहौजी की खूबसूरत वादियों के बीच चोटी पर स्थित पोहलानी माता का मंदिर भी इन दिनों भक्तों से गुलजार है। यह मंदिर माता काली को समर्पित है। यहाँ से चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों को पोहलानी माता के मंदिर तक पहुँचने के 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है।
5: धर्मशाला में तो प्लेन नॉर्मल टूरिस्ट एरिया है, लेकिन ये तो डिफरेंट ही है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, देवदार के पेड़, बहुत ही अच्छी जगह है। टेम्परेचर इतना अच्छा, हमारे यहाँ तो 47-48 डिग्री चल रहा है।
6: हम जिस स्थान से आए वहाँ पे ये सारी चीजें तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है, तो हमें, हमारे लिए तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये सारी चीजें देखना।
7: कलकत्ता से आया हूँ, ट्रैक करते हुए आए हैं यहाँ पे 1.5 किलोमीटर। अच्छी सीनरीज है यहाँ पे, बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से, पूरा आसमान खुला हुआ लगता है, फूल बहुत सुंदर सुंदर फूल है यहाँ पे।
3: एडवेंचर टूरिज्म हो या धार्मिक टूरिज्म, यहाँ पहुँचे पर्यटकों का अनुभव बताता है कि जिंदगी सिर्फ तारीखें बदलने का नाम नहीं बल्कि यादें बटोरने का सफर है। डलहौजी से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: शिमला की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से रंग संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 में देश भर से आए पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साह के साथ लगातार हिस्सा ले रहे हैं। ये 5 दिवसीय उत्सव शुक्रवार तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर स्थानीय व्यंजनों और कला प्रदर्शनियों तक कई आकर्षण शामिल हैं।

0: पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक धुन पर थिरकते सैकड़ों पांव, क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई ताल से ताल मिलाने को बेताब। हिमाचल प्रदेश को करीब से जानना है तो यहाँ आइए शिमला, जहाँ इन दिनों समर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यहाँ पारंपरिक पोशाक में हिमाचल की संस्कृति संजोए लोग मिलेंगे, पहाड़ी खान पान और लोकगीतों और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी शिमला यात्रा को यादगार बना देगी।
1: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम और अपने जिस आबोहवा के लिए मशहूर है वो देखते ही बनता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में, यानी कि टूरिस्ट सीजन गर्मियों का चल रहा है और ऐसे में शिमला में घूमने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बार आयोजित की जा रही हैं जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का उसकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। और ख़ास तौर पर इस बार के आयोजन बेहद अलग हैं। आप पारिवारिक जो लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर अगर आते हैं तो शिमला शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ लिया जा सकता है, यहाँ पर जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखी जा सकती हैं, यहाँ का कल्चर देखा जा सकता है, संस्कृति देखी जा सकती है। तमाम चीज़ों को जो है सहज कर संजो कर रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ अहम हो जाती है, वो है यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव, यानी कि समर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है।
0: इस बार शिमला समर फेस्टिवल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई नई एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं। इस बार समर फेस्टिवल में पहली बार हॉट एयर बलून, जॉय राइड जैसे विकल्प भी खोजे गए हैं और उन्हें भी शामिल किया गया है।
2: सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जैसे हेल्दी बेबी शो है और एक शिमला में एक डॉग शो भी हुआ करता था उसका भी रिवाइवल किया है। और टूरिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्शन के लिए जैसे हॉट एयर बैलून है, एक हमारी जॉय राइड का भी हम एक कंसेप्ट पे थोड़ा विचार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि टर्बुलेंस और मौसम के कुछ इश्यूज हैं बट उसको भी मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, जो हमारी सेवन हिल्स है उसको भी हम एक उसके भी एक जॉय राइड की हैसियत से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
0: इसके साथ ही पर्यटकों के लिए पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक लोक नृत्य, डॉग शो, पहाड़ी कवि सम्मेलन जैसे प्रयोग भी किए गए हैं जिन्हें न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे शानदार होता है शाम का नजारा जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की जान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। इसमें पारंपरिक लोकगीतों और लोक नृत्यों के साथ साथ बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली गायकों की शानदार प्रस्तुति सबको थिरकने पर मजबूर कर देती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हिमाचल के चंबा के खूबसूरत नजारे।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। इन दिनों पहाड़ वैसे भी सैलानियों से गुलजार है। अक्सर मशहूर हिल स्टेशंस का रुख करते हैं लोग इस मौसम में, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा हिडन डेस्टिनेशन दिखाने जा रहे हैं जिसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। देखिए, खिले फूल, हसीन वादियां, मिनी स्विट्जरलैंड में अद्भुत नजारा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक ऐसी खास जगह है, एक ऐसी हिडन डेस्टिनेशन है जिसे देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप अपने ही देश में हैं। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो बर्फ से ढकी चोटियां, बादलों से अटकेलियां करती वादियां, हर तरफ फैली प्राकृतिक खूबसूरती से गुलजार है। ये नजारे स्विट्जरलैंड से कम नहीं है।

0: हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बादलों की चादर ओढ़े ये खूबसूरत वादियाँ और दूर दूर तक फैली बर्फ की सफेद चादर, ये नज़ारे किसी विदेशी पर्यटन स्थल के नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित साच पास के हैं। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा साच पास अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
1: मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जून के मंथ में मैं इतना ज्यादा शांत मतलब हिमाचल में नजारा देखने वाली हूँ। सो दिस इज एंड स्नोफॉल एज वेल, यहाँ पे अभी हल्की हल्की स्नो भी हो रही है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर हियर।
0: बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ और बर्फीली पहाड़ियों के बीच मन को शांति और सुकून देने वाला महादेव का मंदिर, यहाँ घूमने आए सैलानी को भला और क्या चाहिए। इन दिनों मार्ग खुलने के बाद यहाँ पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ बर्फ का आनंद लेने और प्रकृति के मनमोहक नज़ारों को कैमरे में कैद करने पहुँच रहे हैं। साच पास सिर्फ खूबसूरती का ही नहीं बल्कि रोमांच का भी दूसरा नाम है। संकरी सड़कें, तीखे मोड़ और ऊंची चढ़ाइयाँ इस सफर को यादगार बना देती हैं। यही वजह है कि बाइक राइडर्स, ट्रैकर्स और एडवेंचर प्रेमियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती। यात्रा के दौरान हर मोड़ पर बदलते दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कभी बादल सड़क को छूते नजर आते हैं तो कभी बर्फ से ढकी चोटियाँ आँखों के सामने एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। हिमाचल का ये स्विट्जरलैंड हर आने वाले को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना रहा है। वहीं चंबा के पर्यटन नक्शे पर एक और खूबसूरत स्थल इन दिनों खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डलहौजी की माता पहलानी पहाड़ियाँ इन दिनों रंग बिरंगे खिले फूलों और मनोहरी प्राकृतिक दृश्यों से सजी हुई है। माता पहलानी के दृश्य के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं प्रकृति प्रेमी और पर्यटक भी इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने के लिए पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं। फूलों से सजी ढलानों और हरे भरे मैदानों के बीच श्रद्धा और प्रकृति का ये संगम लोगों को विशेष अनुभव दे रहा है। एक तरफ साच पास की बर्फीली वादियाँ और दूसरी तरफ माता पौलानी की फूलों से सजी पहाड़ियाँ, चंबा इन दिनों प्रकृति के दो अलग अलग लेकिन बेहद खूबसूरत रंगों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक इस पूरे क्षेत्र को धरती का स्वर्ग बता रहे हैं। हर मोड़ पर बदलते दृश्य और हर जगह फैली प्राकृतिक सुंदरता लोगों को बार बार यहां आने के लिए प्रेरित कर रही है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand, and you won't lose your fingers. Over 1,000 games, including slots and live dealers. And $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं ने दी गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान। सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर। मानव संसाधन के विकास और राष्ट्र निर्माण में निभाती है केंद्रीय भूमिका। अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों की समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, सहारनपुर में 10,000 से ज्यादा घर सोलर पैनल से कर रहे 34 मेगावाट बिजली उत्पादन। घट रहे बिजली बिल, बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज। पहली बार 3 देश में जबान अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच। नॉकआउट में 32 टीमें, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल का फीवर। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में, अच्छी फसल और मौसम के लिए हर उत्साह के साथ मनाया जाता है ये पर्व।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5:25 अच्छी खबरों के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: दिल्ली NCR में बदला मौसम, नोएडा गाजियाबाद में छाए काले बादल, चल रही धूल भरी आंधी। दिल्ली NCR में 12 जून को बारिश के साथ ओलावृष्टि गिरने की संभावना, 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे हवाएं। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जलती हुई गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की पूरी उम्मीद है। अंबाला में आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। देहरादून में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। यूके से आए कश्मीरी पंडितों ने अनंतनाग में मारतंडे सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना, कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए की प्रार्थना। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का होगा आगाज। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। पहली बार तीन देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। थूथुकुड़ी में 27वें ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त जोश।
9: इंदौर में ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक धरोहर का दौरा किया। इंदौर के इतिहास, संस्कृति और राजवाड़ा के महत्व के बारे में ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के भलेसा में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। स्कूल में बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। जयपुर में 66वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। भुवनेश्वर में फूड एग्रो एंड बायोटेक समिट का शुभारंभ हुआ। ओडिशा के राज्यपाल हुए इसमें शामिल। श्रीनगर में इम्यूनोकॉन 2026 सम्मेलन का आगाज हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा।
8: प्रवासी फ्लेमिंगो बर्ड से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी। बड़ी संख्या में पहुंचे पक्षी। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति। 10,000 से ज्यादा घर बना रहे 34 मेगावाट बिजली। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके में संस्कार शाला के नाम से समर कैंप का आयोजन। इस समर कैंप बच्चों को सिखाए जा रहे हैं नैतिक मूल्य। ब्रिज जनपद रीवा पहुंचे पर सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी का रेलवे स्टेशन पर स्वागत हुआ। तीन गोली लगने के बाद भी आतंकी को किया था ढेर। राष्ट्रपति से मिला शौर्य चक्र। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी शुरू। ये रस्म अच्छे मौसम और भरपूर फसल की कामना के लिए की जाती है आयोजित।
9: फिल्म काला हिरण का फर्स्ट लुक जारी। कल सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। आज आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर। मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ये ट्रेलर। अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद। कल रिलीज होगा अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का ट्रेलर। पोस्टर जारी कर दी जानकारी। 10 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। कल रिलीज होगी फिल्म मैं वापस आऊंगा। फिल्म में दिलजीत दोसांत, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी का अहम रोल है। फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून 2026 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई ये फिल्म।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: अच्छी सच्ची खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए। खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। आज से शुरू होगा फुटबॉल का महाकुंभ। रंगारंग कार्यक्रम का होगा आयोजन। दुनिया भर पर छाया फुटबॉल का खुमार।
9: प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।
8: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, छाए बादल, आज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
9: चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां। फेस्टिवल के आरंभ से पहले निभाई गई यहां पर पारंपरिक रस्में।
8: आ जाएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर। मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर। अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद।
9: और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात कॉमेडी के वेलकम की करते हैं। दरअसल 2026 में बॉलीवुड में हंसी का जंगल कितना हरा भरा रहा, आने वाले 6 महीनों में कितना हरा भरा होगा, आपको कितना हंसाएगा, आज ये हम आपको बताएंगे।
8: तो 3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल फिर से सुर्खियों में है। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है और मेकर्स इसे किसी बड़े इवेंट से कम नहीं बनाना चाहते।
9: और देखिए इसी बीच खबर तो यह है कि ट्रेलर लॉन्च के लिए खास जंगल थीम तैयार किया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 3 साल तक ये फिल्म अटकी क्यों रही और अब इसे लेकर इतना बड़ा माहौल क्यों बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।

0: कॉमेडी, एक्शन और एडवेंचर का तड़का लेकर आ रही है अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल। कुछ ही देर में फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जिसके ग्रैंड लॉन्च की मेकर्स ने कर ली है पूरी तैयारी। कहा जा रहा है कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट को पूरी तरह जंगल थीम पर डिजाइन किया गया है, ताकि दर्शकों को फिल्म की एडवेंचर दुनिया की झलक मिल सके। यही वजह है कि ट्रेलर रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस फिल्म का सफर आसान नहीं रहा। साल 2023 में अक्षय कुमार के जन्मदिन पर फिल्म का ऐलान हुआ था और इसे दिसंबर 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन शूटिंग शेड्यूल और बड़े स्टार कास्ट की डेट्स को मैनेज करने जैसी चुनौतियों के चलते फिल्म की रिलीज लगातार टलती रही। बीच में तो ऐसी खबरें भी सामने आई कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन मेकर्स ने नई रिलीज डेट का ऐलान कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब फिल्म 26 जून को सिनेमा घर में दस्तक देने जा रही है। वेलकम फ्रेंचाइजी का अपना एक अलग फैन बेस है। साल 2007 में आई पहली फिल्म और इसके बाद रिलीज हुई दूसरी किस्त को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। ऐसे में तीसरे पार्ट से उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है।
1: मेरे को नहीं करना ये फिल्म।
2: है? भैया करोड़ों रुपए मिल रहे हैं।
1: हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं।
0: ट्रेड सर्कल में भी माना जा रहा है कि अगर ट्रेलर दर्शकों को पसंद आता है तो फिल्म साल की बड़ी ओपनर्स में शामिल हो सकती है।
2: तुम मरता क्यों नहीं?
0: वेलकम फ्रेंचाइजी की इस तीसरी किस्त में अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद बारसी, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, दिशा पाटनी, जॉनी लिवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े और कई बड़े सितारे नजर आएंगे। यही वजह है कि इसे साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्मों में गिना जा रहा है। हालांकि फ्रेंचाइजी के सबसे लोकप्रिय चेहरे रहे अनिल कपूर और नाना पाटेकर इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन बेकर्स को उम्मीद है कि नई स्टार कास्ट दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देगी।
3: पाजी, खुद का गाना ठीक से गाते नहीं हो, एक दूसरे का गाना क्यों खराब करते हो?
2: दोनों को पिक्चर में
0: अब सबकी नजरें फिल्म के ट्रेलर पर टिकी है। देखने वाली बात होगी कि क्या वेलकम टू द जंगल अपने ट्रेलर से वही धमाल कर पाती है जिसका इंतजार फैंस पिछले 3 साल से कर रहे हैं।
3: वो इंस्ट्रूमेंट की आवाज जो मुंह से निकलते ना उसको बोलते हैं। तुझे बताया था।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए 8 मई को रिलीज हुई दादी की शादी से डेब्यू करने वाली ऋषि नीतू की बेटी और रणवीर की बहन रिधिमा कपूर फिल्म की कामयाबी से खुश हैं। फिल्म ने थिएटर्स में तो धूम मचाई ही, ओटीटी पर भी ये फिल्म लगातार धमाल मचा रही है।
5: ऐसे में रिधिमा ने अपने डेब्यू को लेकर तो अपनी बात साझा की ही, मां नीतू कपूर और पिता ऋषि कपूर के साथ अपने बॉन्ड को लेकर भी भावनाएं शेयर की।
6: मुझे तो लिटरली 3 हफ्ते पहले फोन आया था और यू नो मुझे कहा गया था, मुझे एक्चुअली पूछा गया था कि आप ये किरदार करेंगी, तो एट दैट टाइम आई वॉज लाइक करूँ ना करूँ, कि मेरा कोई प्लान नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो जब मेकर्स ने मुझे पूछा कि आप ये कैरेक्टर प्ले करेंगे एंड यू नो यू आर प्लेइंग योर मदर्स डॉटर, सो आई वॉज लाइक ठीक है कर लूँगी ट्राई। बट ऑफकोर्स आपने मूवी देखी होगी तो मतलब मूवी में जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है सुनैना का, इट इज़ वेरी डिफरेंट to my real, the way I am with my mother in real time. So, it had shades of grey, but of course, every character, like, jo tino bacche the film mein, unki ek backstory thi. So, we were not villains, you know, we had a backstory and we were actually too busy in our lives. Bhi se better to nahi, but I tried, you know, pehli baar tha. It's not that I prepared anything. I did not prep for it. 3 hafte mile the. Mummy aur main roz FaceTime pe apni, you know, subah ki chai peete hain. To subah subah hum apne lines rehearse karte the. Main FaceTime, Zoom pe हमारे बंटी सर थे जो राइटर है मूवी के, उनके साथ लाइंस पढ़ती थी मैं और बस कर दिया कूद गई टू द डीप एंड।
5: तो वही बॉलीवुड फिल्मों में हास्य का तड़का हमेशा से दर्शकों का पसंदीदा हिस्सा रहा है। हिंदी सिनेमा में जॉनी वॉकर और महमूद जैसे दिग्गज हास्य कलाकारों से लेकर आज के दौर के कॉमेडी मास्टर्स तक एक हंसी की लंबी और शानदार परंपरा रही है।
4: और देखिए इस साल यानी 2026 की शुरुआत से अभी तक कई कॉमेडी फिल्में देखने को हम सबको मिली हैं, जिसमें रोमांटिक कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी ड्रामा के साथ हॉरर कॉमेडी ने सबको खूब लुभाया और आने वाले 6 महीनों में दर्शकों को हंसी का तगड़ा डोज भी मिलने वाला है।
7: छब्बीस में बॉलीवुड में हंसी का जंगल सिर्फ वेलकम फ्रेंचाइजी ही नहीं उगा रही है, बल्कि इस साल हंसी के जंगल की जड़ें कुछ ज्यादा ही मजबूत नजर आ रही है।

0: वेलकम टू जंगल इस साल 26 जून को रिलीज होने वाली है, जिसपे अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, रविदा टंडन, अर्शद बारसी, परेश रावल और दिशा पाटनी सहित लगभग 30 कलाकारों का हसानी के लिए मजमा लगेगा।
1: मेरे को नहीं करना ये फिल्म।
2: भैया करोड़ों रुपए मिल रहे हैं।
1: हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं।
0: अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म मशहूर वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है।
3: तुम मरता क्यों नहीं?
1: मैं मरने में जान डाल रहा हूँ।
3: अरे मरने में।
0: वही हादसे से भरपूर फिल्म धमाल 4 इस साल 10 जुलाई को गुदगुदाने आ रही है। कल धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद बारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार पर्दे पर हंसी का डोज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं भारत की पहली देसी हिट विमन के साथ। दरअसल फिल्म बेबी डू डाई डू का टीजर रिलीज होते ही जमकर वायरल हो गया है। हुमा के बेहद खूंखार अनोखे अंदाज में लाल छाते के साथ दिखने की वजह से उन्हें भारत की पहली देसी हिट वुमन के रूप में पेश किया गया। ये फिल्म एक बहुत चर्चित हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी है। नाचेत सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में हुमा कुरैशी एक डेफ और म्यूट हिट वुमन की भूमिका में हैं, जो मुंबई में सिलसिलेवार हत्याएं करती हैं। फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है।
5: वाओ, किलर आइज।
6: ये सब साले हैं सेम टू सेम, करे पैसा पैसा 15 मिनट फेम का गेम, सब लेम है लेम।
4: बात दिलजीत दोसांझ की कर लेते हैं। कल उनकी फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज होने जा रही है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की रोमांटिक पीरियड ड्रामा देश विभाजन के बैकड्रॉप पर आधारित है, जिसमें विभाजन के दर्द से पीड़ित एक बुजुर्ग की अपनी प्रेमिका के लिए मोहब्बत के लिए कसक दिखाई गई है, जो कि देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह जाती है। मेकर्स ने एक दिन पहले इस फिल्म का नया गाना क्या कमाल है एक खास संदेश के साथ रिलीज किया और इसे दुनिया भर के शरणार्थियों को समर्पित किया है।
7: हिटलर नु जानते वो भी मार्स का है, मार्शल।
8: दस्तक देने जा रही है बेपनाह मोहब्बत से भरी एक लव स्टोरी, जिसे विभाजन का दंश झेलना पड़ा। देश के बंटवारे ने मोहब्बत को मकबूल नहीं होने दिया और बिछड़ने का दर्द सीने में टीस बनकर सालों साल धड़कता रहा। ১৯৪৭ के देश विभाजन के बैकड्रॉप पर बनी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा वैसे ही अधूरे प्रेम की कहानी है, जिसमें प्रेम की टीस को इम्तियाज अली ने बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। इसकी झलक तो ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है।
9: क्या हुआ?
8: अब इस फिल्म का एक गाना क्या कमाल है

एक खास संदेश के साथ पेश किया गया है। फिल्म मेकर्स ने इस गाने को दुनिया भर के उन शरणार्थियों को समर्पित किया है जिन्हें युद्ध, नफरत या हिंसा की वजह से जबरन अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा।

0: वीडियो के आखिर में एक शरणार्थी का एक बेहद भावुक कर देने वाला बयान भी शामिल किया गया है जो विभाजन के दंश को बयां करता है। अगर मुझे मौत और घर छोड़ने के बीच चुनाव करना होता तो मैं खुशी खुशी मौत को चुनता। दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। ये लाइन विभाजन और पलायन के गहरे दर्द को दिखाती है जिसे दिलजीत दोसांझ ने बड़ी ही शिद्दत से पर्दे पर निभाया है और इसकी झलक पूरे वीडियो में दिखाई देती है। ये फिल्म का एक स्पेशल एंड क्रेडिट गाना है जो सिनेमाघरों में फिल्म के खत्म होने के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिल्म के केंद्र में है नसीरुद्दीन शाह जो दिलजीत दोसांझ के दादा की भूमिका में है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि 95 साल के नसीरुद्दीन शाह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। बंटवारे की वजह से वो अपनी प्रेमिका से 78 साल से नहीं मिल पाए। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अपनी प्रेमिका से एक बार मिलने की चाहत रखते हैं। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के लिए दिलजीत उस लड़की को तलाशने पाकिस्तान जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह के युवा किरदार को पर्दे पर वेदांग रैना ने प्ले किया है और उनकी प्रेमिका का रोल शर्वरी वाघ ने किया है। क्या दिलजीत की कोशिश से नसीर अपनी प्रेमिका से मिल पाते हैं? वो प्रेमिका जीवित भी है या नहीं? अगर वो प्रेमिका जीवित है तो नसीर के प्रेम पर उसका क्या रिएक्शन आता है? इसी के इर्द गिर्द मैं वापस आऊंगा फिल्म की पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है और अब इस ताने बाने के खुलने का वक्त भी आ गया है। कल यानी 12 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेरे पास
1: में एक दिन पहले बुधवार को आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज हो गया है जो शाहरुख खान को भी खूब पसंद आया। आलिया की एक्टिंग के शाहरुख कायल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलिया की खूब तारीफ की। इसके साथ ही अल्फा सोशल मीडिया पर एक और वजह से सुर्खियों में है। एक फ्रेंच फिल्म का क्लिप शेयर कर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि अल्फा ओरिजिनल नहीं कॉपी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं।
2: 18 जन्मदिन मुबारक हो।
3: थैंक यू पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी।
0: एक दिन पहले रिलीज हुए अल्फा के टीजर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी।
4: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
5: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
0: पहली बार पर्दे पर एक्शन कर रही आलिया ने अपने स्टंट से फैंस को कायल कर दिया।
4: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
0: टीजर से साफ है कि अल्फा में आलिया कैसे असैसिन का किरदार निभा रही है जिसे उसके पिता ने बचपन से ही ट्रेंड किया है।
4: सबसे पीर
0: नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर के तौर पर एक किलिंग मशीन के रूप में तैयार किया है जिसके लिए किसी की जान लेना उसके बाएं हाथ का खेल है।
4: हैप्पी बर्थडे।
0: आलिया के अंदाज ने फैंस के साथ साथ शाहरुख खान को भी अपने अभिनय का कायल बना दिया है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है। अपने एक्स अकाउंट पर अल्फा का टीजर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, बहुत बढ़िया आलिया, लोगों का दिल तोड़ने से लेकर हड्डियां तोड़ने तक पिछले कुछ साल में तुम्हारा स्किल सेट लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अल्फा लोगों का दिल जीतेगी और सीक्वल के लिए कुछ विलेन भी बचा कर रखेगी। जाओ और कमाल कर दिखाओ सिग्मा गर्ल। शाहरुख ने इस पोस्ट में अल्फा के सीक्वल का भी हिंट दिया है। हालांकि मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जाहिर तौर पर अल्फा का सीक्वल फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा।
4: 34वां फ्लोर, 3418।
3: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
4: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
3: तो ये सब मेरे पोते के लिए नहीं था?
4: अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके है?
0: जहाँ तक अल्फा के टीजर की बात है तो इसमें अब तक दो किरदार नजर आए हैं, आलिया और बॉबी देओल, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं। शाहरुख खान ने बॉबी देओल की भी तारीफ की है। शाहरुख ने आगे लिखा है, लॉर्ड बॉबी, जब आप खलनायक के रोल में होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारा प्यार, शिव और उनकी टीम को भी शुभकामनाएं। इस टीजर में फिल्म की तीसरी अहम किरदार शर्वरी वाघ की झलक नहीं दी है। मुमकिन है अल्फा के अगले टीजर में वो नजर आए। खैर, शाहरुख खान की तारीफ के अलावा अल्फा का टीजर एक और वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। यूजर्स के बीच बहस इस बात पर हो रही है अल्फा ओरिजिनल है या कॉपी। सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है ये वीडियो क्लिप।
3: पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, it really means a lot to me.
0: इस वीडियो क्लिप में अल्फा के टीजर में दिखाए गए रेस्टोरेंट सीन की तुलना 1990 में आई फ्रेंच फिल्म ला फेमे निकिता से की जा रही है। कई यूजर्स ने दावा किया है कि अल्फा और ला फेमे निकिता के इस सीन में काफी हद तक समानता है। कहा जा रहा है कि अल्फा की कहानी का मूल आधार ला फेमे निकिता जैसा ही लग रहा है। दोनों फिल्मों की कहानी एक ऐसी युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली संगठन या मेंटर द्वारा भर्ती किया जाता है। फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म ला फेमे निकिता का डायरेक्शन फ्रेंच फिल्म मेकर ल्यूक बेसन ने किया था। एनी पेरिलॉर्ड, मार्क ड्यूरेट अहम किरदार में नजर आए थे। वहीं अल्फा में बॉबी देओल, आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ के अलावा अनिल कपूर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: हैप्पी बर्थडे।
1: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बड़े पर्दे से काफी वक्त से दूर हैं। दरअसल मां बनने के बाद लाइमलाइट से दूर चल रही कैटरीना को लेकर खबर अब यह है कि वो एक्टिंग में वापसी का मन बना चुकी हैं। लेकिन इस खबर में ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि उनका ये कमबैक सिल्वर स्क्रीन पर ना होकर डिजिटल यानी कि ओटीटी की दुनिया में हो जाए।

0: एक्ट्रेस कटरीना कैफ, जो अभी तक मदरहुड एंजॉय कर रही थी, उनको लेकर अब खबरें हैं वो दोबारा एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही है। सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि कटरीना का अगला प्रोजेक्ट शायद बड़े पर्दे से कुछ हट कर रहे। हालांकि ये OTT प्रोजेक्ट है या फिल्में, इसको लेकर कोई साफ जानकारी अभी तक नहीं, लेकिन कटरीना ऐसे किसी प्रोजेक्ट की ही स्क्रिप्ट को फिलहाल पढ़ रही है। खबरें हैं कि कटरीना की 2027 की दूसरी छमाही यानी उस साल के आखिरी 6 महीनों तक फिल्म सेट पर लौटने की योजना है। वो इसके लिए सही स्क्रिप्ट की तलाश में है जो उनके समय के लायक हो। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कटरीना स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स में भी दिलचस्पी ले रही है, जो उनको बेहतर मौके दे सकते हैं। खबर ये भी है कि कटरीना किसी प्रोजेक्ट को साइन करने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है और ऐसा रोल ढूंढना चाहती है जो एक एक्टर और माँ के तौर पर उनकी मौजूदा प्राथमिकताओं के हिसाब से हो। फिलहाल कयास इस बात की ज्यादा है कि बेकर्स के साथ कटरीना की बातचीत अगर सफल रही तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रीमिंग की दुनिया में कटरीना की एंट्री करा सकता है। वैसे कटरीना से पहले हाल के वर्षों में कई बॉलीवुड स्टार्स ने थिएटर रिलीज और OTT ओरिजिनल्स का रुख किया है और कामयाब भी हुए हैं। हालांकि कटरीना अब तक लंबे फॉर्मेट वाली डिजिटल स्टोरी टेलिंग से दूर रही है। बता दें कि कटरीना कैफ आखिरी बार साउथ स्टार विजय सेतुपति के साथ मैरी क्रिसमस में नजर आई थी। ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और दर्शकों से इसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिला था। हालांकि दोनों की एक्टिंग और केमिस्ट्री की काफी तारीफ हुई थी, तब से वो काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन अब फैंस के बीच उनके अगले प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। 12 जनवरी 2024 में आई मेरी क्रिसमस ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 18 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इससे पहले कटरीना टाइगर 3 में भी नजर आई थी, जो 12 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी और इसने टोटल 285.52 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 नवंबर 2022 को फिल्म फोन बूथ रिलीज हुई थी, जो फ्लॉप हुई और केवल 14.01 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। वहीं 5 नवंबर 2021 को सूर्यवंशी पर्दे पर उतरी थी, जो सुपरहिट रही थी और उस फिल्म ने 196 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि साल 2021 में ही कटरीना ने एक्टर विकी कौशल से राजस्थानी पारंपरिक शादी की थी। पिछले साल 7 नवंबर को कटरीना और विकी के घर बेटे विहान का जन्म हुआ और इस दौरान वो भले ही फिल्मों में ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रही, लेकिन अपने मदरहुड और फैमिली टाइम को खूब इंजॉय कर रही हैं। फिलहाल तो अब कटरीना के फैंस को उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार है। नजर इस बात पर है कि अब एक अरसे के बाद कटरीना बड़े पर्दे पर वापसी करती है या OTT से नई पारी का आगाज। मुंबई से भावना अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे शिमला में समर फेस्टिवल के रंग।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
5: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं ने दी गर्मी से राहत, आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान, सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर, मानव संसाधन के विकास और राष्ट्र निर्माण में निभाती है केंद्रीय भूमिका। अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, सहारनपुर में 10,000 से ज्यादा घर सोलर पैनल से कर रहे 34 मेगावाट बिजली उत्पादन, घट रहे बिजली बिल, बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज, पहली बार 3 देश मेजबान अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच में 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल का फीवर। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में, अच्छी फसल और मौसम के लिए हर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पर
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: लंच टाइम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चलिए अब रुक करते हैं शिमला का, शिमला की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से रंग संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 में देश भर से आए पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
4: और देखिए ये 5 दिवसीय उत्सव 12 जून तक चलेगा, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्थानीय व्यंजन और कला प्रदर्शनियों तक आकर्षण शामिल किए गए हैं।
5: पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोकधुन पर थिरकते सैकड़ों पांव, क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई ताल से ताल मिलाने को बेताब। हिमाचल प्रदेश को करीब से जानना है तो यहाँ आइए शिमला, जहाँ इन दिनों समर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यहाँ पारंपरिक पोशाक में हिमाचल की संस्कृति संजोए लोग मिलेंगे, पहाड़ी खान पान और लोकगीतों और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी शिमला यात्रा को यादगार बना देगी।
6: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम और अपने जिस आबोहवा के लिए मशहूर है वो देखते ही बनता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में यानी कि टूरिस्ट सीजन गर्मियों का चल रहा है और ऐसे में शिमला में घूमने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बार आयोजित की जा रही हैं जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का उसकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, और ख़ास तौर पर इस बार के आयोजन बेहद अलग हैं। आप पारिवारिक जो लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर अगर आते हैं तो शिमला शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ लिया जा सकता है, यहाँ पर जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखी जा सकती हैं, यहाँ का कल्चर देखा जा सकता है, संस्कृति देखी जा सकती है, तमाम चीज़ों को जो है सहज कर संजो कर रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ अहम हो जाती है, वो है यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव यानी कि समर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है।
5: इस बार शिमला समर फेस्टिवल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई नई एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं। इस बार समर फेस्टिवल में पहली बार हॉट एयर बलून, जॉय राइड जैसे विकल्प भी खोजे गए हैं और उन्हें भी शामिल किया गया है।
7: सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जैसे हेल्दी बेबी शो है और एक शिमला में एक डॉग शो भी हुआ करता था उसका भी रिवाइवल किया है, और टूरिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्शन के लिए जैसे हॉट एयर बैलून है, एक हमारी एक जॉय राइड का भी हम एक कंसेप्ट पे थोड़ा विचार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि टर्बुलेंस और मौसम के कुछ इश्यूज हैं बट उसको भी मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, जो हमारी 7 हिल्स है उसको भी हम एक उसके भी एक जॉय राइड की हैसियत से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इसके साथ ही पर्यटकों के लिए पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक लोक नृत्य, डॉग शो, पहाड़ी कवि सम्मेलन जैसे प्रयोग भी किए गए हैं, जिन्हें न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे शानदार होता है शाम का नजारा, जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की जान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। इसमें पारंपरिक लोकगीतों और लोक नृत्यों के साथ साथ बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली गायकों की शानदार प्रस्तुति सबको थिरकने पर मजबूर कर देती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: सज चुकी हैं। जमीन से लेकर पानी तक आज से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, फुटबॉल का महाकुंभ है। रोमांच की तो ये अभी शुरुआत ही है। आज से यानी 39 दिनों तक हर दिन सिर्फ फुटबॉल का जादू चलेगा। एक तरफ जहां लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान दिग्गज अपने करियर के आखिरी और सबसे बड़े महामुकाबले के लिए तैयार हैं, तो दूसरी ओर जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान जैसी टीमें पहली बार वर्ल्ड कप के मंच पर अपना इतिहास लिखने के इरादे से आई हैं। फीफा के इतिहास में पहली बार है जब तीन देश मिलकर इस महाकुंभ की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका के 11 शहर मैच की मेजबानी करेंगे, जबकि मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। सिर्फ ग्रुप स्टेज में ही कुल 72 रोमांचक मैच खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब 32 नहीं 48 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है, मतलब हर ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सबसे अच्छी टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगे। इसके बाद राउंड ऑफ 32 और फिर राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मैच खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल 10 से 12 जुलाई तक खेले जाएंगे। 2 सेमीफाइनल मैच 15 और 16 जुलाई को होंगे। तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ 19 जुलाई को मियामी में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को अमेरिका के न्यूजर्सी में खेला जाएगा। मैच का रोमांच शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। तीन देशों में टूर्नामेंट होने की वजह से फीफा विश्व कप 2026 की 3 अलग अलग ओपनिंग सेरेमनी होगी। पहली ओपनिंग सेरेमनी मेक्सिको में होगी। शकीरा और बर्ना बॉय इसमें मुख्य कलाकार के तौर पर परफॉर्म करेंगे। दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में आयोजित की जाएगी। कनाडा के मशहूर कलाकार माइकल बबल के साथ एलेसिया कारा और एलेनिस मोरिसेट जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। इस सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही भी अपना जलवा बिखेरेंगी। तीसरी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। इसमें खास तौर पर केटी पेरी और के पॉप ग्रुप ब्लैक पिंक की सदस्य लिसा परफॉर्म करेंगी। मैच के शुरू होने से 90 मिनट पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी। भारत में ओपनिंग सेरेमनी 11 जून रात 11 बजे से देखा जा सकता है, जबकि टूर्नामेंट का पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच रात 12:30 पर शुरू होगा। तो दिल थाम कर बैठी, बस चंद घंटे का इंतजार और फिर फुटबॉल के महाकुंभ में पूरे 39 दिनों तक हर पल हर लम्हे रोमांच के सागर में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: ब्राजील में फुटबॉल के जुनून की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ के बाजारों में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ फैंस के बीच ब्राजील की जर्सी और फुटबॉल खरीदने की होड़ लगी हुई है। शहर के बाजारों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों के पास पीले और हरे रंग के सामान की मांग भी बढ़ गई है।
2: देखिए, बच्चे और बड़े सब अपने पसंदीदा रंग दिखाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। जाहिर सी बात है, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर खिलाड़ी ही नहीं, फैंस भी गियर अप कर रहे हैं। बाकी दुनिया की तरह रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर फीफा को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है। फैंस को उम्मीद है कि 5 बार की चैंपियन टीम अपना 6ठा ऐतिहासिक खिताब जीतने की काबिलियत भी रखती है।
1: लंच टाइम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। तपती धूप और गर्म हवाओं से जूझ रही दिल्ली को आखिरकार राहत की सौगात मिल गई है। एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से राजधानी का मौसम अचानक से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है।
1: आसमान में छाए बादल ने सूरज की तपिश को कम किया तो ठंडी हवाओं ने लोगों को सुकून का एहसास कराया। कहीं हल्की फुहारें पड़ी तो कहीं बादलों की आवाजाही ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। आज और कल बारिश, तेज हवा और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।
0: अब देखिए इस खबर से दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों के चेहरों पर राहत भी साफ दिखाई दे रही है। मौसम के बदले हुए मिजाज ने न सिर्फ तापमान में गिरावट दर्ज कराई है बल्कि सुबह और शाम के मौसम को काफी सुहाना बना दिया। हालांकि मौसम विभाग का ये मानना है कि ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है और अगले कुछ दिनों तक बादल, तेज हवाएं और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां ऐसे ही आप सबको देखने को मिल सकती हैं।
1: चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली की ताजा तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया है, बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिल रही है।
0: और देखिए बादल दिल्ली वालों के लिए हल्की राहत भी लेकर आए हैं। दिल्ली में आसमान में छाए बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बादल दिल्ली वासियों के लिए हल्की राहत लेकर तो आए हैं जिससे गर्मी का असर कुछ कम महसूस किया जा रहा है।
1: जीएनटी आप लोगों से हमेशा की तरह अपील कर रहा है कि आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरें आप हमें जरूर शेयर करें और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा भी रहे हैं।
0: तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लिए चलते हैं जहां पर मेघालय के लैथलुम कैनियन जैसे हिडन पैराडाइज की खूबसूरती को एक व्लॉगर ने कैसे बयां किया है। चलिए आपको दिखाते हैं।

0: इस वक्त हम हैं मेघालय में, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक बेहद खूबसूरत स्टेट है। मानो ऐसा लगता है जैसे यहाँ की पहाड़ियाँ बादलों की चादर में लिपटी हुई हैं। हवा में नमी है, खामोशी है और एक ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। हम शिलांग से कुछ किलोमीटर दूर पूर्वी खासी पहाड़ियों की उस ऊंचाई पर खड़े हैं, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे धरती अचानक खत्म हो गई हो और आगे सिर्फ आसमान बचा हो। नीचे गहरी घाटियां हैं, दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ और उनके ऊपर तैरते बादल। ये है लैतलुम कैनियन, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर खुद बनाती है। और शायद यही वजह है कि यहां आने वाला हर शख्स कुछ देर के लिए यहां ठहर जाना चाहता है। यहां पर बोले जाने वाली एक लोकल भाषा है खासी, और खासी भाषा में लैतलुम का मतलब होता है पहाड़ियों का अंत। लैतलुम सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि इसकी असली पहचान है यहां की फिजाओं में पसरी खामोशी। यहां न शहरों का शोर है, न भीड़ भाड़ का दबाव, सिर्फ हवा की आवाज, पहाड़ों की विशालता और प्रकृति का अनंत विस्तार। वैसे तो लैतलुम घूमने के लिए साल भर यहां लोग आते रहते हैं, लेकिन बेहतर महीना अक्टूबर से मई के बीच का रहता है, जब यहां का मौसम सुहावना होता है। ये खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट शिलांग से करीब 45 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर हैं तो यकीनन आपको ये जगह बेहद पसंद आएगी। लैतलुम से लगभग 130 किलोमीटर दूर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, जो कि यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप इस स्टेशन से ही टैक्सी बुक करके 3 घंटे का सफर तय कर लैतलुम पहुंच सकते हैं। मेघालय की अनगिनत खूबसूरत जगहों में लैतलुम एक ऐसा ठिकाना है जो आपको याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी में छिपी है। तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, यहां आकर सीनिक ब्यूटी निहारिए और उस एहसास को अपने साथ लेकर जाइए।
1: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
4: After multiple assassination attempts, they can't even get...
5: They're reliable.
6: Always when I need them.
3: To live sports action.
7: One hand jam by LeBron on the break.
8: That's another three, Steph Curry.
3: And your favorite music. Tune in has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play Tune In.
9: Good news today is like that. Is Kandarna? Was Kabruki ki maar dhaad aur chilla chilli nahi hai. Kam se kam logon ko khabre to aaram se sunne ko mil jao. Iske upar aise. Achhi soch ke saath ek achhi shuruaat ki hai. Iske parinaam bhi achhe aane chahiye. Waise achhi cheezon ki market aajkal badh rahi hai.
10: Desh dekh raha hai achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
11: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Sage University, transforming your passion into profession.
6: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं ने दी गर्मी को राहत, आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाज में गृहिणियों ने निस्वार्थ योगदान को, सुप्रीम कोर्ट में सम्मान मिला, सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर, कहा गृहिणियां मानव संसाधन के विकास और राष्ट्र निर्माण में निभाती हैं केंद्रीय भूमिका। प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इस महिला शिक्षकों के सम्मानित मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज, पहली बार तीन देश कर रहे हैं मेजबानी, अमेरिका कनाडा मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में, अच्छी फसल और मौसम के लिए हर उत्साह के साथ मनाया जाता है ये पर्व।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
14: चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा 12 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक दोनों जगहों पर 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, अब तक 74,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था परंपार, लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्तों के बावजूद लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका का लगातार सफाई अभियान तेज, अब तक 5 लाख प्लास्टिक बोतल्स इकट्ठा की। राष्ट्रीय राजमार्ग से रोजाना 6 टन उठाया जा रहा है कचरा, श्रद्धालुओं भी लगातार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा को लेकर इंतजामों से संतुष्ट नजर आए श्रद्धालु, साफ सफाई, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन के इंतजामों की तारीफ की। असाधारण बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए आर्मी मेजर अर्शदीप सिंह गिल, मेजर गिल ने गुड न्यूज टुडे को सुनाई 48 घंटे चले जोखिम भरे ऑपरेशन की कहानी। नैनीताल के कैंची धाम मेले की तैयारियां तेज, 15 जून को नीम करोली में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। मेले में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं कैंची धाम, मेले को लेकर प्रशासन सख्त। समारोह के देखते हुए कैंची धाम में विशाल भंडारे की तैयारियां, प्रसाद के लिए मालपुए बनाने का काम तेज। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी, भीमताल और नैनीताल से विशेष शटल सेवा भी शुरू, भक्तों के लिए की गई है पार्किंग व्यवस्था। 14 से 15 जून को कैंची धाम क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, प्रशासन ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर बैठक की। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दुग्ध दही घी शहद और फलों के रस से पंचामृत। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर आभूषणों से किया गया स्वरूप श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। यूके से आए कश्मीरी पंडितों ने अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की, कश्मीर में शांति समृद्धि की कामना। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में देखा आस्था और भक्ति का जबरदस्त संगम, पेचियम्मन मंदिर में आयोजित पारंपरिक वैकासी कोडाई महोत्सव में जुटे श्रद्धालु। महोत्सव के दौरान जीवंत हुई प्राचीन परंपराएं, पारंपरिक तरीके से बनाए गए प्रसाद। तमिलनाडु की समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रतीक मानी जाती है वैकासी कोडाई महोत्सव। तूतुकुड़ी में 27वें ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का स्वागत, जबरदस्त खेल को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान दिया। सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों या अन्य मुआवजा दावों के मामलों पर घरेलू सेवाओं के लिए गृहिणियों की आय 30,000 तय की। अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगा चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। गृह जनपद रीवा पहुंचे सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। अकोला के शहीद प्रवीण जंजाल को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन में चलका मां का दर्द। आज फीवा फुटबॉल विश्व कप का होगा आगाज। अमेरिका कनाडा मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। पहली बार तीन देश कर रहे हैं मेजबानी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में होंगे कुल 104 मैच। ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। अमेरिका के 11, मेक्सिको के 3, कनाडा के 2 मैच। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब जीतने के लिए 32 की जगह बढ़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका की न्यूजर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। मेक्सिको, टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। भारत में भी दिख रहा है फुटबॉल विश्व कप का फीवर। केरलम की गलियां, सड़कों से घरों तक दिख रहा है फुटबॉल क्रेज। प्रवासी फ्लेमिंगो बर्ड से गुलजार हुआ तूतुकुड़ी। बड़ी संख्या में पहुंचे पक्षी। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका से हजारों की संख्या में आए प्रवासी फ्लेमिंगो देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति। 10,000 से ज्यादा घर बना रहे 34 मेगावाट बिजली। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल। हर महीने 3.5 करोड़ रुपए की ऊर्जा उत्पादन। सूरज की रोशनी से घर रहे हैं बिजली बिल। बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। इंदौर में ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के प्रतिनिधियों ने होलकर कालीन ऐतिहासिक धरोहर का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के भलेसा में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। स्कूल में बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। जयपुर में 66वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। भुवनेश्वर में फूड एग्रो और बायोटेक्स समिट का शुभारंभ हुआ। उड़ीसा के राज्यपाल शामिल हुए। श्रीनगर में इंफिनोकॉन 2026 सम्मेलन का आगाज किया गया। एलजी मनु सिन्हा शामिल हुए। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके में संस्कार शाला के नाम से समर कैंप का आयोजन किया।

0: सनातन धर्म मंदिर में आयोजित संस्कार शाला में बच्चों को सिखाए जा रहे हैं मंत्र और भजन। बच्चों ने याद की हनुमान चालीसा। हिरणों के लिए सुरक्षित आश्रय बना भुवनेश्वर का लोक भवन परिसर। लोक भवन में हरियाली के बीच बढ़ रही है हिरणों की संख्या। परिसर में आजाद घूमते हिरण बढ़ा रहे हैं लोक भवन मैदान में सुंदरता। परिस्थिति की संतुलन के साथ साथ प्रशासन और वन्य जीवों के बीच बना रहे हैं अनोखा बैलेंस। केरल के मशहूर हिल स्टेशन पलक्कयम थट्टू में पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने की पहल। राज्य सड़क परिवहन निगम ने बजट टूरिज्म सेल ने जारी की नई स्मारक। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू में बनाया गया है एक रनवे और यात्री टर्मिनल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कल 16 पैसे मजबूत हो गया रुपया। 95.25 रुपए एक अमेरिकी डॉलर की एक्सचेंज वैल्यू। शिलोंग में 15-16 जून को नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। 8 पूर्वोत्तर राज्य, 8 केंद्रीय मंत्रालय, 800 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस को डिजिटल अलर्ट और साइबर ट्रैकिंग से मिली सफलता। 2 मामलों में वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अकोला में किसानों की हालत को देखते हुए कृषि केंद्र संचालन। यूरिया के लिए रात भर लाइन में खड़े किसानों को उपलब्ध कराया गया पानी और नाश्ता। राजस्थान के बुशर्क से सामने निकल कर आया अनूठा मामला। सांप के शरीर में फंसी अंगूठी निकालकर सांप को दिलाई राहत। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज। नोएडा गाजियाबाद में छाए काले बादल, चल रही है धूल भरी आंधी। दिल्ली एनसीआर में 12 जून को बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि गिरने की संभावना। 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो जाएंगी। दिल्ली समेत हरियाणा में तेज बारिश की उम्मीद। आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए जारी कर दिया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि का अनुमान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Ugh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
4: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack, craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
3: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: और आइए अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: कभी कभी दिल का फैसला सबसे अलग होता है और इस वीडियो में एक प्यारे से पपी के सामने कई बच्चे बैठे हैं और उसके पास किसी को भी चुनने का मौका है, लेकिन वो बिना देर किए सीधे एक खास बच्चे की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये नजारा देखते ही वहाँ मौजूद लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। पपी और बच्चे के बीच का ये अनोखा जुड़ाव बता रहा है कि सच्चा लगाव शब्दों से नहीं एहसास से पहचाना जाता है। वफादारी और प्यार की बात हो तो डॉग का नाम सबसे पहले आता है। इस वीडियो में एक डॉग पूरे 6 महीने बाद अपने मालिक से मिलता है। जैसे ही वो अपने मालिक को देखता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो धीरे धीरे पास आता है और फिर प्यार से उनसे लिपट जाता है। इस दौरान उनकी आंखों और हरकतों में छिपा अपनापन साफ नजर आता है। ये भावुक मिलन दिखाता है कि जानवर भी रिश्तों को उतना ही गहराई से महसूस करते हैं जितना इंसान। बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेने में है। इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा खेत में भरे पानी और मिट्टी के बीच मस्ती करता नजर आ रहा है। पानी में बच्चा चारों तरफ घूम रहा है और हर पल का खुलकर आनंद ले रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि असली खुशी महंगे खिलौनों में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बिताए ऐसे बेफिक्र पलों में छिपी होती है। ये दृश्य हर किसी को अपना बचपन याद दिला रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
5: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: देश में बढ़ते साइबर अपराध के मद्देनजर गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नई एडवाइजरी, बायोमेट्रिक लॉक रखने, संदिग्ध लॉगिन अलर्ट पर नजर रखने और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा। समाज में गृहिणियों ने निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में मिला सम्मान, सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर, कहा गृहिणियां मानव संसाधन के विकास और राष्ट्र निर्माण में निभाती हैं केंद्रीय भूमिका। अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों की समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं ने दी गर्मी से राहत, आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा का आज से आगाज, पहली बार 3 देश हैं मेजबान, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें, भारत पर भी चढ़ा फुटबॉल फीवर। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में, अच्छी फसल और मौसम के लिए हर उत्साह के साथ मनाया जाता है पर्व।
1: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जिनके घर किताबों भरी अलमारियां होती हैं, उनसे रईस और कोई नहीं होता। वैसे बात तो सच है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटिया का ये नया एपिसोड। और आज तो हम यहां खोलेंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर गुड न्यूज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, खतरे में पड़ेगी अपराजिता की जान, तड़पेगा

0: राधिका के लिए आर्यन और वीर करेंगे कबड्डी मैच, शुरू होगी नई जंग।
1: होठों में ऐसी बात मैं दबा के चले आई।
0: नाचते गाते घर में शगुन लेकर आएगी रूहानी, शुरू होगा नया तमाशा।

0: किताबों के बिना घर बिना खिड़कियों वाले कमरे के समान है, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आज हमसे हमारी मदद, क्योंकि आज तो किताबों के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे बात तो सही है, देखिए कितना जरूरी है हम सबके लिए पढ़ना और अवेयर रहना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और क्यों चीज कैसी है, क्यों है, इसका ओरिजिन क्या है, कितने सारे सवाल हैं और उसके सारे जवाब कैसे मिलेंगे किताब पढ़कर। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको मन्नत के पास, क्योंकि यहाँ भी खुल रही है आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब।
1: बच्चों संग मन्नत का सेलिब्रेशन,
2: खुशियों की मिली
1: विक्रांत की याद में मनाई सालगिरह,
2: जुनून सा कुछ पागलपन,
1: धैर्य न चली अपनी चाल,
2: ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सो बात करता ये बुद्धू।
1: कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत का साथ कोई दे ना दे, लेकिन मन्नत के तीनों बच्चे मन्नत का साथ दे रहे हैं। चाहे वो दुआ हो, बंटी हो या फिर यूवी, वो मन्नत और विक्रांत की शादी की सालगिरह पर मन्नत का साथ देते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं और मन्नत के चेहरे पर ला रहे हैं स्माइल भी। ऐसे में मन्नत भी बहुत खुश है।
3: वो बिल्कुल वैसी अपनी लाइफ रख रही है कि विक्रांत होते तो वो डेफिनेटली करते सेलिब्रेट, और विक्रांत जब वापस आएंगे तो वो चाहेंगे, वो पूछेंगे कि क्या किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया ऐसा। तो शी इज लाइक शी इज बीइंग दिस के इल मेक विक्रांत हैप्पी। I know. Wherever he is, I want him happy. And when he come back, even then I want him happy. So she's being like that.
1: वैसे मन्नत ने अपनी शादी की सालगिरह विक्रांत के साथ बनाई है। जरा देखिए कैसे उसने लालटेन में विक्रांत की तस्वीर लगा रखी है और उसे देखकर हो रही है इमोशनल भी।

0: खैर यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ धैर्य अपनी चाल चल रहा है दुआ का ब्रेन वॉश करने के लिए, लेकिन दुआ बहाना कर वहाँ से निकल जाती है। भाई दुआ तो निकल जाती है मन्नत को लाने के लिए, लेकिन धैर्य दुआ का बैग रेडी करने लग जाता है उसके स्कूल के लिए और इंतजार करता है मन्नत के आने का। इसी बीच मन्नत और दुआ दोनों ही आ जाते हैं और देखिए कैसे आते ही दुआ कान पकड़कर धैर्य से माफी मांग रही है क्योंकि उसने बड़ों से अच्छे से बात जो नहीं की थी। ऐसे में धैर्य उसे समझाता है क्योंकि वो तो अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा है।
1: और जितनी जिम्मेदारी गलत करने वाली की है उतनी ही जिम्मेदारी गलत का साथ देने वाली की थी।
2: सावित ने स्टबन हो गया इस बात को लेकर कि विक्रांत नहीं है, धैर्य जी सुनते रहे हैं। तो एंड शी इज अ किड, किड्स इंपल्सिव होते हैं समटाइम्स, दे डोंट थिंक थ्रू एंड वो इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाते हैं। तो अंडर पंटी एंड यूवी के इन्फ्लुएंस में थी और पठाला की मन्नत को लगता है कि यार आपका अगर आपने गलत का साथ दिया तो वो भी गलत करना ही है, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। तो वो इससे बोल रही है कि आप सॉरी बोलो, बाबा की फीलिंग्स हर्ट हुई है क्योंकि मन्नत को तो नहीं पता कि बाबा की फीलिंग्स के बारे में एक्चुअली क्या चल रहा है। तो इसीलिए
0: अब धैर्य मन्नत की बातों को नकार तो नहीं सकता, लेकिन धैर्य ने दुआ को बड़े ही प्यार से समझा दिया और तो और अगले साल उसका साथ देने का वादा भी किया। लेकिन इसी बीच दुआ ने ऐसी बात कह दी जो कहीं ना कहीं धैर्य को अंदर से गुस्सा भी दिला रही है।
3: आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं
4: करेंगे देख लेना,
0: अब धैर्य ऊपरी मन से कितना भी दुआ से प्यार जता ले, लेकिन वो तो यही चाहता है कि दुआ को जरिया बनाकर मन्नत को इस बात का यकीन दिला सके कि उसका विक्रांत मर चुका है। अब देखना होगा क्या धैर्य उसमें कामयाब हो पाएगा।
5: ना ढोल दी बीट, ना दुनिया दी जीत, सानू दे चाहे दी, बस मन्नत वाली प्रीत।
6: निकलो यहाँ से, नहीं तो आज तुम्हारे भगवान भी इस रावण से तुम लोगों को नहीं बचा पाएंगे।
5: इस रावण का हिसाब करने के राम जी का ये बंदा काफी है।
6: कौन है बे तू?
7: यारो दा यार, दुश्मनों दी यार। मेरा नाम अभिमन्यु।
0: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: किताबों की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है, ना कोई रंजिश ना कोई शोर, लेकिन यहाँ से तो सुनाई दे रहा है हम सबको एंटरटेनमेंट का शोर। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको मन सुंदर के सेट पर और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है नाहर और रूही की इस कहानी में आज। वेल, कहानी का लेखक लेकर आया है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ड्रामा जो लेकर आ रहा है कहानी में भरपूर एंटरटेनमेंट। लेट्स चेक इट आउट।
0: फूटा नाहर का गुस्सा। घर में हुआ अग्निकांड। रूही और नाहर की अलग जिंदगानी। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आ गया है 5 साल का लीप और लीप के बाद बदल गई है कहानी क्योंकि रूही और नाहर दोनों ही अलग हो गए हैं और तो और दोनों का अंदाज भी बदल गया है। नाहर जो रूही से बेइंतहा मोहब्बत करता था अब उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तभी तो देखिए कैसे आज नाहर के घर में साड़ी बेचने के लिए एक औरत आई है। साड़ियाँ देखकर नाहर की माँ बहुत खुश हो रही है और तो और जूही और अवनी दोनों को बुला लेती है, लेकिन उससे पहले आ जाता है नाहर जो ये सब देखकर गुस्सा जाता है। न सिर्फ पेपर्स फेंकता है बल्कि नीचे आकर उन साड़ियों के ऊपर केरोसिन भी डाल देता है और लगा देता है आग।

Dog? Anything?

0: सीन की शुरुआत है जहाँ पे सोनी अपने लिए साड़ी पसंद कर रही है। घर पे बैठ के हम साड़ी उड़ी जो भी खरीदते हैं और माँ जी का एक ताना आता है कि अब तुम दादी नानी बन गई हो, थोड़ा
1: बूढ़ी लाल लगा नाथी
0: और मेरा है कि जवान दिखना बंद करो। और मेरा डायलॉग होता है वही जो आपने देखा अभी कि खुद का बुढ़ापा तो देखती नहीं है, मुझे मेरा बुढ़ापा याद दिला। तो छोटा सा नोक जोक है, ऐसा नहीं किसी के लिए हम साड़ी ले रहे हैं। और फिर नहा रहता है, उसको रूही का नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है और फिर वो साड़ियों में आग लगा देता है।
2: भाई नाहर ने ना सिर्फ अपना गुस्सा दिखाया बल्कि उस साड़ी वाले के नुकसान का हर्जाना भी भर दिया और अपनी अकड़ दिखाकर वहाँ से चला गया। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर नाहर के पापा और भाई आ गए आग बुझाने के लिए, लेकिन नाहर उसके दिल में दर्द अब भी छिपा हुआ है जो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वही दूसरी ओर रूही ने भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है, एक कैफे खोल लिया है और दौर उसे एक सहेली भी मिल गई है जो हमेशा रूही का साथ देती है। लेकिन रूही उसके अतीत की यादें अब भी उसे सता रही हैं। तभी तो कस्टमर्स को कॉफी देने के दौरान रूही कांपने लगती है। वो तो शुक्र है कि उसकी सखी आकर उसको संभाल लेती है, लेकिन रूही और नाहर दोनों के बीच की कुछ बातें अभी भी अनकही है।
0: देखिए ये क्या है कि लास्ट जहाँ पे सीन जो हमें समझ में आया कि रूही क्यों चली गई, नाहर को लगता है कि रूही मुझे और रूहान को छोड़कर चली गई है, तो वो गुस्सा है, उसको नहीं पता रूही के साथ क्या हुआ और नाहर के साथ साथ हमें भी नहीं पता, पता है सिर्फ दादी को। अब आगे क्या ड्रामा आएगा या किस तरह से जाएगा यही देखने वाली बात है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और रोज मनसुंदर देखना पड़ेगा।
1: अभी ये जब रूही नाहर अलग हुए, ठीक है, तो वो बिना किसी मुलाकात के अलग हुए। अब बीच में ये 5 साल हैं, अभी ऑडियंस को ये देखने को भी मिलेगा कि रूही अचानक बिना बताए चली क्यों गई, और वही सवाल नाहर के मन में है जिसके ग्रजीज उसको हैं, जो नफरत पैदा कर रहे हैं उसको, तो ये सब जानने के लिए कि इन 5 सालों में भी क्या हुआ, रूही क्यों चली गई, क्या रीजन है नाहर से बिना मिले चली गई।
0: रूही का क्योंकि अलग से शूट हो रहा है तो हमें भी नहीं पता कि उधर क्या ड्रामा चल रहा है फिलहाल।
2: भाई इन 5 सालों में आखिर क्या हुआ है रूही नाहर के बीच, ये जानने के लिए तो दर्शक भी बेकरार हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रूही और नाहर की मुलाकात होगी और दोनों के बीच जो अनकही बातें हैं वो भी पूरी होंगी। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: जिसे पुस्तकें पढ़ने का शौक है वो तो हर जगह खुश रह सकता है। वेल, मेरी इस बात से तो पूरी पूरी तरह अग्री करेंगी डॉक्टर आलम्भी, बिकॉज डॉक्टर आलम्भी यानी ऐश्वर्या खरे मेरे शुभ भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी, तो वेल उनमें तो किताबी कीड़ा है, उन्हें तो इतना शौक है किताबें पढ़ने का कि हमेशा रहती है उनके पास कोई ना कोई नई किताब। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको डॉक्टर आलम्भी के सेट पर, क्योंकि यहाँ भी खुल रही है हमारे लिए एंटरटेनमेंट की किताब।
2: और नायरा की सगाई में मनमीत बनी मेहमान, अंधेरे में आया अतीत का ट्विस्ट, आरंभी बनी सासू मां की ढाल, कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज हो रही है राज और नायरा की सगाई। ऐसे में सभी परिवार वाले बहुत खुश हैं और देखिए कैसे वो सगाई करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अंगूठी जा गिरती है दरवाजे पर और दरवाजे पे मेहमान बनकर आ जाती है मनमीत, वो भी अपने पति के साथ। हालांकि मनमीत हिचकिचा जाती है क्योंकि वो तो सच छिपा रही है, और तभी मनमीत का पति सनी अंगूठी उठाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो भी सभी के सामने।
4: हेलो जी, हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं संजय जी, बिना बुलाए नहीं आया, पर राज जी ने इनवाइट किया था, ये आ गए जी मैं और मन्नो, कांग्रेचुलेशंस, मिल गई थानू तुहाडी सिमरन।
2: भाई सनी ने तो वो अंगूठी मनमीत को दे दी और मनमीत ने हिचकिचाते हुए वो अंगूठी राज के हाथों में थमा दी और फिर शुरू हुई सगाई की रस्म। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आ गया क्योंकि चली गई लाइट और लाइट जाते ही जगमगा उठे डिंपल के कपड़े, और डिंपल के कपड़ों में लिखा हुआ है उसका अतीत, जिसे देखकर सभी लोग हो रहे हैं हैरान और सबसे ज्यादा परेशान हो रही है डिंपल।

0: लोग जब ब्लू लाइट में जा रहे हैं तो हमारे दांत इतने ज्यादा सफेद हैं, सफेदी की चमकार जो है आंखें नागिन जैसी हो गई हैं। उसके अलावा सस्पेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है।
1: भाई टिंपल के कपड़ों में जो लिखा हुआ है उसी को लेकर सभी लोग अटकलें लगानी शुरू कर देते हैं। ऐसे में नायरा की माँ को भी गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि राज के परिवार वालों ने उनसे कुछ छिपाया है। इससे पहले कि वो डिंपल से सवाल जवाब करती और घर में तमाशा होता, आरंभी ने सिचुएशन संभाल ली।
2: ये अभी अभी यहाँ क्या हुआ? नहीं डॉक्टर विश्वास, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी मनहूस हरकत किसने की और क्यों?
3: कैसा लगा सरप्राइज नायरा? सिया जी आपको लगता होगा कि हमें नायरा के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि नायरा कितनी अमेजिंग डांसर है और कितने सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं इसने। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? ये बात तो जनने पे जारी होनी चाहिए है ना? आपको क्या लगा था? आपने नहीं बताया तो पता नहीं चलेगा। वैसे मैं भी आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, हमारा जो राज है ना वो भी किसी से कम नहीं है, बराबर की टक्कर देगा नायरा को। एक्चुअली राज तो हमारी फैमिली का माइकल जैक्सन।
0: डिंपल को कभी नहीं दिखाई देता है, वो कितनी ही बार टंडन परिवार की इज्जत रखने की कोशिश करती है और डिंपल को लगता है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि वो उसका स्टैंडर्ड नहीं है, उसका ये नहीं, उसका वो नहीं। हर समय डिंपल उसके पीछे पड़ी रहती है एक तरीके से, जिसको डिंपल को लगता है वो बिल्कुल सही है और आरंभी को लगता है वो सही काम कर रही है। आज पहली बार इस सीन में ऐसा एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आरंभी वाकई पूरे टंडन परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। और अगर आपने देखा होगा तो अभी पहली बार डिंपल आरंभी को थैंक यू बोलती है।
1: आरंभी ने ना सिर्फ बातों को घुमा दिया बल्कि अपनी सासू मां डिंपल को भी संभाल लिया। ऐसे में डिंपल वहां से चली जाती है और सभी शुरू कर देते हैं डांस की तैयारी, क्योंकि अब सगाई के मौके पर लगेगा डांस का तड़का। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब देखिए जब बात करें हम किताबों की तो इनमें भी है कितनी सारी वैरायटी, जैसे कि फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प बुक्स, ना जाने कितनी वैरायटी। और उसी तरह है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी, जिसे रोजाना लेकर हाजिर होती है आपके लिए हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।

जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज राघव पहुंच गए हैं अपनी और रीत की फेवरेट प्लेस पर, और देखिए कैसे वहां पहुंचते ही उनकी नज़र अपनी ही कार के अंदर पड़े टेडी बियर पर पड़ गई। ये टेडी बियर उन्होंने रीत और उसके होने वाले बच्चे के लिए लिया था। उसे देखकर न सिर्फ उसे रीत की याद आ रही है बल्कि जिस बच्चे को उन्होंने खो दिया है उसकी याद में भी राघव बेचैन हो रहा है। खैर अब राघव ने फैसला लिया है कि अब वो रीत का दिल दोबारा से जीतेगा, इसलिए देखिए कैसे कार से बाहर निकलकर उसकी नजर पड़ जाती है एक फूलों की दुकान पर, और वो पहुंच जाता है वहां पर अपनी रीत के लिए फूलों का गुलदस्ता लेने के लिए, क्योंकि रीत को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, इसलिए राघव वो फूल का गुलदस्ता ले भी लेता है। अब देखना होगा क्या राघव अपनी रीत का दिल फिर से जीत पाएगा।

का फोन उठाती है क्योंकि ईशान ने उससे अपना हाल दिल बयां जो किया है, इसीलिए वो अभी भी घबरा रही है। हालांकि उसने जवाब नहीं दिया और उसकी ये हिचकिचाहट देखकर श्रेया पहुंच गई उससे सवाल जवाब करने कि आखिर वो किससे बात कर रही है। बस फिर क्या, ये बात नोयनिका को रास नहीं आई और उसने श्रेया को सुना दिया। भाई नोयनिका के करारे जवाब ने श्रेया को हिला कर रख दिया। उसने तो सभी के सामने बात भी घुमा दी कि उसे नोयनिका की परवाह हो रही थी। इस बीच नोयनिका की सासू माँ भी इस बात को लेकर नोयनिका को ताने कसने लगती है, लेकिन नोयनिका उनका भी जवाब दे देती है। भाई ये सुनकर नोयनिका की सासू माँ हैरान है कि आखिर उसमें इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई। खैर नोयनिका ने अब अपनी हिम्मत जुटानी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अगले ही दिन घर में गुड न्यूज आ गई है और ये गुड न्यूज है ईशान। भाई इस घर में ईशान के सभी फैन हैं। ऐसे में ईशान को देखकर सभी बहुत खुश हो रहे हैं।

स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका ऑफिस से काम कर घर वापस आई है और आते के साथ ही देखिए कैसे नयनिका की सासू माँ ने उस पर ताने कसने शुरू कर दिए। हालांकि नयनिका चुपचाप है, इसी बीच उसे आ जाता है ईशान का कॉल भी। ये देखकर नयनिका की सासू माँ तो चली जाती है, लेकिन नयनिका हिचकिचाते हुए ईशान

अपने सबके सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल ने पूरे कर लिए हैं 4 साल। ऐसे में 4 साल की खुशी में सेट पर हो रहा है सेलिब्रेशन, जहां पर पहुंच गए हैं सीरियल के प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया भी। और देखिए कैसे पूरी टीम मिलकर यहां पर केक काट रही है और खुशियां मना रही है। इतना ही नहीं, सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर दी ढेर सारी बधाइयां भी।

0: बहुत बहुत कमाल का लग रहा है. आई एम फीलिंग ब्लेस्ड. जर्नी वॉज अमेजिंग. लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन पुष्पा'ज लाइफ, बट येट यू नो शी won over everything, and she's standing here now in front of you as a lawyer and fighting for people, something which she always wanted to do. She wanted to help people, do something for the society, so that's what she's doing. I'm so thankful for this whole journey.
1: Aaj hamari serial ko 4 saal pure ho gaye. It's a huge achievement and we really feel blessed. Bahut acha lag raha hai aur bas isi tarah ye karma chalta rahe.
2: Thank you so much, each and every audience.
3: पुष्पा इम्पॉसिबल में पिछले 4 सालों में कई बदलाव हुए हैं. कहानी बदली है, पुराने किरदारों के साथ साथ नए कलाकारों ने भी ज्वाइन किया है. ऐसे में सभी के साथ फोटोज खिंचवाना तो बनता है. इसलिए देखिए कैसे पूरी टीम मिलकर एक साथ न सिर्फ तस्वीरें खिंचा रही है बल्कि 4 साल की खुशी भी मना रही है. तो आइए करते हैं मुलाकात नए किरदारों से.
4: मुझे इस शो में हो गए हैं 4 महीने. आज 4 साल इस शो को हुए हैं. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं शो में पार्ट रही हूँ और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे. एज एन एक्टर मैं काफ़ी ग्रो हुई हूँ एंड ऑल थैंक्स टू आवर टीम, काफ़ी सीखने को मिल रहा है. और थैंक्स टू प्रदीप सर, वो जिस तरीके से यू नो इतना डेडिकेशन दिखाते हैं हर सीन के लिए, तो मुझे भी एकदम जोश आ जाता है. नहीं, अपने सीन के लिए, अपने काम के लिए इतने ही ईमानदार रहना चाहिए. तो आई एम लविंग.
5: मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा पहला शो है सोनी सबके साथ और मुझे उस बात की बहुत खुशी है. आज तक इस शो के बारे में, इस चैनल के बारे में सिर्फ सुना है. बीइंग एन एक्टर आपको हमेशा मन करता है कि आप अलग अलग चैनल अलग शो में काम करो, और आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी कि मैं इतने पॉपुलर शो और इतने अमेजिंग चैनल के साथ जुड़ पाया हूँ. सो और आज मैं 4 साल हो गए हैं. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ऐसा मौका मिला एंड आई वुड रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो कंटिन्यूसली आगे भी. सो कीप गिविंग अ लव. थैंक यू सो मच.
6: माय जर्नी हैज बीन अमेजिंग. मुझे यहाँ पर बहुत कुछ प्ले करने मिल रहा है, फ्रॉम क्राइंग, फ्रॉम बीइंग बबली, फ्रॉम यू नो बीइंग एंग्री एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक दिस कैरेक्टर इज समवॉट जस्ट लाइक मी. मैं भी ऐसी हूँ, होती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, प्यार कर लेती हूँ. सो आई थिंक मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है.
7: और मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन जब मैंने शो ज्वाइन किया था तब शायद मुझे चिराग के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ मैंने चिराग को समझा है और उस किरदार को जीने की कोशिश की है. और हर दिन जो आप मुझे देखते हैं वो आप मेरा एक बेहतर वर्जन देखते हैं, और बस यही मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह आपके उस आधे घंटे को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ, और उसके लिए मैं अपना बेस्ट देने की यहाँ पर आके ट्राई करता हूँ.
3: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज राध्या और प्रथम के घर में फिर शुरू हो गया है बखेड़ा. असल में पूरा परिवार तैयार होकर निकल रहा था मंदिर जाने के लिए क्योंकि दादी ने मंदिर में पूजा रखवाई है. ऐसे में सभी खुश थे कि तभी अचानक सभी को एकता ने आकर दे दी बैड न्यूज, जिसके चलते सभी को लगा जोरदार झटका. भाई अहम की तबीयत बिगड़ते ही सभी की हालत खराब हो गई और तो और सभी अहम की देखभाल करने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, जिसके चलते सभी घर वालों की परेशानी बढ़ने लगी. क्या अहम के पापा और क्या मम्मी, क्या भाई, सभी बेहद टेंशन ले रहे हैं.
8: क्या हो गया इसको जाने से?
9: अहम, कुछ नहीं होगा तुझे.
8: पानी पी लाता. पानी पी बेटा, पानी पियो. पानी नहीं पी पा रहा ये.
9: अरे कोई तो डॉक्टर को फोन करो.
10: मैं कर रहा हूँ.
3: भाई रजनी का हाल देखते हुए प्रथम ने फटाफट डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आते ही अहम का इलाज किया और उन्होंने सभी को बताया अहम को स्ट्रेस का दौरा पड़ा है. ये सुनकर सभी घर वाले बेहद परेशान हो रहे हैं.
11: एक्चुअली ये ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का साइन है जिसकी वजह से इन्हें दौरे पड़ रहे थे. इनके अगले कुछ घंटे खास ख्याल रखना होगा क्योंकि अगर इनको अगले एक घंटे में दोबारा दौरा पड़ा तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा.
10: ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से दौरे पड़े, कुछ घंटे खास ख्याल रखने की जरूरत है. अगर अगले एक घंटे में इन्हें दोबारा दौरा पड़ा तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा.
12: अब तो हम सब के लिए एंटरटेनमेंट की किताब खोल रहे हैं यहाँ पर पति अनाड़ी की गुनगुन यानी ऐशानी यादव हमारी टीम कर रही है आज इनसे ये खास मुलाकात। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास। आज तो ये करवा रही हैं हमें अपने घर का छोटा सा टूर और उसके साथ साथ हम गए हैं इनके साथ एक कैफे में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको ऐशानी के पास।

0: करते
1: लाला की भांजी की मटर गश्ती। मिलेंगे गुनगुन की रियल फैमिली से। मंजरी की बिटिया संग फन डे आउट। जी हाँ, सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है आयशानी, यानी कि जो बनती है पति अनाड़ी में मंजरी की बिटिया गुनगुन, जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। हम मिलेंगे गुनगुन की रियल फैमिली से, करेंगे उनके साथ ढेर सारा फन, जानेंगे कि उनका फेवरेट फूड कॉर्नर कौन सा है, देखेंगे उनके फिटनेस का फंडा और साथ ही साथ जानेंगे उनका करियर नामा, यानी कि ये दिन होने वाला है मस्ती से भरा। भाई आज है छुट्टी वाला दिन और ये दिन वो बिता रही हैं सास बहू और बेटिया संग। तो चलिए करते हैं आयशानी यादव से खास मुलाकात और बिताते हैं ये मस्ती भरा दिन उनके साथ।
2: मेरा नाम है आयशानी यादव एंड वेलकम टू अ डे आउट विद मी ऑन अ छुट्टी का दिन।
1: भाई भले ही आयशानी की आज छुट्टी हो, लेकिन फिर भी वो अपना मॉर्निंग रूटीन नहीं तोड़ती है, यानी कि एक्सरसाइज जो आज वो कर रही हैं खुले आसमान में, क्योंकि आज ये कर रही हैं योगा। तो आइए सबसे पहले ये योगा सेशन करते हैं कंप्लीट।
2: आज छुट्टी है मगर थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा हेल्दी रहना चाहिए इंसान को, तो मैंने सोचा आज क्योंकि आप आए हो तो आज हम खुले वेदर में अच्छी अच्छी हवा लेके थोड़ा सा योगा करेंगे और उसके बाद जहाँ हम जाएंगे वो हम जाते जाते आपको दिखाएंगे। लेट समथिंग बी सरप्राइज फॉर यू गाइस आल्सो। सूर्य नमस्कार करते हैं आज। सूर्य नमस्कार से हम शुरू करते हैं आज का योगा, है ना? चलो

0: आगाज करते ही आयशानी ने हमसे शेयर की ढेर सारी बातें, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बताया उन्होंने अपने पति अनाड़ी के गुनगुन के किरदार के बारे में। आपको बता दें कि बालिका वधू में भी आयशानी नजर आ चुकी है। इसके अलावा कई और सीरियल्स जैसे कि एक था राजा एक थी रानी, पॉकेट में आसमां और कई और सीरियल्स और फिल्म में वो नजर आ चुकी है और फिलहाल वो पति अनाड़ी में अलग किरदार में नजर आ रही है।
1: एकदम मजा आता है बहुत। और गुनगुन एक्चुअली मुझे प्ले करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑनेस्टली आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि गुनगुन पता नहीं यू नो कैसे करना होगा और ये सब, बट जो हमारे मेकर्स है दे आर सो स्वीट कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से यू नो सारी चीज़ें बताई एंड दे सेड कि गुनगुन मतलब तू कर लेगी और ये बहुत अच्छे से हम दिखाएंगे इन द शो एंड एवरीथिंग। तो मंजरी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और क्योंकि मैं उनकी बेटी बनी हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो उनका जो गुण आएंगे उनकी बेटी में वो तो 100% है। एज द शो प्रोग्रेसेस आपको वो देखने में मिल जाएगा। एंड फिलहाल के लिए तो आई शेयर अ वेरी क्यूट बॉन्ड विथ लाला मामा, आप लोग देखते ही हो, एंड ऑब्वियसली विथ किशोरी मामी एंड यू नो एवरीबडी, इनफैक्ट नानी जी, बहुत मज़ा आता है सीन्स करने में हमें साथ में। और इमोशनल सीन हो, फनी सीन्स हो, हंसी मजाक सब चलता रहता है और बहुत हम यू नो इट्स अ ट्रीट For me to be on the set with these people. ऐसे जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि करियर बहुत बड़ा था, बट फिर आपको ऐसे लगता है कि यार बस इतना ही काम किया, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, उन्होंने और भी काम करना है और भी नाम कमाना है। तो आई वॉज यू नो आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज अ किड तब, दैट वॉज माई फर्स्ट डेली सोप जो मैंने किया था, दैट वॉज बालिका वधू। एंड फिर उसके बाद यू नो एक था राजा एक थी रानी किया, जी का शो किया, फिर मैंने क्यों थे दिल छोड़ाए किया, मेरे साई किया, मोसे छर किए जाए किया, अभी वेरी मच रिसेंटली आप सब ने मुझे पॉकेट में आसमान में देखा, उसी के बीच में मैंने एक फिल्म भी की कोरा कागज़ विथ रजत कपूर, जिसके लिए मुझे एक्सट्रीम प्यार मिला आप सबका, विच आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। एंड ऐसे तो यू नो काम आते रहे एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अच्छे काम मेरे नसीब में आए हैं एंड नाउ आई एम हियर विद पति अनाड़ी। तो अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे अच्छे रोल्स, इतने अच्छे अच्छे शोज आपके यू नो भगवान आपको अपने आपके प्लेट में देता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
0: तो भाई योगा सेशन भी हो गया और ढेर सारी बातें भी हो गई, अब बारी है उस सरप्राइज की जो आयशानी ने प्लान किया है अपने मम्मी पापा के लिए।
2: तो अभी हमारा योगा कंप्लीट हो गया है तो अभी हम चलते हैं कैफे में और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं मोस्टली कहाँ पाई जाती हूँ। चलो राइट, सही समझे हैं आप, एक सरप्राइज है और वो वहीं पे खुलेगा तो ज़्यादा देरी नहीं करते।

0: जी हाँ, आज है आयशानी के मम्मी पापा की एनिवर्सरी और इस खास मौके पर आयशानी ने ये क्यूट सा सरप्राइज प्लान किया है, जहाँ पर वो ले आई है ये प्यारा सा केक और यहाँ पर अब देखने को मिलेगा हैप्पी फैमिली टाइम। आयशानी के परिवार में मम्मी पापा के साथ भाई भी है और है इनकी ये हैप्पी फैमिली। तो चलिए करते हैं आयशानी के मम्मी पापा की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, क्योंकि यहाँ मिठास भी है और डांस मस्ती भी।
1: तो मैं जो सरप्राइज की बात कर रही थी वो ये है, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो चलो उन्हें सरप्राइज करते हैं विद दिस केक एंड सेलिब्रेट करते हैं। देखो, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि मैं नीचे हूँ और ये केक लाया हूँ, ये सरप्राइज प्लान है, तो उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें सरप्राइजिंगली नीचे बुलाते हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, शूट चल रहा है ना, तो आप थोड़ा नीचे आओ, आप और पापा दो जल्दी। ओके, लेट्स गो। ये मिलके मेरे बहुत ही लंबे से भाई से, जो एक्चुअली मेरे से एज में इतना सा है पर हाइट में इतना है, तो मुझे ऐसे होना पड़ता है। चलो लेट्स सेलिब्रेट। क्योंकि आप सब पति अनाड़ी देखते हो, तो मुझे बोलना चाहिए हम बैर।
2: आज बुआ बन गई,
1: बुआ बन गई।

0: कैसा लग रहा है आपको कि आप मेरे माता पिताश्री हो? आज किसी के दिन पे आपकी शादी हुई और फाइनली मैं इस
1: बताऊँ
0: ये क्लिप जरा अलग से भेजिएगा आज तक प्लीज, ये जिंदगी भर रहेगी मेरे साथ
2: गुनगुन के हम लोग तो मम्मी पापा नहीं लेकिन आयशा जी की मम्मी पापा जरूर है पति अनाड़ी आप लेकिन जरूर देखिए बहुत अच्छा शो है।

0: आयशानी का फैमिली टाइम तो हो गया, अब बारी मी टाइम की। आयशानी को ये जगह और यहाँ पर बुक्स पढ़ना काफी पसंद है, तो एक ठंडे चिल्ड ड्रिंक के साथ वो पढ़ रही हैं अपनी फेवरेट बुक और बिता रही हैं ये टाइम।
1: तो अभी हमारी केक कटिंग हो गई है और क्योंकि हम इस कैफे में आए और मैंने आपको बोला था ना कि अगर मेरी ऑफ डे हो तो आप मुझे इसी जगह पे पाओगे एंड आई एम यूजुअली हियर। अभी ना मुझे नया शौक चढ़ा है ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे मैं अक्सर आती हूँ, चुपचाप शांति से बैठती हूँ, अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती हूँ और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ। वैसे मेरी जो करंट बुक है वो है मेरे घर पे, बट यहाँ पे भी काफ़ी बुक्स है, तो लेट्स हैव सम रीडिंग टाइम आज, चलो।

0: यहाँ पे तो मैंने सिर्फ कुछ पीने के लिए ऑर्डर किया था। अभी हम जाएंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं अपने ऑफ डेज पे अक्सर जाती हूँ और यमी सा चटपटा सा खाना खाती हूँ, जहाँ मैं आपको लेके चलूंगी ताकि आप अगर अगली बार मेरे इलाके में आओ तो आप वहाँ पक्का जाओ।
1: भाई ये दिन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज आयशानी हमें लेकर जाने वाली है अपनी फेवरेट प्लेस पर, जो कि है इनकी फेवरेट फूड प्लेस, जहाँ ये अपने पसंद का खाना खाने वाली है। तो झटपट से ये पहुँच गई अपने घर पर चेंज करने के लिए, और चेंज कर कर जाएंगे हम यमी यमी खाना खाने।
0: तो अभी जल्दी जल्दी से मैं ये ड्रिंक खत्म करती हूँ ताकि मैं घर जाके चेंज करूँ अच्छे से, मैं प्रिंसेस लुक रेडी हो जाऊँ और फिर मैं चलूँ आपको लेके अपने फेवरेट फूड जॉइंट।

तो चलिए अब हुई है हमारी बहुत सारी गपशप, बहुत सारा वर्कआउट, तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं बाहर जाऊंगी और चटपटा खाना खाऊंगी और आपको भी अपने साथ लेके चलूंगी। तो आर यू रेडी? चलो बाय। आई एम सॉरी कि मैं आपको नहीं अपने साथ लेके चल रही हूँ, बट आई एम नॉट सो सॉरी। बाय, एंजॉय।

0: फाइनली ये सफर तय कर हम पहुंच गए हैं आयशानी की फेवरेट प्लेस पर, जहां वो अब अपना फेवरेट फूड खाने वाली है। तो आइए हम भी देखते हैं आखिर आयशानी का फेवरेट फूड क्या है।
1: तो अभी हम आ गए हैं मेरे फेवरेट एंड मोस्ट कंफर्टिंग फूड जॉइंट पे, जहां मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ। तो मुझे ना रामेन खाना, कोरियन जापनीज फूड खाना बहुत पसंद है, और इसीलिए आज हम आए हैं कोगो में। आई एम श्योर आप सभी ने कोगो ट्राई किया होगा। दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड, प्लीज़ कोगो कर दो स्पॉन्सर यार, हमें बुला लो फ्री में। पर नहीं, हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे खाना खाना, और इनका फूड जेन्युइनली बहुत अच्छा होता है। तो आपने ट्राई नहीं किया होगा तो प्लीज़ करिए, और चलो चलते हैं।
2: अभी ना ये चीजें क्यों लिखी है ना, जब मेरे पास डिशेज आएगी ना तब आप देखिएगा, इतनी कमाल की डिशेज यहाँ मिलती है ना कि आपको भी मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं खाऊंगी बट मुंह में पानी आपके आएगा, आप देख लेना। ये कोरियन टाइप कॉटेज चीज है, एक क्रंची एवोकाडो सुशी
3: फोर
2: पीसेस, और एक रामेन या चाइना का मिसो रामेन, मिसो रामेन लेना है, ठीक है। एक बेलिशियस अलग ही फ्लेवर है, तो वो जैसे ही आपकी यू नो डेंटल्स या माउथ, वैसे वो फ्लेवर का ब्लास्ट होता है, एंड बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ लिटिल बिट ऑफ सोडा, तो उसका किक ही अलग है। एंड जिस तरीके से बनाते हैं, इट इज लिटिल स्वीट, अ लिटिल टैंगी, जस्ट द वे आई लाइक माय ड्रिंक्स। गई है हमारे पास हमारी द मोस्ट यमीएस्ट, द मोस्ट फेवरेट क्रंची एवोकाडो सुशी। तो ज्यादा बातें करने की ताकत नहीं है, खाते हैं, ठीक है। चॉपस्टिक्स से कौन है, चलो लेट्स जस्ट डिग इन। रामेन इज आल्सो हियर गाइस, वी हैव गरम एंड इट स्मेल्स हेवनली, वी हैव द मोस्ट यमीएस्ट मिसो रामेन। I could literally live my life with these two dishes. Anybody who loves me, send this ASAP.

It's juicy, it's flavorful, it's yummy. और ये सब मैं खाने के पहले ही बोल रही थी कि मैं इतनी बार यहाँ आके खा चुकी हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, just look at it. And it's very hot, very, very hot.

0: खुशियों के
1: इतना खाया है ना, दरवाजा नहीं खुल रहा है मुझसे। ऐसा लग रहा है बस अब मुझे मेरा मिले बेड और मैं अपनी नींद पूरी करूँ। अब
2: तो देखा आपने, कुछ इस तरह ऐशानी ने अपने इस छुट्टी वाले दिन को दिल खोल कर एंजॉय किया और सास बहू और बेटियां संग भी ढेर सारी मस्ती की। उम्मीद है आपने ऐशानी के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। अब वक्त हो चला है ऐशानी को बाय बाय कहने का।
3: सास बहू और बेटियां आज मेरे घर पे इतनी दूर से आए, दिल से बहुत बहुत थैंक यू है मेरा। मुझे तो बहुत मजा आया सास बहू और बेटियां, ये सिलसिला बस हमारा यूं ही शुरू रहे, हमेशा हम ऐसे ही बाइट्स करें, खाए पिए मजे करें। जैसे आज मैंने इन्हें कोरियन फूड ट्राई कराया, होपिंग कि आगे भी मैं इन्हें और ऐसे अपनी चटपटी चीज़ें की ट्राई करवाऊँ, अलग अलग जगह लेके जाऊँ। एंड ऐसे ही आप आते रहो, हम मिलते रहेंगे, हम आपको अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। सो बहुत बहुत थैंक यू है ऐशानी की तरफ से और गुनगुन की तरफ से। और देखना ना भूले पति अनाडी हर रोज दंगल टीवी और यूट्यूब पे शाम 6:30 बजे।
2: मुंबई से नुपुर मावजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: कुछ कोशिश होने लगी, देखो ये बारिश।
5: नाउ जस्ट इमेजिन आप खरीदने गए अपनी फेवरेट किताब ऑनलाइन और वो थी 70% ऑफ पे। हाउ रॉकिंग ना, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करने गए हो गए वो आउट ऑफ स्टॉक, हो गया ना शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारे ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की। फिर सामने आए हैं ये बीटीएस नजारे जहां पर मनाली में हो रही थी शूटिंग और ठंड से ठिठुर रही हैं मिसेस परशुराम यानी कि शांभवी सिंह। देख लीजिए ये नज़ारे।

पति ब्रह्मचारी की ईशा यानी कि प्राप्ति शुक्ला पहुंच गई है त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, जहां उन्होंने महादेव का आशीर्वाद लिया और शेयर किए ये नजारे।

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ की बिटिया रानी का बर्थडे है, वो भी पहला। ऐसे में इशिता और वत्सल ने अपने बेबी गर्ल वेदा का फेस भी रिवील किया है। देख लीजिए इनकी ये तस्वीरें। लाफ्टर शेफ के आने वाले नए एपिसोड में होने वाला है काफी धमाल, क्योंकि आने वाले हैं इन सभी कंटेस्टेंट्स के जूनियर वर्जन, यानी कि भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, निया शर्मा, तेजस्वी प्रकाश, अर्जुन बिजलानी, अंकिता विकी, समर्थ अभिषेक, एल्विश यादव, जन्नत जुबैर और बाकी सभी कलाकारों के साथ साथ नजर आएंगे इनके जूनियर वर्जन, वो भी इनके हूबहू अंदाज में। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा ये एपिसोड, क्योंकि सेट के बाहर ये सभी नजर आए और इन बच्चों के साथ ये कर रहे हैं काफी फन।

इसी के साथ खास मेहमान बनकर आने वाले हैं अरशद वारसी और मोना सिंह भी। भाई सेट के बाहर तेजस्वी ने केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन भी। तेजस्वी के बर्थडे के मौके पर करण ने भी शेयर किए हैं ये क्यूट पोस्ट्स उन्हें बर्थडे विश करते हुए।

बन गई है राजकुमार राव और वामिका गब्बी की जोड़ी। ये आने वाले हैं इनकी आने वाली नई फिल्म प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी में, जो कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज होगी।

0: स्टार प्लस लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है फितूर, जिसकी पहली झलक सामने आई है। वैसे आपको बता दे कि अब तक इस शो का लीड फाइनल नहीं हुआ है। बतौर फीमेल लीड के लिए अप्रोच किया गया है सुरभि चांदना, अंजुम, सुजिता डे और देव चंद्रिमा को, लेकिन अब तक बतौर लीड कोई कंफर्म नहीं हुआ है।
1: ए फूल, तुम घबराई हुई सी क्यों हो?
2: मेरे तो नसीब में है घबराना, दुनिया का डर है किसी ने तोड़ लिया तो।
1: मेरे होते हुए कोई छू नहीं सकता, मेरी फितरत है चुभना और चाहत कि तुम खुल कर खेलो।
2: कई बार तुमसे भी डर लगता है, कहीं तुम्हारे इस फितूर में

0: है?
1: कोई तो कुछ बोलो ने।
0: मारी वृंदा और तेरे भतीजे की उम्र में जमीन आसमान का फर्क छे धन को।
2: नजर डालीजिए जी टीवी के नए शो तू हीरे के नए प्रोमो पर, जहां सीरियल में आने वाला है शादी वाला ट्विस्ट।
0: लग्न पत्रिका में छपी फोटो तो बस लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है भतीजे, उस अनाथ के साथ साथ फेरे तो तू ही लेगा।
3: चल भाई अगल बगल।
4: अरे असली दूल्हा यहाँ से
5: बेटा से यही है वो।
6: सच्चा मैं कोई दूल्हा वूल्हा नहीं हूँ, मैंने पता है ना आपको, मेरा यकीन करो, मैं गांव के मंदिर में आया।
7: नहीं झूठ बोल रहे,
6: कार के ऊपर ऋषि की तो फोटो है,
5: यही है असली दूल्हा।
6: देखिए आप गलत है।

0: तुम सबके जीजू और मेरा प्यार।
1: उलझे रिश्ते संजोए की कैसे, तीन जिंदगियां प्यार के एक धागे में, किस्मत पिरोए की कैसे, तू ही रे दिल में। देखिए इश्क के इम्तिहान की एक नई कहानी।
2: अब पुस्तकों का तो हमारे जीवन में वही महत्व है जो सूर्य का पृथ्वी के लिए है, और इतनी ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों भी एक दूसरे के लिए। मैं तो बात कर रही हूँ अपराजिता और रक्षित की, जो बन गई है एक बार फिर हमारी फेवरेट जोड़ी। शब्बीर आलूवालिया और श्रुति झा, ये तो ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं ना ऑन स्क्रीन कि वाह, देखने वाले को मजा ही आ जाता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
3: जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती अपराजिता।
4: मन परे आ बदल गया सारा, वे तू मेनू छड़ जाना।
3: अपराजिता के लिए दिखी रक्षित की तड़प।
5: देखो अपराजिता नाम है ना तुम्हारा, कमीन हार मानने वाली, तो तुम हार नहीं मान सकती। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम उठो ना प्लीज। गेट अप अप्पू।
4: गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा।
3: बेहोश अपराजिता को जगाने की कोशिश में रक्षित।
5: मेरी बात सुनो, तुम अपराजिता 2.0 हो ना। तुमने कदम उठाया था ना अपनी नई जिंदगी की ओर, तो उस जिंदगी को जीने का वक्त आ गया है। प्लीज प्लीज आंखें खोलो ना प्लीज।
3: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आया था आग वाला ट्विस्ट, जिसमें बुरी तरह से घायल हो गई है अपराजिता और अस्पताल में वो करवा रही है अपना इलाज, लेकिन अब तक अपराजिता को होश नहीं आया है। ऐसे में वहां पर पहुंच जाते हैं रक्षित, जो देखिए कैसे उसे उठाने की और होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अपराजिता के लिए रक्षित की ये तड़प आज साफ देखने को जाहिर है। वो उसके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और कैसे भी वो अपराजिता को ठीक करना चाहते हैं।
5: ये मेरी फटुका है डॉक्टर, ये मेरी हर बात मानती है, मुझे ऑफ कहती है, लेकिन मेरी हर बात याद रहती है उसे। इसके हिम्मत का चार्जर उठ गया, प्लीज प्लीज मुझे बात करने दीजिए प्लीज। फटुका मेरी बात सुनो, तुम अपराजिता 2.0 हो ना। तुमने कदम उठाया था ना अपनी नई जिंदगी की ओर, तो उस जिंदगी को जीने का वक्त आ गया है। प्लीज प्लीज आंखें खोलो ना प्लीज। देखो अपराजिता नाम है ना तुम्हारा, कमीन हार मानने वाली, तो तुम हार नहीं मान सकती। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम उठो ना प्लीज। गेट अप अप्पू। अप्पू तुमने कहा तुम्हें काम करना है ना, सैलरी डिस्कस करनी थी हमें, वो तो डिस्कस ही नहीं हुई। बाद में ये मत कहना कि मैं चीटर हूं। अप्पू मेरी बात सुनो, तुमने कहा था कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो ना, तो लड़ो ना अपनी लड़ाई, अभी वक्त है, लड़ ले रही हो अपनी लड़ाई। कुछ हो गया तो मैं लड़ूंगा किसके साथ अप्पू? देखो हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, हमने साथ में का डील की है ना उन प्रॉब्लम से, फिर चाहे वो प्रॉब्लम चूहे की हो या चोरी की, हमने सबके साथ डील कर लिया, तो प्लीज साथ दो ना तुम। हम इस प्रॉब्लम के साथ भी डील कर लेंगे, तुम बस मेरा साथ दो ना अप्पू। अप्पू वेक अप अप्पू।

0: इसी के साथ अस्पताल में पहुंच गए हैं अपराजिता के मम्मी पापा और साथ है ललित भी। लेकिन यहाँ अपराजिता के पापा ललित को चले जाने के लिए कहते हैं और गुस्से में ललित इनकी बात मान भी लेता है।
1: सब जानने के बाद भी इन्होंने जो किया है उसके बाद आपको इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा और मैं आपको के साथ ऐसे नहीं उसके साथ।
2: मम्मी जी
0: भाई फिलहाल तो अपराजिता को होश आ गया है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इसके चलते कहानी में और कौन सा नया ट्विस्ट आता है और ललित कौन सा नया षड्यंत्र रचता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: थैंक यू हमेशा मुझ पे भरोसा करने के लिए। फिर से ही सही पर अब आपके सामने अपराजिता 2.2 है पूरी दुनिया के लिए तैयार।
4: सफर आसान नहीं होगा
3: जानती औरतों के लिए कोई भी सफर आसान नहीं होगा। हेलो क्या
4: क्या
3: ललित और उसकी माँ हमारे मोहल्ले में रहने आ रहे हैं।
5: अपना तेज बनाए रखने के लिए जिस तरह तलवार को पत्थर की जरूरत होती है ना उसी तरह हमारे दिमाग को किताबों की जरूरत है। आज तो हम किताबों के आसपास ही कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये खबर जो जुड़ी है आपके फेवरेट शो लक्ष्मी निवास से। और आज तो लक्ष्मी भी हमसे यही कह रही हैं कि किताब पढ़ना है हमारे दिमाग के लिए बहुत ही जरूरी। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ और देखते हैं आज क्या हो रहा है लक्ष्मी निवास में। वेल लक्ष्मी और श्रीनिवास की जिंदगी में भी रोजाना आते हैं नए नए ट्विस्ट। लेट्स चेक इट आउट।
0: आर्यन और वीर के बीच कबड्डी मैच। शुरू हुई राधिका के लिए जंग। होगी किसकी जीत किसकी हार।

टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर एक तरफ है वीर और उसकी टीम तो दूसरी तरफ है आर्यन और उसकी टीम, और यहां शुरू होगा कबड्डी मैच। असल में वीर के पापा ने स्वयं वर रचाया है राधिका के लिए और रखा है ये कबड्डी मैच कि जो भी ये कबड्डी मैच जीतेगा राधिका उसकी हो जाएगी। तो भाई ऐसे में वीर भला कैसे नहीं आता, तो वीर के साथ है राधिका के परिवार वाले, तो आर्यन के साथ है उसकी स्ट्रॉन्ग कबड्डी टीम। इसी के साथ शुरू हो गया है ये मैच।

0: सो कबड्डी का मैच एक्चुअली एकदम इम्प्रॉम्प्टू सा सिचुएशन हो गया सबके सामने. एक्चुअली राधिका की शादी के लिए क्या कहते हैं, पहले ज़माने में पहले ये होता था ना कि स्वयंवर टाइप का, ठीक है. तो यहाँ पे वर चुनाव एक कंपटीशन रखा गया जिसमें बेस्ट चार लड़के सामने आते हैं, उसमें से एक लड़का फाइनल होता है आर्यन. बट बाद में पता चलता है वीर को उस लड़के के बारे में कि वो बिल्कुल भी राधिका दी को लेके सीरियस नहीं है, उसके अलग मोटिव्स हैं. वो यहाँ आया है ताकि वो कुछ और कर सके. इस चक्कर में वो देख के एकदम गुस्सा हो जाता है. और जो ये लड़का है आर्यन, वो और बदतमीजी से ललकारता है कि अच्छा ठीक है, जैसे द्रौपदी को रख दिया था, जैसे पांडु लोगों ने द्रौपदी को रख दिया था, उसी तरह से उसने भी रखा कि कोई भी जो जीतेगा मैच वो राधिका को लेके जाएगा. तो ये जसवाल फैमिली के लिए एक प्राइड की बात हो गई है, एक हॉनर की बात हो गई है कि अपनी बेटी पे बात आ गई है. और इसलिए वो ये मैच खेलना चाहते हैं. किसी को कबड्डी आती नहीं है, सब टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, सबको चोट लग रही है, बट फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि वो राधिका दी की इज्जत के लिए कर रहे हैं.
1: तो भाई मैच तो शुरू हो चुका है और एक एक कर देखिए कैसे वीर की टीम के लोग आउट होते जा रहे हैं और आखिर में बचते हैं श्रीनिवास और वीर. और आर्यन की पूरी टीम तैयार है इन्हें हराने के लिए. भाई अब मैच में बचा है सिर्फ वीर और आर्यन की पूरी टीम. ऐसे में देखिए कैसे वीर पहुंच गया है इन सभी को हराने के लिए. वीर अकेला है और सामने पूरी की पूरी टीम, लेकिन फिर भी वीर लगा हुआ है जीत हासिल करने के लिए.

0: champion. I am the Kabaddi champion. Khel Kabaddi.
1: ऐसे में वीर भी हार नहीं मानता है, क्योंकि राधिका का जो सवाल है उसे पता है कि आर्यन राधिका के लिए सही लड़का नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा देता है और जीत हासिल करता है।

0: हाँ, क्योंकि वो राधिका जी का एक पूरा एक मोनोलॉग है जो बहुत ही मोटिवेटिंग सा है। उससे वीर मोटिवेट हो गया एंड ही गॉट दिस एड्रेनालिन रश, डिवाइन इंटरवेंशन, कि उसमें एकदम से ताकत आ गई। उसने 10-15 लोग को पीछे किया और उसने फिर पिन कर दिया एंड ही वॉन द मैच।
1: भाई अब जब वीर जीत चुका है और आर्यन हार चुका है तो देखिए कैसे शर्त के मुताबिक वो आर्यन से ढोल बजवा रहा है, माफी मंगवा रहा है। इतना ही नहीं, वीर ने तो राधिका के पापा श्रीनिवास से भी आर्यन को माफी मांगने को कहा।
2: और जय चैंपियन, हार गया, हार गया जय। अरे कबड्डी चैंपियन, जो हारेगा वो दूसरे की चीज पे ढोल बजाएगा और माफी मांगेगा। एक डोल ना डोल। जिस बुजुर्ग का सबके सामने तुमने मजाक उड़ाया था उनसे माफी मांगो।
1: ऐसे में वीर को जोर का झटका तो तब लगता है जब वीर के पापा सबके सामने वीर और माही की शादी का ऐलान करते हैं, लेकिन वो तो इस शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो भड़क जाता है।
2: पहले तो हम आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ने के लिए। ये कबड्डी मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक जंग थी, एक बाप की अपनी बेटी के सम्मान के लिए, जहाँ एक बाप ने टूटना मंजूर किया पर झुकना नहीं। कोई भी पावर या कोई भी सीट बहन बेटी की इज्जत से बड़ी नहीं होती।
3: आपने जो कोशिश की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी आपने किया वो दिल से किया।
0: महिलाओं के सम्मान के लिए खेला जा रहा है और ये सिर्फ कबड्डी मैच नहीं है, ये एक एग्जाम्पल महिलाओं की इज्जत की बात है, तो मर्दों को उतरना पड़ेगा उनकी इज्जत की रक्षा के लिए। सो दैट्स द होल सिनेरियो, अमेजिंग सीक्वेंस, सबने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया है और बहुत धूप है, सब थके हुए हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत मजा आएगा। गठबंधन की अनाउंसमेंट प्लस वीर और माई की शादी की अनाउंसमेंट, सो इट्स अ ब्लंडर फॉर वीर। It's a very problematic situation. अभी उसे कैसे हैंडल करता है वो आपको देखना होगा। गजेंद्र जी को लगता है कि एक ही कड़ी है जो वीर को लक्ष्मी निवास से जोड़ी हुई है, वो है राधिका जी, और अगर राधिका जी की शादी करा दे तो वीर डिटैच हो जाएगा। तो ये पूरा खेल, ये पूरी सिचुएशन की जड़ गजेंद्र चौहान है। उन्होंने ये ऑप्शन दिया होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं लक्ष्मी निवास में कि हम राधिका की शादी कराएंगे, वर चुनाव कराएंगे, लाइक द बेस्ट सूटर्स इन द टाउन राधिका जी के लिए। राधिका जी उनमें से चुनेगी कि उन्हें किससे शादी करनी है, और वहाँ से पूरा ड्रामा शुरू होता है। सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग सीक्वेंस, अमेजिंग, ग्रिपिंग, एंड यू गाइस गोना लव इट।
1: तो भाई फिलहाल तो रिश्ते उलझ गए हैं और वीर परेशान है। अब देखना होगा कि इन सब मुश्किलों के बावजूद भी वीर और राधिका की जोड़ी बन पाती है या नहीं। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: क्या आप भी बचपन वाली उन किताबों को मिस करते हैं जहां एक ही किताबों में होती थी ढेर सारी कहानियां और उसके ऊपर होते थे ढेर सारे खूबसूरत चित्र? मैं तो बहुत मिस करती हूँ, लेकिन यहाँ आप नहीं मिस करेंगे हमारी ये स्पेशल स्टोरी जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। तो आपको नहीं करवाएंगे हम और इंतजार, फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
1: मिका का हैप्पी वाला बर्थडे। लगा सितारों का मेला। धाम से हुई बर्थडे की पार्टी। भाई मौका है सिंगर मिका के बर्थडे का और उन्होंने इस बार ठाना है कि वो धूमधाम से पार्टी देने वाले हैं। बीती शाम हुई मिका सिंह की बर्थडे पार्टी और इस पार्टी में शामिल हुए कई सारे सितारे जो पहुंचे इन्हें ढेर सारी बधाइयां देने के लिए। भाई पहले तो खुद मिका यहां पहुंचे हैं, कर रहे हैं केक कटिंग। और धूमधाम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

इसके अलावा यहाँ नजर आए सोनू निगम। शेखर सुमन, प्रिंस नरूला, उदित नारायण, अनु मलिक,

ಬಿಂದು ದಾರಾಸಿಕ್. साथ ही यहां खास मेहमान बनकर आई हेमा मालिनी.

ये सभी सितारे सज धज कर यहाँ पहुँचे हैं मेक्का का बर्थडे मनाने के लिए। भाई पार्टी है, बर्थडे है तो धूम तो होगी ही। सभी ने बर्थडे का जश्न मनाया और मेक्का को बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ दी। हमारी तरफ से भी मेक्का को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: तो कौन सा शो रहा है इस बार रेस में सबसे आगे, किसने मारी है वो लंबी छलांग, लेकिन कौन हो गया है टीआरपी रेटिंग्स में नीचे? Yes, अब तो दिखा रहे हैं हम आपको ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको टीआरपी मीटर। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहां, तो आपको भी पता लग जाएगा कौन है नंबर वन और कौन पहुंचा है नंबर 10 पर।
1: पेश है टीआरपी की चार्ट, तो आइए देखते हैं इस हफ्ते कौन सा सीरियल रहा नंबर वन और कौन सा नंबर 10 पर पहुंचा है। तो भाई इतने हफ्तों से सीरियल वसुधा नंबर वन की पोजीशन बनाए हुए था और इस हफ्ते भी वसुधा नंबर वन पे है, लेकिन नंबर वन की पोजीशन में वसुधा के साथ आ गया है सीरियल गंगा माई की बेटियां, जो नंबर टू पर बना हुआ था और उसने अब नंबर वन पर छलांग मार दी है, यानी कि नंबर वन पर दो दो सीरियल्स हैं।
2: शिकायत वापस नहीं ले सकती जब तक आप ये साबित न कर दें कि आपके खिलाफ कोई अपराध।

0: नहीं हुआ है।
1: हम शपथ पत्र पे आपको लिख कर दे सकते हैं सर कि जबरदस्ती शादी की हमने जो शिकायत लिखवाई थी वो एक गलत फहमी थी।
2: सारे गिर गए और खराब हो गए, बस एक बचा है बेचारा।
0: मेरे इससे काम से
2: बिल्कुल भी नहीं मिस्टर आर्यवर्द। आपको क्या लगता है आपको ये लड्डू मैं इतनी आसानी से दे दूंगी?
3: नंबर टू पर है तुमसे तुम तक, आर्या और अनु की शादी के ट्विस्ट लोगों को खूब पसंद आए जिससे सीरियल नंबर दो पर पहुंच गया।
4: वैसे मम्मी जी आपको क्या लगता है? देखो तुलसी का हर फैसला पत्थर की लकीर है। आपका मतलब है कि रियांश को अरेस्ट करवा के सही किया?
3: नंबर तीन पर है क्योंकि सास भी कभी बहू थी और अनुपमा। सीरियल में आ रहे नए नए ट्विस्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं।
4: मतलब कहीं तो गलती हुई।
5: बधाई हो। अरे बाप गुस्सा थूक दीजिए, चलिए मुंह मीठा कीजिए।
6: बाप आप नाराज क्यों हो?
7: क्योंकि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है।
8: आज अंश और प्रेरणा की शादी करवा रही है मम्मी, कल को उठकर इस नौकर बंकू और मेरी ईशानी की शादी करवा देगी।
9: मम्मा कमी से बात कीजिए, नौकर से शादी करेगी तू?
8: हाँ कर भी ली तो क्या हो जाएगा, बंकू हीरा है हीरा।
9: अरे आपने इसकी गरीबी देखी लेकिन मैंने इसके गुण देखे हैं और इसलिए मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। आई लव हिम,
8: आई लव बंकू, आई लव बंकू, आई लव बंकू, आई लव।
6: ए कपो नीचे रख।
3: नंबर चार की पोजीशन पर पहुंच गया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नई फैमिली के नए तमाशे लोगों के दिल को भा रहे हैं।
6: हटो, आइए आइए दीजिए, सुनो आगे चलिए, आराम से इस तरफ इस तरफ इस तरफ। अरे बास माझंच घर है माहिती है मला।
10: दीदी से आराम से आराम से
6: शांत रहा, यहाँ रखो।
10: अरे माधु आंटी ने कहा किचन में रखने के लिए।
11: जब भी मैं एक अच्छी किताब पढ़ती हूँ तो मैं तो उस किताब से यही कहती हूँ कि तांगो तुम हो ना। उसी तरह यहाँ पर कंटेस्टेंट्स भी कहते हैं अपने फेवरेट होस्ट राजीव खंडेलवाल से। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको तुम हो ना के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है यहाँ। आइए दिखाते हैं आपको इस एपिसोड की ये खास झलक।

0: थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच. मैं आपको बता दूं कि हम सोचा कि आज इतनी सारी लेडीज आई हैं तो क्यों ना तुम होना कि मंच पर आज एक बड़ी सी किड्डी पार्टी हो जाए.
1: हेलो राजी.
0: हेलो जी. हेलो जी. हेलो जी.
1: पहचाना मैं
2: मेरी तितलियाँ.
0: ओ तितलियाँ.
2: आपकी तितलियाँ.
0: I know.
3: एक बावरा भी इधर.
2: सर बावरा अच्छा है.
0: हर राउंड में जो विनर होंगी वो जीत सकती है कुछ बड़े बड़े इनाम जैसे डबल डोर रेफ्रिजरेटर, वॉटर एयर कंडीशनर. आई नो. जब आप आई थी तब हमने ये शुरू नहीं किया था.
1: चीटिंग है.
2: हम चारों के लिए चार चीजें लेके आऊंगी. टेंशन मत ले.
0: बंगला टूट गया. आपके पास गेम है. माय फर्स्ट डेट. डेट तो मुझे याद नहीं पर जगह मुझे याद है. हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पे मैंने उसकी किस. और आज जो इस सिंहासन पर बैठेंगी और 1,00,000 रुपए जीत कर जाएंगी वो है.
4: हेलो
0: नेहा जी. मैंने ये जरूरत की है कि अपने शो के बीच में फोन कर दूं. वो फोन इसलिए मैंने किया क्योंकि एक्चुअली आज हमारे शो पर ना एक लेडी आई है जो इतनी बड़ी फैन है. उनका सपना था कि वो कभी आपके सामने गाए आपके साथ में गाए. इनका नाम है प्रणाली और प्रणाली ऑलमोस्ट इमोशनल हो गई है इस समय आपकी आवाज सुनकर.
4: प्रणाली वही है जो म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखती है.
0: बोलिए बोलिए.
5: मैम हाय. नेहा मैम मैं वही हूँ प्रणाली जिनका आपने वीडियो भी डाला था ना. याद हूँ मैं आपको.
4: राइट राइट. मैंने आपकी रील शेयर करी थी है ना.
5: यस मैम. यस मैम.
4: प्रणाली आप बहुत प्यारा गाती हैं.
5: आपको पता है मैं अभी शौक में हूँ.
0: हाँ ये शौक में. शौक में गाना अच्छा क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद गाएंगी भी. आप एपिसोड में देखिएगा.
4: ऑल द बेस्ट प्रणाली. ऑल द बेस्ट. मैं जरूर देखूंगी आपकी परफॉर्मेंस.
5: थैंक यू सो मच मैम. आई लव यू.
4: थैंक यू. आई लव यू. लव यू टू. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू राजीव जी.
0: नेहा नहीं नहीं जाने से पहले आप कब आ रही है शो पे.
4: जल्दी आते हैं. चलो हम दोनों आते हैं जल्दी. डन.
0: मैं और पूरा तुम होना का परिवार आपका इंतजार कर रहा है.
4: चलिए हम आते हैं जल्दी.
0: ओके थैंक यू सो मच नेहा बात करने के लिए. थैंक्स अ लॉट.
4: थैंक यू.
6: अब तो वक्त आ गया है एंटरटेनमेंट की इस किताब को बंद करने का. लेकिन एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज का सिलसिला आपके लिए कभी नहीं होगा खत्म. अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट. और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है. आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम. लाइक कीजिए ऑन फेसबुक. एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां. प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल. नमस्कार.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: दिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने IAS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। बढ़ते साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नई एडवाइजरी। बायोमेट्रिक्स लॉक रखने, संदिग्ध लॉगिन अलर्ट पर नजर रखने और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान। सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर। कहा गृहिणियां मानव संसाधन के विकास और राष्ट्र निर्माण में निभाती हैं केंद्रीय भूमिका। बद्रीनाथ धाम में उत्साह और भक्तिभाव से की गई जेठ पूजा, तो वहीं बड़ी संख्या में पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे भक्त। भगवान बद्रीनाथ और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के रिश्ते को दर्शाती है ये पूजा अर्चना। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। चाइना में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में। अच्छी फसल और मौसम के लिए हर उत्साह के साथ मनाया जाता है ये पर्व।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 34 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 12 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक दोनों जगहों पर 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा तांता, 74,000 लोगों ने दर्शन किए। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी, लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्ते से होते हुए दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका का लगातार सफाई अभियान जारी, अब तक 5 लाख प्लास्टिक बोतलें मौजूद। राष्ट्रीय राजमार्ग से रोजाना 6 टन उठाया जा रहा है कचरा, श्रद्धालु भी अभियान में कर रहे हैं सहयोग। यात्रा को लेकर इंतजामों से संतुष्ट नजर आए श्रद्धालु, सफाई व्यवस्था आपदा प्रबंधन के इंतजामों की तारीफ की। केदारनाथ में अब तक लगभग श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। असाधारण बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए आर्मी मेजर अर्षदीप सिंह गिल। मेजर गिल ने GNT को सुनाई 48 घंटे चली जोखिम भरे ऑपरेशन की कहानी। नैनीताल के कैंची धाम मेले की तैयारियां हुई तेज, 15 जून को नीम करौली में उमड़ेगा आस्था का महासैलाब। मेले में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं कैंची धाम, मेले को लेकर प्रशासन सख्त। समारोह को देखते हुए कैंची धाम में विशाल भंडारे की तैयारी। प्रसाद के लिए मालपुए बनाने का काम शुरू। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए हल्द्वानी, भीमताल और नैनीताल से विशेष शटल सेवा आयोजित। भक्तों के लिए की गई पार्किंग की व्यवस्था। 14-15 जून कैंची धाम क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर बैठक की।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around the clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। बढ़ते साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नई एडवाइजरी, बायोमेट्रिक्स लॉक रखने, संदिग्ध लॉगिन अलर्ट पर नजर रखने और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान, सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर, कहा गृहिणियां मानव संसाधन के विकास और राष्ट्र निर्माण में निभाती हैं केंद्रीय भूमिका। बद्रीनाथ धाम में उत्साह और भक्ति भाव से की गई जेठ पूजा, बड़ी संख्या में पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे भक्त, भगवान बद्रीनाथ और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को दर्शाती है ये पूजा। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी जल्दी गर्मी से राहत, आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। चाइना में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में, अच्छी फसल और मौसम के लिए हर उत्साह के साथ मनाया जाता है ये पर्व।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशर। यशोदा के लाल बाल गोपाल श्री कृष्ण की महिमा न्यारी है क्योंकि भगवान गिरधर गोपाल कल्याणकारी है। माना जाता है कि अगर श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए तो जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे कारगर उपाय है उनके मंत्रों का जाप। तो आज हम आपको श्री कृष्ण के 12 कल्याणकारी मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जाप आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। तो आप भी कीजिए श्री हरि के मंत्रों का जाप जिससे होगा आपका कल्याण।
10: श्री हरि के अवतार योग योगेश्वर श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। बाल गोपाल से लेकर द्वारकाधीश तक के सफर में श्री कृष्ण की कई लीलाओं की साक्षी बनी है यह धरती। माना जाता है कि जीवन की सारी परेशानियों से पार पाने का, हर मुसीबत को दूर भगाने का सबसे सटीक और कारगर उपाय है श्री कृष्ण का ध्यान। भगवान को तो आप कभी याद करें तो भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, लेकिन माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा पाने और उनके हृदय में स्थान बनाने का सबसे आसान तरीका है उनके मंत्रों का जाप। अब ना तो कोई विपदा आएगी ना कोई मुसीबत आपको छू पाएगी क्योंकि अब आपके कष्ट मिटाएंगे गिरधारी श्री कृष्ण, हरेंगे विपदा सारी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मंत्रों के आह्वान से इच्छित फल की कामना पूर्ण हो सकती है।
11: ऐसा विधान है कि सभी देवी देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के द्वारा ही विशेष संयोजन होता है। जब हम अपने मन की मनोकामना पूर्णता के लिए किसी देवता का आह्वान आदि जो भी करते हैं वो मंत्रों के माध्यम से करते हैं। मनती इति मंत्र, बार बार जिस बात को बोला जाता है वो मंत्र बन जाता है और मंत्र आत्मा से जब जुड़ते हैं तभी वो भगवान को प्राप्त होते हैं।
10: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्री कृष्ण के अलग अलग मंत्र का प्रभाव अलग अलग है। इन मंत्रों के जाप से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शुभता बढ़ाने और सुख प्रदान करने में ये मंत्र अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र। श्री कृष्ण का मूल मंत्र है क्रीं कृष्णाय नमः। ये श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के जाप से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रातःकाल स्नान आदि के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे आप सभी बाधाओं और कष्टों से सदैव मुक्त रहते हैं।
11: क्रिम कृष्णाय मंत्र एक तांत्रिक मंत्र भी है। इसमें प्रणव अक्षर ओमकार नहीं लगता है, ये केवल क्रिम ओमकार के समान ही प्राण देता है इस मंत्र को और साक्षात इसमें कृष्ण स्वयं वासते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र का भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के आगे या अश्वत्थ वृक्ष यानी के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़ ले उसकी मनोकामना सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता।
10: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र परम कल्याणकारी है। माना जाता है कि इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आइए जानते हैं सप्त दशाक्षर महामंत्र की महिमा। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। इस मंत्र के जाप के समय हवन का दशांश, अभिषेक का दशांश, तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। जिस व्यक्ति को ये मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
11: इसमें ओम प्रणवाक्षर लगा के श्रीम अर्थात लक्ष्मी और प्रणाम करके ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णत माया स्वाहा। इस मंत्र को 17 अक्षरों के इस मंत्र को ऐसा माना जाता है कि जो जपता है उसको परिपूर्णता प्राप्त हो जाती, किसी चीज की कमी नहीं रहती, दारिद्र नाश करने वाला है, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। और इस मंत्र के लगातार 1 लाख जाप करने वाला और उसका दशांश खीर से हवन करने वाला व्यक्ति अपने दारिद्र को ऐसे ही दहन कर देता है।
10: माना जाता है कि श्री कृष्ण का हर मंत्र एक विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। प्रभु श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 7 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र सबसे उत्तम माना गया है। गोवल्लभाय स्वाहा, ये 7 अक्षरों का श्री कृष्ण मंत्र है। इसका जाप जो भी साधक करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
11: ये जो गोवल्लभाय मंत्र है बिना प्रणव के है, परंतु भगवान को अति प्रिय है, भगवान की लीला करने के समय का मंत्र है। और जो व्यक्ति इसको जपता है भगवान उसको जैसे अपने साथ क्रीड़ा करने वाले अपने मित्रों और अपने जितने भी गौ पुत्र थे उनके समान व्यक्ति को मानने लगता है और उनके साथ सखा भाव से भगवान हो जाते हैं। भक्ति का बहुत सुंदर मंत्र है, मनोकामना भगवान से कहे बगैर ही पूर्ण कर देता है, ऐसा मंत्र गोवल्लभाय नमः स्वाहा है।
10: 8 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र गोकुलनाथाय नमः, ये मंत्र परम कल्याणकारी है। 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं।
11: ओम कृष्णाय शरणम ममः, ये 8 अक्षर मंत्र भगवान की शरणागति प्राप्त करने का और परम गति प्राप्त करने का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ ही है कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण मिले। और जो भगवान की शरणागत हो जाता है उसे तो देव दानव क्या साक्षात काल भी नहीं किसी प्रकार का कष्ट दे सकता।
10: माना जाता है कि जिनके ऊपर विधाता की कृपा हो जाए भला, फिर उसे किसी भी भौतिक लालसा की इच्छा नहीं रह जाती। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्री कृष्ण का दशाक्षर मंत्र प्रभु की शरण में स्थान दिलाता है। चलिए आपको बताते हैं कैसा है वो महामंत्र। क्लीन लॉन्ग क्लीन श्याम लांगाय नमः, ये दशाक्षर मंत्र श्री कृष्ण का है। इसका जो भी साधक जाप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है।
11: दशाक्षर मंत्र विशेष तौर पे प्रणवाक्षर के साथ 11 मंत्रों को आता, बिना प्रणवाक्षर के क्लीम ग्लोम क्लीम श्याम लांगाय नमः ये विशेष मंत्र है। हर व्यक्ति के लिए जपना अनिवार्य नहीं, लेकिन मनोकामना मन इच्छित कामना पूर्ण करने वाला क्लीम और ग्लोम मंत्र भगवान की दिव्यता को आकर्षित करने में प्रयोग होता है। अर्थात हम भगवान से इस प्रकार का एक योग मांगते हैं कि हमारे शरीर में हमारे उसमें लोगों को इतना आकर्षण महसूस हो कि सामने वाला हमारे वशीभूत हो जाए, कि भगवान की शरणागत और लोग उस व्यक्ति के भक्त बन जाते हैं।
10: आज हम अपनी खास पेशकश में जान रहे हैं श्री कृष्ण के महामंत्रों की महिमा। माधव का हर मंत्र विशेष अनुभूतियों को करवाने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा। माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से हर तरह की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। कृष्ण द्वादशाक्षर मंत्र का जो भी साधक जाप करता है उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
11: द्वादश मंत्र तो महामंत्र है, श्रीमद् भागवत का मूल भी है और हर व्यक्ति जितने प्रेमीजन है उनका हृदय के अंदर वास करने वाला भगवान कृष्ण का नारायण का साक्षात स्वरूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपने वाले को तो ग्रह भी किसी प्रकार से पीड़ा नहीं देते, शत्रु जित हो जाता है, व्यक्ति मनोकामना सिद्ध करता है, भगवान का परम सुख प्राप्त करता है, परम भक्त बन जाता है।
10: कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में भाव देखते हैं। हर कालखंड में श्री कृष्ण के कई अनन्य भक्त रहे हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा जिसे मिल जाती है उसे जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन सरलता से गुजर जाता है। देवकी नंदन श्री कृष्ण के कुछ और कल्याणकारी मंत्र हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
9: माना जाता है कि श्री कृष्ण के मंत्र से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के जाप से जीवन में धन वैभव की भी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं और वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए मनोकामनाओं को पूरा करने वाले

0: कि वो ईश्वर की अनुभूति करने लगता है, परमेश्वर से खुद को एकाकार कर पाता है। एं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सों। ये 22 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसे वागीशत्व की प्राप्ति होती है।
1: 22 अक्षरी मंत्र अति दुर्लभ और कम लोग जानते हैं। उसमें प्रणवाक्षर को छोड़ के एम क्लीम कृष्णाय ह्रीम गोविंदाय श्रीम गोपी जन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति साक्षात जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और सिवाय भगवान की प्रीति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ मांगती ही नहीं थी, इस मंत्र को जपने वाला व्यक्ति भगवान को साक्षात स्वयं प्राप्त कर लेता है।
0: जिस तरह से भगवान लीलाधर कहलाते हैं, उनके विविध स्वरूप हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण के मंत्रों का प्रभाव भी साधक के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 23 अक्षरों का महामंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्री। ये 23 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
1: भगवान के 23 अक्षरों का मंत्र दुर्लभतम मंत्रों में से एक माना जाता है। उसमें ओम प्रणवाक्षर के साथ में ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम साक्षात श्री को प्राप्त कराने वाला व्यक्ति को दिव्यता इतनी, अनुभूति इतनी कि जो व्यक्ति इसका 1,00,000 जाप करने के पश्चात उसके दशांश हवन करता है विभिन्न मंत्रों के विभिन्न सामग्रियों के साथ, विशेषतः पायस अर्थात दूध से और चावल से बनी खीर से हवन करता है 1,00,000 जाप के पश्चात, वो भगवान के साक्षात धन समृद्धि के मार्ग को तो अपने खोलता ही है, भक्ति भी प्राप्त होती है और पश्चात मोक्ष भी प्राप्त होता है।
0: यशोदा के लाल जगत के पालनहार है, नंदलाल बाल गोपाल सबके तारणहार है और देव की नंदन उन पर सबसे ज्यादा मेहरबान होते हैं। जो उनको मंत्रों से याद करते हैं, प्रभु को याद करने का एक माध्यम और है, 28 अक्षरी श्री कृष्ण मंत्र। ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुषे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये 28 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसको समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं।
1: भगवान के ऐसा दिव्य मंत्र कहते हैं इसको, ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वय पुषे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र के विषय में स्पष्ट वर्णन इस प्रकार से आता है कि जो व्यक्ति सही समय और सही विधि से इस प्रकार का जाप कर ले उसको समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला भगवान की साक्षात साथ में रमण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, ऐसा अनुभव आया है।
0: श्री कृष्ण 29 अक्षरी मंत्र। लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर दंड बाल स्वरूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा। ये 19 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। श्री कृष्ण मंत्र का 1,00,000 जाप करें। इस दौरान घी शक्कर और शहद में तिल अक्षत मिलाकर हवन करते हैं। मंत्र के प्रभाव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
1: ये जो 29 अक्षर का मंत्र भगवान का है बड़ा दुर्लभ और बड़ा दिव्य है, केवल कुछ विशेष ही गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। ये लीला दंड गोपी जन संसक्त दौर दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा। इस मंत्र में आप ये दिव्यता समझ लीजिए कि नमः नहीं प्रणाम नहीं स्वाहा जब लगाया जाता है किसी मंत्र के लिए तो बहुत विशेष शक्तिशाली हो जाता है। और इसके लिए 1,00,000 कम से कम जाप संख्या और चीनी शक्कर शहद तिल आदि के साथ हवन करने वाला व्यक्ति इसको किसी भी प्रकार की अगर जीवन में सारे सुख चाहते हैं तो इस 29 अक्षर के मंत्रों का जाप करके अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं।
0: तो आप भी भगवान कृष्ण की इन मंत्रों का जाप अपनी परेशानी और जरूरत के अनुसार कीजिए, जिससे आप पर प्रसन्न होंगे मुरली मनोहर और आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे भगवान श्याम सुंदर।
2: भगवान श्री कृष्ण के 32 अक्षरी और 33 अक्षरी मंत्रों के जाप से जीवन की तमाम बाधाएं आसानी से दूर हो सकती हैं। आइए अब आपको भी

0: करवाते हैं श्री कृष्ण के 32 और 33 अक्षरी मंत्रों की अलौकिक अनुभूति।
1: भक्तों के सारे दुख दूर करेंगे गिरधारी, मंत्रों में समाई है श्री कृष्ण की शक्ति सारी। माना जाता है कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए उसे भला जीवन में किस चीज की कमी नहीं रहती। जानकार बताते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए मंत्रों से उनका स्मरण सबसे प्रभावी है। आज हम आपको श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए माधव के अचूक मंत्रों की महिमा बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 32 अक्षरों और 33 अक्षरों का श्री कृष्ण मंत्र जो सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। नंद पुत्राय श्याम लांगाय बालव पुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये 32 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। इस मंत्र का जो भी साधक 1,00,000 बार जाप करता है और दूध शक्कर से बनी खीर से दशांश हवन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
2: 32 अक्षर मंत्र तो बहुत ही विशेष कहलाता है। उसमें भगवान स्वयं साक्षात उस व्यक्ति को गुरु दीक्षा देते हैं। वो इस प्रकार से है, प्रणवाक्षर के अतिरिक्त नंद पुत्राय श्याम लांगाय बालव पुष्पे कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये महामंत्र जपने वाला व्यक्ति साक्षात भगवान को समझ लीजिए गुरु रूप में धारण कर लेता है। भगवान सारे जीवन उसको आनंद देते हैं, पश्चात मोक्ष देते हैं और भगवान के ही साथ ही रमन करने का उसको आशीर्वाद देते। पर ये तांत्रिक मंत्र है, इसका कम से कम 1,00,000 का पुरस्करण अर्थात जाप किया जाता है तुलसी की माला से। उसके पश्चात 10वां हिस्सा हवन करना बहुत जरूरी है, दूध और शक्कर से बनी खीर से इसका हवन कराने का विधान है।
1: श्री कृष्ण 33 अक्षरी मंत्र ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमारमण विद्येश विद्यामाशु प्रेच्छ में, ये 33 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। श्री कृष्ण का ये मंत्र जो भी साधक जपता है उसे समस्त प्रकार की विद्याएं निःसंदेह प्राप्त होती हैं।
2: ये विद्या प्राप्ति बुद्धि विकास और तीव्रता से कोई भी चीजों को जानने का मंत्र है। उस व्यक्ति को आगे पीछे सब चीजों का ज्ञान होने लगता है, परंतु ये बड़ा अत्यंत गोपनीय मंत्र है। इसका विशेष लोगों के आगे प्राकट्य करने का विधान है, शिष्य पुत्र आदि के अतिरिक्त नहीं बताएं किसी को, ऐसा कहा गया। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रियच्छ में, अर्थात हे कृष्ण महाकृष्ण हे सर्वज्ञ आप मुझ पर प्रसन्न हो, हे रमा रमण अर्थात लक्ष्मीपति और विद्येश विद्या के स्वामी मुझे शीघ्र ही विद्या प्रदान करें। इस मंत्र का मूल अर्थ इसी प्रकार से है।
1: अब आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में खुशियां और आनंद पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आइए, मंत्रों से प्रभु को मनाइए, वो आपके पास दौड़े चले आएंगे जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
0: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
4: No ticket, no line, just showtime. Quello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Quello Concerts, that's QELLO, for free on Amazon Prime Video today.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दुनागिरी की प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से लैस। बढ़ते साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय के इंडियन सब्सक्राइब कोऑर्डिनेशन सेंटर की नई एडवाइजरी। बायोमेट्रिक्स लॉक्स, संदिग्ध लॉगिन, अलर्ट पर नजर रखने के निर्देश। किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा होम मेकर नहीं नेशन बिल्डर हैं गृहिणियां, हर महीने 30,000 रुपए की हकदार। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में ज्येष्ठ पूजा, बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को समर्पित। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले अदा की गई पारंपरिक रस्में अच्छी फसल और मौसम के लिए हर साल उत्साह के साथ मनाया जाता है पर्व।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कब थमेगा सोने चांदी के भावों का भूचाल, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार अभी भी बरकरार और इसका कहीं ना कहीं असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जंग के हालात में सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं, निवेशक कीमती धातुओं में दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि सेफ हेवन अक्सर इसे कहा जाता है और यही वजह कि सोने और चांदी को हम हमेशा सेफ हेवन के तौर पर देखते हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दाम में लेकिन गिरावट देखी जा रही है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सोने और चांदी के उतार चढ़ाव को और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के हालात का भारत के सराफा बाजार पर असर क्या हो रहा है, किन फैक्टर्स की वजह से निवेशकों का रुख बदला है, आगे क्या हो सकता है, गिरे दाम क्या तूफान से पहले की शांति है, आपके शहर में सोने और चांदी का क्या है मूल्य, क्या है भाव, कब थमेगा सोने चांदी के भावों का भूचाल, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बाजार के जानकारों से चर्चा करेंगे। सोना चांदी एक बार फिर से चर्चा में है। आज भी सोने और चांदी के दाम थोड़े कम हुए हैं। एक बार जरा आपको समझा देते हैं पिछले 30 दिन में किस तरीके से इसका भाव रहा है। 30 दिन में चांदी करीब 60,000 रुपए सस्ती हुई है, साथ ही साथ चांदी अपने हाई से करीब 2,00,000 रुपए प्रति किलो सस्ती मिल रही है। सोने की बात कर लेते हैं, अपने हाई से करीब 30,000 रुपए सस्ता हुआ है। इस महीने यानी कि जून की अगर बात की जाए तो चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और यही हाल इस महीने सोने का भी नजर आ रहा है, जो सिर्फ एक दिन बढ़त दिख रही थी लेकिन उसके बाद सस्ता हुआ। 9 जून को सोने में मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। चांदी की बात करें तो 2,35,000 जबकि सोने की बात करें तो 1,33,000 के पास पहुंच गया है। ईरान अमेरिका के बीच जंग फिर से शुरू हुई है, युद्ध में भी सोने और चांदी के दाम गिर रहे हैं। अब तक सोने और चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है लेकिन युद्ध में दाम बढ़ने के बजाय गिरे हैं। इसकी एक वजह मुनाफा वसूली भी कही जा सकती है, निवेशक अपने हाथ में पैसा रखना चाहते हैं। फिलहाल सोने और चांदी में निवेशकों का रुझान घटा है, क्या प्रधानमंत्री की अपील का भी असर है, इसको लेकर भी आगे बात करेंगे क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर चर्चा की थी, लोगों से अपील की थी कि सोना और चांदी ज्यादा न खरीदें। भारत में सरकार की ओर से सोने चांदी नहीं खरीदने की अपील की गई। सोना और चांदी जनवरी में अपने हाई पर थे लेकिन अब गिर रहे हैं, लिहाजा सोने और चांदी का आगे होगा क्या, क्या और गिरेंगे दाम या फिर उठेगा सोना, क्या सोना चांदी की फिर से होगी चांदी, ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है और दुनिया भर में भी चर्चा इसको लेकर हो रही है। हम भी आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे समझने की कोशिश करेंगे सोने और चांदी के इसी समीकरण को। फिलहाल मेरी सहयोगी साक्षी बत्रा विस्तार से समझा रही हैं। अगर देखा जाए तो सराफा बाजार में क्यों उतार चढ़ाव है, क्या सोने और चांदी में वापस से और गिरावट आ सकती, कहां तक कितनी गिरावट आ सकती है या फिर आने वाले समय में सोना और चांदी क्या सेफ सेविंग के तौर पर देखे जा सकते हैं, तमाम पहलुओं पर साक्षी की रिपोर्ट देखिए।
1: सोने के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 6 महीने के निचले स्तरों पर अब सोना देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 6 महीनों से ज्यादा के लोएस्ट लेवल्स पर अभी सोना ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप MCX गोल्ड रेट को देखेंगे तो ये 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से काफी नीचे पहुंच चुका है, अब 1.47 लाख रुपीज पर 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर के दामों में भी अगर आप देखेंगे तो अब तकरीबन 2,34,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको सिल्वर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीने ही पहले अगर आप देखें तो सोने और चांदी की जो रैली थी एक अनस्टॉपेबल रैली के तौर पर नजर आ रही थी। हर दिन हर हफ्ते हम सोने और चांदी के दामों में एक रिकॉर्ड लेवल देखने को मिल रहा था। वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें तो सिल्वर में तो आज तक की अब तक की हिस्टोरिकल रैली इससे पहले नहीं देखी गई थी, इस तरीके का मूव आपको सोने और चांदी में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मूड जो है सोने और चांदी के अराउंड ये बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 6 महीने के निचले स्तरों पर सोना ट्रेड कर रहा है और सिल्वर में भी लगातार आपको वीकनेस नजर आ रही है। इसके पीछे के कुछ कारण हैं जैसे कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, यूएस ईरान का जो वॉर है, ये लगातार अभी भी बढ़ता चला जा रहा है जिसके चलते जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, कच्चे तेल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं और वो एलिवेटेड रह सकते हैं लंबे समय तक के लिए, बढ़े हुए रह सकते हैं काफी लंबे समय के लिए। दूसरा कारण है स्ट्रॉन्गर डॉलर। जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो जो अन्य कंट्रीज हैं जहां से डॉलर इंपोर्ट किया जाता है या डॉलर में सोना इंपोर्ट किया जाता है, उनके लिए सोना चांदी खरीदना महंगा हो जाता है और ऐसे में सोने चांदी की डिमांड जो है वो कम होती है। तीसरा बड़ा कारण है प्रॉफिट टेकिंग। इतनी बड़ी रैली के बाद जो 1.5-2 साल तक चलती हुई एक तरफा आपको नजर आई, उसके बाद जिन लोगों ने इसमें पैसा एक सही समय पर लगाया था वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जब शुरू हुई उसका भी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखें सोने और चांदी के दाम, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, इन्फ्लेशन या महंगाई का सिनेरियो हो, वहां पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार चीजें इसलिए बदल रही हैं क्योंकि वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से माना यह जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स द्वारा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो यील्ड होता है सोने चांदी का वो कम हो जाता है और रिस्कियर एसेट्स पर, फाइनेंशियल एसेट्स पर लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप निवेशक हैं सोने और चांदी के तो आपको क्या समझना है? क्या ये प्राइसेस सही हैं आपके लिए सोना चांदी खरीदने का, या यहाँ से भी भारी गिरावट सोने चांदी में और देखने को मिल सकती है? कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो मानना है उनका कि अभी भी करंट लेवल से थोड़ी बहुत और गुंजाइश है कि सोना और चांदी नीचे जाता हुआ नजर आया।
0: तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये कि क्या खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, प्रधानमंत्री की अपील का कहीं ना कहीं क्या असर हो रहा है और क्या आगे पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत है या नहीं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। अनुराग रस्तोगी जी हेड है नॉर्थ इंडिया इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन से। योगेश सिंगल जी प्रेजिडेंट ऑल इंडिया बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन हमारे साथ। योगेंद्र कपूर जी इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ मार्केट एक्सपर्ट मौजूद हैं। शुरुआत प्रोफेसर साहब आप ही से करूंगी। धीरेश जी जरा समझा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को, हम तमाम फैक्टर्स तमाम पहलुओं पर बात करेंगे लेकिन एक बार जो प्रधानमंत्री की अपील थी क्या इसका असर कहीं ना कहीं बाजार पर दिख रहा है? क्या मार्केट पर मांग घटने की वजह से कीमतों पर असर हुआ है? क्या समझते हैं सर आप?
2: नवजोत जी बहुत अच्छे विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि गुड न्यूज टुडे का हमेशा ही ये प्रयास रहा है कि हम ऐसे विषय पे बात करें जिससे कि जिसका सीधा सरोकार जो है ना जनता से रहे। तो जो विषय आपने उठाया है निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की अपील का असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ के साथ जो हम डॉलर में हम जो प्राइसेस हाइक्स देख रहे हैं और डॉलर के प्राइस हाइक्स बढ़ने से जो इन्फ्लेशन क्राइसिस डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया में, जैसा कि साक्षी बत्रा जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और प्रॉफिट बुकिंग एक अपने आप में कारण है ही। मैं अगर थोड़ा सा ध्यान देना मतलब दर्शकों का इस विषय पर लाना चाहूंगा कि फेडरल जो रिजर्व है वो यूनाइटेड स्टेट्स का 3.75% की पॉलिसी रेट के अकॉर्डिंग अपनी ब्याज रेट को बढ़ा रहा है। हम आरबीआई की बात करें तो 5.25 और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो 3.75, यानी कि धीरे धीरे करके अगर हम वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर समझने की कोशिश करें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और डॉलर के प्राइजेस बढ़ने से जो लोगों में जो निवेशक हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करके एक तो अपने गोल्ड को और जो प्रीसियस मेटल्स है सिल्वर को निकाल रहे हैं, जहां जहां जो हाइक पे चली गई थी ऑल टाइम पीक्स पे चली गई थी उसको अब उनको उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। नंबर दो जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जो यूएस ईरान के कारण जो डॉलर के प्राइसेस नवजोत जी बढ़ते जा रहे हैं और आज की डेट में वो 95.7 के ऊपर निकल गए, लगभग 96 के आसपास जा रहे हैं, तो उसका लॉस जो होता है अर्थव्यवस्था में वो ये होता है कि एक अनरेस्ट है और क्राइसिस है, इन्फ्लेशन क्राइसिस है, और तीसरा जो मार्केट है वो इनस्टेबल हो चुका है। तो ये मेरा इसमें इस विषय में अपनी तरफ से बात रखना है।
0: बिल्कुल, चलिए अनुराग जी अब आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले सवाल तो सीधे तौर पर यही है, देखिए सोने और चांदी को लेकर चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि दो चीजें, प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले अपील की थी क्या इसका असर हो रहा है, दूसरा ये देश के लिए भी जरूरी है और हर किसी की अपनी जेब के लिए भी जरूरी है। ओवरऑल क्योंकि सेफ हेवन सोना चांदी माने जाते हैं, क्या अभी भी सही समय है, क्या खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए, और तमाम पहलुओं को अगर हम देखें तो क्या समझते हैं आप? अनुराग जी
3: सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए आपका आपके सवाल को पूरी तरीके से लेने के लिए मुझे हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने देखा है कि पीछे 6 महीने के अंदर अंदर एक ऐसी रैली देखी है इस इंडियन जो हमारे कंज्यूमर हैं या हमारी इस इंडस्ट्री ने कि एक तरफ सबसे हाई देखा है और आज की तारीख में लो भी देख रहे हैं, जिस लेवल का हाई देखा है उस लेवल का लो भी देख रहे हैं। पर इसके कारण कई हैं। आपने देखा कि पहले एक तरफा मार्केट भाग रहा था क्योंकि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, बहुत एक अजीबो गरीब स्थिति पनपी हुई थी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का एक, चाहे वर्ल्ड के बैंक्स थे चाहे बड़े बड़े देश थे, सब कहीं ना कहीं सोने और चांदी में ही अपनी खरीदारी को अपनी मजबूती मान रहे थे। अचानक सिनेरियो चेंज होता है और उस सिनेरियो में एक ऐसा एक यूटर्न आता है, और वो यूटर्न आता है हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस दिन से हमारी युद्ध के बाद की जो स्थिति बनी, और एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस दिन से हमारे इस मुहिम को कहा गया, हमारे उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया कि 1 साल के लिए सोने और चांदी की खरीदारी ना करें, ये मैं समझता हूं कि एक ऐसा यूटर्न आया कि मैं आपको बताऊं कि उस दिन के बाद से ऐसी स्थिति पनप गई पूरे देश की इंडस्ट्री में, और इसका फर्क पूरे ग्लोबल लेवल पे भी पड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की सोच बदल गई, लोगों की मानसिकता बदल गई, लोगों को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब विश्व में कुछ बड़ा हो रहा है और हमारे देश में भी कुछ बड़ा होने वाला है। लोगों ने कोरोना काल को देख रखा है, जिसके पास भी जो स्थिति थी उन्होंने उसको सेफ करना ज्यादा उचित समझा, सोने चांदी में निवेश की जगह उसको सेफ करना ज्यादा जरूरी समझा। इसकी ये परिस्थिति बनने के कारण से मार्केट की इस हमारी इंडस्ट्री में भी एक अजीब सा निराशा का माहौल आया, सन्नाटा आया, लोगों का निवेश कम हुआ। जिन लोगों ने निवेश कर रखा था, रैली में एकदम से चांदी भागती जा रही थी, सोना भागता जा रहा था, उन लोगों को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सोना और चांदी आगे चल के देश गवर्नमेंट कोई इसके ऊपर पॉलिसी ले आवे, या इसके ऊपर कोई नया कानून आ जाए, या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आ जाए, किसी तरीके का कोई ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से। तो लोगों ने जो जहां था वहीं पर भी, एक्सपर्ट्स ने भी उस समय यही सलाह दी
0: बिल्कुल
3: कि जो जहां है स्टैंड बाई मोड पर रहे, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे, लोगों को वॉच करे, परिस्थिति देखे, फिर इन्वेस्टमेंट करे या अपने अपने स्टॉक को निकाले। लेकिन बहुत से लोगों ने मुनाफा वसूली भी की, 4,13,000 रुपए, 4,20,000 रुपए तक चांदी के भाव गए हाजिर मार्केट में, और सोना भी 1,78,000-80,000 रुपए तक गया। तो काफी लोगों को इसमें मुनाफा वसूली भी हुआ, पलट के मार्केट में माल भी रिपीट आया, और अभी धीरे धीरे जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा, तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि देखिए आज की तारीख में जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति में लोगों के लिए या देश के लिए या विश्व के लिए या बैंक्स के लिए गोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इस वक्त सबसे ज्यादा एलपीजी, इंपॉर्टेंट है हथियार, इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए पेट्रोल। ये
0: बिल्कुल
3: 3 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी देश कोई भी बैंक आज की तारीख में जो सोने और चांदी की खरीद थी उसको कन्वर्ट करके आज अपने इन सेक्टर को मजबूत करने में लगे हुए।
0: बिल्कुल
3: इसकी वजह से ये निराशा है, और मैं समझता हूं कि देखिए हर हर रात के बाद सुबह भी होती है, और ये भाव कहीं पर रुकने वाले नहीं है,
0: ठीक
3: आगे
0: है।
3: चल के ये भाव वापस अपना सब लेंगे, लेकिन अभी हमें लगता है कि इसमें निराशा का माहौल है।
0: ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी फिलहाल निराशा का माहौल है, लेकिन एक बार जरा क्योंकि पहले इस पूरे पहलू को जरा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसको लेकर चर्चा करेंगे कि क्या यहां पर स्टेबल हो सकते हैं या इससे कम हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक बार योगेश सिंघल जी, सर जरा मार्केट की तस्वीर हमें बताइए, चाहे वो उपभोक्ता हो या निवेशक हो, उनका रुझान कैसा मार्केट में नजर आ रहा है?
4: देखिए ये जो भाव गिर रहे हैं इसके भाव बढ़ने के पीछे का कारण आप समझिए कि डीडॉलराइजेशन हुआ, जब रूस का और उसका युद्ध हुआ यूएस का, तो उस
0: ईरान और ईरान यूएस और इजराइल और रूस का तो यूक्रेन के साथ हुआ, हाँ
4: रशिया का जब युद्ध यूक्रेन के साथ हुआ,
0: हाँ
4: यूएस ने उनके डॉलर फ्रीज कर दिए, यहां से अविश्वसनीयता शुरू हुई। 50,000 रुपए जब सोने का भाव था, चांदी का 65,000, पिछले 3 साल में सोने का भाव 4 गुना और चांदी का भाव 7 गुना हो गया, क्योंकि सेंट्रल बैंकों ने सबने बाइंग शुरू कर दी, डॉलर को बाहर निकाला और गोल्ड रिजर्व को अपने बढ़ा दिया। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर थे तेजी देख करके उन्होंने भी अपना पैसा बैंकों से निकाल के, एफडी से निकाल के, सेविंग अकाउंट से निकाल के या घरेलू बचत थी, सब सोने चांदी में निवेश कर दिया। अब निवेशक आएगा कहां से? सेंट्रल बैंक है, अगर उनके ऊपर युद्ध की तलवार है या उनका पेट्रोल का क्रूड का कोई भी बिल अगर भुगतान नहीं होता है तो उनको सोना बेचना या गिरवी रखने की नौबत तक आ सकती है। तो ऐसे में बायर जो था वो तो बिल्कुल ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो अब इसमें मंदा आना एक स्वाभाविक है। और दूसरा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने इसकी अपील की थी कि भी 1 साल तक आप सोना चांदी ना खरीदे, तो उसका बेनिफिट भी जनता को ही मिलना है, क्योंकि लगातार सोने में 52 बार 2025 में और 26 में भी 12 बार सोने ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि इतना ऑल टाइम हाई पे हाई कई सालों की तेजी 1 साल 2 साल में ही ले आए, तो उसमें कहीं ना कहीं मंदी का असर आना जरूरी है। अभी तो मंदी अभी शुरू हुई है, अभी बाकी है इसमें मंदी, और अभी हमें तेजी को दिमाग से एक बार निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर के पास में 4 लाख 3 लाख रुपए की चांदी भरी हुई है, सोना भी 1.5 लाख से ऊपर का भरा हुआ है, तो वो सब लोग मंदे में खरीदेंगे कैसे? तो यहाँ तो लिवाल की पोजिशन अभी खराब है। पिछले 6 महीने से जब से सोना चांदी में बुलियन की मांग बढ़ी है, निवेशकों की मांग बढ़ी है, ज्वेलरी का व्यापार ठप हो गया है। अभी तो ये मल मास का महीना है, पुरुषोत्तम मास का महीना है, 17 तारीख को खत्म हो रहा है, उसके बाद पता लगेगी प्रधानमंत्री जी की अपील का क्या असर हुआ। क्योंकि 1 महीने तक हमारे यहाँ पर ये शुभ कार्यों में सोना चांदी नहीं खरीदते।
0: सर आपने ये लाइन बोली है, एक बार जल्दी से इसका जवाब रखिए फिर आगे बढ़ती हूँ, कि अभी तो मंदी शुरू हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा, आज 24 कैरेट सोने का भाव जो है वो 1,45,000 के आसपास है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा अगर ऊपर नीचे भी हो। दूसरा, क्या हम माने कि इससे और नीचे आ सकते हैं दाम आने वाले समय में?
4: देखिए 1,49,000
0: रुपए
4: 10 ग्राम का सोने का भाव, और डिस्काउंट की कैश की बात करें तो उसका ग्रे मार्केट का भाव कोई भाव नहीं होता है, सभी आदमियों को जिनको बिलिंग से काम करते हैं, एक्चुअल काम करते हैं, 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना खरीदना। दूसरा, अब इस सोने के अंदर मैंने पहले भी कई शो में आपको बोला था कि 1.5 लाख रुपए के अंदर अगर कोई अच्छी टूट मिलती है तो हम बाइंग बुरी नहीं है,
0: ठीक है।
4: 1,25,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच में यदि कहीं भी बाइंग मिलती है तो आप खरीदते चले जाइए।
0: सर मेरे सवाल का जवाब अभी आया नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दाम गिरेगा या बढ़ेगा, आपने कहा कि मंदी अभी तो मंदी शुरू हुई है।
4: दाम देखिए क्या है ना, $100-$200 ऊपर नीचे करने के बाद
0: होगा, ठीक है ठीक है,
4: उसके बाद में नीचे आना है, जड़ में कुल मिला के अभी मंदी और भी बाकी रह सकती है,
0: ठीक है। चलिए सीधा योगेंद्र जी, कितना असर बाजार पर इसका देखने को मिलेगा आगे?
5: देखिए नवजोत, मैं ये कहूंगा कि 3 चीजें जो हैं इंडिया के अंदर वो मेजरली ड्राइव करती हैं, और उसमें मैं ये कहूंगा एक है सेंटिमेंट, एक है मार्केट फोर्सेस और एक है इकोनॉमिक क्लाइमेट। और इन तीनों चीजों को अगर आप देखें इन लास्ट 3 मंथ्स स्पेसिफिकली, तो हम ये देखेंगे कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स और मूड है इस टाइम कंट्री के अंदर वो ये है कि, या इवन बिजनेस के अंदर जो एक थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है क्योंकि वॉलेटाइल है तो उसे एक माहौल जो है वो स्टेबिलिटी से मैं ये कहूँगा इनस्टेबिलिटी की तरफ जो जाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से एक लोगों के माइंड में कॉशन और एक पैनिक है। और उसका नेट रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जिस पेस से कंजम्पशन को ग्रो करना चाहिए था वो जो है फॉल कर रही है। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है वो रहेगा तब तक ये इंस्टेबिलिटी जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट में रहेगी, और उसका नेट रिजल्ट ये होगा कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जो है वो पोस्टपोन करने में बिलीव करेंगे। जो आपका अभी सवाल था, मैं ये फील करता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जो है अगर गोल्ड के अंदर हम ये देखें तो मैं अभी फर्दर देखता हूँ कि ये फर्दर 5% और फॉल कर सकता है इन शॉर्ट रन, लेकिन अगर हम एक पीरियड अपना ओवर हराइजन ऑफ 1 ईयर एंड अबव देखें तो मैं ये अभी भी फील करता हूँ कि इसके अंदर नियर अराउंड डबल डिजिट से अप टू 10% इंक्रीज जो है वो देखा जा सके।
0: ठीक है प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, 2 सवाल सर। पहला सवाल तो यही कि क्या आपको लगता है कि निवेशकों का रुख बदला है, और दूसरा अहम सवाल कि ये भी कहा जा रहा है कि ये तूफान से पहले की शांति है। सर ऑडियो म्यूट है।
2: नवजोत जी शायद मेरी आवाज आ रही है।
0: जी बिल्कुल सर सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए सर।
2: देखिए अगर हम थोड़ा डेटा पे विचार करें तो उससे समझ में आएगा कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। जनवरी 2026 या दिसंबर 2025 की बात करें, 6 महीने पहले की, तो डॉलर 89.8 था, और जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अपेक्षाकृत स्थिर अवस्था में था मेरा, लेकिन आज की स्थिति में जनवरी 2026 में 90.7 तक गया, फरवरी 2026 में 91.9 या 92 के आसपास चला गया, मार्च आते आते 92.8 हो गया, लगभग 93 हो गया, और मई में लगभग 94.8 और 94.9 मतलब 95 था, अब हम लोग 96 के आसपास जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? आपका प्रश्न था बड़ा जायज प्रश्न था और बड़ा व्यापक प्रश्न आपने पूछा कि आखिर ये रेट और घटेंगे। मैं कहता हूँ यस घटेंगे। रीजन ये है, आयात बिल में तेजी से वृद्धि हो रही है, उससे हो क्या रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट पर जो दबाव पड़ रहा है, इस कारण से हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि जी हेड ऑफ दी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये अपील की थी। मैं मानता हूँ इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब डिमांड घटती है तो निश्चित रूप से जो है ना चीज़ों के दाम जो है ना वही के वही इस तरह अवस्था में चले गए। लेकिन लॉ के एक्सेप्शन में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मांग घटेगी तो प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा इसलिए हो रहा है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का मैडम लगभग 86% कच्चा तेल आयात करता है, और डॉलर महंगा होने से उसकी जो आयात का खर्च है वो बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि उसको डेफिसिट बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा जो भय बाजार के अंदर है, जो निवेशकों के अंदर है, वो है आयातित महंगाई। वो महंगाई किस किस फील्ड में गई है आप देख लीजिए, लास्ट 2-3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री की अपील के बाद, और मैं कह सकता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद, खासतौर से बंगाल के इलेक्शन के बाद, तेल, गैस, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायनों की लगातार वो महंगाई बढ़ रही है, उससे निवेशक जो है ना टूटा हुआ है। और प्राइजेज ऑफ दी हाइक्स जिसको कहेंगे हम डॉलर का है, ये शॉर्ट टर्म में जो ज्यादा जाता दिख रहा है, जैसा कि मैंने अपने डेटा के बेस पे कहा, तो निश्चित रूप से अभी इसमें और टूट आने की संभावना है। और भारत विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण आयातकों में से एक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, उन्हें लोग सुनते हैं, वो बहुत लोकप्रिय नेता है देश के, इस कारण से लोगों ने अपनी मांग को वहां पर कम किया है। और मांग कम होने से, और वो एक जो सिंगल साहब बता रहे थे कि जो ये जो मल मास का महीना है 17 तारीख को खत्म होगा, निश्चित रूप से वो भी एक कारण हो सकता है। बट कारण जो मूल कारण है, जो एक इकोनॉमिस्ट के रूप में मैं बता सकता हूँ, वो ये है। और इन कारणों से क्या होगा कि जो लगातार जो गिरावट हम प्राइस प्रीसियस मेटल्स में देख रहे हैं, खासतौर पर सोने में और चांदी में, वो हमें देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में, नवजोत जी, देखने को मिलेगी। मैं स्पष्ट रूप से ये बात कह सकता हूँ।
0: एक बार अनुराग जी थोड़ा सा और समझाते चलिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की भी अपील है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, और जो अभी फिलहाल अनसर्टेनिटी है, चाहे हम देखें कि तेल के दाम बढ़े हैं, जिसका असर हर क्षेत्र पर, जैसा प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ समझा भी रहे थे, हैं क्या फिर आज की तारीख में भी हम कह सकते हैं कि मेटल, खासतौर पर सोना और चांदी, क्योंकि भले उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या आज की डेट में भी हम कहें कि सोना और चांदी सेफ हेवन है? अनुराग जी,
3: डेफिनेटली इस बात से तो कोई इंकार, इस बात से तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता, ना कोई देश इंकार कर सकता है, ना कोई बैंक इंकार कर सकते हैं, ना कोई दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट इंकार कर सकता है कि सोना और चांदी को ही पूरी दुनिया एक सबसे सेफ गुड्स मानती है, और सेफ अपनी हर व्यक्ति इसको अपने एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। और मुझे लगता है कि जब भी आपके ऊपर कोई बुरा वक्त भी आता है तो सबसे ज्यादा यही काम आता है। तो लिहाजा हम इसको कतई बिल्कुल, मैं इसको नहीं कहता मानता कि इस समय ये कोई अनसेफ है। मैं आपके आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने हर बार बोला है, हर अपने वक्तव्य में बोला है, हर चैनल पे बोला है, लेकिन आज आपके चैनल पे भी ये बात कहना चाहूंगा कि सोने और चांदी को लेकर के, सोने और चांदी ने कभी भी किसी निवेशक को आज तक निराश नहीं किया है, चाहे वो आपने ज्वेलरी के फॉर्म में लिया हो, चाहे बुलियन के फॉर्म में लिया हो, क्वाइन के फॉर्म में लिया हो, किसी भी फॉर्म में लिया हो, उसने आपको कभी निराश नहीं किया है। जब भी आपकी जेब अलाउ करे, जिस भाव में भी आपकी जेब अलाउ करे, आपको सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने में कभी भी कतराना नहीं चाहिए, अगर क्योंकि ये आपके बुरे वक्त का भी साथी बनता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अपील जरूर की है, प्रधानमंत्री जी की अपील को लोग सराखों पर ले रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात जायज है, हम सारी इंडस्ट्री भी उनका सपोर्ट कर रही है, पूरी तरीके से हम लोग भी साथ दे रहे हैं, और हम लोग तकलीफ से भी गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, क्योंकि देश पहले है, हमारा देश पहले है, उसके बाद सारी चीजें हैं, तो ये जो एक चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं मैडम आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी के पास में भी एक्स्ट्रा पैसा है, और अगर लगता है कि वो पैसा हमारा कहीं पर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अदर चीजों की जगह गोल्ड और सिल्वर हमेशा सेफ है, और हमेशा ये आपको प्रॉफिट देगा। ये मामूली उतार चढ़ाव, ये कभी युद्ध की स्थिति, कभी कोई और स्थितियां, ये सब विश्व में चलती रहेंगी ये, लेकिन लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर जो है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हमेशा तकलीफ में होता है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर जो है वो हमेशा प्रॉफिट में होता है।
0: ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। हाँ, आपने कहा कि आज भी सेफ हेवन है, तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए सवाल यह है कि इस युद्ध के हालात, क्योंकि अभी भी तनाव की स्थिति मिडिल ईस्ट में है, इसका असर आने वाले दिनों में सराफा बाजार पर क्या होगा, हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ।
6: order for Jennifer C.
7: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
6: Yeah. Can you handle that much caffeine?
7: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
6: Oh, really? That's great.
7: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
6: Yeah, you just said that.
7: Did you say I just said that?
6: Yeah, I'm cutting you off.
7: I can't have any more? Why not?
8: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
9: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
0: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
10: Aur durbhagya kehta hai
0: ki bhagya kahin dur nahi.
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
12: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
10: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
12: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
10: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
12: गुड न्यूज टुडे.
0: कब थमेगा सोने चांदी के भावों का भूचाल, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं. योगेश सिंघल जी आपके पास आना चाहूंगी. सर जो असर है, जो इस वक्त तनाव मिडिल ईस्ट में, तनाव अभी भी बरकरार है और उसका असर हम पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं. खासतौर पर अगर भारत की बात करें, जहां एक तरफ सोने की कीमतों में गिरावट हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं. ऐसे में सराफा बाजार पर इसका असर आने वाले दिनों में सर कैसा रह सकता है, थोड़ा सा समझाइए. क्योंकि आप पहले ही कह रहे हैं कि थोड़ी और गिरावट की हम उम्मीद कर सकते हैं सोने और चांदी के दामों में.
4: बिल्कुल देखिए नवजोत जी, ये लगातार गिरावट कोई भी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि ये सीधा लड्डू हमारे मुंह में आ जाएगा या 1.5 लाख रुपए का भाव या 1 लाख रुपए का भाव मिल जाएगा। तेजी भी जब आई थी तो उसने भी समय लगाया था, लगातार एक दिन में या एक महीने में या 15 दिन में तेजी नहीं आई थी। इसी प्रकार से अभी ये जो 4023 का लो लगा है ये बहुत अच्छा लो है, 4000 पे बाइंग करनी चाहिए। यहाँ 1.5 लाख रुपए के नीचे मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि 1.5 लाख के नीचे जो भी भाव मिलते रहे 1.25 लाख रुपए तक आप परचेजिंग करते रहिए, क्योंकि लास्ट का भाव किसी को नहीं। अब हमारे व्यापार पर इसका जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है क्या असर पड़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट रुक गया इससे, जो भी हमारा गोल्ड का, डायमंड का, सिल्वर का जो भी एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट एरिया में, सब जगह एक्सपोर्ट हमारा रुक गया है, तो उससे भी हमारा व्यापार एक किस्म से मंदी की मार झेल रहा है। दूसरा डोमेस्टिक कारणों से भी, क्योंकि सभी जो हमारे हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर थे बुलियन में, सोने चांदी में इन्वेस्ट करके, और उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वर्किंग कैपिटल वो खर्च कर ली, तो अब हम मंदी की मार तो बहुत बुरी तरह से झेल रहे हैं। ये पूरा जून का महीना है और ये मंदा जाने वाला है, और आगे भी अगर ये मलमास खत्म होता है वहां से भी कुछ थोड़ी बहुत खुशबुगाट होती है, थोड़ी बहुत हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में सब कारीगर से लेके ऊपर शोरूम वाले सभी लोग इसमें परेशान है। कारण है एक तो युद्ध, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, खर्चे यदि जो है ना लोगों के पूरे नहीं होंगे, अपने पैसे की बचत वो नहीं करेंगे तो सराफा बाजार में वो लौटेंगे कैसे। उनके लिए खाने पीने की वस्ती जरूरी है, कपड़े जरूरी है, और कोई भी रोजाना की चीजें जरूरी है। लेकिन ये मंदी युद्ध खत्म हो जल्दी से, महंगाई हमारी कम हो, तेल के भाव नीचे आए, तभी जाकर के हमारा ज्वेलरी सेक्टर पनपे।
0: योगेंद्र जी सही बात कह रहे हैं। योगेश जी देखिए, बाइंग कैपेसिटी भी अगर देखा जाए तो लोगों की कम ही हुई है, क्योंकि लगातार महंगाई का असर भी पड़ा है।
5: एब्सोल्युटली, और देखिए हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि जब हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देख रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एक किसी भी तबके के आदमी के पर्सन के पॉकेट पे पड़ता है, जब उनका सेविंग का पोटेंशियल जो है वो गिरता है। अब मैं 2-3 चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि देखिए ये जो समय है ये ऐसा समय है कि जिसमें एक कोई भी जो अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में बिलीव करता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाना उसके हाथ में जो है इन शॉर्ट रन, अगर हम देखें नेक्स्ट 6 मंथ्स का पीरियड। क्योंकि देखिए एट द मोमेंट जो नजर आ रहा है वो डेफिनेटली ये है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नेक्स्ट 3-6 मंथ्स टाइम के अंदर वो रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी जा सकती है, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी की भी जो प्रेशियस सेविंग्स हैं वो उनको इंटैक्ट रखना जरूरी है, और भले उसे वो कंजर्वेटिव होके कुछ अपना पैसा जो है मैं ये कहता हूँ जिसमें रेगुलर रिटर्न्स आती हैं आपकी, चाहे उसमें फिक्स डिपॉजिट्स भी क्यों नहीं है, कि अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स जो है वो उसके अंदर पार्क कर सकते हैं अपने फंड्स जो है। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है, और खासकर इसमें एक चीज और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि खासकर मिडिल क्लास के लिए कि अभी जो समय है इन्वेस्टमेंट का उसमें बहुत जरूरी है कि अगर वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने की भी सोचते हैं तो उनको एटलीस्ट फंड्स को बोरो करके जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है उनको दो तरफ से मार पड़ सकती है कि अगर तो वो जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें रेट ऑफ रिटर्न कोई जो उन्हें जनरेट होगा अगर वो नहीं हुआ, और ऑन द अदर साइड अगर उन्होंने फंड्स को बोरो करा है तो वहां पर तो उनको एक फिक्स फॉर्म में पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक कॉशियस डिसीजन मेकिंग जो है वो जरूरी है, जिसको एक बैलेंस फॉर्म में हम ये कहेंगे कि उसको इन्वेस्टर को पड़ेगा।
0: अब वो बैलेंस फॉर्म होनी कैसी चाहिए, सीधे तौर पर प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपके पास आते हुए मैं पोर्टफोलियो की ही बात करूंगी। इन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए और हम ये मानकर चलें कि अगर आने वाले 2-3 महीने में हालात ऐसे ही रहते हैं, अनिश्चितियां ऐसी ही रहती हैं, लगातार महंगाई का बोझ ऑलरेडी बढ़ रहा है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं, इन्फ्लेशन की तरफ एक तरीके से जा रहे हैं हम, तो ऐसे में आज की तारीख में आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें कि अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए, खरीदे सोना चांदी अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लें। इसको भी ध्यान में रखना होगा जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, यानी कि देश के लिए भी ये बात बहुत अहम है।
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। देखिए जुलाई 2025 से हम लोग अगर
0: सर कुछ ऑडियो इशू आ रहा है प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपका ऑडियो इशू आ रहा है सर अपनी बात दोबारा से रखिए आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है शायद प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ मैं आती हूँ आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, कुछ शायद ऑडियो इश्यू है, ठीक कराते हैं। अनुराग जी आप इस पर अपनी बात रखिए, क्या सजेस्ट करेंगे अनुराग रस्तोगी जी?
3: एक बार मैं आपका सवाल फिर से
0: सर, मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है, जैसा अभी योगेश जी भी बता रहे थे कि स्थितियां अगर ऐसी रहती हैं तो पहली बात क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए, दूसरी बात यह है कि अगर हम सोना और चांदी अभी क्या खरीदें या नहीं खरीदें, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरी एक सबसे बड़ी अहम बात यह भी है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल भी है होता है तो जाहिर सी बात है कि खरीदारी होती है, उनके लिए क्या सजेशन आप देंगे?
3: देखिए पहले सबसे पहले तो आपने बोला हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंज करना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि अभी कहीं ना कहीं मेरी आपके सारे दर्शकों को सलाह है कि अगर कोई बहुत आवश्यकता ना हो तो थोड़ा स्टैंड बाई मोड पर रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको स्टैंड बाई मोड पर रहना चाहिए, थोड़ा सा एक 10-15 दिन का ये जो माहौल है ये काफी निर्णायक साबित होने वाला है, इसको जरूर वॉच करें, उसके बाद ही अपने कोई पोर्टफोलियो में चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो शादी विवाह का समय आ रहा है, शादी विवाह के लिए तो देखिए आज की तारीख में हर व्यक्ति अपनी जेब के हिसाब से काम जरूर करना चाहता है, लेकिन रिसाइकल गोल्ड को आज इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री जी के उस निवेदन के बाद। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से यही कहूंगा कि आपकी जितनी भी जेब अलाउ करे वो जरूर इन्वेस्ट करें, लेकिन अपने जो पुराने गोल्ड को है उसको अभी देखिए इंडस्ट्री ने भी बहुत सारे ऑफर्स इसके विषय पे निकाले हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ही कम मेकिंग पे बहुत सारे नए नए सिस्टम लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से आपके पुराने गोल्ड को वो रिसाइकल करके और नए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है और कहीं ना कहीं उसको महत्व देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उसको रिसाइकल गोल्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा, बेहतरीन समय हमेशा है, मैं आपसे फिर यही रिपीट करूंगा कि सोने और चांदी में खरीद का कभी भी कोई समय, हर समय बेहतरीन है, कल सोना 2 करोड़ भी चला जाए तो भी हमेशा वो अवसर ही रहेगा आपके लिए खरीदने का। मैं आज भी अगर आपका जेब अलाउ करती है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपका अगर कहीं पर भी आपको ये लगता है कि मेरे पास ये पैसा एक्स्ट्रा है या हम कर सकते हैं, तो मुझे जरूर लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, ये भाव भी खरीद के लिए। जब 1,80,00,000 पे सोना आप खरीद सकते हैं, 4,20,000 पे आप चांदी के लिए मारामारी मची हुई थी, तो आज हम 2,30,000 पे चांदी जब आसानी से मिल रही तो क्यों नहीं खरीद सकते, और 1,35,000, 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000 पे जब आसानी से गोल्ड मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं खरीद सकते।
0: लेकिन सर वो दौर वैसा था, अब इस पे इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वो दौर वैसा भी था जब मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत पर नहीं हुआ था, अब सीधे तौर पर इसका असर है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक सजेशन योगेश सिंगल जी आपका क्या रहेगा लोगों के लिए, अगर कोई गोल्ड या सिल्वर परचेज करना चाहता है तो, और वो भी उसमें जैसे हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आप उधार लेकर नहीं खरीदिए, सीधे तौर पर सीधे शब्दों में अगर आपके पास पैसा है तो जाइए, नहीं तो नहीं, आप क्या कहेंगे?
4: देखिए मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा इन्वेस्टमेंट को, एक तो जो प्योर गोल्ड लेना चाहते हैं या शुद्ध चांदी लेना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का सहारा लें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि भाई देश पे संकट है और 1 साल के लिए सोना चांदी ना खरीदे। गृहणियों की तो खरीदारी जरूर होगी क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, चाहे वो पुराना जेवर लेके एक्सचेंज करके लाए चाहे वो नया खरीदे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट या ETF वगैरह चालू किए हैं तो जिसको भी अगर खरीदना है, वैसे अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो उसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, अपने पैसे को संभाल के रखना चाहिए, गाड़ी जो छूट गई थी वो दोबारा से उनको मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, आप निगाह बना के रखिए और जैसे ही आपको सोना मिले आपके भाव में तुरंत ले जाइए। अभी आपको ऐसा नहीं है कि ये 1,50,000 रुपये के भाव नहीं मिलेंगे या इससे ऊपर नहीं जाएंगे, आज 1,93,000 रुपए का सोने का भाव लगा था हाईएस्ट, मैं शनिवार का दिन था उस दिन 1,93,000 रुपए का, ये भाव भी टूटेगा, ये हाई भी टूटेगा, ऐसा नहीं है कि सोना फ्री हो जाएगा। मंदे का मतलब ये होता है एक साइकिल है, साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, सोने का जो ट्रेंड है वो सस्ते की तरफ है, क्यों? क्योंकि सभी के पास में सोना चांदी घरों में भी है और सेंट्रल बैंकों के पास भी है, अगर किसी भी एक सेंट्रल बैंक ने उल्टी कर दी 150 टन सोने के लिए बेचने की तो क्या हालत होगी? आप देख सकते हो कि पहले भी 1,30,000 पे सोना $4,100 पे लगा था, अभी कस्टम ड्यूटी बढ़ी है और ये रुपया थोड़ा सा डिवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से ये अभी भाव उतना नहीं आ पाया, 15,000 रुपए का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको माल नहीं मिलेगा। जो इन्वेस्टर है प्योरली शुद्ध सोने को सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के लिए रखना चाहते हैं वो अपने

0: मैं कहूंगा कि अगर आपको पोर्टफोलियो को डिवाइड ही करना है तो उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर जिसका जितना भी सेविंग का पोटेंशियल है उसको अपने सेविंग का 1/3 से ज्यादा जो है एट द मोमेंट जो है गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो है जो सेफ ऑप्शंस है वो ये है कि अनदर जो 2/3 जो उसके पास सेविंग का पोटेंशियल है उसमें वो फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर भी अ पार्ट ऑफ इट लेट से 1/3 से लेके हाफ पोर्शन जो रिमेनिंग 2/3 का है उसको जो है फिक्स डिपॉजिट में पार्क कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक उनको अगले 6 मंथ्स के अंदर जो है एक एक स्टेबल और एक विजिबल रिटर्न्स तो जनरेट होंगी, और उसके साथ साथ जो है कुछ जो है वो अपना रिस्क जो है म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है उनको जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो लॉन्ग टर्म ही हॉराइजन के साथ रखनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, चलिए आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: देखिए, हर फिल्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्पेशली जब वो कोई रियल इवेंट पे होती है। पॉलिटिक्स में आई तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया, तो वो भाग्य विधाता हो गए।
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है,

0: इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने के लिए कह रहा है। हम आपके भेजे गए उन तमाम वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आपको देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लिए चलते हैं, जहां मेघालय के लैथलुम कैनियन जैसे हिडन पैराडाइज की खूबसूरती आपका इंतजार कर रही है।

0: इस वक्त हम हैं मेघालय में, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक बेहद खूबसूरत स्टेट है। मानो ऐसा लगता है जैसे यहाँ की पहाड़ियां बादलों की चादर में लिपटी हुई हैं। हवा में नमी है, खामोशी है और एक ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। हम शिलांग से कुछ किलोमीटर दूर पूर्वी खासी पहाड़ियों की उस ऊंचाई पर खड़े हैं, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे धरती अचानक खत्म हो गई हो और आगे सिर्फ आसमान बचा हो। नीचे गहरी घाटियां हैं, दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ और उनके ऊपर तैरते बादल। ये है लैतलुम कैनियन, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर खुद बनाती है। और शायद यही वजह है कि यहां आने वाला हर शख्स कुछ देर के लिए यहां ठहर जाना चाहता है। यहां पर बोले जाने वाली एक लोकल भाषा है खासी, और खासी भाषा में लैतलुम का मतलब होता है पहाड़ियों का अंत। लैतलुम सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि इसकी असली पहचान है यहां की फिजाओं में पसरी खामोशी। यहाँ न शहरों का शोर है, न भीड़ भाड़ का दबाव, सिर्फ हवा की आवाज, पहाड़ों की विशालता और प्रकृति का अनंत विस्तार। वैसे तो लैतलुम घूमने के लिए साल भर यहाँ लोग आते रहते हैं, लेकिन बेहतर महीना अक्टूबर से मई के बीच का रहता है, जब यहाँ का मौसम सुहावना होता है। ये खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट शिलांग से करीब 45 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर हैं तो यकीनन आपको ये जगह बेहद पसंद आएगी। लैतलुम से लगभग 130 किलोमीटर दूर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप इस स्टेशन से ही टैक्सी बुक करके 3 घंटे का सफर तय कर लैतलुम पहुंच सकते हैं। मेघालय की अनगिनत खूबसूरत जगहों में लैतलुम एक ऐसा ठिकाना है जो आपको याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी में छिपी है। तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, यहाँ आकर सीनिक ब्यूटी निहारिए और उस एहसास को अपने साथ लेकर जाइए।
1: या भी अपने देश में सैर सपाटा करना चाहते हैं, अपने गांव शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों का एक वीडियो बनाइए और हमें तुरंत भेज दीजिए 7303409922 पर। हम आपका भेजा वीडियो गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: पानी की असली कीमत क्या होती है, इसका एहसास अक्सर जरूरत के वक्त ही हो जाता है। इस वीडियो में एक प्यासा बंदर बड़ी समझदारी के साथ नल के पास पहुंचता है। वो पहले नल को चलाता है और फिर गिरते पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ये नज़ारा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है कि जल हर जीवन के लिए कितना जरूरी है। इंसान हो या जानवर, जीवन की डोर पानी से ही जुड़ी है। पिता और बेटी का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा होता है। इस वीडियो में एक पिता अपनी नन्ही बेटी के साथ खेलते खेलते उसे जादू दिखाने लगते हैं। चादर को ऊपर नीचे करने के दौरान वो अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। अगले ही पल बेटी की मासूम आंखें उन्हें ढूंढने लगती है और वो बड़ी प्यारी आवाज में अपने पापा को बुलाने लगती है। ये भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। कभी कभी दिल का फैसला सबसे अलग होता है और इस वीडियो में एक प्यारे से पपी के सामने कई बच्चे बैठे हैं और उसके पास किसी को भी चुनने का मौका है, लेकिन वो बिना देर किए सीधे एक खास बच्चे की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये नज़ारा देखते ही वहाँ मौजूद लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। पपी और बच्चे के बीच का ये अनोखा जुड़ाव बता रहा है कि सच्चा लगाव शब्दों से नहीं एहसास से पहचाना जाता है। वफादारी और प्यार की बात हो तो डॉग का नाम सबसे पहले आता है। इस वीडियो में एक डॉग पूरे 6 महीने बाद अपने मालिक से मिलता है। जैसे ही वो अपने मालिक को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो धीरे धीरे पास आता है और फिर प्यार से उनसे लिपट जाता है। इस दौरान उनकी आंखों और हरकतों में छिपा अपनापन साफ नजर आता है। ये भावुक मिलन दिखाता है कि जानवर भी रिश्तों को उतना ही गहराई से महसूस करते हैं जितना इंसान। बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेने में है। इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा खेत में भरे पानी और मिट्टी के बीच मस्ती करता नजर आ रहा है। पानी में बच्चा चारों तरफ घूम रहा है और हर पल का खुलकर आनंद ले रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि असली खुशी महंगे खिलौनों में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बिताए ऐसे बेफिक्र पलों में छिपी होती है। ये दृश्य हर किसी को अपना बचपन याद दिला रहा है।
3: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: देखिए, हर फिल्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्पेशली जब वो कोई रियल इवेंट पे होती है। पॉलिटिक्स में आई तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया, तो वो भाग्य विधाता हो गए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए, देश के मोस्ट वैल्यूएबल सेलेब्स में विराट कोहली को पहले पायदान पर उनका नंबर आ गया है और उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर अपनी जगह बना ली है, लेकिन उनके पीछे कौन कौन है इस पर आज डिटेल्स आपको आगे देंगे।
4: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, 4 साल के इंतजार के बाद अब से कुछ घंटों बाद शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ, यानी कि पहली जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है मेक्सिको में ये हो रही है। तो आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े रंग भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
3: नमस्कार, मैं शुगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। रिलीज के महज 7 दिनों में ही पैडी फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। जिस रफ्तार के साथ ये फिल्म थिएटर्स में दर्शकों का प्यार हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी पा रही है, उसे देखकर साफ है कि 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा इससे ज्यादा दूर नहीं। तो पैडी की अभी तक डोमेस्टिक और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कमाई क्या है, बताएंगे आपको।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, बात होगी एंटरटेनमेंट की, बात होगी फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की और साथ ही में बात होगी मौसम की। देखिए, भले ही दिल्ली और यूपी और आसपास के इलाकों में मॉनसून अभी आया नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों के दौरान जो मौसम बदला है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की देन है। तो इस एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इसकी भी जानकारी आपको देंगे।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। चाय पर चर्चा के दौरान आज आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जहाज महल। क्या है जहाज महल की यूएसपी, एक ब्लॉगर की भेजी गई तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूरागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान। सर्वोच्च अदालत ने कहा, होम मेकर नहीं नेशन बिल्डर है गृहिणियां, हर महीने 30,000 रुपए की हकदार। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा, बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को समर्पित। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल।

चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए आईपीएल चल रहा था, हमने तारीफ की है विराट कोहली की, उनकी टीम जीती भी थी, है ना, चैंपियन बनी थी, लेकिन चैंपियन तो है ही विराट कोहली, लेकिन ये चैंपियन उनके खेलने को लेकर के नहीं है। हम जो आज बात करने वाले हैं वो कोई और खबर है। खबर आपको बता दें, विराट कोहली फिर से चैंपियन बने हैं और वो बने हैं चैंपियन मैदान में नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू में। फॉर्च्यून इंडिया ने साल 2026 की ब्रांड वैल्यू की लिस्ट जारी कर दी है, तो विराट एक सितारे की तरह चमके। शाहरुख, प्रियंका और रणवीर को पछाड़ते हुए विराट ने पहला पायदान अपने नाम कर लिया है। खास बात यह है कि पिछले 10 सालों में विराट को 9 बार ये मुकाम हासिल हो चुका है।

0: क्रिकेट के मैदान का ये धुरंधर अब ब्रांड वैल्यू का भी बादशाह बन गया है। शाहरुख, अमिताभ, धोनी और प्रियंका चोपड़ा सभी को पछाड़ते हुए कोहली अब बन गए हैं देश के सबसे वैल्यूएबल पर्सनालिटी। फॉर्चून इंडिया और इंटर ब्रांड ने देश के सबसे मशहूर 25 सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट निकाली तो पहले पायदान पर विराट कोहली का ही नाम चमक रहा था। फॉर्चून इंडिया के मुताबिक विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 3,542 करोड़ रुपए है। ब्रांड वैल्यू तय करने के लिए तमाम सेलिब्रिटीज को कमाई और लोकप्रियता के कई मापदंडों पर परखा जाता है। इसमें सेलिब्रिटीज की एक साल में कुल कमाई, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बेहद अहम मानी जाती है। इसके अलावा एक्टर्स को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के आधार पर आंका जाता है। सेलिब्रिटीज की अपनी फील्ड में खासियत, दर्शकों के साथ जुड़ाव, लोगों का भरोसा और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी ब्रांड वैल्यू के लिहाज से बेहद अहम हो जाती है। इन तमाम मानकों पर जब देश के मशहूर चेहरों को आंका गया तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर था। इस मुकाम पर पहुंचकर विराट ने शाहरुख, प्रियंका चोपड़ा, एमएस धोनी और रणवीर सिंह को भी पछाड़ दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में विराट कोहली ने 9वीं बार ये मुकाम हासिल किया है। इससे पहले सिर्फ एक बार साल 2022 में ये सम्मान अभिनेता रणवीर सिंह को मिला था। इस बार फॉर्चून इंडिया 2026 की लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली का नाम है, दूसरे पायदान पर है शाहरुख खान, तीसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा, चौथे पर महेंद्र सिंह धोनी, पांचवें पर रणवीर सिंह, छठे स्थान पर हैं अक्षय कुमार, सातवें नंबर पर अमिताभ बच्चन, आठवें पर सचिन तेंदुलकर, नौवें पायदान पर आलिया भट्ट और दसवें पर अल्लू अर्जुन का नाम शामिल है। ये पूरी लिस्ट फॉर्चून इंडिया के जून के अंक में प्रकाशित की गई है और इस लिस्ट में टॉप 10 में 3 क्रिकेटर्स और 7 फिल्मी सितारे शामिल हैं। क्रिकेट के मैदान में तो विराट चमकते सितारे हैं ही, निजी जिंदगी में भी विराट अपने खास व्यक्तित्व की वजह से फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं। क्रिकेट के इस चैंपियन का आध्यात्मिक पहलू भी जनता के बीच खासा लोकप्रिय है। विराट और अनुष्का दोनों प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं और अक्सर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। इस बार आईपीएल में चैंपियन बनने के बाद भी विराट कोहली प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन पहुंचे। अपने हुनर, काबिलियत और स्वभाव की वजह से विराट आज युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। अब ब्रांड वैल्यू में भी अव्वल नंबर पर आकर विराट ने युवा एथलीट्स और सेलिब्रिटीज के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: किसी ने ना बड़ी सुंदर लाइन कहीं पर लिखी हुई थी, यूं ही हर कोई विराट नहीं हो जाता। बहुत डिसिप्लिन, बहुत हार्डवर्क, बहुत डेडिकेशन के बाद आपको ये मुकाम हासिल होता है। कंपैरिजन जो है जाहिर सी बात है कि होंगे, लेकिन विराट विराट क्यों है ये हम सभी जानते हैं, हमने देखा है उनका ग्राफ यहाँ पर पहुंचने के लिए।
2: एग्जैक्टली
0: बिल्कुल। चलिए अब हम विराट की बात कर रहे हैं, मतलब खेल की बात कर रहे हैं, भले यहाँ पर ब्रांड वैल्यू की बात हो, लेकिन एक और खेल जिसका जुनून सिर्फ उन जगहों पर जहां पर ये हो रहा है वहीं नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोलेगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026। बस अब रातों की नींद सबकी खराब होने वाली हो जाएगी।
3: अब आप ये सोचिए कि भारत का उतना कनेक्शन नहीं है फीफा वर्ल्ड कप से, मैदान पे नहीं उतरेगी, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से जुनून लोगों के सर चढ़कड़ बोल रहा है ना रातों की नींद।
0: मैं ये नहीं मानती हाँ। भारत का कनेक्शन है कि नहीं। आपको याद है जब भी मैसी आए थे कैसे हमारे
4: मेरी मुंह की बात छीन ली। इंडियंस के लिए ना फुटबॉल का मतलब है मेसी और रोनाल्डो। बचपन से हमने इन्हीं को देखा है, इन्हीं को आइडियलाइज किया है। बच्चों को भी आजकल हम जहां डाल रहे हैं वो भी इन्हीं को आइडियलाइज करते हैं।
2: मैं आपको एक और बात सरगम बताऊं कि आपने कहा इंडियंस नहीं रिलेट करेंगे, आपको बताऊं वेस्ट बंगाल में आप जाके देख लीजिए जो क्रेज है फुटबॉल का,
3: गोवा
2: दीवाने हैं वहां पर, और दूसरा गोवा,
3: गोवा
2: चले केरल, केरल चले जाइए। तो हमारे यहाँ तो कुछ स्टेट्स हैं जो डेडिकेटेड है, आप नाम बता सकते हैं कि इन स्टेट्स में देखिए किस लेवल पे क्रिकेट की तरह वहां पे फुटबॉल खेला जाता है।
3: दीपाली, और इसी के साथ खास बात ये है कि इस बार रोनाल्डो और मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, इसलिए फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है।
0: बिल्कुल।
3: तो फीफा वर्ल्ड कप, देखिए अगर बात भारत की करें तो क्रिकेट जिस तरीके से हम सभी के लिए त्योहार है ना, इसे पूरी दुनिया के लिए फीफा वर्ल्ड कप एक त्योहार से कम नहीं है। ऑफिस में काम रुक जाता है, रात को नजरें सिर्फ टीवी पर होती है, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, कुछ ही समय का इंतजार और सभी की निगाहें इस बड़े टूर्नामेंट पे। क्या कुछ खास होने वाला है आइए देखते हैं।

0: चार साल का इंतजार, करोड़ों धड़कनों की बेचैनी और अरबों आंखों का सपना, बस कुछ घंटों में शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके लिए दुनिया रुक जाती है, जिसके लिए रातें जागकर काटी जाती हैं और जिसके एक एक गोल पर पूरी दुनिया झूम उठती है। इस बार रोमांच इसलिए भी दोगुना है क्योंकि माना जा रहा है कि फुटबॉल के दो सबसे बड़े महानायक लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी बार विश्व कप के मंच पर दिखाई देंगे। इस वक्त दुनिया के हर कोने में फुटबॉल की धुन सुनाई दे रही है, कहीं मेसी के पोस्टर हैं तो कहीं रोनाल्डो का नाम गूंज रहा है। ब्राजील पांचवें नहीं छठे खिताब का सपना देख रहा है। फुटबॉल की धरती ब्राजील में विश्व कप का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। रियो डी जेनेरो के बाजार पीले और हरे रंग से पटे पड़े हैं, दुकानों में जर्सियां हाथों हाथ बिक रही हैं। फैंस हॉर्न और विंग्स के साथ स्टेडियम जैसा माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फीफा विश्व कप की यही तो सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, लोगों की उम्मीद बन जाते हैं, उनका सपना बन जाते हैं। तीन देशों में टूर्नामेंट होने की वजह से फीफा विश्व कप 2026 की तीन अलग अलग ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। पहली ओपनिंग सेरेमनी मैक्सिको में होगी, शकीरा और बर्ना बॉयज मुख्य कलाकार के तौर पर परफॉर्म करेंगे। दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में होगी, कनाडा के मशहूर कलाकार माइकल बबल के साथ एलिसिया कारा और एलनिस जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। इस सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नौरा फतेही भी अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी। तीसरी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा, इसमें खास तौर पर कैटी पेरी और के पॉप ग्रुप ब्लैक पिंक के सदस्य लीसा परफॉर्म करेंगे। भारत में भी करोड़ों फैंस अपने अपने हीरो के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये जज्बातों का महाकुंभ है जहां देश अलग होते हैं लेकिन धड़कनें एक जैसी होती हैं। इस विश्व कप से भारत का रिश्ता भी बेहद खास है, भले ही भारतीय टीम मैदान में नहीं है लेकिन भारतीय फैंस का जुनून किसी भी फुटबॉल महाशक्ति से कम नहीं है। कोलकाता की गलियों से लेकर केरल की गांव तक हर जगह विश्व कप की चर्चा है, और जब बात लियोनेल मेसी की हो तो भारत का प्यार दुनिया देख चुकी है। हाल ही में मेसी जब भारत आए तो उनके स्वागत में फैंस का ऐसा सैलाब उमड़ा मानो फैंस की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मेसी की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों का इंतजार करते नजर आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेसी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक एहसास है, एक प्रेरणा है, और शायद यही वजह है कि करोड़ों भारतीय चाहते हैं कि उनका जादू एक बार फिर से विश्व कप पर देखने को मिले।
1: फीफा वर्ल्ड कप फीवर शुरू हो चुकी है और जैसे आप देख सकते हैं इधर विश्वस में सारी गलियों में और सारी सड़क की जंक्शंस में पूरी तरह से प्लेयर्स की फैक्सेस, पोस्टर्स और जर्सीज में आप लोगों को भी जर्सी पहन के, उनकी फेवरेट टीम्स की जर्सी पहन के घूमते हुए देख सकते हैं आप। इस वक्त हम तिरुवनंतपुरम की राजाजी नगर में हूँ और जैसे आप देख सकते हैं इधर पूरी तरह से ब्राजील की फैंस, बहुत सारे फैंस हैं ब्राजील फैंस, और ये लोग सब अभी एक रैली शुरू करने जा रही है ब्राजील, अर्जेंटीना और पुर्तगाल टीम की फैंस। नेमर, मेसी एंड रोनाल्डो फैंस, ये तीनों प्लेयर्स की बहुत सारे फैंस हैं और ज्यादातर ब्राजील और अर्जेंटीना टीम्स के लिए केरला में बहुत सारे फैंस हैं और वो जनरेशन से उनकी, इन बच्चों की माँ बाप सारे लोग ब्राजील और अर्जेंटीना की फैंस थी, क्योंकि केरला में पहले से ही ब्राजील और अर्जेंटीना को, दोनों टीम्स को बहुत फैंस है।
0: और अब जबकि माना यह जा रहा है कि मेसी और रोनाल्डो के विश्व कप सफर का यह आखिरी अध्याय हो सकता है, तो हर मैच, हर टच, हर गोल, हर जश्न इतिहास की तरह देखा जाएगा, क्योंकि एक युग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। मैदान पर मुकाबला शुरू होने से पहले संगीत और मनोरंजन का भी शानदार संगम देखने को मिलेगा, जहां दुनिया के बड़े सितारे अपनी चमक बिखेरेंगे और फिर रोशनी, संगीत और आतिशी माहौल के बीच शुरू होगा विश्व का सबसे बड़ा महासंग्राम। तो तैयार हो जाइए नींद से लंबी रातों के लिए, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले गोलों के लिए, आंसुओं, उम्मीदों और जश्न के उन पलों के लिए। बस चंद घंटों का इंतजार और फिर 39 दिनों तक पूरी दुनिया एक बार फिर से फुटबॉल के रंग में रंगी नजर आएगी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भाई हर जगह एक ही डिस्कशन है, पैडी पैडी पैडी. देखी किसी ने फाइनली?
3: नहीं भाई
4: अभी तो नहीं, अभी देखी तो नहीं. है वैसे
2: मतलब ट्रेलर तो हम देख चुके हैं, ट्रेलर हाँ. से ये तो समझ में आ गया व्हाई इट्स पैडी.
4: नहीं क्योंकि उसमें मैंने ये बताया था कि देखिए हर खेल को इम्पोर्टेंस और कैसे रामचरण को हर खेल का माहिर बताया गया इसलिए. और हम लोगों ने मेरे ख्याल से अभी इसलिए इन्होंने तो शायद आपने देखी कि नहीं?
3: नहीं मैंने
4: नहीं देखी, दो छुट्टियां थी वेस्ट कर दी. हम लोग तो इंतजार करते हैं कि वीकेंड आए तो फिर उसके बाद
2: देखी जाए. लेकिन देखिए इसका क्रेज तो बहुत ज्यादा है. फिल्म की कहानी पैडी रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो खेल की दुनिया में अपने गाँव के लिए पहचान बनाता है, लेकिन उसे इस सफर में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है.
3: और साथ ही साथ बुच्ची बाबू सना के लेखन और निर्देशन में बनी पैडी एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है. पैडी फिल्म ने महज 7 दिनों में ही कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखकर साफ है कि 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा अब इससे ज्यादा दूर नहीं है. मौजूदा ट्रेंड्स की माने तो आने वाले दिनों में ये फिल्म कमाई के कई नए रिकॉर्ड्स स्थापित कर सकती है.
5: सुपरस्टार रामचरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पैडी बॉक्स ऑफिस पर लगातार टिकी हुई है. निर्देशक बुच्ची बाबू सना की इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 7वें दिन भारत में करोड़ों की कमाई कर ली है. वहीं विदेशों में भी ये फिल्म हर दिन जबरदस्त बिजनेस कर रही है. वेबसाइट सैकनल की रिपोर्ट बता रही है कि रामचरण और जानवी कपूर की इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाते हुए तेजी से 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है. अपने शानदार कलेक्शन के साथ ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी तेलुगु और साउथ इंडियन फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है. वहीं पैडी को लेकर ही सैकनल की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को भारत में 7,55,00,000 का नेट कलेक्शन किया और इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल नेट कमाई 187,25,00,000 पर पहुंच गई है. हालांकि ओपनिंग वीकेंड में 150 करोड़ से ज्यादा बटोरने के बाद वर्किंग डेज में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है. वैसे इस वक्त देश भर में पैडी की 7,535 शोज चल रहे हैं. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की 187,25,00,000 की जबरदस्त कमाई के पीछे टिकट्स की डिजिटल बुकिंग का भी अहम रोल रहा है, जिसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो पर अकेले बुधवार को पैडी के 84,000 से ज्यादा टिकट्स बिके, जो रिलीज के 7वें दिन के लिहाज से काफी शानदार आंकड़ा है. और यही वजह रही कि रिलीज के बाद वीकडेज में सोमवार को पैडी फिल्म ने 12,35,00,000 का बिजनेस किया, मंगलवार को 9,70,00,000 की कमाई हुई, वहीं बुधवार के कलेक्शन में मंगलवार के मुकाबले 22% की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि वीकडेज के दौरान फिल्मों की कमाई में ऐसी गिरावट आना आम बात है, लेकिन इसके बावजूद देश भर के सिनेमा घरों में फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है. फिलहाल तो ये आंकड़ा गवाही दे रहा है कि साउथ के सुपरस्टार रामचरण की स्पोर्ट्स ड्रामा पैडी बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए कीर्तिमान बना रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 7वें दिन ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: 3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अक्षय कुमार की मल्टी स्टार फिल्म वेलकम टू द जंगल फिर सुर्खियों में है. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी दर्शकों को कॉमेडी का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. वेलकम फ्रेंचाइजी का अपना एक अलग ही फैन बेस है.
4: बिल्कुल, देखिए साल 2007 में आई पहली फिल्म और उसके बाद रिलीज हुई दूसरी किस्त को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, इस पर प्यार बरसाया था. ऐसे में तीसरे पार्ट से उम्मीदें जो थी वो पहले से कहीं ज्यादा थी. एक्सपेक्टेशंस लोगों की देखिए जाहिर तौर पर ज्यादा थी और यही वजह है कि रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. ट्रेड सर्कल में भी ऐसा माना जा रहा है कि अगर ट्रेलर दर्शकों को पसंद आता है तो फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर्स में शुमार हो सकती है.
6: तो पैसों की बात कौन करेगा?
7: बताइए कैसा दिया?
8: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या?
9: और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
10: ये कोई पेंटिंग है? घोड़े के ऊपर गधा?
11: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
12: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देखो।
2: बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी का तड़का हमेशा से दर्शकों को लुभाता रहा है। हिंदी सिनेमा में जाने जॉनी वॉकर और महमूद जैसे दिग्गज हास्य कलाकारों से लेकर आज के दौर के कॉमेडी मास्टर्स तक एक हंसी की लंबी और शानदार परंपरा रही है।
13: बिल्कुल, और इस साल यानी कि 2026 की बात करें तो शुरुआत से अभी तक कई कॉमेडी फिल्में देखने को मिली, जिसमें रोमांटिक कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी ड्रामा के साथ साथ हॉरर कॉमेडी ने सबको लुभाया है। और आने वाले 6 महीनों में भी दर्शकों को हंसी का तगड़ा डोज मिलने वाला है।
5: छब्बीस में बॉलीवुड में हंसी का जंगल सिर्फ वेलकम फ्रेंचाइजी ही नहीं उगा रही है, बल्कि इस साल हंसी के जंगल की जड़ें कुछ ज्यादा ही मजबूत नजर आ रही है।

0: वेलकम टू जंगल इस साल 26 जून को रिलीज होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, अर्शद बारसी, परेश रावल और दिशा पाटनी सहित लगभग 30 कलाकारों का हंसाने के लिए मजमा लगेगा।
1: मेरे को नहीं करना ये फिल्म।
2: है? भैया करोड़ों रुपए मिल रहे हैं।
1: हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं।
0: अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म मशहूर वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है।
3: तू मरता क्यों नहीं?
1: मैं मरने में जान डाल रहा हूँ।
3: अरे मरने में।
0: वही हादसे से भरपूर फिल्म धमाल 4 इस साल 10 जुलाई को गुदगुदाने आ रही है। कल धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद बारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार पर्दे पर हंसी का डोज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज हो गया है, जो शाहरुख खान को भी खूब पसंद आई है। आलिया की एक्टिंग के शाहरुख खान कायल हो गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर आलिया की खूब तारीफ की है।
5: बिल्कुल, आपको बता दें इसके साथ ही अल्फा सोशल मीडिया पर एक और वजह से सुर्खियां बटोर रही है। एक फ्रेंच फिल्म का क्लिप शेयर कर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि अल्फा ओरिजिनल नहीं, कॉपी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
6: 18 जन्मदिन मुबारक हो।
7: थैंक यू पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी।
8: एक दिन पहले रिलीज हुए अल्फा के टीजर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी।
6: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूं। तो क्या है?
7: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
8: पहली बार पर्दे पर एक्शन कर रही आलिया ने अपने स्टंट से फैंस को कायल कर दिया।
6: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
8: टीजर से साफ है कि अल्फा में आलिया एक ऐसी असैसिन का किरदार निभा रही है जिसे उसके पिता ने बचपन से ही ट्रेंड किया है।
6: सबसे पीर
8: नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर के तौर पर एक किलिंग मशीन के रूप में तैयार किया है, जिसके लिए किसी की जान लेना उसके बाएं हाथ का खेल है।
6: हैप्पी बर्थडे।
8: आलिया के अंदाज ने फैंस के साथ साथ शाहरुख खान को भी अपने अभिनय का कायल बना दिया है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है। अपने एक्स अकाउंट पर अल्फा का टीजर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, बहुत बढ़िया आलिया, लोगों का दिल तोड़ने से लेकर हड्डियां तोड़ने तक पिछले कुछ साल में तुम्हारा स्किल सेट लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अल्फा लोगों का दिल जीतेगी और सीक्वल के लिए कुछ विलेन भी बचा कर रखेगी। जाओ और कमाल कर दिखाओ सिग्मा गर्ल। शाहरुख ने इस पोस्ट में अल्फा के सीक्वल का भी हिंट दिया है। हालांकि मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जाहिर तौर पर अल्फा का सीक्वल फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा।
6: 34वां फ्लोर 3418।
7: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
6: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
7: तो ये सब मेरे बर्थडे के लिए नहीं था?
6: अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके है?
8: जहाँ तक अल्फा के टीजर की बात है तो इसमें अब तक दो किरदार नजर आए हैं, आलिया और बॉबी देओल, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं। शाहरुख खान ने बॉबी देओल की भी तारीफ की है। शाहरुख ने आगे लिखा है, लॉर्ड बॉबी, जब आप खलनायक के रोल में होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारा प्यार, शिव और उनकी टीम को भी शुभकामनाएं। इस टीजर में फिल्म की तीसरी अहम किरदार शर्वरी वाघ की झलक नहीं दी है। मुमकिन है अल्फा के अगले टीजर में वो नजर आए। खैर, शाहरुख खान की तारीफ के अलावा अल्फा का टीजर एक और वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। यूजर्स के बीच बहस इस बात पर हो रही है अल्फा ओरिजिनल है या कॉपी। सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है ये वीडियो क्लिप।
7: पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी।
8: इस वीडियो क्लिप में अल्फा के टीजर में दिखाए गए रेस्टोरेंट सीन की तुलना 1990 में आई फ्रेंच फिल्म ला फेमे निकिता से की जा रही है। कई यूजर्स ने दावा किया है कि अल्फा और ला फेमे निकिता के इस सीन में काफी हद तक समानता है। कहा जा रहा है कि अल्फा की कहानी का मूल आधार ला फेम निकिता जैसा ही लग रहा है। दोनों फिल्मों की कहानी एक ऐसी युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली संगठन या मेंटर द्वारा भर्ती किया जाता है। फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म ला फेम निकिता का डायरेक्शन फ्रेंच फिल्म मेकर ल्यूक बेसन ने किया था। एनी पेरिलॉर्ड, मार्क ड्यूरेट अहम किरदार में नजर आए थे। वहीं अल्फा में बॉबी देओल, आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ के अलावा अनिल कपूर मुख्य भूमिका में है। फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: हैप्पी बर्थडे।
4: तो देखिए, कल दिलजीत दोसांझ की फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज होने जा रही है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की रोमांटिक पीरियड ड्रामा देश के विभाजन के बैकड्रॉप पर आधारित फिल्म है, जिसमें विभाजन के दंड से पीड़ित एक बुजुर्ग की अपनी प्रेमिका के लिए मोहब्बत के लिए कसक दिखाई गई है, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह जाती है।
3: बिल्कुल, देखिए मेकर्स ने एक दिन पहले इस फिल्म का नया गाना क्या कमाल है एक खास संदेश के साथ रिलीज किया है। इसे दुनिया भर के शरणार्थियों को समर्पित भी किया गया है।
8: दस्तक देने जा रही है बेपनाह मोहब्बत से भरी एक लव स्टोरी, जिसे विभाजन का दंश झेलना पड़ा। देश के बंटवारे ने मोहब्बत को मकबूल नहीं होने दिया और बिछड़ने का दर्द सीने में टीस बनकर सालों साल धड़कता रहा। ১৯৪৭ के देश विभाजन के बैकड्रॉप पर बनी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा वैसे ही एक अधूरे प्रेम की कहानी है, जिसमें प्रेम की टीस को इम्तियाज अली ने बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। इसकी झलक तो ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है। क्या हुआ? अब इस फिल्म का एक गाना क्या कमाल है,

एक खास संदेश के साथ पेश किया गया है। फिल्म मेकर्स ने इस गाने को दुनिया भर के उन शरणार्थियों को समर्पित किया है जिन्हें युद्ध, नफरत या हिंसा की वजह से जबरन अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा।

0: वीडियो के आखिर में एक शरणार्थी का एक बेहद भावुक कर देने वाला बयान भी शामिल किया गया है जो विभाजन के दंश को बयां करता है। अगर मुझे मौत और घर छोड़ने के बीच चुनाव करना होता तो मैं खुशी खुशी मौत को चुनता। दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। ये लाइन विभाजन और पलायन के गहरे दर्द को दिखाती है जिसे दिलजीत दोसांझ ने बड़ी ही शिद्दत से पर्दे पर निभाया है और इसकी झलक पूरे वीडियो में दिखाई देती है। ये फिल्म का एक स्पेशल एंड क्रेडिट गाना है जो सिनेमाघरों में फिल्म के खत्म होने के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिल्म के केंद्र में है नसीरुद्दीन शाह जो दिलजीत दोसांझ के दादा की भूमिका में है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि 95 साल के नसीरुद्दीन शाह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। बंटवारे की वजह से वो अपनी प्रेमिका से 78 साल से नहीं मिल पाए। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अपनी प्रेमिका से एक बार मिलने की चाहत रखते हैं। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के लिए दिलजीत उस लड़की को तलाशने पाकिस्तान जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह के युवा किरदार को पर्दे पर वेदांग रैना ने प्ले किया है और उनकी प्रेमिका का रोल शर्वरी वाघ ने किया है। क्या दिलजीत की कोशिश से नसीर अपनी प्रेमिका से मिल पाते हैं? वो प्रेमिका जीवित भी है या नहीं? अगर वो प्रेमिका जीवित है तो नसीर के प्रेम पर उसका क्या रिएक्शन आता है? इसी के इर्द गिर्द मैं वापस आऊंगा फिल्म की पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है और अब इस ताने बाने के खुलने का वक्त भी आ गया है। कल यानी 12 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेरे पास
1: तो बारिश की पुहारों का इंतजार करते राज्यों को कब मिलेगी राहत, यानी मॉनसून वाली खबर। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए चार पर चर्चा।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान। सर्वोच्च अदालत ने कहा होम मेकर नहीं, नेशन बिल्डर है गृहिणियां, हर महीने 30,000 रुपए की हकदार। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा। बड़ी संख्या में पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को है समर्पित।
4: तपती धूप और गर्म हवाओं से जूझ रही दिल्ली के लिए आज की सुबह ठंडक भरी रही। ये सब नए एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, और इसका असर कल यानी कि शुक्रवार को भी देखने को मिल सकता है। मौसम में आए बदलाव को कुछ लोग मॉनसून की दस्तक समझ बैठे हैं, मगर अभी दिल्ली और यूपी में मॉनसून नहीं आया है।
1: तो वहीं आपको बता दें, वैसे ये जो बदला मौसम है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही देन है, और इसी की वजह से सुबह दिल्ली में अंधेरा छा गया था, जबकि देहरादून में झमाझम बारिश हुई थी, और आगे भी आंधी और बारिश का अनुमान है।
5: काले घने बादलों से घिरा आसमान, सूरज की किरणें बादलों के पीछे कहीं गुम हो चुकी हैं। विजिबिलिटी इतनी कम कि कुछ मीटर दूर की चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं। तेज हवाओं के झोंकों से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। सुबह दिल्ली के विजय चौक इलाके में कुछ ऐसा ही नजारा था। तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच मौसम का ये बदला हुआ मिजाज लोगों को राहत का एहसास करा रहा है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल और बीच बीच में चलती ठंडी हवाएं ये संकेत दे रही है कि मौसम फिलहाल मेहरबान बना हुआ है। तपती गर्मी के बाद दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के मौसम में अचानक आया ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टरबेंस की ही देन है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने से बादलों की आवाजाही बढ़ी है और हवाओं की दिशा में बदलाव आया है। नतीजा तापमान के तेवर ढीले पड़े और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आंधी और बारिश का ही अनुमान है।
6: नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 3 से 5 डिग्री तक
7: गिर सकते, तो मतलब आंधी और बारिश जो है वो वापस एक बार फिर से देखी जाएगी। लेकिन कितने दिनों तक इस पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो
6: देखिए, इसका मेजरली प्रभाव 11 और 12 को है। इवन NCR दिल्ली के लिए भी हमारा कल के लिए और अलर्ट है। हम एक्सपेक्ट करेंगे जहां भी जो हवाओं की गति है ज्यादा रह सकती है 50 से 60 किलोमीटर।
5: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तराखंड में राजधानी देहरादून समेत पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे हैं। असल में दिल्ली, यूपी और बिहार में अभी फिलहाल मॉनसून की एंट्री बाकी है। ऐसे में उमस और तपती गर्मी से राहत के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही सहारा है।
6: देखिए मानसून का आप देखिए तो ये काफी हिस्से तक हमारा महाराष्ट्र कवर किया है, उसके एडजॉइनिंग एरिया ऑलमोस्ट कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, तेलंगाना का हिस्सा, आंध्रा का, उसके नीचे वाला सारा कवर हो चुका है। इसके साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर हो चुका है और सब हिमालय का कुछ हिस्सा कवर हुआ है। आने वाले दिनों में ये थोड़ा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के हिस्से।
5: मौसम विभाग के मुताबिक आज के बाद पूर्वी यूपी और बिहार में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन दिल्ली में मॉनसून की असली एंट्री जून के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में ही होगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: शिमला के खूबसूरत वादियों में एक बार फिर रंग, संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 में देश भर से आए पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
8: बिल्कुल, ये 5 दिन का फेस्ट शुक्रवार तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर स्थानीय व्यंजन और कला प्रदर्शनियों तक कई आकर्षण शामिल रहेंगे।
9: पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोकधुन पर थिरकते सैकड़ों पांव, क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई ताल से ताल मिलाने को बेताब। हिमाचल प्रदेश को करीब से जानना है तो यहाँ आइए शिमला, जहाँ इन दिनों समर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यहाँ पारंपरिक पोशाक में हिमाचल की संस्कृति संजोए लोग मिलेंगे, पहाड़ी खान पान और लोकगीतों और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी शिमला यात्रा को यादगार बना देगी।
10: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम और अपने जिस आबो हवा के लिए मशहूर है वो देखते ही बनता है, लेकिन गर्मियों के सीज़न में, यानी कि टूरिस्ट सीज़न गर्मियों का चल रहा है, और ऐसे में शिमला में घूमने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बार आयोजित की जा रही हैं जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का उसकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। और ख़ास तौर पर इस बार के आयोजन बेहद अलग हैं। आप पारिवारिक जो लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर अगर आते हैं तो शिमला शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ लिया जा सकता है, यहाँ पर जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखी जा सकती है, यहाँ का कल्चर देखा जा सकता है, संस्कृति देखी जा सकती है। तमाम चीज़ों को जो है सहज कर संजो कर रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ अहम हो जाती है, वो है यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव, यानी कि समर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है।
9: इस बार शिमला समर फेस्टिवल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई नई एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं। इस बार समर फेस्टिवल में पहली बार हॉट एयर बलून, जॉय राइड जैसे विकल्प भी खोजे गए हैं और उन्हें भी शामिल किया गया है।
4: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चारधाम यात्रा में बन रहा है आस्था का नया कीर्तिमान।
11: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: तो देखिए चार धाम में तीर्थयात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो या फिर बद्री विशाल का दरबार, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता ही लगा हुआ है।
12: बद्रीनाथ धाम में तो आंकड़ा 10 लाख के पार जा चुका है। प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, ट्रैफिक की समस्या भी न हो।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियां डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। चारों धामों में अब तक कुल 33,45,600 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए। यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, पहली बार मैं गई।
2: व्यवस्था यहाँ की हमें अच्छी लगी, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, घोड़ा खच्चर वो सबको पानी पीने के लिए और सारी व्यवस्था, सारी चीज बढ़िया है, सुविधा यहाँ की सुविधा है।
3: पहले भी कॉपरेट करते हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्था है घोड़े को, और अच्छा है, सफर अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ केदारनाथ, अच्छा एक्सपीरियंस था, ऊपर में भी अच्छा रहा, नीचे भी उतरते वक्त अच्छा रहा।
0: एक ओर प्रकृति की कठिन परीक्षा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 11,85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ और ही है। 10 जून तक 10 लाख का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी तक 10 लाख से ऊपर यात्री वहां पे पहुंच चुके हैं, और वैसे हेमकुंड साहिब की मैं बात करूं तो 70,000 से ऊपर यात्री लगभग वहां पे पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके प्रॉपर डायरेक्शन के बाद संबंधित विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा इस बार प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उसी का परिणाम है कि इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास श्रद्धालु आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनको हम बहुत बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।

0: श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल एन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं, उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करने पहुंचे।
2: बिल्कुल, आपको बता दें तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के धार हम लिए चलते हैं। आपको दिखाते हैं यहां मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल, जो न सिर्फ हमारे देश के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है बल्कि अपनी अनूठी वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के बूते दुनिया भर में खूब मशहूर है। जहाज महल की इन खूबसूरत तस्वीरों को आप तक लाए हैं जीएनटी के ही एक दर्शक।

0: मुंज और कपूर की लहरों पर जहां एक जहान तैरता है, मांडू की फिजा में जहां एक कारवां ठहरता है, इतिहास के पन्नों में पानी पर जो टिका रहे उस जहाज महल में हर मौसम बहार निखरता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में लाए हैं, जहां सुनसान और दूर दराज में बसा जहाज महल 15वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत और अनोखी कारीगरी है। काली रेत, चूना, ईंट, दाल जैसी कई और चीजों का मसाला बनाकर तैयार ये विशाल महल किसी अजूबे से कम नहीं है।
1: उस जमाने में कोई सीमेंट नहीं होती थी, ये बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया, ईंट, काली रेत, चूना, उड़द की दाल, गुड़, बिल पत्ते के फल, इन सारी चीजों को पीस कर मसाला बना के ही सारे बिल्डिंग को बनाया गया।
0: सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल के पास ही अपनी बेगमों के नाम पर दो झील, मुंज तालाब और कपूर तालाब बनवाए। यही नहीं, महल के नजदीक ही अशरफी महल भी बनवाया। जहाज महल में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए कई खास कमरे बनवाए, तो दीवारों में नहरें और फवारे तक लगाए ताकि उस वक्त गर्मी की तपिश में महल को ठंडा रखा जा सके। जहाज महल जितना जमीन के ऊपर बना है उतना आप देख सकते हैं जमीन के नीचे भी। लगभग 110 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी इस इमारत की दरो दीवारों पर हिंदू, अफगान और मुगल वास्तुकला का इतिहास आराम से नजर आ जाएगा। आप महल की छत पर आएंगे तो आपको पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अद्भुत तकनीक भी हैरान कर देगी। इससे भी आगे महल के ऊपरी हिस्से में खूबसूरत मेहराब, बैल्कनीज, मंडप और गुंबददार छतरियां भी 15वीं सदी के आर्किटेक्ट की अनूठी मिसालें हैं। मांडू से सबसे पास लगभग 95 किलोमीटर दूर तो इंदौर एयरपोर्ट ही है और सबसे पास रेलवे स्टेशन इंदौर या रतलाम है। तो अगर आप मांडू बाई रोड आ रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर धार और इंदौर से ये जुड़ा हुआ है, जहां से आप बस या टैक्सी से यहां आ सकते हैं। फिलहाल तो आपके लिए सैर सपाटा करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून और विंटर सीजन ही है। ये वो वक्त है जब आसमान में बादलों का डेरा, चारों तरफ फैली हरियाली जहाज महल के इतिहास में चार चांद लगा देते हैं।
2: अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
3: और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
6: La Que Buena.
5: ESPN Radio.
7: We know LeBron has to be the best player on the planet.

0: The Daily.
1: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: तो वहीं आपको बता दें, साउथ चाइना में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। त्योहार से पहले पारंपरिक ड्रैगन बोट पर रस्में निभाई गई, जिसमें लोगों ने अच्छी बारिश, खुशहाली और बेहतर फसल की कामना की है।
2: ये तस्वीरें चीन के ग्वांगझोउ की है। नदी किनारे जुटे लोग पूरे उत्साह के साथ ड्रैगन बोट को सजाने और सवारने में लगे हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले होने वाला यह अनुष्ठान यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। रंग बिरंगे झंडों, पारंपरिक छतरियों और धान के पौधों से नाव को सजाया गया। नाव के आगे ड्रैगन का सिर लगाया गया। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया से लंबे समय से विश्राम कर रही ड्रैगन बोट को उत्सव के लिए जगाया जाता है। अनुष्ठान की शुरुआत ड्रैगन के सिर को विशेष पत्तियों और टहनियों से सजाने के साथ हुई। इसके बाद हरी पत्तियों की मदद से नाव पर जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध किया गया। फिर एक बुजुर्ग ने ड्रैगन की आंखों पर सिंदूर लगाकर उसमें जीवन और ऊर्जा का संचार करने की प्रतीकात्मक रस्म निभाई। रस्म पूरी होते ही ड्रैगन बोट नदी में उतरी और पारंपरिक आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये अनुष्ठान आने वाले समय में सुख समृद्धि, अनुकूल मौसम और अच्छी पैदावार का आशीर्वाद लेकर आता है। परंपरा, आस्था और संस्कृति विरासत का अनूठा संगम। ग्वांगझोउ में आयोजित ये ड्रैगन बोट आशीर्वाद समारोह न सिर्फ एक धार्मिक रस्म है, बल्कि स्थानीय समुदाय की पहचान और एकता का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भाई देखिए, यहाँ बैठे सब लोगों को इंतजार हो रहा है बारिश की फुहारों का, है ना। सुबह सुबह का मौसम तो अच्छा रहा ही होगा, आप लोगों ने सबने एंजॉय किया होगा।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अब ह्यूमिडिटी को एंजॉय नहीं करना चाहते,
5: जबकि कल बहुत ज्यादा ह्यूमिड था, लेकिन आज मौसम अच्छा था।
3: शाम तक का इंतजार कीजिए, बारिश होती है तो एंजॉय कीजिए, नहीं तो हमारे साथ आइएगा कल शाम 5 बजे चाय पीने।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
3: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दुनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से लैस। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान। सर्वोच्च अदालत ने कहा होममेकर नहीं, नेशन बिल्डर हैं गृहिणियां, हर महीने 30,000 रुपए की हकदार। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा। बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को समर्पित। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल, और जीएनटी स्पेशल में आज बात उस कहानी की जो सेलिब्रेट करती है हमारे पास मौजूद हीरोज को। कल यानी 12 जून को कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता रिलीज हो रही है। भारत भाग्य विधाता उन अनदेखे लोगों को समर्पित है जो संकट के समय इंसानियत की ढाल बनकर सामने आते हैं। जब कोई बड़ा हादसा या आपदा आती है तो लोग सबसे पहले पुलिस, सेना या फिर सरकार की तरफ उम्मीद से देखते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन लोगों की कहानी दिखाई गई है जो बिना किसी पहचान या सम्मान की उम्मीद के दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। यह फिल्म उन नर्सेस, वार्ड बॉय, क्लीनर्स, लिफ्ट ऑपरेटर, सिक्योरिटी स्टाफ जैसे आम कर्मचारियों को एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने साल 2008 के मुंबई टेरर अटैक के दौरान हिम्मत दिखाई। खासतौर पर नर्सेस की जिंदगी के संघर्ष और कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण को इस फिल्म में मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल निभा रही हैं। उन्होंने एक नर्स का किरदार निभाया है। कहानी का बड़ा हिस्सा अस्पताल से जुड़ा दिखाया गया है, जहां डर और अफरा तफरी होने के बावजूद अंदर मौजूद लोग हिम्मत और समझदारी से हालात संभालते दिखते हैं। फिल्म ये बताने की कोशिश करती है कि संकट के समय इंसानियत का जज्बा कैसे सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भारत भाग्य विधाता की कहानी और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर गुड न्यूज टुडे ने कंगना रनौत से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और इस फिल्म को बनाने में कौन कौन सी मुश्किलें आई, कैसे टॉपिक पर रिसर्च किया गया, ये सारी बातचीत आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको फिल्म भारत भाग्य विधाता की एक झलक दिखाते हैं।
1: शिवाजी महाराज
2: अरे आई एकदम बाप भी नहीं है,
3: पक्का ना? डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं? नंबर 12 आज आम पकने वाला है,
4: बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही।
5: हफ्ते भर में दौड़ेंगी हम लोग, है ना?
3: लड़का देखने आने वाला था ना?
6: लड़का? हाँ? रणुआ था 55 साल का, नर्स नहीं चाहिए उसको।
7: रणुआ भी मना करके चला गया।
3: दवाई खाया?
8: डॉक्टर को बुलाओ पहले, सिस्टर से बात ही नहीं करने का मेरे।
9: आपला मुर्गा बीमार है, तुमको पूरा मुंबई के बच्चों का पड़ी।
10: जब घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा।
11: अरे सब जगह टेरेस अटैक हो रहा है, तू निकल अभी के अभी।
12: यहाँ पे तो ज्यादातर 20 प्रेग्नेंट लेडीज है, या नहीं आएंगे ना?
13: उधर स्टैम्पेड वैम्पेड हो जाएगा, कोई अथॉरिटी वाला उधर रहेगा तो लोग शांत हो जाएंगे।
14: प्रोसीजर आणि प्रोटोकॉल फॉलो करा।
13: टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है?
15: ज्यादा देर शाला बनती क्या तू?
16: जो भी सांस ले रहा है उसको हम बचाएंगे।
17: ब्लीडिंग चालू हो गया, लेबर पार्ट भी लेके जाना पड़ेगा।
18: बाहर टेररिस्ट है, गोली मार देंगे।
19: सब और अधिकारों का सम्मान करोगे।
0: वो 26/11 का वो भयावह समय, कामा अस्पताल और गर्भवती महिलाओं की जान की हिफाजत, ये सब कुछ वहां की नर्सेस और वहां के स्टाफ पर था। और उसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भारत भाग्य विधाता, जिसमें लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: ये मुझे लग रहा है फिल्म से ज्यादा एक जिम्मेदारी है जो आपने ली है।
2: देखिए, हर फिल्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्पेशली जब वो कोई रियल इवेंट पे होती है, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट, स्पेशली जब 26/11 इतना कोई सेंसिटिव इवेंट हो, तो नेचुरली एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है।
0: कितना कितना मुश्किल था, कितने लोगों से आपने इंटरेक्शन की जब ये फिल्म सबसे पहले आपके पास आई, तो पहला थॉट आपके माइंड में क्या था?
2: पहला थॉट मेरे माइंड में यही था कि ऐसे जो नर्सेज हैं, उन्होंने वार्ड बॉयज हैं और खासकर जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे, उनकी जाने गई, आतंकियों ने उनको मार दिया, और ये बात जो है किसी को पता ही नहीं है, उसे छुपी हुई है सबसे। तो मुझे इसको जान के बहुत दुख हुआ कि कैसे हमारे जो जो हमारे आम कर्मचारी होते हैं, उनके सहयोगों को किस तरह से निगलेक्ट, इग्नोर किया जाता है। तो उसके बाद जो है मेरे डायरेक्टर सर जो है, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च किया, हम लोगों ने बैठ के एक दो ड्राफ्ट किए, स्क्रिप्ट के, फिर उसके उपरांत हमने शूटिंग की।
0: इसका नाम शायद पहले नर्सेस ऑफ कामा था।
2: जी जी, नर्सेस ऑफ कामा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो है लेबर डे पर 2025 में जो हमारे आम कर्मचारी हैं उनको भारत भाग्य विधाता का दर्जा दिया, तो उस वक्त ये नाम मुझे बहुत छुआ था। मुझे लगा था कि ये एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से उन्होंने, ठीक है, उद्धार करने के लिए स्कीम्स तो कई लाएंगे, लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो है इतना डीपली और माइन्यूटली प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। तो फिर ये टाइटल जो है वो जॉन सर के पास था, जॉन इब्राहिम सर के पास, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे प्लीज़ ये टाइटल दे दीजिए, तो उन्होंने फिर ये ओब्लाइज।
0: एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन हम जो करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही खूबसूरत एक लाइन है जो इस फिल्म में मैंने ट्रेलर्स वगैरह में देखी है, वो आई है। लेकिन कितना अहम हो जाता है इन लोगों का योगदान, खासकर अगर हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें 26/11 की। ये जिस तरीके से हमारी सेनाएं सरहद पर हमारी हिफाजत करती है, इन्होंने 400 लोगों की जान बचाई, ये भी किसी सैनिक से कम नहीं है।
2: बिल्कुल, और इनकी तरह न जाने, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक दिन के लिए अगर आपको रोड कोई साफ ना करे, एक दिन के लिए वो जो ट्रेनों का कोऑर्डिनेशन होता है, जल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो आम कर्मचारी हैं अपने घरों से निकल के डे आफ्टर डे, एक दिन के कोई एक सदी में हीरो बन जाना वो एक विशेष बात है, लेकिन हर दिन अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी उसी कंसिस्टेंसी से करनी, चाहे वो कितना ही मोनोटोनस क्यों ना हो जाए, उसी को कहते हैं भारत भाग्य विधाता। तो आई थिंक कि हम लोग का और थैंकफुल होना चाहिए हमें, और ये बात हमें हमारे आम कर्मचारियों से सीखने को मिलती है कि हम जो हैं सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ स्पेशल बनना है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है, लेकिन स्पेशल तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हर कोई आता है अपना काम करके जाता है। आम कर्मचारी भाई बहनों से हम क्या सीखते हैं कि आम होकर तुम कैसे कुछ इतना स्पेशल करते हो लेकिन फिर भी अपने आप को आम ही मानते हो, तो ये उदारता जो है ये हम अपने कर्मचारी भाई बहनों से सीखनी चाहिए।
0: आपकी मुलाकात हुई उस समय की नर्सेस से, बातचीत की आपने?
2: जी जी जी, हमने बातचीत की और हमने जो है उनसे काफ़ी डिटेल में सब ये इंसिडेंट्स के बारे में सुना, और बाकी और भी करंट नर्सेस से भी जाना उनके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी डाल। लोग नर्सेस से शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने पेशेंट से इतना अफेक्ट होती हैं, वो हमेशा, चाहे वो कीमो कर रही हों, चाहे वो अटैच भी हो जाती हैं, चाहे वो पेशेंट मर जाते हैं, तो वो लोग भी अपना पर्सनल हार मानते हैं वो चीज़ को। तो उस तरह से नर्सेस इतना दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं कि अक्सर उनके जो पार्टनर हैं वो निग्लेक्टेड, इग्नोर्ड फील करते हैं, बच्चे इग्नोर्ड फील करते हैं, तो ये सब विषयों में जो है हमने बहुत डिटेल्स।
0: फिल्म में कहीं कहीं इस तरह के सीन्स हैं भी शायद?
2: जी जी।
0: तो उनके जरिए क्या आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं?
2: हम यही दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं समाज में कि अब हम जो देखते हैं वर्दी में, यूनिफॉर्म में, हमें लगता है ठीक है इनको पगार मिल रहा है, लेकिन कोई भी इंसान पगार के लिए काम नहीं करता है। हमेशा जो है पगार एक छोटा उसका हिस्सा होती है, लेकिन आप जो किसी के लिए योगदान देते हैं, जब आप एक सर्जरी के टेबल पे होते हैं ना, आप सब कुछ भूल जाते हैं। जब आपको एनेस्थीजिया दिया जा रहा होता है आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि आप इतने वनरेबल होते हैं ना, क्या उस वक्त मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता है। आप सोचते हैं बस मैं आज ये नर्सेज और ये ही मेरे लिए सब कुछ है, इनके सिवा कोई है ही नहीं, ना कोई कभी था। तो वो वक्त याद करिए और देखिए ये लोग कितने चीजों पे जो है पीछे छोड़कर हर दिन दे शॉप फॉर वर्क, ये इसका मतलब
0: और
2: है।
0: इनके कोई ड्यूटी आवर्स भी नहीं होते,
2: इनके ड्यूटी आवर्स भी नहीं होते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि हम क्या ये दर्शाने की कोशिश करें कि आप वर्दी में किसी को देखते हैं, आपको नहीं पता उनकी स्टोरी क्या है, पीछे उनकी एक स्टोरी है, और यू हैव टू बी काइंड टू दोज पीपल, बिकॉज हमने ये भी दिखाया कि नर्सिस का काम पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स कितना मुश्किल बनाते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं, हो हल्ला मचाते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लेते हैं, और तो और यूनिफॉर्म पे उल्टियां भी कर देते हैं, अगर कोई इस लायक भी हो कि टॉयलेट जाए वो भी नहीं जाना चाहते हैं टॉयलेट, क्योंकि उनको लगता है कि चलो हमें फ्री का सेवा मिल रहा है। तो इस तरह से भी इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई वहाँ पे जो है उनको उनके काम में सहयोग देता है. तो ये सब एक्चुअली क्या है कि जिसे कहे कि बॉटम लाइन यही है कि थोड़ी संवेदनशीलता, अगर हम संवेदनशील नज़रिए से एक दूसरे को देखें इस देश में, तो हम जानेंगे कि हम में से हर एक जो है देश के लिए कुछ करना चाहता है.
20: यहाँ सिर्फ आपने नर्सिस की बात की, लेकिन बताते चलें कि सच्ची घटना पर आधारित है. सिर्फ अपनी उस वर्दी की इज्जत नहीं बल्कि देश की इज्जत रखने के लिए भी कैसे उन्होंने मोर्चा संभाला था, 400 जिंदगियां उन्होंने बचाई थी. आपने हाल फिलहाल में, क्योंकि ये फिल्म आ रही है, आपने नर्सिस की ड्रेस को लेकर भी कुछ आपत्ति जताई है.
2: जी जी हाँ, देखिए जो हमारी फिल्म में जो मैंने ड्रेस पहनी थी उसको लेकर मेरा ये एक बहुत ही निजी एक एक्सपीरियंस रहा है. लेकिन मुझे काफ़ी नर्सिस मुझसे मिली और उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये इशू पे ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है कुछ साल पहले, कि वाकई में नर्सिस को लगा था कि इसमें जो है रिफॉर्म्स होने चाहिए और बहुत सारी जगहों पे अब शायद जिस हर एक का एक अपना अपना कोड होता है. तो जो बात मुझे फील हुई थी उन पे उन्होंने ऑलरेडी टेकअप करके 7-8 साल पहले ये रिफॉर्म आया है.
20: आजकल की फिल्में, चाहे वो तेजस हो, मणिकर्णिका हो या ऐसी तमाम फिल्में, या हम भारत भाग्य विधाता ही कह लें, बहुत राष्ट्रवाद से प्रेरित फिल्में जो कि आप आजकल कर रही है, रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है. तो कंगना को आगे हम इसी तरह की फिल्मों में देखेंगे, सच्ची घटनाओं को दर्शाती
2: हुई? नहीं नहीं, अभी आप मेरे को इसके बाद कॉमेडी फिल्म में देखेंगे.
20: अच्छा.
2: विकास पहल सर के साथ, तो उसमें आप खूब हंसिएगा. कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ
20: आपको पर्सनली कौन सा जॉनर पसंद है?
2: दोनों ही पसंद है. एक तरह से सिर्फ फ्रिवलस कॉमेडी करने से भी इंसान थक जाता है, जिसमें कोई सोल ना हो. अब कल जो है दिल्ली CMG मेरे साथ बैठी हुई थी और एक ऐसा मोमेंट फिल्म में देखी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा वाह क्या तुमने कंगना ये इतना अच्छा तुमने पोर्ट्रेल किया है. जब वो एक्चुअली वो सीन था जब कसब को देख के वो गवाही दे के बाहर आती है और जिस तरह से रिएक्ट करती है, तो उनको वो बहुत छुआ कि जो डिपिक्शन थी मेरी, कि वो उसमें साहस भी है लेकिन वो डरी हुई भी है, उस दोनों चीज़ों को दिखाने में. तो इस तरह के मोमेंट ऐसी ही फिल्में दे सकती हैं आपको. फ्रिवलस फिल्में, कॉमेडी फिल्मों में वो मोमेंट नहीं आ सकते. लेकिन क्वीन जैसी फिल्म हो गई, तनु मनु जैसे, उनमें भी एक अपना चार्म है, अपना मजा है. तो साथ साथ ही चलने वाले हैं दोनों जॉनर.
20: लोग कहते हैं कि कंगना अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती है, मतलब जो वो करना चाहती है वो वही करती है, इंडस्ट्री उनको डिक्टेट नहीं कर सकती.
2: ये तो मुझे, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो मेरे फिल्में देखते हैं लोग या जो देश के लोग हैं, उन्होंने मुझे ये प्रिविलेज दिया है कि मैं, चाहे मेरी सफलता एक महिला सशक्तिकरण की फिल्में होगी, उनसे मुझे ज़्यादा सफलता मिली और लोगों को मुझ में इतना विश्वास है, तो मैं नेचुरली अपनी फिल्में.
20: लोग आपको फॉलो भी करते हैं.
2: बिल्कुल,
20: हर मामले में फॉलो करते हैं. आधी इंडस्ट्री इसलिए फॉलो करती है क्योंकि कंगना बहुत बेबाक है और कंगना पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है न्याय के लिए.
2: जी हाँ, आई थिंक मेरी जर्नी डिफरेंट रही है और काफ़ी संघर्षमय रही है, तो उसके करके लोगों को अगर कहीं लगता होगा कि कुछ प्रेरणादायक लगता होगा, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट.
20: इस बेबाकी के पीछे का थोड़ा सा लोगों को भी मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि बहुत बेबाक तरीके से आप बातचीत करती हैं. आपने कहा फिल्मों से आपकी छवि, लेकिन हम आपको पर्सनली भी बहुत बार देखते हैं, एज अ पॉलिटिशियन भी हम आपको देखते हैं, बिल्कुल आप बिंदास होकर जवाब देती हैं.
2: जी हमें वही, मुझे हमेशा लगता है कि जो मेरा खुद का नज़रिया है लाइफ को लेकर या खुद की सोच है, अगर मैं उसको वैसे रखूंगी तो कम से कम मैं उसे डिफेंड तो कर पाऊंगी, अब वो लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे. लेकिन अगर मैं कुछ और बनाऊंगी बात, तो आई डोंट नो किस बेस पे बनाऊं, कैसे बनाऊं, फिर कल को मुझे उस पे 4 क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी. तो मैं हमेशा, लोग कहते हैं कि अरे तुम तो जो सोचती हो वही बोल देती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो सोचते हैं वो ना बोलें तो फिर हम जो किसकी सोच बताएं फिर ये. तो
20: सो कंगना जो अंदर है वो बाहर.
2: एग्जैक्टली, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट.
20: अच्छा, हर किसी की लाइफ में एक भाग्य विधाता होता है, आपकी लाइफ का भाग्य विधाता कौन है?
2: ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में कोई एक भाग्य विधाता होते हैं. यू नो, अगर आप देखें जब आपका जन्म होता है तो माता से बड़ा भाग्य विधाता कोई नहीं. फिर वो भाग्य, लेकिन उसके बाद में जो पालन पोषण पिताजी करते हैं, तो लगता है ये ना होते तो जीवन ही नहीं होता. फिर उसके बाद में कई लोग हमारे गुरु आते हैं. अब जैसे मेरी फिल्म में मुझे जो ब्रेक मिला अनुराग बासु जी ने दिया, तो एक टाइम पे वही भाग्य विधाता थे. फिर सक्सेस नहीं मिला तो विकास बहल की फिल्म क्वीन से मुझे सक्सेस मिला, फिर वो भी बड़े भाग्य विधाता हो गए। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आई तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया, वो पार्टी जिसमें आज लोग नेता बनने के लिए कुछ भी, मतलब जिसे कहते हैं ना इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड जिसको कह लीजिए, उसमें मुझे आने का हिस्सा मिला, तो वो भाग्य विधाता हो गए। तो हमें ज़िंदगी में कई, और जैसे मैंने कहा कभी अगर हम हॉस्पिटल में हो ऑपरेशन टेबल पे तो लगता है कि यही
20: डॉक्टर और नर्स ही भाग्य विधाता
2: है, वही भाग्य विधाता। एक दिन आपका अगर कुक ना आए, काम करने वाले ना आए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि या तो जो आपके पार्टनर हो या कुछ हो, उनसे लड़ाई हो, मन मुटाव हो, फोन ना आए, मैसेज ना आए, तो लगता है वही भाग्य विधाता है। तो हमारे भाग्य विधाता जो है कई होते हैं, एक भाग्य विधाता नहीं होते हैं जिंदगी में।
20: चलिए कंगना, लेकिन बोला गया था कि पॉलिटिक्स से जुड़ा सवाल नहीं पूछना, लेकिन फिर भी एक सवाल है क्योंकि पर्सनली हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, देखते हैं, पॉलिटिक्स में ज्यादा मजा आता है बॉलीवुड में, फिल्मों में या सियासत में?
2: देखिए फिल्मों में हमारा जो है बहुत बेसिक है, हम जाते हैं काम करते हैं, हमें उसकी जो है फीस मिलती है, फिल्म या तो हिट है तो हिट है, फ्लॉप है तो फ्लॉप है। पॉलिटिक्स थोड़ी पेचीदा है, क्या करते हैं, क्या रिजल्ट होता है, कई बार कुछ अच्छा बोलते हैं किसी को बुरा लगता है, कोई बुरा बोलते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, तो उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अभी तो संघर्षमय है पॉलिटिक्स में,
20: पॉलिटिक्स का स्ट्रगलिंग टाइम है मतलब।
2: यस,
20: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, और सच्ची घटना पर आधारित भारत भाग्य विधाता जरूर जाइएगा हमारे रियल हीरोज को सैल्यूट करने। भारत भाग्य विधाता के साथ ही कल दिलजीत दोसांझ की फिल्म में वापस आऊंगा भी रिलीज होने जा रही है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म देश के विभाजन के बैकड्रॉप पर आधारित है। फिल्म की कहानी में एक ऐसे उम्रदराज शख्स के दर्द को पिरोया गया है जिनकी प्रेमिका देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह जाती है। मेकर्स ने हाल ही में इस फिल्म का नया गाना क्या कमाल है एक खास संदेश के साथ रिलीज किया है और इसे दुनिया भर के शरणार्थियों को समर्पित है।
1: हिटलर नु जाएंगे, वो भी मार्स का है, मार्शल।
21: दस्तक देने जा रही है बेपनाह मोहब्बत से भरी एक लव स्टोरी जिसे विभाजन का दंश झेलना पड़ा। देश के बंटवारे ने मोहब्बत को मकबूल नहीं होने दिया और बिछड़ने का दर्द सीने में टीस बनकर सालों साल धड़कता रहा। ४९४७ के देश विभाजन के बैकड्रॉप पर बनी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा वैसे ही एक अधूरे प्रेम की कहानी है जिसमें प्रेम की टीस को इम्तियाज अली ने बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। इसकी झलक तो ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है।
22: क्या हुआ?
21: अब इस फिल्म का एक गाना क्या कमाल है।

एक खास संदेश के साथ पेश किया गया है। फिल्म मेकर्स ने इस गाने को दुनिया भर के उन शरणार्थियों को समर्पित किया है जिन्हें युद्ध, नफरत या हिंसा की वजह से जबरन अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा।

0: वीडियो के आखिर में एक शरणार्थी का एक बेहद भावुक कर देने वाला बयान भी शामिल किया गया है जो विभाजन के दंश को बयां करता है। अगर मुझे मौत और घर छोड़ने के बीच चुनाव करना होता तो मैं खुशी खुशी मौत को चुनता। दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। ये लाइन विभाजन और पलायन के गहरे दर्द को दिखाती है जिसे दिलजीत दोसांझ ने बड़ी ही शिद्दत से पर्दे पर निभाया है और इसकी झलक पूरे वीडियो में दिखाई देती है। ये फिल्म का एक स्पेशल एंड क्रेडिट गाना है जो सिनेमाघरों में फिल्म के खत्म होने के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिल्म के केंद्र में है नसीरुद्दीन शाह जो दिलजीत दोसांझ के दादा की भूमिका में है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि 95 साल के नसीरुद्दीन शाह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। बंटवारे की वजह से वो अपनी प्रेमिका से 78 साल से नहीं मिल पाए। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अपनी प्रेमिका से एक बार मिलने की चाहत रखते हैं। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के लिए दिलजीत उस लड़की को तलाशने पाकिस्तान जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह के युवा किरदार को पर्दे पर वेदांग रैना ने प्ले किया है और उनकी प्रेमिका का रोल शर्वरी वाघ ने किया है। क्या दिलजीत की कोशिश से नसीर अपनी प्रेमिका से मिल पाते हैं? वो प्रेमिका जीवित भी है या नहीं? अगर वो प्रेमिका जीवित है तो नसीर के प्रेम पर उसका क्या रिएक्शन आता है? इसी के इर्द गिर्द मैं वापस आऊंगा फिल्म की पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है और अब इस ताने बाने के खुलने का वक्त भी आ गया है। कल यानी 12 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेरे पास
1: में जेएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान। सर्वोच्च अदालत ने कहा होममेकर नहीं नेशन बिल्डर हैं गृहिणियां, हर महीने 30,000 रुपए की हकदार। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा। बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को समर्पित। को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मैच। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: कल सिनेमा प्रेमियों के लिए बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका। कंगना की भारत भाग्य विधाता से लेकर इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा समेत कुल 8 देशी और विदेशी फिल्मों को होंगी रिलीज। कल रिलीज होगी फिल्म मैं वापस आऊंगा। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह तो वहीं वेदांग रैना और शर्वरी का अहम रोल। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का एक नया टीजर हुआ रिलीज। कल रिलीज होने वाली है ये फिल्म। सिनेमा घरों में एडवांस बुकिंग शुरू। सिल्वर स्क्रीन पर कल दस्तक देगी मनोज वाजपेयी की गवर्नर द साइलेंट सेवियर। अदा शर्मा और मधु भी महत्वपूर्ण किरदारों में आएंगी नजर। विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट भी कल होगी रिलीज। इस नई हॉरर थ्रिलर में मुख्य भूमिकाओं में हैं मेमोही चक्रवर्ती और चेतना पांडे। पुलिस और सोसाइटी के रिश्ते बने फिल्म द नर्मदा स्टोरी इस शुक्रवार को हो रही है रिलीज। मेन लीड में हैं सिमाला प्रसाद, निभा रही हैं एक रियल पुलिस ऑफिसर का किरदार। कल ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने उतरेगी एक्ट्रेस पत्रलेखा की फिल्म हीर सारा। दो महिलाओं के भावनात्मक सफर को दर्शाती है ये रोड ट्रिप ड्रामा फिल्म। हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए कल रिलीज हो रही है डिस्क्लोजर डे। स्टीवन स्पीलबर्ग के डायरेक्शन में बनी एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है ये फिल्म। हॉरर फिल्म के शौकीनों के लिए 12 जून को रिलीज हो रही है बैक रूम्स। फिल्म के डायरेक्टर केन पार्सन्सन की वेब सीरीज से प्रेरित है। OTT पर वेब सीरीज राख में दिखेगी अली फजल और सोनाली बेंद्रे की अदाकारी। 1978 में हुए गीता और संजय चोपड़ा के किडनैपिंग केस से इंस्पायर्ड है इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर सीरीज। वेलकम फ्रेंचाइजी की नई मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। सिनेमाघरों में 26 जून को दस्तक देगी फिल्म। फिल्म काला हिरन का फर्स्ट लुक हुआ जारी, जल्द सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। कल रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का ट्रेलर। पोस्टर जारी कर जानकारी दी 10 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। रामचरण की पेटी का बॉक्स ऑफिस पर धमाल लगातार जारी। रिलीज के 7 दिन के अंदर भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन। तो वहीं ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के क्लब में बनाई जगह। फिल्म फ्रेंचाइजी तनु वेड्स मनु के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। इसी साल शुरू होगी इस सुपरहिट सीरीज के तीसरे पार्ट तनु वेड्स मनु द नेक्स्ट चैप्टर की शूटिंग। आज फीफा वर्ल्ड कप का होगा आगाज। अमेरिका कनाडा मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। पहली बार 3 देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच। ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। अमेरिका के 11, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में खेले जाएंगे मैच। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। मेक्सिको, टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा फुटबॉल विश्व कप का फीवर। केरला में गलियों, सड़कों में, घरों तक नजर आ रहा है फुटबॉल का क्रेज। चहेते खिलाड़ियों की तस्वीरों से पटे हैं इलाके।

कल से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का होगा आगाज, इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन। इस बार इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है टूर्नामेंट, पहली बार दुनिया के 12 देश ले रहे हैं हिस्सा, खेले जाएंगे 33 मैच। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला मैच, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा फाइनल। चौदह जून को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, ग्रुप ए में हैं दो टीमें, पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलकर भारत करेगा वर्ल्ड कप सफर की शुरुआत। पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा नीदरलैंड्स, टीम ने ग्लोबल क्वालिफायर में चौथा स्थान हासिल कर टूर्नामेंट में बनाई जगह। भारत अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम बड़े खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। एकमात्र टेस्ट सीरीज में अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराने के बाद अब वनडे सीरीज पर इंडिया की नजरें, 3 मैचों की है वनडे सीरीज। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के रूप में लगे हैं 2 झटके, दोनों खिलाड़ी चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की महाराजा टी20 ट्रॉफी का अनावरण पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और केएससीए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद रहे मौजूद। बीस जून से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत, कर्नाटक की 6 फ्रेंचाइजी टीमें लेंगी हिस्सा। बद्रीधाम में दिखा आस्था का नया जोश, श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा की शुरुआत। परंपरा के अनुसार भगवान कुबेर आज बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह से निकले बाहर, लीला दुंगी के बाद मां नंदा देवी मंदिर और अंत में मां उर्वशी मंदिर पहुंचे, भक्तों के किए को दर्शन दिए। सदियों से चली आ रही है पौराणिक जेठ पूजा की पवित्र, और इसी के साथ ज्येष्ठ मास में अपने भक्तों से मिलने बामणी गांव पधारते हैं भगवान कुबेर। बद्रीनाथ के बामणी गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर भगवान कुबेर का स्वागत किया, हर तरफ गूंजा भगवान कुबेर का जय घोष। इस अवसर पर कुबेर जी को लगाया गया विशेष भोग, पारंपरिक नृत्य के बीच भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 34 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा 12 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक दोनों जगहों पर 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का तांता लगा, 74,000 लोगों ने दर्शन किए। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी, लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका का लगातार सफाई अभियान जारी, अब तक 5 लाख प्लास्टिक बोतलें। राष्ट्रीय राजमार्ग से रोजाना 6 टन उठाया जा रहा है कचरा, श्रद्धालु भी अभियान में कर रहे हैं सहयोग। यात्रा को लेकर इंतजामों से संतुष्ट नजर आए श्रद्धालु, सफाई, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन के इंतजामों की तारीफ की। केदारनाथ में अब तक लगभग कई श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
असाधारण बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए आर्मी मेजर अर्शदीप सिंह गिल जीएनटी को सुनाई 48 घंटे चले जोखिम भरे ऑपरेशन की कहानी। नैनीताल के कैंचीधाम मेले की तैयारियां हुई तेज, 15 जून को नीम करौली में उमड़ेगा आस्था का महासैलाब। मेले में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं कैंचीधाम, मेले को लेकर प्रशासन सख्त। समारोह को देखते हुए कैंचीधाम में विशाल भंडारे की तैयारी, प्रसाद के लिए मालपुए बनाने का काम शुरू। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी भीमताल नैनीताल से विशेष शटल सेवा, भक्तों के लिए की गई पार्किंग की व्यवस्था। 14 और 15 जून को कैंचीधाम क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, प्रशासन ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर बैठक की। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी कई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजस्व रूप श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। यूके से आए कश्मीरी पंडितों ने अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की, कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का भव्य प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला पांचवा स्टेल्थ फ्रिगेट है INS दूनागिरी, कुल 7 उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट्स का किया गया निर्माण। डिसाइसिव डॉन्टलेस नौसैनिकों के अदम्य साहस, सतर्कता और तीनों जल थल और नभ में अचूक सटीक प्रहार करने की क्षमता का प्रतीक। रूलर बढ़ते साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय सख्त, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने की नई एडवाइजरी जारी। बायोमेट्रिक्स लॉक रखने, संदिग्ध लॉगिन अलर्ट पर नजर रखने और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा। समाज में गृहिणियों के निस्वार्थ

0: पहुंचे पक्षी। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका से हजारों की संख्या में आए प्रवासी फ्लेमिंगो देखने के लिए लग रही है भारी भीड़। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति, 10,000 से ज्यादा घर बना रहे 34 मेगावाट बिजली। पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, हर महीने 3.5 करोड़ रुपए की ऊर्जा का उत्पादन। सूरज की रोशनी से घट रहे हैं बिजली बिल, बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता। प्रयागराज के संगम में बाढ़ से बचाव का मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन टीम ने आधुनिक इक्विपमेंट से घाटों पर किया अभ्यास। मॉक ड्रिल में सेना के जवान, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ की टीम, प्रदेश पुलिस और स्वास्थ्य पुलिस शामिल। अकोला के बुजुर्ग नाना ने कैंसर को हराकर 76 साल की उम्र में 3,000 किलोमीटर पैदल की नर्मदा परिक्रमा। थूथुकुड़ी में 27वें ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त जोश। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। खेल को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह, बड़ी संख्या में लोग मुकाबला देखने पहुंचे। इंदौर में ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के प्रतिनिधियों ने होलकर कालीन ऐतिहासिक धरोहर का दौरा किया, तो वहीं इंदौर के इतिहास, संस्कृति और राजवाड़ा के महत्व के बारे में जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के भलेसा में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, स्कूल में बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। जयपुर में 66वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। भुवनेश्वर में फूड एग्रो और बायोटेक समिट का शुभारंभ हुआ, ओडिशा के राज्यपाल हुए शामिल। श्रीनगर में इम्यूनोकॉन 2026 सम्मेलन का आगाज हुआ, एलजी मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।

0: अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जानें, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के धार में लिए चलते हैं। आपको दिखाते हैं यहां मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल, जो न सिर्फ हमारे देश के समृद्ध इतिहास दर्शाता रहा है, बल्कि अपनी अनूठी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बूते दुनिया भर में खूब मशहूर है। जहाज महल की इन खूबसूरत तस्वीरों को आप तक लाए हैं जीएनटी के ही एक दर्शक, देखिए।

0: मुंज और कपूर की लहरों पर जहां एक जहान तैरता है, मांडू की फिजा में जहां एक कारवां ठहरता है, इतिहास के पन्नों में पानी पर जो टिका रहे उस जहाज महल में हर मौसम बहार निखरता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में लाए हैं, जहां सुनसान और दूर दराज में बसा जहाज महल 15वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत और अनोखी कारीगरी है। काली रेत, चूना, ईंट, दाल जैसी कई और चीजों का मसाला बनाकर तैयार ये विशाल महल किसी अजूबे से कम नहीं है।
1: उस जमाने में कोई सीमेंट नहीं होती थी, ये बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया, ईंट, काली रेत, चूना, उड़द की दाल, गुड़, बिल पत्ते के फल, इन सारी चीजों को पीस कर मसाला बना के ही सारे बिल्डिंग को बनाया गया।
0: सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल के पास ही अपनी बेगमों के नाम पर दो झील, मुंज तालाब और कपूर तालाब बनवाए। यही नहीं, महल के नजदीक ही अशरफी महल भी बनवाया। जहाज महल में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए कई खास कमरे बनवाए, तो दीवारों में नहरें और फव्वारे तक लगाए ताकि उस वक्त गर्मी की तपिश में महल को ठंडा रखा जा सके। जहाज महल जितना जमीन के ऊपर बना है उतना आप देख सकते हैं जमीन के नीचे भी। लगभग 110 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी इस इमारत की दरों दीवारों पर हिंदू, अफगान और मुगल वास्तुकला का इतिहास आराम से नजर आ जाएगा। आप महल की छत पर आएंगे तो आपको पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अद्भुत तकनीक भी हैरान कर देगी। इससे भी आगे महल के ऊपरी हिस्से में खूबसूरत मेहराब, बैल्कनीज, मंडप और गुंबददार छतरियां भी 15वीं सदी के आर्किटेक्ट की अनूठी मिसालें हैं। मांडू से सबसे पास लगभग 95 किलोमीटर दूर तो इंदौर एयरपोर्ट ही है और सबसे पास रेलवे स्टेशन इंदौर या रतलाम है। तो अगर आप मांडू बाई रोड आ रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर धार और इंदौर से ये जुड़ा हुआ है, जहां से आप बस या टैक्सी से यहां आ सकते हैं। फिलहाल तो आपके लिए सैर सपाटा करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून और विंटर सीजन ही है। ये वो वक्त है जब आसमान में बादलों का डेरा, चारों तरफ फैली हरियाली जहाज महल के इतिहास में चार चांद लगा देते हैं।
2: अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके आसपास अगर कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
5: I have no idea how this election is going to play out.
4: Or want to catch up on your team's live play-by-play? It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा, बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को समर्पित। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर कल सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। गुजरात के वडोदरा में भारत में बने एयरबस C295 परिवहन विमान ने आज पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है। इस विमान के सफल उड़ान से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है देश में बने एयरबस C295 विमान की सफल उड़ान। आपको बता दें कि गुजरात के वडोदरा से भारतीय रक्षा और विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यहाँ पहली बार भारत में बने एयरबस C295 परिवहन विमान ने अपनी सफल पहली परीक्षण उड़ान पूरी की है। इस परिवहन विमान का केवल तकनीकी परीक्षण नहीं हुआ है बल्कि इससे उस भरोसे और क्षमता को बल मिला है जिसे भारत ने आधुनिक विमान निर्माण के क्षेत्र में हासिल किया है। इस विमान को भारत में ही तैयार करने का लक्ष्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन से जुड़ा है। कुल 40 C295 विमानों वाली इस परियोजना का पहला विमान अब डिलीवरी के करीब पहुंच चुका है जिसे देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। इस परियोजना में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की महत्वपूर्ण साझेदारी है। भारतीय वायुसेना ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी है।
4: आत्मनिर्भर भारत की शक्ति में इजाफा करने पहला स्वदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 भारत में बनकर तैयार भी है और इसने अपनी पहली उड़ान भी भर ली है। टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर के तहत बनाए जा रहे C295 को भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जुड़कर ये ट्रांसपोर्ट फ्लीट की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इससे पहले भारतीय वायुसेना एवरो जैसे पुराने विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। 40 C295 भारत में बनाए जाएंगे जिन्हें वडोदरा में बनाया जा रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है और भारत की सैन्य ताकत का बढ़ता हुआ नमूना भी।
3: बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों आस्था और भक्ति के रंग में रंगी है। चार धाम यात्रा अपने पूरे चरम पर है और बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है श्रद्धा के महाकुंभ में आस्था का महामेला। देखिये, चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो या फिर बद्री विशाल, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है।

0: आस्था और भक्ति के रंग में रंगी देवभूमि। बाबा केदार के दरबार से लेकर बद्रीनाथ तक आस्था का महाकुंभ, यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक आस्था, विश्वास और भक्ति का संगम। देश के कोने कोने से श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये केवल यात्रा नहीं बल्कि अपने आराध्य के लिए भक्ति और विश्वास है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई घोड़े, खच्चरों और हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। या कहें चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अब तक 12 लाख श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर चार धाम की यात्रा करने वालों का आंकड़ा 33,50,000 को पार कर गया है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह सुरक्षा और सुविधा भी है। देवभूमि में यात्रियों का खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, विश्राम स्थलों, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर किए गए इंतजामों से यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए हैं, रास्ता भी बहुत अच्छी है, और डॉक्टर की मतलब वो नहीं मेडिकल वो भी बहुत अच्छा है। मतलब
2: मेरा पहली बार है केदारनाथ में और मुझे यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया लगा। घोड़े खच्चर के लिए मेडिकल के पानी सब चीज़ की व्यवस्था है,
3: घोड़ों खच्चर की मेडिकल की सुविधा सारी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अच्छी है।
0: 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ अलग ही है। 10 जून तक 10 लाख का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: 15 जून के बाद हमारा जो मानसून सीजन है वो शुरू हो जाता है। जो जोन और सेक्टर बटे होते हैं तो उसके जो अधिकारी हैं वो प्रॉपर समन्वय की स्थिति बनाए रखेंगे और पूरी तैयारी है हमारी, कोई ऐसी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अगर कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति होती भी है तो उसका निस्तारण तत्समय कर लिया जाएगा।
0: जाहिर है चार धाम यात्रा में दर्शन के साथ साथ बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को यादगार बना रही हैं। आस्था और व्यवस्था का ये संगम चार धाम यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
6: और बद्रीनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही पहुंच रहा है प्लास्टिक का कूड़ा। ऐसे में जोशीमठ नगर पालिका ने पर्यावरण मित्रों की सहायता से यात्रा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की कोशिश की है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है और वो है चारधाम यात्रा को प्लास्टिक फ्री बनाने की पहल। आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इन गाड़ियों से आने वाले पर्यटक अब तक 5 लाख से अधिक प्लास्टिक की पानी की खाली बोतलें फेंक चुके हैं और पर्यावरण मित्र इसे उठाकर रिसाइकिलिंग के लिए भेज चुके हैं।

0: इस साल बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा जोर शोर से चल रही है। ऐसे में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन गाड़ियों से बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले लोग सड़कों पर कचरा छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस कचरे को सड़क से उठाने के लिए नगर पालिका पूरी कोशिश कर रही है। यात्रा मार्गों पर बढ़ती गंदगी को नगर पालिका द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। अब तक 5 लाख से अधिक प्लास्टिक की पानी की खुली बोतलों को हटाया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस यात्रा मार्ग पर जोगीधारा से लेकर विष्णुप्रयाग तक 6 टन कूड़ा नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों द्वारा उठाया जा चुका है। दरअसल जोशीमठ नगर पालिका साफ सफाई के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश कर रही है।
1: बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा इस बार अपने पूरे चरम पर चल रही है। जहां 10.25 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं, वहीं 70,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। तो जोशीमठ की अगर बात करें, जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र जोगीधारा से विष्णुप्रयाग तक नगर पालिका जोशीमठ ने अब तक 5 लाख से अधिक प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर दी हैं। वहीं रोजाना 6 टन कूड़े को एकत्रित किया जा रहा है।
0: कूड़ा सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, कई बार नदी किनारे और दूसरी जगहों पर भी सैलानी फेंक कर चले जाते हैं। इन जगहों से कूड़े को उठाया जाता है, फिर उसे एकत्रित किया जाता है। फिर इस कूड़े को उठाकर पर्यावरण मित्र इसे रिसाइकलिंग करने के लिए रिसाइकल सेंटर और नगर पालिका के डंपिंग जोन में भेज देते हैं। उसके बाद कूड़े को रिसाइकल किया जाता है।
2: चारधाम यात्रा के दौरान कूड़ा निस्तारण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। नगर पालिका जोशीमठ द्वारा प्रतिदिन 6 टन कूड़ा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से एकत्र कर MRS सेंटर निस्तारण के लिए ले जाया जा रहा है। जो हमारा सड़क मार्ग है जोगीधारा से लेके और विष्णुप्रयाग तक, यात्रियों द्वारा जो बोतलें फेंकी गई हैं, करीबन 5 लाख बोतलें नगर पालिका द्वारा कलेक्ट की गई हैं और उनको निस्तारण के लिए MRF सेंटर ले जाया गया है।
0: कूड़ा हटाने के कार्य में पर्यावरण मित्र जुटे हुए हैं। पानी की खाली बोतलों को सड़क से हटाने के काम में पर्यावरण मित्र लगातार लगे हुए हैं। यात्रा मार्गों पर पर्यावरण मित्रों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां पर ये पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पर्यावरण मित्रों के कचरा एकत्रित करने के बाद इसे रिसाइकिल किया जाता है और इस रिसाइकिलिंग से जोशीमठ नगर पालिका को आर्थिक लाभ भी होता है।
2: नगर पालिका जोशीमठ सभी यात्रियों से अपील करती है कि अनावश्यक रूप से कूड़ा सड़क मार्ग पर न फेंके और नगर पालिका को सफाई व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें।
0: श्रद्धालु भी विष्णुप्रयाग पहुंचने के बाद नगर पालिका की साफ सफाई की खूब तारीफ कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान विष्णुप्रयाग में साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है।
3: विष्णुप्रयाग में बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। यहाँ की जो व्यवस्था हमने देखी है वो बहुत ही सुंदर है। हम पूरा ग्रुप चलता है अपना, आते कामों की यात्रा करते हम लोग, तो अभी यहाँ की जो सफाई है, क्लिनिक है, यहाँ का जो वातावरण है रमणीय है।
0: हर वर्ष जोशीमठ नगर पालिका द्वारा यात्रा मार्गों पर कूड़ा उठाने का काम किया जाता है। पिछले साल मुख्य सीजन के दौरान यहां से 4 लाख खाली बोतलों को हटाया गया था, लेकिन इस बार जून के पहले सप्ताह तक में ही 5 लाख बोतलों को उठा दिया गया है। ऐसे में इस बार नगर पालिका के पर्यावरण मित्र सफाई का नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे।
4: कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिस मां को परिवार ने 12 साल पहले खो दिया था, जिसकी तलाश में परिवार दर दर भटका, जिसने न मिलने पर उसे मृत मान लिया, वही मां अचानक 12 साल बाद जीवित मिल गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है 12 साल बाद बेटों से मिली मां। बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव निवासी राजू देवी वर्ष 2014 में अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों के अनुसार उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। परिवार ने उन्हें खोजने की काफी कोशिश की, आसपास के जिलों में तलाश की गई, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, पोस्टर लगवाए गए और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन महीनों की तलाश के बाद ये वर्षों में बदला और कोई सुराग उनका नहीं मिला। हर बीतते साल के साथ राजू देवी के लौटने की संभावना कम होती गई। आखिरकार परिवार ने ये मान लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वहीं हरियाणा के अम्बाला क्षेत्र में पुलिस को एक महिला लावारिस हालत में मिली। महिला की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उसे यमुनानगर के एक आश्रम में भेज दिया। आश्रम में महिला की देखभाल हुई, इलाज, काउंसलिंग और लगातार देखरेख के दौरान धीरे धीरे उनकी याददाश्त लौटी। बातचीत के दौरान महिला ने अपने परिवार वालों और गांव के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद राजू देवी को उनके परिवार ने पहचान लिया। बिहार से हर साल लाखों लोग रोजगार की तलाश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर तय करते हैं। बेहतर भविष्य और रोजगार की उम्मीद में अपने घर परिवार से दूर जाते हैं, लेकिन अब पटना की तस्वीर बदल रही है। अब लोगों को अपने घर में ही बिहार से हर साल लाखों लोग रोजगार की तलाश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर तय करते हैं। बेहतर भविष्य और रोजगार की उम्मीद में अपने घर परिवार से दूर जाते हैं, लेकिन अब पटना की तस्वीर बदल रही है। अब लोगों को अपने घर में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है स्पोर्ट्स स्टार्टअप से बिहार में रोजगार। आपको बता दें कि बिहार के युवा अपने ही शहर में रोजगार पैदा करने पर फोकस कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है जावा स्पोर्ट्स फैक्ट्री के फाउंडर निशांत रंजन, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद ठान लिया था कि इस बार पलायन नहीं होगा।

0: क्रिकेट बैट, गेंद, हेलमेट, ग्लव्स और स्पोर्ट्स शूज समेत खेलों से जुड़े तमाम सामान इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये फैक्ट्री पंजाब, हरियाणा या खेल उद्योग के किसी मशहूर किसी दूसरे राज्य में नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। उसी बिहार में जहां से वर्षों से लाखों लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।
1: इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, दरअसल पटना के लिए या फिर बिहार के लिए कहें तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हम इस वक्त एक फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां पर स्पोर्टिंग गियर्स बनाए जा रहे हैं। अब स्पोर्टिंग गियर्स क्या होता है, खेल कूद की तमाम सामग्री जो है वो इस फैक्ट्री में बनाई जा रही है, और यहाँ पर क्रिकेट बैट से लेकर बॉल, ग्लव्स, बाकी आपको स्पोर्ट्स शूज़ जो हो जाते हैं, फिर आपको जो भी क्रिकेट के लिए हेलमेट होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ बनाई जा रही हैं।
0: पटना की ये फैक्ट्री न सिर्फ खेल सामग्री बना रही है, बल्कि स्थानीय युवाओं और लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार कर रही है। ये बदलाव की वो कहानी है जहां बिहार के हुनरमंद हाथ अब अपने ही घर में रहकर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ये स्पोर्ट्स फैक्ट्री न सिर्फ खेल के जरूरी सामान तैयार कर रही है, बल्कि उन हुनरमंद हाथों को भी वापस घर ला रही है जो कभी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर थे।
1: इससे पहले कहाँ काम करते थे?
2: पहले मैं पंजाब में बटाला में काम करता था, DSC कंपनी में।
1: वहाँ भी क्या बैट वैट बनाया जाता था, क्रिकेटिंग कंपनी?
2: वहाँ तो बहुत मशहूर फैक्ट्री है। हाँ। वो इंटरनेशनल लेवल की फैक्ट्री हो।
1: तो फिर यहाँ पटना कब आ गए?
2: यहाँ तो लॉकडाउन बाद घर आए हुए थे, तो फिर यहाँ तो सर का फोन गया कि अगर करना था तो आप कर सकते हैं यहाँ पर काम।
0: पटना में इस बदलाव के पीछे है जावा स्पोर्ट्स के संस्थापक निशांत रंजन का जुनून। निशांत ने ठान लिया था कि बिहार में उद्योग स्थापित करना है, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत में कड़ी मेहनत की, जालंधर और मेरठ की कई यात्राएं की, वहां के कारीगरों से मिले, उद्योग को करीब से समझा और फिर पटना में एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जिसने रोजगार और सम्मान दोनों लौटाने का काम किया।
3: यहाँ जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं आ पाए, बहुत सारा प्राइसिंग का इशू था, तो मुझे लगा कि ये अभी जो आज के डेट मेरी इच्छा यही है कि जो भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनको मैं अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल रिजनेबल रेट पे दूं, सो दैट कि वो आगे और अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे चीज़ों के साथ खेलें।
0: दरअसल दूसरे राज्यों में रहकर काम करना, परिवार से दूर रहना, त्योहारों पर घर नहीं पहुँच पाना, ये निशांत ने खुद महसूस किया है और आज वो पटना में ही वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
3: कहीं ना कहीं था कि यार कुछ अपना करना है, कुछ अपना करना, और जो भी करना है बिहार में ही करना है, ये शुरू से एक दिमाग में चीज़ें थे, और एक ब्रांड खड़ा करना मेरा सबसे बड़ा मोटिव था, और सेगमेंट यही था, चूँकि क्रिकेटर रहे अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ों को कैसे हम बेहतर से कर सकते हैं, वो चाहे बैट हो, सॉफ्ट लेदर हो, शूज़ हो।
0: करीब 5 साल पहले शुरू हुई इस फैक्ट्री में आज 35 लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 30 ऐसे हैं जो कभी पंजाब और दूसरे राज्यों में मजदूरी या तकनीकी काम किया करते थे। कोरोना काल में जब वे अपने घर लौटे तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि अब उन्हें दोबारा घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: लॉकडाउन के बाद यहाँ आ गए थे?
4: हाँ, लॉकडाउन के बाद सर यहाँ पे आ गए थे 22 मार्च को।
1: तो उसके बाद फिर वापस नहीं गए?
4: ना, वापस नहीं गए सर।
1: क्यों?
4: क्योंकि यहाँ बेहतर लगा हमारे लिए और
1: सुविधा मिल गया।
4: हाँ जी, पक्का।
0: और जावा स्पोर्ट्स की ये कहानी बताती है कि अवसर मिले तो हुनर कभी पलायन नहीं करता, बल्कि अपने घर की तरक्की की वजह बन जाता है। रोहित कुमार सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे।
5: केरल के कुन्नूर जिले के अरालम क्षेत्र में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने हाईटेक पहल की है। जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए विशेष ड्रोन स्क्वाड का गठन किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है ड्रोन रोकेगा इंसानों की हाथी से लड़ाई। आपको बता दें कि इंसान जानवर के बीच टकराव को कम करने के लिए केरल के कुन्नूर वन डिवीजन की ये पहल इलाके के लिए नई उम्मीद है। इस नई तकनीक की मदद से हाथियों के गांवों और आबादी वाले इलाकों में पहुंचने से पहले ही उनकी लोकेशन का पता लग जाएगा, क्योंकि जंगली हाथी कभी खेतों में फसलों का नुकसान करते हैं तो कभी आबादी वाले इलाकों में घुसकर लोगों के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे में केरल के कुन्नूर मानव वन्यजीव समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। वन विभाग ने एक विशेष ड्रोन स्क्वाड का गठन किया जो जंगलों और संवेदनशील इलाकों में जंगली हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा। शिमला की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से रंग संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 में देश भर से आए पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, शिमला में रंग संगीत और संस्कृति का संगम। शिमला में 5 दिवसीय उत्सव शुक्रवार तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर स्थानीय व्यंजनों और कला प्रदर्शनी तक कई आकर्षण शामिल है।
6: पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक धुन पर थिरकते सैकड़ों पांव, क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई ताल से ताल मिलाने को बेताब। हिमाचल प्रदेश को करीब से जानना है तो यहाँ आइए शिमला, जहाँ इन दिनों समर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यहाँ पारंपरिक पोशाक में हिमाचल की संस्कृति संजोए लोग मिलेंगे, पहाड़ी खान पान और लोकगीतों और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी शिमला यात्रा को यादगार बना देगी।
7: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम और अपने जिस आबोहवा के लिए मशहूर है वो देखते ही बनता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में यानी कि टूरिस्ट सीजन गर्मियों का चल रहा है और ऐसे में शिमला में घूमने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बार आयोजित की जा रही हैं जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का उसकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। और ख़ास तौर पर इस बार के आयोजन बेहद अलग है। आप पारिवारिक जो लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर अगर आते हैं तो शिमला शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ लिया जा सकता है, यहाँ पर जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखी जा सकती हैं, यहाँ का कल्चर देखा जा सकता है, संस्कृति देखी जा सकती है। तमाम चीज़ों को जो है सहज कर संजो कर रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ अहम हो जाती है, वो है यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव यानी कि समर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है।
6: इस बार शिमला समर फेस्टिवल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई नई एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं। इस बार समर फेस्टिवल में पहली बार हॉट एयर बलून, जॉय राइड जैसे विकल्प भी खोजे गए हैं और उन्हें भी शामिल किया गया है।
8: सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जैसे हेल्दी बेबी शो है और एक शिमला में एक डॉग शो भी हुआ करता था उसका भी रिवाइवल किया है, और टूरिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्शन के लिए जैसे हॉट एयर बैलून है, एक हमारी जॉय राइड का भी हम एक कंसेप्ट पे थोड़ा विचार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि टर्बुलेंस और मौसम के कुछ इश्यूज हैं बट उसको भी मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, जो हमारी 7 हिल्स है उसको भी हम एक उसके भी एक जॉय राइड की हैसियत से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इसके साथ ही पर्यटकों के लिए पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक लोक नृत्य, डॉग शो, पहाड़ी कवि सम्मेलन जैसे प्रयोग भी किए गए हैं, जिन्हें न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे शानदार होता है शाम का नजारा, जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की जान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। इसमें पारंपरिक लोकगीतों और लोक नृत्यों के साथ साथ बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली गायकों की शानदार प्रस्तुति सबको थिरकने पर मजबूर कर देती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
10: अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है, देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at Quo.com/tunein. That's Quo.com/tunein.
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दुनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से लैस। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेट पूजा, बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को समर्पित। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जल्दी गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर कल सिनेमा घरों पर दस्तक दे रही 8 बॉलीवुड फिल्में। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को सरेराह पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई आगे बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि भारत का सरकारी स्कूल है जहां बच्चे टेबल के नीचे छिपकर अपने आप को बारिश के पानी से बचा रहे हैं। इस वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: राजस्थान के गांवों से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग चंदा मांगते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान धार्मिक पहचान और शब्दों के अर्थ को लेकर भी चर्चा हो रही है। उसके बाद स्कूटी सवार शख्स थप्पड़ों की बारिश करने लग जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि एक आदमी ने राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
11: अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
12: सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक आदमी तीन लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान का है। यहाँ के एक गांव में मदरसा के लिए चार लोग चंदा मांग रहे थे, इसके बाद एक आदमी ने उन्हें पीट कर वहाँ से भगा दिया। इस वीडियो को हालिया दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि राजस्थान के एक गांव में मदरसा के नाम पर चार लोग चंदा मांगने आए थे। छोटू सिंह नाम के एक भाई ने चंदा मांगने वालों को थप्पड़ों का चंदा दे दिया। इस वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये तेजी से वायरल हो रहा है।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। धार्मिक एंगल देते हुए कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो राजस्थान का है जहां पर मदरसे के लिए चंदा मांग रहे लोगों को एक आदमी ने खूब पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक जगह ये सुनने को मिला कि एक शख्स स्कूटी से उतरता है और वहां पर इस्लामिक टोपी पहने लोगों से आधार कार्ड मांगता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि मारने वाला शख्स इन लोगों की धार्मिक पहचान जानना चाहता है और उसी को लेकर पहले कहां सुनी हुई और फिर इन लोगों पर थप्पड़ों की बारिश हुई। इसके बाद वीडियो में आगे एक बाइट भी नजर आ रही है जिस पर यूपी की नंबर प्लेट दिख रही है। इसे देखकर हमें थोड़ा शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो की जानकारी जुटाने के लिए लगातार सर्च किया इसे, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि ये वीडियो राजस्थान का है। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
12: वायरल वीडियो की जांच के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे। इस रिपोर्ट को 23 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट को प्रकाशित करके लिखा गया था, बंदायू तीन मुस्लिम बुजुर्गों की पिटाई वाला वीडियो वायरल। आगे बताया गया था कि इसमें एक युवक तीन मुस्लिम बुजुर्गों को थप्पड़ मारते दिख रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद अक्षय शर्मा उर्फ छोटू नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर है। अब्दुल सलाम ने इस घटना के बारे में कहा, 16 फरवरी को हम मोहल्ला कटरा के रहने वाले अपने साथी आरिफ और मोहल्ला सिस्टम टोला के रहने वाले जावेद के साथ बिलसी तहसील के थाना इस्लाम नगर रुदायन गए थे। हमें वहां से चंदा इकट्ठा करना था। एक युवक पीछे से आया और उसने हमारा आधार कार्ड देखने को मांगा। इसके बाद उसने हम पर धार्मिक टिप्पणी की, मारा पीटा, टोपी तक उतारने को कहा। सर्च के दौरान हमें एक और प्रमाणिक रिपोर्ट मिली, जिसके जरिए ये जानकारी मिली कि यूपी के बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदायन में पीटे गए जावेद के भाई अरमान ने बताया कि भाई समेत तीन लोग मुस्लिम मोहल्ले में रमजान आने के चलते जकात मांगने गए थे। एक युवक स्कूटी से जा रहा था, उससे सिर्फ यही पूछा कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ला कहाँ है और हाईवे का रास्ता किधर है। इतना सुनते ही वह भड़क गया, कहने लगा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बुजुर्ग भाई की टोपी उतरवाई, तीनों लोगों को थप्पड़ मारे, 200 मीटर तक पीटते हुए और अपशब्द बोले, गली के बाहर तक दौड़ाकर भगाया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो राजस्थान का नहीं बल्कि यूपी के बदायूं का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, भारत के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति बताकर इसे शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक महिला तेज बारिश के बीच टेबल पकड़कर बच्चों को पानी से बचाने की कोशिश करती नजर आ रही, जबकि कई बच्चे टेबल के नीचे बैठे नजर आते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह दृश्य भारत के किसी सरकारी स्कूल का है, लेकिन जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
13: सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए है। वीडियो में दिख रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए भी दिख रही है। बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है। इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, यहाँ बच्चों को बारिश से बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए खड़ी है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हैं और बच्चे किसी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए दिख रही है। बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है और इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो नेपाली भाषा जैसा कुछ सुनाई दिया। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को भारत का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
13: गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया आउटलेट है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इस वीडियो में छोटे छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे कक्षा के अंदर ही खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक सुरक्षित और महफूज माहौल में होना चाहिए था। इस घटना ने स्कूल के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत को उजागर किया है, जहां खराब मौसम के दौरान बुनियादी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसी स्थितियों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि स्कूल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और छात्रों की सुरक्षा करने के लिए कितने तैयार हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम जनता में चिंताएं बढ़ गई हैं और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की मांगें उठ रही हैं। कई लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं कि छात्र खराब मौसम की स्थिति में बिना किसी डर के सुरक्षित और उचित माहौल में पढ़ाई कर सकें। आगे सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक फेसबुक चैनल पर देखने को मिला। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज स्कूल के बुनियादी ढांचे की कमजोर हालत को उजागर करता है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलने के बजाय क्लासरूम के अंदर ही खुद को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस घटना ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया। इस तरह फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में इस दावे को गलत पाया है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये वीडियो भारत के किसी सरकारी स्कूल का नहीं है, बल्कि वीडियो नेपाल का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
14: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल

0: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी दिखाई देती है। बच्ची मासूमियत भरे अंदाज में अपने पापा से बातें करती नजर आती है। उसकी बातें सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा। बच्ची पिता की तस्वीर को देखते हुए कहती है, सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए, मम्मी आपको मना करती थी लेकिन आप नहीं माने। इतना ही नहीं, बच्ची आगे कहती है, आपने ऐसा क्यों किया मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। उसकी मासूम बातें और दर्द भरी आवाज सुन लोग काफी भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो की कोच अच्छी खासी भरी हुई है, तभी एक दोस्त उठकर अनाउंस करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। वो सभी यात्रियों से दोस्त

साहिल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसे विश करने की प्यारी सी अपील करता है। इसके बाद मेट्रो में सफर कर रहे सभी यात्री गाना गाकर उसे विश करते हैं। हालांकि बर्थडे बॉय की शक्ल देखने लायक होती है, वो शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। इसके बाद बर्थडे बॉय का दोस्त अपने बैग से मेलोडी टॉफी का पैकेट निकालता है और दोनों मिलकर पूरी कोच को टॉफियां बांटते हैं। इस दौरान लोग हाथ मिलाकर भी साहिल को जन्मदिन की बधाई देते हैं।

0: सोशल मीडिया इन दिनों प्यार, भावुकता और संगीत से भरे एक वीडियो से गूंज रहा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपने दो भाइयों के लिए एक सुपरहिट सॉन्ग गाया। अपनी मासूम आवाज से इस बच्ची ने करोड़ों दिल जीत लिए। लोग इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची बेहद प्यारे अंदाज में गा रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भाइयों के प्रति प्यार साफ दिखाई दे रहा है। गाने की शुरुआत में वो थोड़ा झेपती है, लेकिन जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है उसके आवाज में जादू उतर आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो बॉलिंग गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो देखने को मिलता है वो काफी मजेदार है। यही कारण है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक युवती उन पिंस के बेहद करीब खड़ी नजर आती है जिन्हें गिराने का टारगेट होता है। आमतौर पर किसी खिलाड़ी या शख्स को वहां खड़े होने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये खेल के नियमों के खिलाफ है। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो में दूसरी ओर से एक बड़ी बोलिंग बॉल लेन पर उड़कती हुई दिखाई देती है। गेंद तेजी से युवती की ओर बढ़ती है। जैसे ही गेंद उसके पास पहुंचती है, वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इसके बाद वो खुद गेंद को आधी की ओर फेंकने की कोशिश करती है ताकि सामने खड़ी सभी पिंस गिर जाए। हालांकि यहां पर कहानी में मजेदार मोड़ आता है। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को आगे फेंकती है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित होती है। हैरानी की बात ये कि गेंद फेंकने के बावजूद एक भी पिन नहीं गिरती। जिस काम को आसान समझकर किया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। युवती का ये असफल प्रयास लोगों को खूब हंसा रहा है।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। कुछ घंटों में खत्म होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार। इस बार फुटबॉल के महाकुंभ में होंगी 48 टीमें। पहाड़ों की रानी में संस्कृति का उत्सव, शिमला समर फेस्टिवल में हिमाचली संस्कृति की झलक। और क्रिकेट का जुनून बना गेम चेंजर, बिहार में रिवर्स माइग्रेशन की शुरुआत। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: टीआईटी भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह जारी किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से लैस। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा, बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल और उनके बड़े भाई उद्धव के बीच के विशेष रिश्ते को समर्पित। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत। आज दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर कल सिनेमा घरों पर दस्तक दे रही 8 बॉलीवुड फिल्में। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप की, जिसकी शुरुआत बस सबसे कुछ ही देर में होने जा रही है। ओपनिंग मैच मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा, जिसमें मैक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। पहली बार फुटबॉल के इस महाकुंभ में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पहली ही बार तीन तीन देश इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर जैसा क्रेज हर बार देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही क्रेज इस बार भी दुनिया भर में नजर आ रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फीवर से भारत भी बचा नहीं है। यहां भी अपनी अपनी टीम और अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए फुटबॉल प्रेमियों की दीवानगी देखते ही बढ़ रही है।

0: बस कुछ ही पल में खत्म होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार। अब से कुछ देर बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ होने जा रहा है। ओपनिंग मैच मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जिसके लिए मैदान भी तैयार है और तैयार है दोनों टीमों के खिलाड़ी और उनके लाखों करोड़ों फैंस, जिनका जोश और उत्साह मैच के दौरान पूरे शबाब पर होगा। मैदान में जीत के लिए पसीना बहाते खिलाड़ी होंगे तो स्टेडियम में बैठे फैंस अपनी टीम के हर एक गोल पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे होंगे और अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए प्रार्थना करते नजर आएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप के आगाज से पहले तीन शहरों में ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिनमें पहली ओपनिंग सेरेमनी मैक्सिको में होगी, जहां शकीरा और बर्ना बॉय जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे और टूर्नामेंट का ऑफिशियल गाना डाई डाई गाएंगे। दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में आयोजित की जाएगी, जिसमें मशहूर कलाकार माइकल बबल के साथ एलेसिया कारा और एलेनिस मोरिसेट जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। वहीं सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही भी अपना जलवा बिखेरेंगी। जबकि तीसरी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा, जिसमें इंटरनेशनल पॉप स्टार कैटी पेरी परफॉर्म करेंगी।
1: सबसे बड़ी चीज ये है कि तीन देश मिलकर इस बार वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। ये तीन ऐसे देश हैं जहां पर करीब करीब 16 वेन्यूज के ऊपर में, 16 शहरों के ऊपर में ये मुकाबले खेले जाएंगे।
0: ये 23वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है। 11 जून से 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, यानी पहली बार तीन देश वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। इस बार 48 देश ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ेंगे। इन सभी टीमों को 12 ग्रुप्स में बांटा गया है और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं। पूरे टूर्नामेंट में कुल 104 मैच 16 शहरों में खेले जाएंगे, जो इसे फीफा इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बनाता है। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सहित दुनिया के 1248 फुटबॉलर्स वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन चर्चा यह भी है कि फुटबॉल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी मेसी और रोनाल्डो आखिरी बार विश्व कप के मंच पर दिखाई देंगे। इसके अलावा इस फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली 48 टीमों के बीच 5600 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। टूर्नामेंट की विजेता टीम को करीब 429 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि उप विजेता को करीब 283 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को करीब 249 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं चौथे स्थान की टीम को लगभग 232 करोड़ रुपए मिलेंगे।
1: सबसे बड़ी बात यही है, अभी तक 32 टीमें हुआ करती थी, लेकिन इस बार फीफा ने 48 टीमों का मौका दिया है और लगभग 104 मैचेस अभी इस मुकाबले में खेले जाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार नियमों में भी काफी बदलाव किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर IMU का आप कह सकते हैं कि के नियम को जोड़ा गया है। ये जो IMU का नियम है वो ये है, जो बॉल होगी इस बार, जो ऑफिशियल मैच बॉल है, उसके अंदर में है सेंसर्स। वो सेंसर्स 3D एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, सीधा भेजेंगे विजुअल जो हमारा रेफरी होता है उसके पास भेजेंगे और उसको एनालाइज करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये इस बार यहाँ पर की गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि समय बचाने के लिए और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। गोलकीपर्स अब अपने पास गेंद को 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। अगर गोल इन और थ्रो इन की बात है, वहाँ पर भी अगर आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं तो अंपायर्स आपको 5 सेकंड का काउंटडाउन भी दे सकते हैं। हाइड्रेट रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि खिलाड़ियों को हाइड्रेट रखने के लिए ब्रेक्स का भी इस बार आप कह सकते हैं कि एड ऑन किया गया है। ये ब्रेक्स वहाँ पर मिलेंगे और अगर कोई खिलाड़ी ग्राउंड में इंजर्ड हो जाता है, उसको वहाँ पर थेरेपिस्ट आकर इंजरी से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए नियम बनाया गया है कि 1 मिनट उन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ेगा। तो इस बार वर्ल्ड कप में काफी कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा।
0: फुटबॉल का यह महाकुंभ भले ही 16 शहरों में और 48 टीमों के बीच खेला जाने वाला है, लेकिन इसके लिए कई दिनों पहले से ही दीवानगी दुनिया भर में देखने को मिल रही है। बस देश और शहर के नाम बदलते जाइए, फुटबॉल के लिए दीवानगी एक जैसी ही नजर आएगी। ये रंगारंग तस्वीरें उस देश से आई हैं जहां लोगों के लिए फुटबॉल ही सब कुछ है। ये देश और कोई नहीं बल्कि ब्राजील है, जिसने रिकॉर्ड 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता। यहाँ रियो डी जेनेरियो में सड़क से लेकर बाजार तक लोगों पर फुटबॉल का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ के बाजारों में पीले और हरे रंग की टी शर्ट, कैप, झंडे, ट्रॉफी की रेप्लिका और खास तरह के हॉर्न बिक रहे हैं, जिनकी खरीदारी के लिए ग्राहक बड़ी संख्या में बाजारों का रुख कर रहे हैं। कमोवेश ऐसी ही दीवानगी दुनिया के कई और देशों में देखने को मिल रही है। भारत भी फीफा वर्ल्ड कप के इस फीवर से बचा नहीं है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर लोगों की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। केरलम और तमिलनाडु के शहरों में फुटबॉल प्रेमियों ने अपनी टीम और अपने खिलाड़ियों के लिए समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर, कटआउट और बैनर चस्पा कर दिए हैं। खिलाड़ियों और टीमों की वॉल पेंटिंग से शहर को रंग दिया गया है। फैंस शहर शहर जुलूस निकालकर अपनी टीमों का सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ चुका है। वर्ल्ड कप में भाग ले रही टीमों की टी शर्ट, कैप और झंडे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। केरलम के मलपुरम में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में प्लास्टिक की बोतलों से बना फुटबॉल का विशाल स्कल्पचर लगाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी तरह कुछ लोगों ने मिलकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की विशाल रेप्लिका तैयार की, जिसकी भी खूब चर्चा हो रही है।
2: केरला में पूरी तरह से फीफा वर्ल्ड कप फीवर शुरू हो चुकी है और जैसे आप देख सकते हैं इधर विश्वस में सारी गलियों में और सारी सड़क की जंक्शंस में पूरी तरह से प्लेयर्स की फैक्सेस, पोस्टर्स और जर्सीज में आप लोगों को भी जर्सी पहन के, उनकी फेवरेट टीम्स की जर्सी पहन के घूमते हुए देख सकते हैं आप। इस वक्त हम तिरुवनंतपुरम की राजाजी नगर में हूँ और जैसे आप देख सकते हैं इधर पूरी तरह से ब्राजील की फैंस, बहुत सारे फैंस हैं ब्राजील फैंस, और ज्यादातर ब्राजील और अर्जेंटीना टीम्स के लिए केरला में बहुत सारे फैंस हैं और वो जनरेशन से उनकी इन बच्चों की माँ बाप सारे लोग ब्राजील और अर्जेंटीना की फैंस थी। बंगाल के जैसा पहले से केरला में फुटबॉल के को बहुत ज्यादा फैंस है। फुटबॉल ही बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है केरला में, खासकर नॉर्थ केरला में फुटबॉल के लिए अभी भी खासकर सेवेंस टूर्नामेंट के लिए भी बहुत सारे फैंस है और सेवेंस टूर्नामेंट अभी भी पैक स्टेडियम्स में होती है। तो इतना पैशन है, इतना प्यार है फुटबॉल को केरला में।
0: फुटबॉल प्रेमियों का ये हाल तब है जब अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 39 दिनों तक पूरी दुनिया फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रंग में रंगी हुई नजर आने वाली है। नितिन अग्रवाल और शिबी मोल केजी के साथ विरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अगली अच्छी खबर है हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहां पर इन दिनों शिमला समर फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें लोगों को जाने माने कलाकारों से लेकर लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि इस बार हिमाचल की लोक संस्कृति और परंपराओं को केंद्र में रखा गया है, जिसके चलते फेस्टिवल में पारंपरिक लोक नृत्य, पहाड़ी व्यंजन, टॉक शो, पहाड़ी कवि सम्मेलन और मानारी जैसे कार्यक्रम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और राज्यपाल महोदय।

अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से देश और दुनिया भर के पर्यटकों का मन मोह लेने वाले शहर शिमला में इन दिनों पहाड़ी लोक कला और संस्कृति का रंग छाया हुआ है। ये रंगारंग तस्वीरें शिमला समर फेस्टिवल की है, जो इन दिनों शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में चल रहा है। इस समर फेस्टिवल का उद्घाटन 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने दीप जलाकर किया था। इसके बाद से यहाँ हर शाम रंग बिरंगी रोशनी और संगीत से सराबोर हो जाती है। सूफी और बॉलीवुड गायक शबाब साबरी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

0: तो वहीं हिमाचली गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से समो फेस्टिवल में समा बांध दिया। समर फेस्टिवल के इन खूबसूरत रंगों को देखकर वहां पहुंचे पर्यटक भी वाह कह उठे हैं।
1: शिमला बहुत अच्छा लग रहा है और ये संयोग की बात है कि यहां पे समर फेस्टिवल भी चल रहा है, इसका हम आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहां पे इतना क्राउड देख के इतना चहल पहल है, बड़ा मजा आ रहा है। हम कह नहीं सकते कि कितना अच्छा लग रहा है। शिमला बार बार आने का मन होगा और ऐसे फेस्टिवल में ज्वाइन करने का भी बहुत मन होगा बार बार।
2: हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ फेस्टिवल भी चल रहा है और वेदर भी बहुत अच्छा है, क्राउड भी बहुत अच्छा है, तो वी आर एंजॉइंग अ लॉट।
3: क्या मैसेज देना चाहेंगे
2: कि यहाँ पर आओ, क्योंकि यहाँ पे अभी एक वीक फेस्टिवल चल रहा है, यहाँ का नेटिव फूड और यहाँ का फेस्टिवल देखने का मजा अलग है।
0: इतना ही नहीं, मॉल रोड पर रंगीन पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने छम नृत्य की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं ढोल नगाड़ों की थाप और मधुर संगीत ने माहौल को जीवंत बनाया। इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हुए।

0: इसके जरिए नशा मुक्ति और नारी स्वावलंबन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी रहा।
1: समर फेस्टिवल में पिछले कई वर्षों से हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं WCD डिपार्टमेंट की, वो महानाटी करते आ रहे हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की रिच कल्चरल जो हेरिटेज है, जो हमारा ट्रेडिशन है, आपने देखा होगा कि पारंपरिक परिधानों में यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो ये नाटी कर रही हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको उजागर करना चाहते हैं, उसका एक संदेश देना चाहते हैं।
2: लोगों को भली भांति परिचित होगी कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है माँ नाटी, यानी कि ये हमारी माताओं को समर्पित है, जो हमारी महिलाएं वगैरह है उन सबको ये हम डेडिकेट करते हैं। कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल चिट्टा कितना ज्यादा फैल चुका है हमारे देश में, आए दिन हम ये केसेस देखते हैं। तो अगर किसी बच्चे को बड़ा करने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है हमारी माताएं, तो जाहिर सी बात है इसलिए जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं वो मकसद ही है कि हम अपने बच्चों को चिट्टे, हीरोइन, जितने भी नशीले मादक पदार्थ इनसे दूर रखें।
0: 5 दिनों तक चलने वाले शिमला समर फेस्टिवल में लोगों को लोक कला और संस्कृति ही नहीं बल्कि पहाड़ी जायकों को भी चखने का मौका मिला। इस बार समर फेस्टिवल में कई ऐसे नए प्रयोग देखने को मिले जिनके चलते इस फेस्टिवल के प्रति लोगों की दीवानगी एक बार फिर देखने को मिली।
3: इसके अलावा यहाँ पर जो पारंपरिक व्यंजन हैं, पारंपरिक लोक नृत्य हैं या फिर पारंपरिक वेशभूषा के साथ एक महानाटी का आयोजन जो किया जाता है, और इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो यहाँ पर अब नए सिरे से शुरू किए गए हैं। हॉट एयर बलून जो कि अपने आप में एक अलग अट्रैक्शन पहाड़ों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। आप पारिवारिक जो लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर अगर आते हैं तो शिमला शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ लिया जा सकता है, यहाँ पर जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखी जा सकती हैं, यहाँ का कल्चर देखा जा सकता है, संस्कृति देखी जा सकती है।
4: पारंपरिक लोक संगीत का इंतजाम किया गया है, जहाँ पर आपने देखा होगा स्कैंडल पॉइंट जिसको पॉपुलरली जानते हैं लोग, वहाँ पर लोग खड़े होकर के जो हैं उनकी धुनों पर जो हैं गाने गुनगुना रहे हैं और वो इसमें आनंद ले रहे हैं, और पर्यटकों के लिए ये सब यादगार चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप रिपोर्टिंग रूम के पास आएंगे तो वहाँ पर हमारे NZCC के बहुत ही उत्तम श्रेणी के कलाकार जो है वो हमारे जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं उनके साथ सानिध्य में जो है बड़ा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज की डेट में फिजिकली जो है फिट रहने के लिए जुम्बा इत्यादि जो है हर जगह स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस पर काम कर रही हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रही हैं। साथ ही साथ एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि आप अपनी फिटनेस पर भी ध्यान रखें।
0: इस शिमला समर फेस्टिवल के दौरान आयोजित डॉग शो भी आकर्षण का केंद्र बना और इसने बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बताया जा रहा है कि इवेंट में 3 दर्जन से ज्यादा पालतू कुत्तों ने हिस्सा लिया, जिन्हें छोटे, मध्यम और बड़े आकार की कैटेगरी में बांटा गया था। डॉग शो के दौरान मालिकों ने उत्साह के साथ अपने कुत्तों को पेश किया। प्रतियोगिता के तहत डॉग डब्बी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए डॉग शो का चैंपियन खिताब अपने नाम किया।
3: बाहरी राज्यों से आने वाले लोग न सिर्फ यहाँ के पारंपरिक व्यंजन, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो रहन सहन है उससे रूबरू हो रहे हैं और लोग इसको बेहद पसंद करते हैं। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप आइए, शिमला आइए, पहाड़ों की रानी शिमला आइए और यहाँ पर आकर आज के इस मौसम का, इस जो ग्रीष्मोत्सव है यहाँ का, आनंद जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज़ टुडे।
5: बाद पलायन रोकने की ओर बढ़े एक कदम की। 90 के दशक से बिहार के लिए पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है और एक बड़ी समस्या भी। रोजगार के बेहतर विकल्प की तलाश में हर साल लाखों युवा और मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का रुख करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन राज्य में बड़े उद्योगों और फैक्ट्रियों की भारी कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। पर पटना का एक नौजवान अपनी व्यापारिक समझ और दूरदर्शिता के दम पर इस समस्या की काट खोजने में जुटा है। क्रिकेट के जुनून की वजह से निशांत रंजन ने पटना के एक इलाके में स्पोर्ट्स फैक्ट्री लगा दी, जहां 35 हुनरमंद क्रिकेट से जुड़े गियर बनाते हैं। खास बात यह है कि इनमें 30 लोग ऐसे हैं जो 15 से 20 साल तक बाहर काम करने के बाद बेहतर रोजगार मिलने की वजह से वापस लौट आए हैं। यानी क्रिकेट प्रेमी निशांत के जुनून ने बिहार में रिवर्स माइग्रेशन की छोटी सी लेकिन नेक शुरुआत की है।

0: ये फैक्ट्री मेरठ, जालंधर, जयपुर या कश्मीर की नहीं बल्कि पटना की है। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन यही हकीकत है। दशकों से पलायन का प्रतीक बन चुका बिहार मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह में धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत कदम बढ़ा रहा है। पटना की ये फैक्ट्री उसी संकल्प का प्रमाण, आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन यही हकीकत है। दशकों से पलायन का प्रतीक बन चुका बिहार मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह में धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत कदम बढ़ा रहा है। पटना की ये फैक्ट्री उसी संकल्प का प्रमाण है। अरसे से बिहार को औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिशें जारी हैं। उन प्रयासों को गंभीरता से लेते हुए कुछ युवा अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। क्रिकेट से जुड़े सामान बनाने वाली फैक्ट्री बिहार के सैकड़ों युवाओं को अपनी काबिलियत अपने ही राज्य में साबित करने का मौका दे रही है। इसके साथ रिवर्स माइग्रेशन की उम्मीद भी जग रही है। रिवर्स माइग्रेशन वो प्रक्रिया है जिसमें लोग रोजगार, शिक्षा या दूसरी वजहों से शहरों, राज्यों या विदेशों में प्रवास करने के बाद अपने मूल स्थान लौटने लगते हैं।
1: बिहार में जिस तरीके से हर साल हजारों लाखों की संख्या में यहाँ रहने वाले लोग जो पलायन करते हैं और देश के अन्य कई हिस्सों में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, उसके वजह से पलायन जो है वो बहुत बड़ी समस्या तो है ही बिहार के लिए, और कहा भी जाता है शायद इसीलिए कि बिहार जो है पूरे देश को जो है वो लेबर फोर्स सप्लाई करने वाला राज्य बन गया है। लेकिन क्या हो अगर वही मजदूर, वही वर्कर जो आज सूरत में, दिल्ली में, पंजाब में, कश्मीर में, गुजरात, तमिलनाडु, वहाँ जो काम कर रहे हैं, एक बार फिर से बिहार में अगर उनको अवसर मिले और बिहार में आकर काम करने का मौका मिले तो फिर इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। और ये एक बहुत ही संतोषजनक एक स्थिति बनती है, और फिलहाल ऐसी कुछ स्थिति जो है वो बिहार में बनती नजर आ रही है।
0: बिहार की राजधानी पटना के एक इलाके में शुरू हुई इस फैक्ट्री में इंग्लिश व्हीलों की लकड़ी से क्रिकेट बैट के अलावा लेदर बॉल, दस्ताने, लेग पैड, हेलमेट जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्वालिटी ऐसी कि प्रोडक्ट्स पुराने स्पोर्ट हब जैसे जालंधर, मेरठ या कश्मीर के प्रोडक्ट्स को टक्कर दे रहे हैं। बिहार की इस स्पोर्ट फैक्ट्री में खेल कूद के दौरान इस्तेमाल होने वाले जूतों को भी बनाया जाता है। इस दौरान कंफर्ट और क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है।
1: स्पोर्ट्स की तमाम चीजें जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बनाई जाती है। अब ये जो दूसरा सेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर जूते बनाए जा रहे हैं। जूते बना रहे हो, इससे पहले कहाँ काम करते थे?
2: इससे पहले जालंधर काम कर रहे थे सर।
1: जालंधर पंजाब में, कितने साल वहाँ काम किया?
2: वहाँ 2012 से लेकर 2021 तक
1: 10-11 साल वहाँ पे काम किया।
2: हाँ जी सर।
1: तो फिर लॉकडाउन के बाद यहाँ आ गए थे?
2: हाँ, लॉकडाउन के बाद सर यहाँ पे आ गए थे 22 मार्च को।
1: तो उसके बाद फिर वापस नहीं गए?
2: ना, वापस नहीं गए सर।
1: क्यों?
2: क्योंकि यहाँ बेहतर लगा हमारे लिए और
1: मौका मिल गया यहाँ पे।
2: हाँ जी पक्का।
1: ये तो अच्छी बात है कि भाई लोग पलायन करके भी इतना दूसरे दूसरे राज्य में जाते हैं, अगर मौका मिल गया तो वापस आ गए हो।
2: हाँ जी सर, मौका मिला वापस आ गए, अब हमारे लिए बहुत बेहतर है। यहाँ
1: कहाँ के रहने वाले हो?
2: मुजफ्फरपुर जिला का सर।
1: यहाँ क्या क्या बनता है इस फैक्ट्री में?
2: यहाँ पे स्कूल शूज, क्रिकेट शूज और बैट, तीन चीज बन रहा है सर यहाँ पे।
1: बैट बॉल सब देख रहे हैं।
2: हाँ जी सर। हाँ जी सर।
1: तो सैलरी वाली ठीक ठाक है, कोई दिक्कत?
2: हाँ, सैलरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर।
0: बिहार से पलायन एक गंभीर समस्या है। रोजगार की तलाश में बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में बड़े उद्योगों और फैक्ट्रियों की भारी भरकम कमी के कारण हर साल लाखों युवा और मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का रुख करने को मजबूर होते हैं। अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात संघर्ष और मेहनत करते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके, लेकिन जब अपने ही राज्य में बाहर वाला मेहनताना मिल जाए तो खुशी दोगुनी हो जाती है। हालांकि पलायन से वापसी की कहानी इतनी आसानी से नहीं लिखी गई, पर खेल के जुनून से शुरू हुआ यह सफर रोजगार और उम्मीद की पटकथा लिखने लगा है, जिसके पीछे है एंटरप्रेन्योर निशांत रंजन और उनके बड़े भाई, जिन पर एक ही जुनून सवार है कि बिहार को स्पोर्ट्स हब बनाना है।
1: खेल कूद में बहुत रुचि है निशांत आपकी?
3: रुचि ही नहीं सर, मतलब क्रिकेटर रहे हैं और जूनियर लेवल पर काफी लंबा क्रिकेट खेला। मेरे बड़े भाई खुद बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट किए हुए रणजी ट्रॉफी में 10 साल, सो हमारा मतलब अकेले का नहीं, हमारा खुद का एक था कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है. बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा हार्डवर्क लगा. आप बोल सकते हैं कि हम लोग एक पहाड़ को हिलाए हैं.
0: 12 साल तक बैंक की नौकरी करने वाले निशांत ने 2018 में नौकरी छोड़ दी. इसके बाद स्पोर्टिंग गियर की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े रिसर्च के लिए 3 साल तक पंजाब के जालंधर, यूपी के मेरठ और कश्मीर के चक्कर लगाए, ताकि बिहार में क्रिकेट खेलने से जुड़े बच्चों और खिलाड़ियों को कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मिल सके. इसके बाद 2022 में स्पोर्ट्स फैक्ट्री की नींव पड़ी. वापस बिहार लौटे 35 कारीगरों से शुरू हुई फैक्ट्री के विस्तार का बड़ा प्लान भी है.
3: जब हम लोग जितने साल हम लोगों ने खेला, तो हम लोग को एक जेन्युइन प्रोडक्ट एक जेन्युइन प्राइस पे हम लोग के लिए एक ड्रीम ही था. क्योंकि बहुत सारा, चूँकि 2 शहर में इसका सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से कभी भी डिमांड और सप्लाई जो है वो मैचअप नहीं हो पाया. और ईस्टर्न पार्ट इसी वजह से हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा. यहाँ जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं आ पाए, बहुत सारा प्राइसिंग का इशू था. सो मुझे लगा कि ये अभी जो आज के डेट मेरी इच्छा यही है कि जो भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनको मैं अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल रिजनेबल रेट पे दूं, सो दैट कि वो आगे और अच्छा परफॉर्म करें.
0: एक अनुमान के अनुसार बिहार की लगभग 20% आबादी यानी करीब 3 करोड़ लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं. बेशक बिहार के मजदूर और युवाओं के हुनर, लगन और टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य में उचित अवसरों और पर्याप्त रोजगार के अभाव के कारण उन्हें अक्सर आजीविका के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है. ऐसे में पटना की ये स्पोर्ट्स फैक्ट्री बिहार के युवा और कारीगरों के लिए अंधेरी गुफा में रोशनी की तरह है.
1: वैसे 30 लोग हैं जो दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कहीं और काम कर रहे थे और खासकर स्पोर्ट्स गियर बनाने के काम में लगे हुए थे. वो आज उन राज्यों को छोड़कर वापस अपने घर के पास आ गए हैं और यहाँ पर इस फैक्ट्री में जो है काम कर रहे हैं. जाहिर सी बात है ये एक सुखद तस्वीर ज़रूर है कि बिहार में पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है, वहाँ पर अगर रिवर्स माइग्रेशन होता है तो जाहिर सी बात है एक कह सकते हैं कि अगर सरकार भी अपने लेवल पर उद्योग धंधे लगाए तो फिर हज़ारों की संख्या में बिहार छोड़कर कोई अन्य राज्यों में नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों में जहाँ आज वो काम कर रहा है वहाँ से वो ट्रेन पकड़कर वापस बिहार आएगा और यहीं पर वो काम करेगा. रोहित सिंह, पटना.
4: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती हैं. नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ. आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
6: जैक एफएम इज नाउ स्ट्रीमिंग कमर्शियल फ्री ऑन ट्यून इन प्रीमियम.
7: Jack, you're killing me.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: Trust me, विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है.
9: Good News Today.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे महिलाओं के विवाह की महत्वपूर्ण बातों के बारे में और महिलाओं के वैवाहिक जीवन के ग्रहों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:36 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 6:28 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के विवाह और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के विवाह की और उनके वैवाहिक जीवन की। जब बात होती है महिलाओं के विवाह की, तो उसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं पहले ये समझते हैं। किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र, लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए शुक्र के अलावा बृहस्पति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की कुंडली में विवाह भाव यानी सप्तम भाव के अलावा अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिलाओं की कुंडली को विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए चंद्रमा से भी जरूर देखना चाहिए। यानी अगर आप किसी महिला के विवाह और वैवाहिक जीवन को समझना चाहते हैं तो लग्न कुंडली के अलावा शुक्र, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति को देखना और समझना जरूरी होगा। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में नौ ग्रहों की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जीवन पर ज्यादा बड़ा और ज्यादा गहरा असर डालते हैं। तो महिलाओं के विवाह में कौन से ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, महिलाओं के विवाह के लिए पहले नंबर पर है बृहस्पति, उसके बाद है चंद्रमा और ओवरऑल कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है शुक्र। तो महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को अवश्य देखना चाहिए। इन तीनों को और इन तीनों से कुंडली देखकर विवाह और वैवाहिक जीवन का निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी महिला की चंद्र कुंडली ज्यादा प्रभावशाली है, चंद्र कुंडली पर प्रभाव ज्यादा है, तो विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं के जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा का अस्त होना या केतु के साथ होना भी समस्या का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि अगर किसी महिला का चंद्रमा अस्त होगा, सेहत के अलावा उनको मानसिक और भावनात्मक समस्याएं परेशान करेंगी, और चंद्रमा अगर केतु के साथ होगा तो महिला को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी होने की संभावना बन जाएगी। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि से बचें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, संपत्ति खरीद सकते हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा और न विवाह चलेगा। बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो विवाह में अत्यधिक विलंब होता है, अत्यधिक दिक्कतें आती हैं, और अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो विवाह में भयंकर विलंब होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर बृहस्पति दूषित हो जाए, बृहस्पति दूषित होता है राहु और केतु की वजह से, तो अगर बृहस्पति दूषित हो जाए तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी किसी महिला की कुंडली में बेहतर हो, थोड़ा भी बेहतर हो, तो विवाह समय पर करवा देता है और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी किसी भी महिला की कुंडली में बृहस्पति का अनुकूल होना हर मामले में बेहतर है, और बृहस्पति के अनुकूल होने से उनके जीवन के बेहतरी की संभावना बन जाती है। देखिए, वैसे तो अष्टम भाव हर कुंडली का अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की कुंडली का अष्टम भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए। क्या महत्व है अष्टम भाव का महिलाओं के जीवन में? महिलाओं का अष्टम भाव मांगल्य भाव है। उनके लिए सर्वाधिक शुभता लाने का भाव है उनके वैवाहिक जीवन में। महिलाओं का अष्टम भाव उनके वैवाहिक जीवन की लंबाई बताता है। लेकिन मेन बात जो है, महत्वपूर्ण बात जो है, महिलाओं का अष्टम भाव पति की आयु पर असर डाल देता है। अगर सूर्य और मंगल या दोनों में से एक अष्टम भाव पर असर डाल दें किसी महिला की कुंडली में, तो ये खतरे की सूचना है, पति के आयु के लिए डेंजर जोन है। मंगल और शनि का महिला की कुंडली के अष्टम भाव पर जो असर है वो पति की आयु के लिए काफी अशुभ हो सकता है, काफी ज्यादा अशुभता पैदा कर सकता है। इस तरह के योग अगर कुंडली में है किसी महिला के, तो विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। विवाह के समय कुंडली बड़ी सावधानी से मिलानी चाहिए और अगर संभव हो तो विवाह करने के पहले अष्टम भाव पर जो पाप प्रभाव है उसका उपचार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया जाए किसी महिला के विवाह के पहले, तो समस्या इतनी ज्यादा नहीं होगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय दिखाई दे रही है, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी,

0: वैवाहिक जीवन भी बेहतर बना रहेगा। अगर आपके बच्चे की संतान की शिक्षा में बाधा आ रही है तो बच्चे के साथ बृहस्पतिवार को मंदिर जाएं, धर्म स्थान पर जाएं और वहां पर जा करके अगर प्रार्थना करें तो काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा, उसकी शिक्षा की बाधाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी की भी किसी तरह की कोई उन्नति नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे, रोज सवेरे और शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करें, घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें और सप्ताह में एक दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें आपके घर की तरंगे बेहतर होंगी और घर के लोगों की उन्नति होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है

0: संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौंडन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर कल सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में, कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा नीम करौली बाबा के कैंची धाम में लगने वाले आस्था के मेले की भी है।
6: उत्तराखंड में आस्था के बड़े स्थल बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम के स्थापना दिवस को मनाने की बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। इस विशेष मौके पर भक्तों की आने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। विशेषकर सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और दर्शन व्यवस्था की पुख्ता तैयारी भी है। 15 जून को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस के लिए यहां देश विदेश से 1,00,000 से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। इसीलिए 14 और 15 जून को कैंची धाम क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल से विशेष शटल सेवा और पार्किंग व्यवस्था की गई है। बाबा के प्रसिद्ध भंडारे के लिए प्रसाद और मालपुए बनाने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु के थूथुकुड़ी की हैं, जहां एक मंदिर में वेकासी कोडई महोत्सव पूरे श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर जगमगाते मंदिर परिसर में महिला श्रद्धालु पारंपरिक रूप से प्रसाद बनाती दिखी तो मंदिर में पूजा अर्चना भी चलती रही। तमिलनाडु में वेकासी महोत्सव मुख्य रूप से देवी और बाकी दूसरे स्थानीय ग्राम देवी देवताओं की आराधना के लिए मनाते हैं। ये त्यौहार स्थानीय संस्कृति, वर्षा ऋतु के आगमन और बुरी ताकतों से बचाव के लिए ग्रामवासियों की आस्था का प्रतीक है। ये महोत्सव तमिल सौर कैलेंडर के वेकासी महीने में मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मई और जून के महीनों में पड़ता है। ये कई दिनों तक चलने वाला वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें अलग अलग तिथियों पर विशेष पूजा और अनुष्ठान के साथ ही रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में धूमधाम के साथ इंटरनेशनल समर फेस्टिवल चल रहा है। 8 जून से 12 जून तक के इस 5 दिवसीय महोत्सव में हर दिन अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। इस समर फेस्टिवल में इस बार हिमाचल की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाया गया, साथ ही पहली बार हॉट एयर बलून, जॉय राइड जैसे विकल्प भी खोजे गए, उन्हें शामिल भी किया गया। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को यहां लोक नृत्य देखने का मौका भी मिल रहा है। इस फेस्टिवल में डॉग शो का आयोजन भी किया गया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। पहाड़ी कवि सम्मेलन से लेकर यहां पारंपरिक व्यंजन का आनंद लेने का मौका भी मिल रहा है। शाम होते होते शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस समर फेस्टिवल की जान सांस्कृतिक संध्या का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है, जिसमें बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली गायकों की शानदार प्रस्तुति सबको थिरकने पर मजबूर कर देती है। केरला में वन विभाग की ओर से जंगली हाथियों पर नजर रखने के लिए खास ड्रोन स्क्वाड तैनात किया गया है। इस हाईटेक ड्रोन सर्विलांस की वजह से जंगली हाथियों की सभी गतिविधियां साफ साफ देखी जाती हैं।

0: 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सके।
1: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने जवाबी कार्रवाई जारी रखी और एक आतंकी को मार गिराया। उनके इसी साहसिक योगदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। संजय तिवारी की बहादुरी की ये कहानी आज युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। भारतीय सेना के अफसर मेजर अर्शदीप सिंह गिल को देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। उन्होंने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर हुए 84 घंटे के ऑपरेशन के बारे में बताया, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में चलाया गया ऑपरेशन बेहद कठिन था, जहां हर पल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
2: कुछ सर्कमस्टांसेस बताइए, कितने लोग थे, क्या समय था, कैसे आप लोगों ने टैकल किया? क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कितना टफ है कोई काउंटर टेरर ऑपरेशन।
3: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जंगल टेरेन है, माउंटेन है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और ये ऑपरेशन मॉर्निंग में 6:35 पे हमारे ऊपर अनप्रोवोक फायर आया था। उसके बाद फिर ये 14 मई को लेके शाम 1800 आवर्स 17 मई तक ये ऑपरेशन चला था। और जो हमारी नफरी थी, मैं उसमें ऑफिसर था, मेरे जेसू साहब थे और 30 अदर रैंक्स हमारे साथ थे। और जिस तरीके का इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सचेंज हो रहा था, तो मेरे को एज पर माई असेसमेंट मेरे को लगा था कि 15 से 20 आर्म कार्डर्स आगे की तरफ हैं। उसके बीच में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वाला कार्डर भी हमने देखा था, जिसको हमने आगे जाके न्यूट्रलाइज किया। और उसके बाद जब ये ऑपरेशन हमने कल्बिनेट किया था, एरिया सैनिटाइज किया था, तो वी रिकवर्ड 10 किल्ड बॉडीज। तो लेकिन उससे ज्यादा हमें वहां पे वेपन्स मिले थे, तो जिससे पता चलता है कि यहां की बॉडीज हमें 10 मिली हैं, लेकिन नफरी ज्यादा थी, क्योंकि हथियार हमें असॉल्ट राइफल्स ही उसमें से 14 मिली थी, फिर 15वां हमें उसमें से आरपीजी मिला था। तो कम से कम नफरी 15 से 20 की वहां।
1: युवाओं के लिए संदेश देते हुए मेजर गिल ने कहा कि अनुशासन, समर्पण और कड़ी मेहनत सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर युवा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और देश हित को सर्वोपरि रखें, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। रीवा से हरिओम सिंह और अकोला से धनंजय साबले के साथ मोहाली से कमलजीत संधु, गुड न्यूज टुडे।
4: गर्मी से राहत के बीच मानसून भी आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: भीषण गर्मी के बीच देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा गया। कहीं हवाओं ने राहत दी तो कहीं बारिश भी हुई। इन सब के बीच मौसम विभाग की ओर से मानसून को लेकर जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के बाकी बचे हिस्सों, पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्सों के साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। इसके अलावा पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने को लेकर स्थितियां अनुकूल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून के दौरान राज्य में 52 दिनों का ट्रोलिंग बैन के लागू होने के साथ ही फिशिंग ट्रोलर बंदरगाह पर लौट गए। इस बैन के शुरू होने के साथ ही केरल के तट पर 10 जून से 31 जुलाई तक के लिए मछली पकड़ने पर रोक लग गई है। मानसून के मौसम में समुद्री संसाधनों के संरक्षण और मछलियों के प्रजनन चक्र को सुरक्षित रखने के लिहाज से राज्य सरकार की ओर से ये पाबंदी लगाई जाती है। यानी इस दौरान मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रोलर्स और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नावों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पारंपरिक और हाथ से चलने

वाली छोटी नावें इस दायरे से बाहर होती हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर स्थित कुगती वन्य प्राणी अभयारण्य में ब्राउन बियर का परिवार दिखाई पड़ा। ये हिमालय भालू अत्यंत दुर्लभ वन प्रजातियों में गिना जाता है। इसके दिखाई पड़ने को क्षेत्र की जैव विविधता का प्रमाण माना जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि क्षेत्र का प्राकृतिक आवास अभी भी वन्य जीवों के लिए अनुकूल बना हुआ है। ब्राउन बियर के इस परिवार के दिखाई देने से वन विभाग के साथ ही वन्य जीव प्रेमी बेहद खुश हैं। और अब बात चारधाम यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। चार धाम में तीर्थयात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बद्रीनाथ धाम में तो आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। प्रशासन लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि श्रद्धालुओं को ट्रैफिक की समस्या ना हो और अच्छी सुविधा मिले।

0: बाबा केदार के दरबार से लेकर बद्रीनाथ धाम तक भक्ति और आस्था का महाकुंभ सजा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। यहाँ कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई घोड़े खच्चरों और हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए बाबा के दरबार में पहुंच रहा है। चार धाम यात्रा के दौरान मौसम भी श्रद्धालुओं से अग्नि परीक्षा ले रहा है। यहाँ पल पल मौसम बदल रहा है, चुनौतियाँ डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। अब तक 12 लाख श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर चार धाम की यात्रा करने वालों का आंकड़ा 33,50,000 को पार कर गया है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी एक वजह सुरक्षा और सुविधा भी है। देवभूमि में यात्रियों का खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, विश्राम स्थलों, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर किए गए इंतजामों से यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए हैं, रास्ता भी बहुत अच्छी है और डॉक्टर की मतलब वो नहीं मेडिकल वो भी बहुत अच्छा है, मतलब दिक्कत नहीं हुई कोई सी, सोने की भी जगह बहुत अच्छी है, बिस्तर भी अच्छा मिला और सब अच्छा लगा, यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। पहली बार मैं गई,
2: ये मेरा पहली बार है केदारनाथ में और मुझे यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया लगा, घोड़े खच्चर के लिए मेडिकल के पानी सब चीज़ की व्यवस्था है, मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा देश अच्छा बढ़ रहा है।
3: यहाँ पर जो भी व्यवस्था है घोड़ों की, रास्ते से लेकर घोड़ा की गर्म पानी की लेकर मेडिकल से लेकर डॉक्टर से लेकर जो रेट पर जो घोड़े जा रहे हैं उनके जाँच जूच और बाकी सारे व्यवस्था घोड़ों की सही है यहाँ पे।
0: 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ अलग ही है। 10 जून तक 10 लाख का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: 15 जून के बाद हमारा जो मानसून सीजन है वो शुरू हो जाता है, जो हमारे जो जोन और सेक्टर बटे होते हैं तो उसके जो अधिकारी हैं वो प्रॉपर समन्वय की स्थिति बनाए रखेंगे और पूरी तैयारी है हमारी, कोई ऐसी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अगर कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति होती भी है तो उसका निस्तारण तत्समय कर लिया जाएगा।
0: मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। जाहिर है कि चार धाम यात्रा में दर्शन के साथ साथ बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को यादगार बना रही हैं। आस्था और व्यवस्था का ये संगम चार धाम यात्रा को और नई ऊंचाइयों तक पहुँचा रहा है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूटना चाहे, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
7: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 150 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 53 अंकों की गिरावट के साथ 23,161 पर बंद हुआ। लंबे समय से चल रहे वैश्विक संकट और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 2100 रुपए गिरकर 153,900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 245,700 रुपए ही रही। पश्चिमी एशिया में बढ़े तनाव के बीच 11 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 50 पैसे गिरकर 95.75 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
6: कल फिल्मी फ्राइडे पर भारत भाग्य विधाता और मैं वापस आऊंगा दे रही है दस्तक। दर्शकों को बेसब्री से है इनका इंतजार। फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
8: कितना फनी है ना कि
9: कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का सोचने पर मजबूर करने वाला टीजर रिलीज हो गया है। कंगना रनौत ने भारत भाग्य विधाता के इस नए टीजर में कुछ अहम बातें कही हैं।
8: नोटिस नहीं होता, स्कूल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो नोटिस होता है।
9: ये फिल्म हमारे उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि है। फिल्म की स्क्रिप्ट मनोज तापड़िया ने लिखी है और वो ही फिल्म के निर्देशक हैं। फिल्म कल रिलीज होने वाली है, साथ ही फिल्म के सिनेमा घरों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है।
8: हॉस्पिटल में एक मिनट का भी डिले हो तो नोटिस होता है।
10: चांद पे मैच है।
9: दिलजीत दोसांझ स्टार फिल्म मैं वापस आऊंगा भी कल रिलीज होने जा रही है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की ये रोमांटिक पीरियड ड्रामा देश विभाजन के बैकड्रॉप पर बुनी गई है, जिसमें विभाजन के दंश से पीड़ित एक बुजुर्ग की अपनी प्रेमिका के लिए मोहब्बत के लिए कसर दिखाई गई है, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह जाती है। मेकर्स ने एक दिन पहले इस फिल्म का नया गाना क्या कमाल है एक खास संदेश के साथ रिलीज किया है और इसे दुनिया भर के शरणार्थियों को समर्पित किया है। चर्चित फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की नई मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल का शानदार ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर बेहद मजेदार है। ट्रेलर में पुराने वेलकम अंदाज की कॉमेडी, कंफ्यूजन और एक्शन का भरपूर ड्रामा देखने को मिल रहा है। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पटानी समेत एक बड़ी स्टार कास्ट है जो हंसी का डोज लाई है। ये फिल्म सिनेमा घरों में 26 जून को दस्तक देगी।
11: हमारी फिल्म आर्मी वाली।
9: हाल ही में कॉमेडी फिल्म धमाल 4 के मेकर्स के कुछ पोस्टर्स सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद से ही फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला है। अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रवि किशन धमाल कॉमेडी लेकर बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी।
6: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौंडियापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलस। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
13: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक भावुक वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक युवक नारियल का पानी निकालते हुए दिखाई देता है, जबकि एक नन्ही चिड़िया उसके पास बिना डरे मंडराती रहती है। बाद में युवक ड्रॉपर की मदद से चिड़िया को नारियल पानी पिलाता है और चिड़िया भी पूरी सहजता के साथ पानी पीती नजर आती है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के रिवालसर इलाके का बताया जा रहा है। इसमें एक बंदर कुत्ते के छोटे से पिल्ले को अपनी गोद में लेकर पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिल्ला बंदर की गोद में बिल्कुल चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो शांति से नीचे खड़े लोगों को देख रहा है। वीडियो देखने वाले लोग भी यही सोच रहे हैं कि इस समय ज्यादा डरा हुआ कौन है, बंदर या फिर बेचारा पिल्ला। आपने कभी किसी कार को उसके कवर के साथ चलते हुए देखा है? जाहिर है कि नहीं देखा होगा, क्योंकि कार को चलाने से पहले लोग उसका कवर हटा ही लेते हैं। मगर कुछ लोग जिनके अंदर खूब सारे आलस होता है, वो इस काम को भी बस उतना ही करते हैं जिससे उनका काम चल जाए। और ऐसा ही कुछ वायरल वीडियो में भी नजर आया। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स ने अपनी कार का कवर उतना ही हटाया है जिससे वो कार के अंदर बैठ जाए और कार को चला ले। समंदर में एक बड़े से जहाज के किनारे पर खड़े कुछ लोग एक तेज रफ्तार छोटी सी नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पानी उफान पर है, लहरें जोरों से टकरा रही हैं और छोटी नाव पूरी रफ्तार में दिख रही है। जब नाव उन लोगों के पास पहुंचती है तो वो थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसके बाद वो लोग बड़ी मुश्किल से इस जहाज से उस नाव पर चढ़ पाते हैं। जब वो नाव पर सवार हो जाते हैं तो नाव तुरंत रफ्तार पकड़ लेती है और वहां से निकल जाती है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने ये एक बार भी नहीं सोचा कि अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाती या फिर कोई फिसल गया होता तो उनकी जान भी जा सकती थी।
6: उस पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी घर का कामकाज संभालने वाली उन महिलाओं की जिन्हें आमतौर पर गृहिणी कहा जाता है। अक्सर इन महिलाओं के योगदान को कमतर आंका जाता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक गृहिणी का योगदान सिर्फ उसके परिवार तक ही सीमित नहीं होता, वो देश के मानव संसाधन और राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गृहिणी को सिर्फ होम मेकर कहने के बजाय नेशन बिल्डर कहा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि घर और परिवार की देखभाल में हाउसवाइफ के कार्यों का महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक गृहिणी की घर में काम करने की कीमत प्रतिमाह 30,000 रुपए निर्धारित की। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और कोटेश्वर सिंह की बेंच ने घर के बिना पैसे वाले कामों की आर्थिक अहमियत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि शादी का मतलब घर में नौकरानी लाना नहीं है। घर के जितने भी कामकाज होते हैं वो पति और पत्नी दोनों की साझा जिम्मेदारी। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि होममेकर शब्द को अब नेशन बिल्डर यानी कि राष्ट्र निर्माता के तौर पर भी देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और उसे उम्मीद है कि देश के सभी उच्च न्यायालय इस विषय की निगरानी करेंगे ताकि गृहिणी के योगदान को उचित कानूनी मान्यता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि गृहिणी का घरेलू श्रम और परिवार की देखभाल में दिया गया समय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक गृहिणी के योगदान के नुकसान को मुआवजे के निर्धारण में अलग से मान्यता दी जानी चाहिए। जाहिर है महिलाओं के हक में आया ये फैसला समाज की सोच बदलने वाला है। इस फैसले को लेकर दिल्ली में हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
14: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं भी पुरुषों की उतना कमाती हैं, तो उसी हिसाब से
15: हम तो कमाते हैं, हम खुद यहाँ ढाबे पे काम करने आते हैं,
14: उनको दिया जाना चाहिए। क्योंकि पहले होता था ना कि मुआवजा डिसाइड नहीं होता था मृत्यु होने
15: भाई। अगर आदमी घर में खाने के लिए नहीं देगा तो लेडीज को तो निकलने देगा, फिर लेडीज के पास कोई चारा भी तो नहीं है ना, अगर मेहनत नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से।
14: सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि महिलाओं को सिर्फ घर का मत समझिए, उसको कमाने वाला भी समझिए, इसको किस तरीके से देखते हैं?
15: नहीं, कमाने वाला क्या, मेहनत पूरी करती है ना लेडीज, घर में बच्चों को भी।
14: सुप्रीम कोर्ट का कहना सही है?
15: नहीं सही है, मुआवजा मिलना चाहिए लेडीज को।
16: देखिए वास्तव में महिलाओं का जो जीवन है और जो उनका काम है, वो वेतन उनसे हमने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब हम लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में महीने के अंदर कम से कम 4 छुट्टी तो पुरुष को मिली जाती है, लेकिन महिलाओं की एक भी छुट्टी नहीं रहती। उनकी दिनचर्या जैसे ही सुबह से स्टार्ट होती है, सुबह बच्चों को नहलाना धुलाना तैयार करना, फिर पुरुष के लिए नाश्ता तैयार करना, फिर कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम का संध्या का कार्य शुरू हो जाता है, फिर रात्रि भोजन बनाना, तो महिलाओं को कंटिन्यू इसी कार्य में रहती है, महिलाओं की कभी कोई छुट्टी नहीं होती। तो मेरी नजर में तो महिला सर्वोपरि है और उनको जितना मुआवजा मिले उतना कम।
15: बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो महिला अपने दिनचर्या का काम करती है, वो जब सुबेरे उठती है, जब उसको पता लगता है घर के किसी भी मेंबर को अगर सुबेरे 6 बजे निकलना है, तो अपने दिनचर्या को 4 बजे की शुरुआत में जोड़ देती है, मुझे इसका नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। अगर वो ऑफिस भी जा रही है या किसी फील्ड में भी जा रही है, तो वहां से उसकी चिंता का ये जिक्र अपने मन में उठना शुरू हो जाता है कि अब घर जाके इतने टाइम पे ऑफिस से आ जाएंगे, इतने टाइम पे बच्चे आ जाएंगे। वो ऑफिस या किसी भी फील्ड में वो काम कर रही है, तो घर की जो दिनचर्या होती है, घर के मेंबर जो होती है, उस चिंता को अंदर लेके उस काम को भी इस टाइम पे भी पूरा करती रहती है।
14: नहीं तो वो काम, मतलब घर का काम तो उससे बड़ा है,
15: बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत बड़ा है। घर पे जाना, ऑफिस का किसी भी फील्ड में कोई भी काम करके और फिर जाके घर की व्यवस्था को संभालना, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि महिलाएं पुरुष से 10 गुना काम करती हैं।
16: सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती है उनका कोई समय नहीं होता है, उनको 24/7 उनका काम होता है। अगर वो महिलाओं को अगर हम कुछ देना चाहते हैं, ऐसे तो हमारा महिला प्रधान देश है, महिला प्रधान देश है, महिलाओं का सम्मान शुरू से ही हमारे देश में हुआ है और एक ही देश है हमारा जो महिलाओं का सम्मान होता जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको कानूनी जो हक देने की बात करी है वो बहुत सराहनीय है।
14: जो मुआवजे की बात है कि मुआवजा भी उनको एक तय हो जाए और मिनिमम अमाउंट भी तय किया है कि कम से कम 30,000 होना चाहिए, तो इसको किस तरीके से देखते हैं?
16: जी बिल्कुल, उनको 30 नहीं, 30 तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, उनको 30,000 से भी ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि वो
14: पैमाना तय हुआ है कि मिनिमम उतना मान के
16: उनका देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों में संस्कार और जो घर में काम करती है अपने बच्चों को संस्कार देती है, बहुत कुछ चीजें जो है अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक, वो हमारे आराध्य गुरु है, गुरुओं से भी बढ़कर है वो, क्योंकि माताओं से हमें कोई ना कोई नई नई चीज रोज सीखने को मिलती है।
6: अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। चार धाम की यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग धाम को पहुंच रहे हैं। इस दौरान साफ सफाई की व्यवस्था भी कम बड़ी चुनौती की तरह नहीं है, लेकिन जोशीमठ नगर पालिका की ओर से साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था की गई है, जिससे कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी बहुत खुश और संतुष्ट दिख रहे हैं।

0: कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। यही वजह है कि चार धाम की यात्रा के दौरान भी साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हर दिन यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब तक जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्र में गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई देती है। गेट सिस्टम के माध्यम से उन गाड़ियों को रोका जा रहा है। इस दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को बनाए रखना भी नगरपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यात्रियों के छोड़े गए कूड़े का ढेर लग जाता है। हालांकि जोशीमठ नगरपालिका की ओर से इन कूड़ों को उठाने की पूरी व्यवस्था की गई है।
1: चारधाम यात्रा के दौरान कूड़ा निस्तारण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। नगरपालिका जोशीमठ द्वारा प्रतिदिन 6 टन कूड़ा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से एकत्र कर MRF सेंटर निस्तारण के लिए ले जाया जा रहा है। जो हमारा सड़क मार्ग है जोगी धारा से लेके और विष्णु प्रयाग तक, यात्रियों द्वारा जो बोतलें फेंकी गई हैं, करीबन 5 लाख बोतलें नगरपालिका द्वारा कलेक्ट की गई हैं और उनको निस्तारण के लिए MRF सेंटर ले जाया गया है। नगरपालिका जोशीमठ सभी यात्रियों से अपील करती है कि अनावश्यक रूप से कूड़ा सड़क मार्ग पर न फेंकें और नगरपालिका को सफाई व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें। सर, इस बार जो गेट सिस्टम हुआ है उसके कारण जो जाम लग रहा है, जाम के दौरान यात्री गाड़ियों से कूड़ा नीचे फेंक दे रहे हैं।
0: जोशीमठ के इस यात्रा मार्ग पर जोगीधारा से लेकर विष्णु प्रयाग तक में हर दिन 6 टन कूड़ा नगरपालिका की ओर से उठवाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पानी की खाली बोतलें होती हैं। ऐसी 5 लाख बोतलें उठवाई जा चुकी हैं और ये सिलसिला जारी है। इस काम में पर्यावरण मित्र दिन रात जुटे रहते हैं।
2: जोगीधारा को जो बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाली होती है वो गाड़ियां लगती है, और मारवाड़ी से विष्णुप्रयाग और बलदूड़ा तक जो बद्रीनाथ से लौटने वाली गाड़ियां होती हैं वो गाड़ियां खड़ी होती हैं। ऐसे में जो पर्यावरण मित्र हैं वो लगातार यात्रा मार्गों पे नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो प्लास्टिक का सामान हो या फिर प्लास्टिक की बोतलें हो, तमाम उठाने में अब तक लगातार जुटी हुई हैं। अब तक 5 लाख से अधिक बोतलों को एकत्रित कर दिया गया है। वहीं आने वाले समय में और ये कूड़ा और संख्या इसकी हो सकती है, क्योंकि अभी ये 1 सप्ताह पूर्व का है जिन्हें एकत्रित करके यहाँ से बाहर भेजा जा चुका है।
0: जोशीमठ नगरपालिका की ओर से कूड़े के निस्तारण के साथ ही सड़कों की साफ सफाई की भी दुरुस्त व्यवस्था की गई है, और इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि इस नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाले या यहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं को पूरा स्वच्छ माहौल मिल रहा है और वो इससे बेहद खुश दिखते हैं।
3: हम मुंबई से आए हैं, पुणे से भी आए हैं भक्त, और हम आए हैं विष्णु प्रयाग में। बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है, और यहाँ की जो व्यवस्था हमने देखी है वो बहुत ही सुंदर है। हम पूरा ग्रुप चलता है अपना, आके धामों की यात्रा करते हैं हम लोग, तो अभी यहाँ की जो सफाई है, क्लिनिक है, यहाँ का जो वातावरण है रमणीय है। हम यहाँ के जो जिला प्रशासन है चमोली के और यहाँ का जो नगर पालिका है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था करके रखी है ऐसे भक्तों के लिए। कितना आरामदायक है यहाँ मेरा, हमें बहुत सुकून मिला है। बद्रीनाथ रास्ते में जा रहे हैं तो इधर हम रुके हैं भक्त, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड का।
0: साफ सुथरी व्यवस्था कितना सुकून देती है उसे श्रद्धालु खुद बयां कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता की इस जिम्मेदारी में नगर पालिका के साथ ही यात्रियों को भी भागीदार बनना चाहिए, और यही वजह है कि नगर पालिका की ओर से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यात्रियों को स्वच्छता को लेकर संदेश भी दिया जा रहा है।
1: नगरपालिका जोशीमठ सभी यात्रियों से अपील करती है कि अनावश्यक रूप से कूड़ा सड़क मार्ग पर न फेंकें और नगरपालिका को सफाई व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें।
0: जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चीन में ड्रैगन फेस्टिवल की तैयारी, अपनी अपनी ड्रैगन बोट सजा रहे हैं लोग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ ये रस्म अच्छे मौसम और भरपूर फसल की कामना के लिए की जाती है। इस फेस्टिवल के लिए लोगों ने नावों को ड्रैगन के सर, झंडे, छतरियाँ, धान की पौध लगाकर सजाया है। यहाँ सोई हुई ड्रैगन बोट को जगाने की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे पूरे रीति रिवाज के साथ निभाया जाता है। इसके लिए अनुष्ठान से पहले ड्रैगन के सिर को पत्तियों और शाखाओं से सजाया गया। इसके बाद पौधों की मदद से पवित्र जल छिड़क कर नाव का शुद्धिकरण भी किया गया। फिर ड्रैगन की आंखों पर तिलक लगाया गया। ये रस्म इस उत्सव में ड्रैगन बोट में ऊर्जा और जीवन शक्ति भरने का प्रतीक मानी जाती है। बांग्लादेश में बकरीद पर कुर्बानी से बचाया गया एक भैंसा वायरल है। सुनहरे बालों के गुच्छे की वजह से इसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम मिला था। इस अल्बिनो प्रजाति को अब राष्ट्रीय चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ आती है। ईद से ठीक एक दिन पहले सरकार के दखल के बाद भैंसे को ढाका के राष्ट्रीय चिड़ियाघर पहुंचाया गया था। यहां भैंसे के लिए खास इंतजाम किए गए। उसे पानी, पंखे, मैट और मच्छरदानी जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। अब अपने ट्रंप जैसे बालों के चलते लोग इस भैंसे की लग्जरी लाइफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि वो किसी राष्ट्रपति जैसी जिंदगी जी रहा है। आज दुनिया भर पर फुटबॉल फीवर छाया है। ब्राजील में फुटबॉल के जुनून की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ के बाजारों में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर गजब का क्रेज दिखाई दे रहा है। यहाँ फैंस के बीच ब्राजील की जर्सी और फुटबॉल खरीदने की होड़ लगी है। शहर के बाजारों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों के पास पीले हरे रंग के सामान की मांग बढ़ गई, क्योंकि बच्चे और बड़े सभी अपने पसंदीदा रंग दिखाने के लिए उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर खिलाड़ी ही नहीं, फैंस भी गियर अप हो रहे हैं। बाकी दुनिया की तरह रियो डी जनेरियो की सड़कों पर फीफा को लेकर जबरदस्त जुनून देखा जा सकता है। फैंस को उम्मीद है की 5 बार की चैंपियन टीम अपना 6ठा ऐतिहासिक खिताब जीतने की काबिलियत रखती है।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's.
8: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है।

0: listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae.
5: Exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop.
7: Exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: Good news today, pal.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: बजे मेजबान मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच शुरू होगा। फुटबॉल विश्व कप को लेकर भारत में भी खुमार छाया हुआ है, चाहे तमिलनाडु हो या केरलम, हर जगह फुटबॉल फैंस की दीवानगी इसको लेकर देखी जा रही है। जगह जगह अलग अलग टीमों के सपोर्ट में पोस्टर, बैनर, झंडे और मशहूर खिलाड़ियों के कटआउट्स लगे नजर आ रहे हैं। साथ ही फैंस अलग अलग तरीके से अपने पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए अपनी खुशी जाहिर करते दिख रहे हैं। खिलाड़ियों की ओर से रेवेन्यू में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग के बीच विंबलडन ने कुल प्राइज मनी और सिंगल्स चैंपियंस के लिए मिलने वाली इनाम राशि में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। अगले महीने होने वाले ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स चैंपियंस को 3.6 मिलियन पाउंड यानी करीब 46 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं खिलाड़ियों के रोजाना खर्च को मिलाकर प्राइज मनी 62.2 मिलियन पाउंड यानी 8.22 अरब के करीब होगी। टूर्नामेंट के इतिहास में सालाना बढ़ोतरी के लिहाज से इसे अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताया गया है। तमिलनाडु के थुतुकुड़ी में 27वां ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट जारी है। इसमें वॉलीबॉल की बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें देश भर के खिलाड़ी शामिल हैं। 9 जून को इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और ये 14 जून तक चलेगा। इसमें हर दिन शाम 7 बजे से मैच खेले जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में ईस्टर्न रेलवे, एमजी यूनिवर्सिटी, इंडियन नेवी, केरल पुलिस, चेन्नई इनकम टैक्स जैसी देश की शीर्ष टीमें हिस्सा ले रही हैं।
4: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं व्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर। हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का 8वां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम

0: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: खबरें
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौंडण्यपुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर कल सिनेमा घरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में, कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहां हम बात कर रहे हैं देश के वीर जवानों की, सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के ऐसे शूरवीरों की जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भी अपने कर्तव्य को निभाया, देश के दुश्मनों का निर्दयता से सामना किया और उन्हें ढेर कर दिया। ऐसे ही शूरवीरों को कुछ रोज पहले राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कुछ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। आज आपको सबसे पहले शहीद बेटे के लिए सम्मान ग्रहण करने गई एक मां से मिलवाएंगे, जो समारोह के दौरान बिलखकर रो पड़ी और राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। इसके बाद आपको मिलवाएंगे सीआरपीएफ के निडर जवान से, जिन्होंने 3 गोलियां लगने के बावजूद घाटी में आतंकियों को ढेर कर दिया। रीवा में उनके स्वागत का भव्य समारोह हुआ, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। और आखिर में बातचीत होगी पंजाब के मेजर अर्शदीप गिल से, जिन्होंने मणिपुर में 84 घंटे तक चले एक ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम का जबरदस्त नेतृत्व किया और इस ऑपरेशन में 10 उग्रवादी मार गिराए। तो शुरुआत करते हैं सेना के जवान प्रवीण जंजाल से। करीब 2 साल पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए प्रवीण ने अदम्य साहस दिखाया और सिर में गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया। प्रवीण जंजाल ने सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी कर्तव्य को निभाया और देश के लिए मिसाल बने। मरणोपरांत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण करते हुए उनकी मां बिलख कर रो पड़ी। भावना से भरी ये तस्वीर हर शख्स की आंखें नम कर गई। दिलासा देने के लिए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर इस मां को गले लगाया। बेटी की शहादत और उसे मिले सम्मान पर गर्व करने वाली मां ने गुड न्यूज टुडे की टीम से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट।
1: पाही जंजाल, प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, पहली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बरसों तक उनकी बहादुरी का जिक्र होगा, पीढ़ियों तक उनकी देशभक्ति का किस्सा बयां होगा। देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनकी वीरता का देश ने सम्मान किया।
1: सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो देश के दुश्मनों पर तो भारी पड़े लेकिन लौटकर नहीं आ सके। जब राष्ट्रपति भवन में उनकी वीरता का सम्मान हुआ तो भावनाओं पर जोर नहीं रहा, बरबस आंसू निकल पड़े। सेना के महार बटालियन के सिपाही प्रवीण जंजाल की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। देश की हिफाजत के लिए जान देने वाले बेटे पर इस माँ को भी नाज है। लेकिन माँ तो फिर माँ ही है। जब शहीद बेटे के लिए कीर्ति चक्र सम्मान लेने खड़ी हुई तो भावनाओं का ऐसा झंझावात उठा जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं हुआ। माँ बिलख पड़ी और राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करके उन्हें सहारा दिया, गले लगाकर दिलासा दिया।
0: इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: ये भावुक पल वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गए, पर साथ ही हर देशवासी का सर गर्व से तन गया, क्योंकि जिस मादरे वतन के ऐसे बहादुर बेटे हों, दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जुलाई 2004 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ था। प्रवीण जंजाल ने न सिर्फ आतंकियों को देखकर अपने साथियों को आगाह किया, बल्कि दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए, पर आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे। उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी और माँ को दिया गया, वो माँ जिसकी आंखें पिछले दो वर्षों से अपने बेटे को खोज रही हैं। जब वो मंच पर गई तो उन्हें चारों ओर लोग तो नजर आए, पर बेटा नहीं दिखा। इसी एहसास ने उन्हें भावुक कर दिया और वो राष्ट्रपति से लिपट कर रो पड़ी। बेटे की शहादत पर गर्व तो दिल में रहा, पर उसकी कमी आंखों से दर्द बनकर छलक पड़ी।
1: एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वो एक शहीद की माँ का वीडियो है, जो राष्ट्रपति के हाथ से कीर्ति चक्र लेते हुए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल छोड़कर जो है उस वीर माता को जो है वो अपनी गले लगाया है। वो वीर जवान प्रवीण जंजाल की माँ हमारे साथ है, इन्हीं का वो वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे बोलिए कि आप जब राष्ट्रपति के पास गए कीर्ति चक्र लेने के लिए तो क्या लगा आपको?
2: मला असं वाटलं की माझा मुलगा साला माझ्या जू, मला असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड आला, पण माझा मुलगा मला चेहरा दिसून आला नाही। कीर्ति चक्र दिसून आला असं वाटलं, माझा मुलगा आला भाव

0: समारोह के अंतर्गत 8 जून को राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये पुरस्कार उन जवानों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह तक न की। इनमें कई जवानों ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अद्भुत बहादुरी दिखाई। कुछ पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए जिसमें प्रवीण जंजाल का नाम भी है।
1: प्रवीण नहीं है लेकिन प्रवीण ने आज माँ बाप को हवाई सफर भी करवाया, जो भी करवाएगी उसकी जो इच्छा जीवन में थी आज वो नहीं होकर किया है, लेकिन उसकी आज कमी महसूस कैसी होती है, पक्कर उसकी याद आती है।
2: वो हर दिन आया था, पूरन के हर दिन आ रहे थे। पूरन ने इसलिए नहीं है तो वो मेरा भाई था, मैं उनको माता पिता को पाला पोसा, मैं उनको सब देखूंगा, उनकी तरफ सब देखूंगा।
1: एक नाच प्रवीण जो है और तुमने दोनों ने साथ में देश की सेवा के लिए गए, लेकिन प्रवीण आगे जाकर जीत गया।
2: जीत गया और देश को कुर्बान हो गया, ये गर्व है मुझे, देश से कुर्बान हो गया और बहुत अच्छा अभिमान है। लेकिन उनका दुख भी ऐसा ही है, माँ बाप को बहुत दुख है। हमारे पास आज ऐसा एक दिन नहीं कि मेरी माँ रोती नहीं, हर दिन रोती है, उनकी याद में हर दिन रोती है।
0: शौर्य, साहस और त्याग का जब भी जिक्र होगा, देशभक्ति की जब भी कहानियां सुनाई जाएंगी, प्रवीण और उनके जैसे बहादुर जवानों को देश सम्मान के साथ याद करेगा। अकोला से धनंजय सामले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। 3 गोलियां लगने के बावजूद वो अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे और एक आतंकी को ढेर कर दिया। वीरता पुरस्कारों के तहत संजय तिवारी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद जब संजय अपने परिवार के साथ पहली बार रीवा पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
1: यूं तो रीवा एक्सप्रेस दिल्ली से हर रोज आती है, पर ऐसा नजारा नहीं होता। यूं तो हजारों लोग इस ट्रेन से उतरते हैं, पर जब संजय तिवारी ट्रेन से उतरे तो जैसे रीवा ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। ये दिन खास बन गया क्योंकि रीवा का बहादुर बेटा या कहें कि शूरवीर राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित होकर आया है। हैरत की बात नहीं कि ढोल नगाड़े और फूल माला से सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से स्टेशन गूंज उठा।
2: गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया।
1: रीवा के डेल्टी गांव के रहने वाले हैं संजय तिवारी, जो अब इस पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोगों ने टीवी पर उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार लेते देखा और उनका सीना गर्व से तन गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के खनियार इलाके में एक आतंकवाद विरोधी अभियान किया गया था। सुरक्षा बलों को लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और भारी गोलीबारी के बीच संजय तिवारी अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे।
2: स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था, काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया।
1: हालांकि मुठभेड़ के दौरान उनकी बांह टूटने और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन गंभीर

0: रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और एक आतंकी को मार गिराया।
1: बिल्कुल 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में, और
2: 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े, अदम साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे?
1: बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था, इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहे।
0: इसी अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए संजय तिवारी को वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उनके साथ सिपाही फिदा हुसैन डार को भी ये सम्मान मिला। पुरस्कार लेने के बाद जब संजय तिवारी रीवा पहुंचे तो लोगों ने अपने वीर सपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय तिवारी की बहादुरी और अदम्य साहस का गर्व वहाँ मौजूद हर युवा के चेहरे पर नजर आया।
1: रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सके।
0: सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जिन जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सभी की कहानियां देश की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और देश की सुरक्षा में अपने जान की चिंता नहीं की, ऐसे वीर जवानों पर देश को नाज है। रीवा से हरिओम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: और अब बात मोहाली के मेजर अर्शदीप सिंह गिल की, जिन्होंने मणिपुर में एक चुनौतीपूर्ण आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। ये ऑपरेशन करीब 84 घंटे तक चला था, जिसमें 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया था, लेकिन इसमें जबरदस्त खतरा था। असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप गिल को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने, सुनिए।
4: अर्शदीप सिंह, कवचित कोर, 1 असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह।

0: जय जवान जय किसान। आज एक किसान के बेटे ने फक्र किया है क्योंकि उसे कीर्ति चक्र मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं मेजर अर्शदीप गिल, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। 84 घंटे का ऑपरेशन चला मणिपुर में, जिसमें कई दहशतगर्द हैं उनको मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए कि आपकी पहले तो ये जर्नी है, क्योंकि अब कई बार बोलते हैं हम लोग कि युवक नहीं जा रहे हैं, सेना में नहीं जा रहे हैं पंजाब से, लेकिन 2016 में आपने ज्वाइन भी किया आर्मी और आज आपको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं और खासतौर पर।
1: मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूं, मेरा स्कूलिंग फिरोजपुर से ही है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, वो चंडीगढ़ से करी, और जनवरी 2015 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन कर लिया था, और जून 2016 में मैं कमीशन हुआ था 58 आर्मर्ड रेजिमेंट में, द आर्मर्ड कोर। और उसके बाद मैं 2022 दिसंबर में डेपुटेशन के ऊपर फर्स्ट असम राइफल्स में गया था, और ये पिछले साल मई 2025 में ये ऑपरेशन हुआ था। और जो आपने बोला है कि पंजाब से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है। मैं तो मे बी आई नो मोर देन 1000, ठीक है, मेरे अपने को मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ, ठीक है, प्योरली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एंड लाइक माय मोटिवेशन वाज कि यहाँ की ऐसी फिरोजपुर कैंट आना जाना होता था, तो वहां पे जो रोड के साइड ही यूनिट्स के क्वार्टर गार्ड्स हैं, तो हम उनको देख के सल्यूट व्यूट करते रहते थे, तो वही मोटिवेशन था कि आगे चल के।
0: कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस था या जस्ट जनरली क्योंकि आपका आना जाना था?
1: मैम आना जाना था वहां से, और उसके बाद फिर जब आगे जाके इंजीनियरिंग करी तो पता चला कि ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो फिर इससे अच्छा कुछ लगा ही नहीं। और वो डिसीजन मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि आज सच में मेरे को लगता है कि मैं इससे अच्छा लाइफ में कर नहीं सकता था। ये
0: एक होता है मैन इन यूनिफॉर्म और एक होता है एक हीरो, तो आज आप एक कीर्ति चक्र अवार्डी हैं, तो आप हीरो हैं नेशन के, तो इस ऑपरेशन के बारे में हमें।
1: मैम ये ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर, वहां पे पोरस बॉर्डर है, वहां पे फेंसिंग का काम नहीं हो रखा है, और जो मणिपुर के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, तो मोस्टली कहीं ना कहीं उसका, अगर वेपन स्मगलिंग को लोगे, ड्रग्स स्मगलिंग को लोगे, तो उसका बेस म्यांमार के साथ बैठता है, वो ओपन बॉर्डर की वजह से। तो उस वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वहां पे फेंसिंग का काम किया जाए, लेकिन वो फेंसिंग का काम अगर वो हो जाता है तो ये सारी हरकतें वहां पे बंद हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए वहां पे लगातार उनके एफर्ट्स होते रहते हैं। तो मेरी यूनिट फर्स्ट असम राइफल्स, हम वहां पे लेबर फेंसिंग की सिक्योरिटी में वहां पे थे, तो ये जो ऑपरेशन है 14 मई 2025 का है, जब उन्होंने लेबर को वहां पे टारगेट किया था, तो वहां पे हम सिक्योरिटी में थे। तो उसके बाद जैसा कि आपने बोला 84 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन था ये। जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जंगल टेरेन है, माउंटेन है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और ये ऑपरेशन मॉर्निंग में 6:35 पे हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड फायर आया था। उसके बाद फिर ये 14 मई को लेके शाम 1800 आवर्स 17 मई तक ये ऑपरेशन चला था, और जो हमारी नफरी थी, मैं उसमें ऑफिसर था, मेरे जेसू साहब थे और 30 अदर रैंक्स हमारे साथ थे, और जिस तरीके का इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सचेंज हो रहा था, तो मेरे को एज पर माई असेसमेंट मेरे को लगा था कि 15 से 20 आर्म कार्डर्स आगे की तरफ हैं। उसके बीच में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वाला कार्डर भी हमने देखा था, जिसको हमने आगे जाके न्यूट्रलाइज किया।
2: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौंडिन्यपुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर कल सिनेमा घरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में, कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी जलती गर्मी से राहत, बारिश और आंधी तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद, देर रात तेज आंधी और बारिश के आसार। पहाड़ों के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी, उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों के कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी तूफान की संभावना। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी, ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के लिए जारी की गई है चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य में 17 जून तक बारिश का दौर जारी रहने का जताया अनुमान। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के दस्तक देने की संभावना, फिलहाल करीब 44 डिग्री के बीच नागपुर में पड़ रही गर्मी। पठानकोट में तेज तूफान, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरे पेड़, कुछ देर के लिए यातायात हुआ बाधित, कोई हताहत नहीं। केरलम के तिरुवनंतपुरम में मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। हमीरपुर के बेतवा नदी में बिना बरसात अचानक आया पानी, SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस ने डूब रहे 2 लोगों का किया रेस्क्यू। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सोनमर्ग के मशहूर थाजीवास ग्लेशियर में लगातार गिरावट, 95% बर्फ खत्म। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश के साथ बढ़ी जोरदार ठंड। जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु, जून का आधा महीना बीतने के बावजूद पहाड़ों में ऊंचाई वाली चोटियों पर अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी, लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका का लगातार सफाई अभियान जारी, अब तक 5 लाख प्लास्टिक बोतलें रिसाइकिलिंग के लिए भेजी। राष्ट्रीय राजमार्ग से रोजाना 6 टन उठाया जा रहा कचरा, श्रद्धालु भी अभियान में कर रहे सहयोग। बद्रीनाथ में दिखा आस्था का नया जोश, श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम में जेठ पूजा की शुरुआत। परंपरा के अनुसार भगवान कुबेर आज बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह से निकले बाहर, लीला दुंगी के बाद मां नंदा देवी मंदिर और अंत में मां उर्वशी मंदिर पहुंचकर भक्तों को दिए दर्शन। सदियों से चली आ रही है ये पौराणिक जेठ पूजा की पवित्र परंपरा, इसके अनुसार ज्येष्ठ मास में अपने भक्तों से मिलने बामणी गांव पधारते हैं भगवान कुबेर। बद्रीनाथ के बामणी गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर भगवान कुबेर का किया स्वागत, हर तरफ गूंजा भगवान कुबेर का जयघोष। इस अवसर पर कुबेर जी को लगाया गया विशेष भोग। पारंपरिक नृत्य के बीच भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन। नैनीताल के कैची धाम मेले की तैयारियां तेज। 15 जून को दीप करौरी में उमड़ेगा आस्था का महासैलाब। मेले में 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं कैची धाम। मेले को लेकर प्रशासन सख्त। समारोह को देखते हुए कैची धाम में विशाल भंडारे की तैयारी। प्रसाद के लिए मालपुए बनाने का काम शुरू। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी, भीमताल और नैनीताल से विशेष शटल सेवा। भक्तों के लिए की गई पार्किंग की व्यवस्था। 14 और 15 जून को कैची धाम क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर की बैठक। अमरावती के धार्मिक स्थल कौंडैयापुर में लगा भक्तों का तांता। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी। मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। मान्यता है कि इसी पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में खुदाई के दौरान शिवलिंग की मूर्ति के साथ नंदी की मिली प्रतिमा। देखने के लिए भक्तों का लगा तांता। किसानों और आम प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना सहारनपुर का सदाबहार आम। साल के पूरे 12 महीने फल देता है आम की इस खास किस्म का पेड़। सदाबहार आम की खेती कर लाभ कमा रहे सहारनपुर के किसान। इस पेड़ पर एक ही समय में लगते हैं बहुत छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम। जामनगर में राज्य मंत्री रीवाबा जडेजा ने बच्चों के साथ गुजारा समय। सरकारी विद्यालय का किया दौरा। रीवाबा जडेजा ने कक्षाओं का किया निरीक्षण। छात्राओं के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और उनके सपनों के बारे में बातचीत की। छोटे छोटे बच्चों ने रीवाबा का गर्मजोशी से किया स्वागत। रीवाबा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। बीड के 14 वर्षीय सिद्धार्थ का कारनामा। कबाड़ से महज 3,000 रुपए में बना डाली इलेक्ट्रिक साइकिल। सिर्फ आधा यूनिट बिजली में 30 किलोमीटर दौड़ेगी ये साइकिल। प्रधानमंत्री के वेस्ट टू बेस्ट के आह्वान का असर। 15 जुलाई तक रेल मंत्रालय लॉन्च करेगा IRCTC की नई और उन्नत वेबसाइट। छात्रों की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। असम नागालैंड सीमावर्ती इलाकों में मिनरल ऑयल से जुड़े कामकाज होंगे आसान। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र असम और नागालैंड के बीच द्विपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर। 13 जून को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्लोवाकिया में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 18 जून को पेरिस में द्विपक्षीय बैठकों के लिए लेंगे हिस्सा। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी और सभी राज्यों के CM की चर्चा। बैठक में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का भव्य प्रतीक चिन्ह किया जारी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से है लैस। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है INS दूनागिरी। कुल 7 उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स का किया गया निर्माण। नौसैनिकों के अदम्य साहस, सतर्कता और तीनों जल, थल और नम में अचूक सटीक प्रहार करने की क्षमता का प्रतीक। बढ़ते साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय सख्त। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने की नई एडवाइजरी जारी। बायोमेट्रिक्स लॉक रखने, संदिग्ध लॉगिन अलर्ट पर नजर रखने और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा। प्रयागराज के संगम में बाढ़ से बचाव का मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन टीम ने आधुनिक इक्विपमेंट से घाटों पर किया अभ्यास। मॉक ड्रिल में सेना के जवान, सिविल डिफेंस, NDRF की टीम, प्रदेश पुलिस और स्वास्थ्य पुलिस शामिल। अकोला के बुजुर्ग नाना ने कैंसर को हराकर 76 साल की उम्र में 3,000 किलोमीटर पैदल की नर्मदा परिक्रमा। तूतुकुड़ी में 27वें ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त जोश। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का स्वागत। खेल को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह। बड़ी संख्या में लोग मुकाबला देखने पहुंचे। अब से कुछ ही देर में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आगाज। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। पहली बार 3 देश कर रहे संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच। ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। अमेरिका के 11, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में खेले जाएंगे मैच। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका के न्यूजर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। मेक्सिको, टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा फुटबॉल विश्व कप का फीवर। केरलम में गलियों, सड़कों से घरों तक दिख रहा फुटबॉल का क्रेज। चहेते खिलाड़ियों की तस्वीरों से पटे इलाके। कल से वेमेंस T20 वर्ल्ड कप का होगा आगाज। इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन। इस बार इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है यह टूर्नामेंट। पहली बार दुनिया के 12 देश ले रहे हैं हिस्सा। खेले जाएंगे कुल 33 मैच। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा फाइनल। 14 जून को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। ग्रुप ए में है दोनों टीमें। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलकर भारत करेगा वर्ल्ड कप सफर की शुरुआत। पहली बार वेमेंस T20 वर्ल्ड कप खेलेगा नीदरलैंड। टीम ने ग्लोबल क्वालिफायर में 4th स्थान हासिल कर टूर्नामेंट में बनाई है जगह। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। एक मैच टेस्ट सीरीज में अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराने के बाद अब वनडे सीरीज पर इंडिया की नजरें। 3 मैचों की है यह वनडे सीरीज। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के रूप में लगे हैं 2 झटके। दोनों खिलाड़ी चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की महाराजा T20 ट्रॉफी का हुआ अनावरण। पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और KSCA अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद रहे मौजूद। 20 जून से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। कर्नाटक की 6 फ्रेंचाइजी टीमें लेंगी हिस्सा। कल सिनेमा प्रेमियों के लिए बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका। कंगना की भारत भागे विदादस लेकर इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा समेत कुल 8 देशी विदेशी फिल्में होंगी रिलीज। तो रिलीज होगी फिल्म मैं वापस आऊंगा। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी का अहम रोल। रनौत की फिल्म भारत भागे विदादा का एक नया टीजर रिलीज। कल रिलीज होने वाली है यह फिल्म। सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग शुरू। सिल्वर स्क्रीन पर कल दस्तक देगी मनोज वाजपेयी की गवर्नर द साइलेंट सेवियर। अदा शर्मा और मधु भी महत्वपूर्ण किरदारों में आएंगी नजर। विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट भी कल होगी रिलीज। इस नए हॉरर थ्रिलर में मुख्य भूमिकाओं में हैं मीमू चक्रवर्ती और चेतना पांडे। पुलिस और सोसाइटी के रिश्तों पर बनी फिल्म द नर्मदा स्टोरी इस शुक्रवार को हो रही है रिलीज। मेन लीड में है सिमाला प्रसाद, निभा रही है एक रियल पुलिस ऑफिसर का किरदार। कल ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने उतरेगी एक्ट्रेस पत्रलेखा की फिल्म हीर सारा। 2 महिलाओं के भावनात्मक सफर को दर्शाती है ये रोड ट्रिप ड्रामा फिल्म। हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए कल रिलीज हो रही है डिस्क्लोजर डे। स्टीव स्पील्सबर्ग के डायरेक्शन में बनी एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है ये फिल्म। और फिल्मों के शौकीनों के लिए 12 जून को रिलीज हो रही है बैकरूम्स। फिल्म के डायरेक्टर केन पार्सन की ही वेब सीरीज से प्रेरित है फिल्म। ओटीटी पर वेब सीरीज राक में दिखेगी अली फजल और सोनाली बेंद्रे की अदाकारी। 1978 में हुए गीता और संजय चोपड़ा के किडनैपिंग केस से इंस्पायर है ये इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज। फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की नई मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल का शानदार ट्रेलर रिलीज। सिनेमाघरों में 26 जून को दस्तक देगी फिल्म। फिल्मकार हिरण का फर्स्ट लुक जारी। जल्द सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। कल रिलीज होगा अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का ट्रेलर। पोस्टर जारी कर दी जानकारी। 10 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। रामचरण की पैडी का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। रिलीज के 7 दिन के अंदर भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के क्लब में बनाई जगह। फिल्म फ्रेंचाइजी तनु वेट्समनु के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। इसी साल शुरू होगी सुपरहिट सीरीज के तीसरे पार्ट तनु वेट्समनु द नेक्स्ट चैप्टर की शूटिंग। समाज में ग्रीनियों के निस्वार्थ योगदान को सुप्रीम कोर्ट में सम्मान। सर्वोच्च अदालत ने ग्रीनियों को बताया नेशन बिल्डर। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों या अन्य मुआवजा दावों के मामलों में घरेलू सेवाओं के लिए ग्रीनियों की आय 30,000 तय की। प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचर्स को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने इसे महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। गृह जनपद रीवा पहुंचने पर सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी का रेलवे स्टेशन पर स्वागत। 3 गोली लगने के बाद भी आतंकी को किया ढेर। राष्ट्रपति से मिला शौर्य चक्र। अकोला के शहीद प्रवीण जंजाल को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र। सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन में छलका मां का दर्द तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सहारा। ग्रीस के पास स्थित क्रीट में एक विशालकाय लायरा बना आकर्षण का केंद्र। एक तरह का वाद्य यंत्र होता है लायरा जो क्रीट के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। 600 किलोग्राम है 8 मीटर ऊंचे इस स्ट्रक्चर का वजन। लकड़ी के पॉलिएस्टर से बनाया गया है स्ट्रक्चर जिसका नाव बनाने में होता है इस्तेमाल। बिखलिस नाम के स्थानीय निवासी ने बनाया है यह विशाल लायरा। इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगा करीब 6 महीने का वक्त। इस खास लायरा को देखने देश विदेश से आते हैं लोग। सबसे बड़े क्रीटियन लायरा के तौर पर इसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए भी किया गया है आवेदन। शादियों और त्योहारों में बजाया जाता है यह पारंपरिक वाद्य मंत्र लायरा। क्रीट की संस्कृति से जुड़ी तुकबंदी वाली लोक कविता क्रीटियन मंटिनाडा के साथ भी लायरा बजाने की प्रथा। चीन के चोंकिंग में स्थित लोकाजॉय एनिमल थीम पार्क नन्हे रेड पांडा का जन्मदिन धूमधाम से यहां मनाया गया और इस मौके पर एक खास दावत तैयार की गई। जन्मदिन के इस अनोखे भोज में नन्हे रेड पांडा के कई फल शामिल थे। इसमें अंगूर सेब केले और आलू बुखारे जैसे ताजे फलों की स्टिक्स को तरबूज की एक ताजगी भरे प्लेट पर सजाया गया था। रेड पांडा ने इन मजेदार और स्वादिष्ट चीजों का जमकर उठाया लुत्फ जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। पहली बार जनता के सामने आया इंडोनेशिया में पैदा हुआ पहला बेबी पांडा रियो जिसे देखने के लिए जकार्ता के तमाम सफारी इंडोनेशिया में उमड़ी लोगों की भीड़। अपने माता पिता के साथ पांडा पैलेस नाम की एक शानदार जगह पर रहता है रियो। 2017 में चीन से इंडोनेशिया आए थे रियो के माता पिता। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी शुरू। ये रस्म अच्छे मौसम और भरपूर फसल की कामना के लिए की जाती है आयोजित। स्थानीय लोगों ने नाव पर ड्रैगन के सिर झंडे छतरियां और धान की पौध लगाकर उन्हें सजाया। सोहियो ड्रैगन बोट को जगाने की सदियों पुरानी परंपरा। अनुष्ठान से पहले ड्रैगन के सिर को पत्तियों और शाखाओं से सजाया गया। इसके बाद पौधों की मदद से पवित्र जल छिड़ककर नाव पर किया गया शुद्धिकरण। ड्रैगन के आंखों पर लगाया गया तिलक। ये रस्म ड्रैगन बोट में ऊर्जा और जीवन शक्ति का मानी जाती है प्रतीक। आशीर्वाद समारोह पूरा होने के बाद ड्रैगन बोट्स को नदी में उतारा गया। लोगों ने उत्साह के साथ आने वाले ड्रैगन बोट फेस्टिवल का स्वागत किया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
1: स्पोर्ट्स फैंस ट्यून इन प्रीमियम इज द अल्टीमेट प्लेबुक। From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
1: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
1: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: आज के दौर में अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को हकीकत में बनाने में होम लोन बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन सोचो, अगर होम लोन लेने वाले शख्स के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर घर का क्या होगा, सपने का क्या होगा? ऐसे में क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सवाल का जवाब बनकर सामने आता है, जो परिवार पर होम लोन का बोझ नहीं आने देता।
10: होम लोन इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि अगर बोरोवर को कुछ हो जाए तो आउटस्टैंडिंग लोन का प्रेशर फैमिली पर ना आए। इससे घर भी सिक्योर रहता है और लोन का फाइनेंशियल स्ट्रेस फैमिली पर भी नहीं आता है। इंश्योरेंस के द्वारा ये आउटस्टैंडिंग लोन पे ऑफ हो जाता है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौंडन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हैलैस।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि महिलाओं के वैवाहिक जीवन में किस तरह की विशेष समस्याएं आती हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और अगर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं तो उनसे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।

0: बाधा आ रही है, तो बच्चे के साथ बृहस्पतिवार को मंदिर जाएं, धर्म स्थान पर जाएं और वहां पर जा करके अगर प्रार्थना करें तो काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा, उसकी शिक्षा की बाधाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी।
1: और आइए अब जान लेते हैं 12 जून 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:36 तक, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:28 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि महिलाओं का जब विवाह होता है तो विवाह के लिए कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के विवाह की और उनके वैवाहिक जीवन की। जब बात होती है महिलाओं के विवाह की तो उसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहले ये समझते हैं। किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र, लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए शुक्र के अलावा बृहस्पति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की कुंडली में विवाह भाव यानी सप्तम भाव के अलावा अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिलाओं की कुंडली को विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए चंद्रमा से भी जरूर देखना चाहिए। यानी अगर आप किसी महिला के विवाह और वैवाहिक जीवन को समझना चाहते हैं तो लग्न कुंडली के अलावा शुक्र, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति को देखना और समझना जरूरी होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि महिलाओं के विवाह में किन ग्रहों को विशेष रूप से हमें देखना चाहिए विवाह से पहले।
0: देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रहों की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जीवन पर ज्यादा बड़ा और ज्यादा गहरा असर डालते हैं। तो महिलाओं के विवाह में कौन से ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, महिलाओं के विवाह के लिए पहले नंबर पर है बृहस्पति, उसके बाद है चंद्रमा और ओवरऑल कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है शुक्र। तो महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को अवश्य देखना चाहिए। इन तीनों को और इन तीनों से कुंडली देखकर विवाह और वैवाहिक जीवन का निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी महिला की चंद्र कुंडली ज्यादा प्रभावशाली है, चंद्र कुंडली पर प्रभाव ज्यादा है, तो विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं के जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा का अस्त होना या केतु के साथ होना भी समस्या का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि अगर किसी महिला का चंद्रमा अस्त होगा, सेहत के अलावा उनको मानसिक और भावनात्मक समस्याएं परेशान करेंगी, और चंद्रमा अगर केतु के साथ होगा तो महिला को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी होने की संभावना बन जाएगी।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि से बचें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न कोमल जी ने हमें लिखा है, और कोमल जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1993, जन्म का समय रात के 8:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ। कोमल कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी 1 साल पहले ही हुआ है और मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और आने वाले समय में मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कोमल, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा धैर्य रखने की, थोड़ा सब्र करने की आवश्यकता है। आपके आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा, और आपका बेहतर समय शुरू हो चुका है, तो आने वाले समय में इसके परिणाम आपको ठीक मिलेंगे। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, और रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न हिना ने हमें लिखा है, और हिना हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1982, जन्म का समय सुबह के 9:40, जन्म स्थान है रांची। मेल लिखती हैं कोलकाता से। हिना कह रही हैं कि मेरे और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी

0: आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका आने वाला समय है उसमें आपके स्थान परिवर्तन की संभावना दिख रही है। ऐसा लगता है कि साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका सपरिवार स्थान परिवर्तन होगा और मार्च 2027 के बाद जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। रोज सुबह एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ये उपाय आप निरंतर करती जाएं तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी।
1: और आइए अब जानते हैं महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है।
0: देखिए, बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा और न विवाह चलेगा। बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो विवाह में अत्यधिक विलंब होता है, अत्यधिक दिक्कतें आती हैं। और अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो विवाह में भयंकर विलंब होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर बृहस्पति दूषित हो जाए, बृहस्पति दूषित होता है राहु और केतु की वजह से, तो अगर बृहस्पति दूषित हो जाए तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी किसी महिला की कुंडली में बेहतर हो, थोड़ा भी बेहतर हो, तो विवाह समय पर करवा देता है और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी किसी भी महिला की कुंडली में बृहस्पति का अनुकूल होना हर मामले में बेहतर है और बृहस्पति के अनुकूल होने से उनके जीवन के बेहतरी की संभावना बन जाती है।
1: और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, संपत्ति खरीद सकते हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ

0: बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं महिलाओं के अष्टम भाव का विवाह और वैवाहिक जीवन से आखिर इसका संबंध क्या है।
0: देखिए, वैसे तो अष्टम भाव हर कुंडली का अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की कुंडली का अष्टम भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए। क्या महत्व है अष्टम भाव का महिलाओं के जीवन में? महिलाओं का अष्टम भाव मांगल्य भाव है, उनके लिए सर्वाधिक शुभता लाने का भाव है उनके वैवाहिक जीवन में। महिलाओं का अष्टम भाव उनके वैवाहिक जीवन की लंबाई बताता है। लेकिन मेन बात जो है, महत्वपूर्ण बात जो है, महिलाओं का अष्टम भाव पति की आयु पर असर डाल देता है। अगर सूर्य और मंगल या दोनों में से एक अष्टम भाव पर असर डाल दें किसी महिला की कुंडली में, तो ये खतरे की सूचना है, पति के आयु के लिए डेंजर जोन है। मंगल और शनि का महिला की कुंडली के अष्टम भाव पर जो असर है वो पति की आयु के लिए काफी अशुभ हो सकता है, काफी ज्यादा अशुभता पैदा कर सकता है। इस तरह के योग अगर कुंडली में है किसी महिला के, तो विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। विवाह के समय कुंडली बड़ी सावधानी से मिलानी चाहिए और अगर संभव हो तो विवाह करने के पहले अष्टम भाव पर जो पाप प्रभाव है उसका उपचार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया जाए किसी महिला के विवाह के पहले, तो समस्या इतनी ज्यादा नहीं होगी।
1: और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: योग हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में काम ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न पवन शर्मा ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म की तारीख है 4 जून 2005, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती है, तो किस क्षेत्र में मेरी बेटी तैयारी करे जिससे उसको सफलता मिले। देखिए पवन जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से आप उनको प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराइए, SSC की तैयारी कराइए, CGL की तैयारी कराइए, उसमें सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2028 का जो समय है और 2029 का जो समय है, उस समय में इनके सफलता मिलने की संभावना दिख रही है, गवर्नमेंट जॉब इनको मिलनी चाहिए। दो उपाय करवाइए, एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को मूंगा पहनाने से लाभ होगा।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम सवाल पर, तो जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा और अंतिम सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न वंशराज जी ने हमें लिखा है और वंशराज जी बिहार से मेल लिखते हैं, इनकी जन्म की तारीख है 27 मई 1965, रात में 11 बजे, सहरसा बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और कर्ज चुकाने के लिए मैं अपनी एक प्रॉपर्टी भी बेचना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो कब तक कर्ज से छुटकारा मुझे मिल जाएगा। वंशराज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी अभी बिकेगी, उसका समय शुरू हो गया है और साल 2026 के अंत तक आते आते आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर दिखाई दे रहा है, तो आने वाले समय में स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था कि महिलाएं जल्दी विवाह के लिए और अब विवाह के बाद अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए ताकि शांति बनी रहे, कौन सा उपाय है जो उनको करना चाहिए?
0: जी देखिए, महिलाओं के वैवाहिक जीवन का जो कंट्रोलर प्लेनेट है, जैसा आपको पहले बताया, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं। तो कोई बालिका अगर शीघ्र विवाह चाहती है तो उसको भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से कोई महिला अगर चाहती है कि उसका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे तो उसको भी भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। तो आप अगर बालिका हैं या आप महिला हैं और निरंतर नियमित रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करें, तो न केवल आपका विवाह जल्दी होगा बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर बना रहेगा।
1: और अब जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 12 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति में लगातार सुधार होगा। स्वास्थ्य पर और दुर्घटनाओं पर ध्यान रखना होगा। विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल बृहस्पति देव के मंत्र का अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसको दान करना चाहिए? किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। पर अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसी धर्म स्थान में दान करें, या खाने पीने की चीज है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं, ऐसा करना भी आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए गुड लक में अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर के बारे में। तो जानते हैं 12 जून 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिए, आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 जून रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में। तो आइए जानते हैं आपकी आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी होती है। आज की गुडलक राशि है सिंह। इनकी शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधा आने की संभावना रहती है, लेकिन ये संघर्ष के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं। इनको नियमित रूप से बृहस्पति देव की उपासना करनी चाहिए, शिक्षा की स्थितियां बेहतर रहेंगी।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी की भी किसी तरह की कोई उन्नति नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे और शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करें। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें और सप्ताह में एक दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, आपके घर की तरंगे बेहतर होंगी और घर के लोगों की उन्नति होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहां हम बात कर रहे हैं देश के वीर जवानों की, सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के ऐसे शूरवीरों की जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भी अपने कर्तव्य को निभाया, देश के दुश्मनों का निर्दयता से सामना किया और उन्हें ढेर कर दिया। ऐसे ही शूरवीरों को कुछ रोज पहले राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कुछ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। आज आपको सबसे पहले शहीद बेटे के लिए सम्मान ग्रहण करने गई एक मां से मिलवाएंगे, जो समारोह के दौरान बिलखकर रो पड़ी और राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। इसके बाद आपको मिलवाएंगे सीआरपीएफ के निडर जवान से, जिन्होंने 3 गोलियां लगने के बावजूद घाटी में आतंकियों को ढेर कर दिया। रीवा में उनके स्वागत का भव्य समारोह हुआ, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। और आखिर में बातचीत होगी पंजाब के मेजर अर्शदीप गिल से, जिन्होंने मणिपुर में 84 घंटे तक चले एक ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम का जबरदस्त नेतृत्व किया और इस ऑपरेशन में 10 उग्रवादी मार गिराए। तो शुरुआत करते हैं सेना के जवान प्रवीण जंजाल से। करीब 2 साल पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए प्रवीण ने अदम्य साहस दिखाया और सिर में गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया। प्रवीण जंजाल ने सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी कर्तव्य को निभाया और देश के लिए मिसाल बने। मरणोपरांत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण करते हुए उनकी मां बिलक कर रो पड़ी। भावना से भरी ये तस्वीर हर शख्स की आंखें नम कर गई। दिलासा देने के लिए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर इस मां को गले लगाया। बेटी की शहादत और उसे मिले सम्मान पर गर्व करने वाली मां ने गुड न्यूज टुडे की टीम से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट।
1: प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, पहली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बरसों तक उनकी बहादुरी का जिक्र होगा, पीढ़ियों तक उनकी देशभक्ति का किस्सा बयां होगा। देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनकी वीरता का देश ने सम्मान किया।
1: सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो देश के दुश्मनों पर तो भारी पड़े लेकिन लौटकर नहीं आ सके। जब राष्ट्रपति भवन में उनकी वीरता का सम्मान हुआ तो भावनाओं पर जोर नहीं रहा, बरबस आंसू निकल पड़े। सेना के महार बटालियन के सिपाही प्रवीण जंजाल की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। देश की हिफाजत के लिए जान देने वाले बेटे पर इस माँ को भी नाज है। लेकिन माँ तो फिर माँ ही है। जब शहीद बेटे के लिए कीर्ति चक्र सम्मान लेने खड़ी हुई तो भावनाओं का ऐसा झंझावात उठा जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं हुआ। माँ बिलख पड़ी और राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करके उन्हें सहारा दिया, गले लगाकर दिलासा दिया।
0: इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: ये भावुक पल वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गए, पर साथ ही हर देशवासी का सर गर्व से तन गया, क्योंकि जिस मादरे वतन के ऐसे बहादुर बेटे हों, दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जुलाई 2004 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ था। प्रवीण जंजाल ने न सिर्फ आतंकियों को देखकर अपने साथियों को आगाह किया, बल्कि दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए, पर आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे। उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी और माँ को दिया गया, वो माँ जिसकी आंखें पिछले दो वर्षों से अपने बेटे को खोज रही हैं। जब वो मंच पर गई तो उन्हें चारों ओर लोग तो नजर आए, पर बेटा नहीं दिखा। इसी एहसास ने उन्हें भावुक कर दिया और वो राष्ट्रपति से लिपट कर रो पड़ी। बेटे की शहादत पर गर्व तो दिल में रहा, पर उसकी कमी आंखों से दर्द बनकर छलक पड़ी।
1: एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वो एक शहीद की माँ का वीडियो है, जो राष्ट्रपति के हाथ से कीर्ति चक्र लेते हुए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल छोड़कर जो है उस वीर माता को जो है वो अपने गले लगाया है। वो वीर जवान प्रवीण जंजाल की माँ हमारे साथ है, इन्हीं का वो वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे बोलिए कि आप जब राष्ट्रपति के पास गए कीर्ति चक्र लेने के लिए, तो क्या लगा आपको?
2: मला असं वाटलं की माझा मुलगा साला माझ्या जू, मला असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड आला, पण माझा मुलगा मला चेहराच दिसून आला नाही। तर कीर्ति चक्र दिसून आलं असं वाटलं, माझा मुलगा आला, भावाने भाऊ आला दोन, असं वाटलं मला। मला पण असं वाटतं की माझ्या मुलाचं ते सपसा मारक बांधलं की असं वाटतं की माझा मुलगा जिंदा आहे। गावातनी ऊर आला, मला दिसला की असं वाटतं की माझा मुलगा जिंदा आहे, असं दिसलं पाहिजे मला। यासाठी माझी महिला मागणी आहे।
1: एक राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन वो भी पीसी की माँ की, आप भी एक वीर जवान की माँ हो, उस वक्त उनकी भी जो है आंखें भर आई होगी। उस समय कैसा लगा आपको कि आपको उनके कंधे का आधार लेना पड़ा?
2: राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्यायच्या गळ्यात हात टाकले, असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड जीव राहिले ते की जिंदा आहे, पण मला जिंदा दिसू राहिला नाही माझा मुलगा। मी खूप प्रयत्न करू राहिली पाहायचे, पण मला दिसू राहिला नाही। मला असं वाटतं की माझ्या पुराचं महाग बांधलं की मला जिंदा दिसेल माझा मुलगा माझ्या जवळ, लाता येता मी पाहिन माझ्या मुलाला।
0: रक्षा अलंकरण समारोह के अंतर्गत 8 जून को राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये पुरस्कार उन जवानों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह तक न की। इनमें कई जवानों ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अद्भुत बहादुरी दिखाई। कुछ पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, जिसमें प्रवीण जंजाल का नाम भी है।
1: प्रवीण नहीं है, लेकिन प्रवीण ने आज माँ बाप को हवाई सफर भी करवाया, जो भी करवाएगी उसकी जो इच्छा जीवन में थी आज वो नहीं होकर किया है, लेकिन उसकी आज कमी महसूस कैसी होती है, पक्कर उसकी याद आती है।
3: वो हर दिन आया था, पूरन के हर दिन आ रहे थे। पूरन ने इसलिए नहीं गए, तो वो मेरा भाई था, मैं उनको माता पिता को पाला पोसा, मैं उनको सब देखूंगा, उनकी तरफ सब देखूंगा।
1: एक नाच प्रवीण जो है और तुमने दोनों ने साथ में देश की सेवा के लिए गए, लेकिन प्रवीण आगे जाकर जीत गया
3: और देश को कुर्बान हो गया। ये गर्व है मुझे, देश से कुर्बान हो गया और बहुत अच्छा अभिमान है, लेकिन उनका दुख भी वैसा ही है, माँ बाप को बहुत दुख है। हमारे पास आज ऐसा एक दिन नहीं कि मेरी माँ रोती नहीं, हर दिन रोती है, उनकी याद में हर दिन रोती है।
0: शौर्य, साहस और त्याग का जब भी जिक्र होगा, देशभक्ति की जब भी कहानियां सुनाई जाएंगी, प्रवीण और उनके जैसे बहादुर जवानों को देश सम्मान के साथ याद करेगा। अकोला से धनंजय सामले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। 3 गोलियां लगने के बावजूद वो अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे और एक आतंकी को ढेर कर दिया। वीरता पुरस्कारों के तहत संजय तिवारी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद जब संजय अपने परिवार के साथ पहली बार रीवा पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
1: यूं तो रीवा एक्सप्रेस दिल्ली से हर रोज आती है, पर ऐसा नजारा नहीं होता। यूं तो हजारों लोग इस ट्रेन से उतरते हैं, पर जब संजय तिवारी ट्रेन से उतरे तो जैसे रीवा ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। ये दिन खास बन गया क्योंकि रीवा का बहादुर बेटा या कहें कि शूरवीर राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित होकर आया है। हैरत की बात नहीं कि ढोल नगाड़े और फूल माला से सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से स्टेशन गूंज उठा।
2: गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया।
1: रीवा के डेल्टी गांव के रहने वाले हैं संजय तिवारी, जो अब इस पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोगों ने टीवी पर उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार लेते देखा और उनका सीना गर्व से तन गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के खनियार इलाके में एक आतंकवाद विरोधी अभियान किया गया था। सुरक्षा बलों को लश्करे तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और भारी गोलीबारी के बीच संजय तिवारी अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे।
2: स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था, काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे

0: तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें।
1: इसी अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए संजय तिवारी को वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उनके साथ सिपाही फिदा हुसैन डार को भी ये सम्मान मिला। पुरस्कार लेने के बाद जब संजय तिवारी रीवा पहुंचे तो लोगों ने अपने वीर सपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय तिवारी की बहादुरी और अदम्य साहस का गर्व वहां मौजूद हर युवा के चेहरे पर नजर आया।
0: रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सके।
1: सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जिन जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सभी की कहानियां देश की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और देश की सुरक्षा में अपनी जान की चिंता नहीं की। ऐसे वीर जवानों पर देश को नाज है। रीवा से हरिओम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: और अब बात मोहाली के मेजर अर्शदीप सिंह गिल की, जिन्होंने मणिपुर में एक चुनौतीपूर्ण आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। यह ऑपरेशन करीब 84 घंटे तक चला था, जिसमें 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया था, लेकिन इसमें जबरदस्त खतरा था। असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप गिल को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने, सुनिए।
3: दीप सिंह, कवचित कोर, एक असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह

0: जय जवान जय किसान। आज एक किसान के बेटे ने फक्र किया है क्योंकि उसे कीर्ति चक्र मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं मेजर अर्शदीप गिल, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। 84 घंटे का ऑपरेशन चला मणिपुर में, जिसमें कई दहशतगर्द हैं उनको मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए कि आपकी पहले तो ये जर्नी है, क्योंकि अब कई बार बोलते हैं हम लोग कि युवक नहीं जा रहे हैं, सेना में नहीं जा रहे हैं पंजाब से, लेकिन 2016 में आपने ज्वाइन भी किया आर्मी और आज आपको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं और खासतौर पर।
1: मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा स्कूलिंग फिरोजपुर से ही है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, वो चंडीगढ़ से करी, और जनवरी 2015 में मैंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून ज्वाइन कर लिया था, और जून 2016 में मैं कमीशन हुआ था 58 आर्मर्ड रेजिमेंट में, द आर्मर्ड कोर। और उसके बाद मैं 2022 दिसंबर में डेपुटेशन के ऊपर फर्स्ट असम राइफल्स में गया था, और ये पिछले साल मई 2025 में ये ऑपरेशन हुआ था। और जो आपने बोला है कि पंजाब से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है। मैं तो मे बी आई नो मोर देन 1000, ठीक है, मेरे अपने को मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ, ठीक है, प्योरली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एंड लाइक माय मोटिवेशन वाज कि यहाँ की ऐसी फिरोजपुर कैंट आना जाना होता था, तो वहां पे जो रोड के साइड ही यूनिट्स के क्वार्टर गार्ड्स हैं, तो हम उनको देख के सल्यूट व्यूट करते रहते थे, तो वही मोटिवेशन था कि आगे चल के।
0: कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस था या जस्ट जनरली क्योंकि आपका आना जाना था?
1: मैम आना जाना था वहां से, और उसके बाद फिर जब आगे जाके इंजीनियरिंग करी तो पता चला कि ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो फिर इससे अच्छा कुछ लगा ही नहीं। और वो डिसीजन मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि आज सच में मेरे को लगता है कि मैं इससे अच्छा लाइफ में कर नहीं सकता था। ये
0: एक होता है मैन इन यूनिफॉर्म और एक होता है एक हीरो, तो आज आप एक कीर्ति चक्र अवार्डी हैं, तो आप हीरो हैं नेशन के, तो इस ऑपरेशन के बारे में हमें।
1: मैम ये ऑपरेशन

0: नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। वहाँ पे पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे फेंसिंग का काम नहीं हो रखा है, और जो मणिपुर के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, तो मोस्टली कहीं ना कहीं उसका, अगर वेपन स्मगलिंग को लोगे, ड्रग्स स्मगलिंग को लोगे, तो उसका बेस म्यांमार के साथ बैठता है, वो ओपन बॉर्डर की वजह से। तो उस वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वहां पे फेंसिंग का काम किया जाए, लेकिन वो फेंसिंग का काम अगर वो हो जाता है तो ये सारी हरकतें वहां पे बंद हो जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए वहां पे लगातार उनके एफर्ट्स होते रहते हैं। तो मेरी यूनिट फर्स्ट असम राइफल्स, हम वहां पे लेबर फेंसिंग की सिक्योरिटी में वहां पे थे। तो ये जो ऑपरेशन है 14 मई 2025 का है, जब उन्होंने लेबर को वहां पे टारगेट किया था, तो वहां पे हम सिक्योरिटी में थे। तो उसके बाद, जैसा कि आपने बोला, 84 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन था। ये जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जंगल टेरेन है, माउंटेन है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और ये ऑपरेशन मॉर्निंग में 6:35 पे हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड फायर आया था। उसके बाद फिर ये 14 मई को लेके शाम 1800 आवर्स 17 मई तक ये ऑपरेशन चला था। और जो हमारी नफरी थी, मैं उसमें ऑफिसर था, मेरे जेसू साहब थे और 30 अदर रैंक्स हमारे साथ थे। और जिस तरीके का इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सचेंज हो रहा था, तो मेरे को, एज पर माई असेसमेंट, मेरे को लगा था कि 15 से 20 आर्म कार्डर्स आगे की तरफ हैं। उसके बीच में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वाला कार्डर भी हमने देखा था, जिसको हमने आगे जाके न्यूट्रलाइज किया।
1: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: चारधाम में यात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो या बद्री विशाल का दरबार, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में तो आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, ट्रैफिक की समस्या ना हो।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियां डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। चारों धामों में अब तक कुल 33,45,600 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए। यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, पहली बार मैं गई।
2: व्यवस्था यहाँ की हमें अच्छी लगी, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, घोड़ा खच्चड़ वो सबको पानी पीने के लिए और सारी व्यवस्था, सारी चीज बढ़िया है, सुविधा यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा है।
3: ले भी कोऑपरेट करते हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्था है घोड़े को, और अच्छा है, सफर अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ केदारनाथ, अच्छा एक्सपीरियंस था, ऊपर में भी अच्छा रहा, नीचे भी उतरते वक्त अच्छा रहा।
0: एक और प्रकृति की कठिन परीक्षा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 11,85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ और ही है। 10 जून तक 10 लाख का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी तक 10 लाख से ऊपर यात्री वहां पे पहुंच चुके हैं, और वैसे हेमकुंड साहिब की मैं बात करूं तो 70,000 से ऊपर यात्री लगभग वहां पे पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके प्रॉपर डायरेक्शन के बाद संबंधित विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा इस बार प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उसी का परिणाम है कि इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास श्रद्धालु आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनको हम बहुत बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।
0: खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल एन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती।
9: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलेस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में, कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर इसे पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को सरेराह पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि भारत का सरकारी स्कूल है जहां बच्चे टेबल के नीचे छिपकर अपने आप को बारिश के पानी से बचा रहे हैं। इस वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
10: राजस्थान के गांवों से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग चंदा मांगते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान धार्मिक पहचान और शब्दों के अर्थ को लेकर भी चर्चा हो रही है, उसके बाद स्कूटी सवार शख्स थप्पड़ों की बारिश करने लग जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि एक आदमी ने राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
11: अरे मेरा चंदा छोड़ो,
12: छोड़ो। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक आदमी तीन लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान का है। यहाँ के एक गांव में मदरसा के लिए चार लोग चंदा मांग रहे थे, इसके बाद एक आदमी ने उन्हें पीट कर वहाँ से भगा दिया। इस वीडियो को हालिया दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि राजस्थान के एक गांव में मदरसा के नाम पर चार लोग चंदा मांगने आए थे। छोटू सिंह नाम के एक भाई ने चंदा मांगने वालों को थप्पड़ों का चंदा दे दिया। इस वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह तेजी से वायरल हो रहा है।
10: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। धार्मिक एंगल देते हुए कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो राजस्थान का है, जहां पर मदरसे के लिए चंदा मांग रहे लोगों को एक आदमी ने खूब पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक जगह ये सुनने को मिला कि एक शख्स स्कूटी से उतरता है और वहां पर इस्लामिक टोपी पहने लोगों से आधार कार्ड मांगता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि मारने वाला शख्स इन लोगों की धार्मिक पहचान जानना चाहता है और उसी को लेकर पहले कहां सुनी हुई और फिर इन लोगों पर थप्पड़ों की बारिश हुई। इसके बाद वीडियो में आगे एक बाइक भी नजर आ रही है जिस पर यूपी की नंबर प्लेट दिख रही है। इसे देखकर हमें थोड़ा शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो की जानकारी जुटाने के लिए लगातार सर्च किया इसे, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि ये वीडियो राजस्थान का है। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
12: वायरल वीडियो की जांच के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे। इस रिपोर्ट को 23 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट को प्रकाशित करके लिखा गया था, बदायूं तीन मुस्लिम बुजुर्गों की पिटाई वाला वीडियो वायरल। आगे बताया गया था कि इसमें एक युवक तीन मुस्लिम बुजुर्गों को थप्पड़ मारते दिख रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद अक्षय शर्मा उर्फ छोटू नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर है। अब्दुल सलाम ने इस घटना के बारे में कहा, 16 फरवरी को हम मोहल्ला कटरा के रहने वाले अपने साथी आरिफ और मोहल्ला सिस्टम टोला के रहने वाले जावेद के साथ बिलसी तहसील के थाना इस्लाम नगर रुदायन गए थे। हमें वहां से चंदा इकट्ठा करना था। एक युवक पीछे से आया और उसने हमारा आधार कार्ड देखने को मांगा। इसके बाद उसने हम पर धार्मिक टिप्पणी की, मारा पीटा, टोपी तक उतारने को कहा। सर्च के दौरान हमें एक और प्रमाणिक रिपोर्ट मिली जिसके जरिए ये जानकारी मिली कि यूपी के बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदायन में पीटे गए जावेद के भाई अरमान ने बताया कि भाई समेत तीन लोग मुस्लिम मोहल्ले में रमजान आने के चलते जकात मांगने गए थे। एक युवक स्कूटी से जा रहा था, उससे सिर्फ यही पूछा कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ला कहाँ है और हाईवे का रास्ता किधर है। इतना सुनते ही वह भड़क गया, कहने लगा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बुजुर्ग भाई की टोपी उतरवाई, तीनों लोगों को थप्पड़ मारे, 200 मीटर तक पीटते हुए और अपशब्द बोले, गली के बाहर तक दौड़ाकर भगाया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो राजस्थान का नहीं बल्कि यूपी के बदायूं का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारत के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति बताकर इसे शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक महिला तेज बारिश के बीच टेबल पकड़कर बच्चों को पानी से बचाने की कोशिश करती नजर आ रही, जबकि कई बच्चे टेबल के नीचे बैठे नजर आते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दृश्य भारत के किसी सरकारी स्कूल का है, लेकिन जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
13: सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए है। वीडियो में दिख रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए भी दिख रही है। बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है। इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। यहाँ बच्चों को बारिश से बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए खड़ी है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हैं और बच्चे किसी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए दिख रही है। बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है और इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो नेपाली भाषा जैसा कुछ सुनाई दिया। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को भारत का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
14: गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया आउटलेट है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इस वीडियो में छोटे छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे कक्षा के अंदर ही खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक सुरक्षित और महफूज माहौल में होना चाहिए था। इस घटना ने स्कूल के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत को उजागर किया है, जहां खराब मौसम के दौरान बुनियादी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसी स्थितियों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि स्कूल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और छात्रों की सुरक्षा करने के लिए कितने तैयार हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम जनता में चिंताएं बढ़ गई हैं और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की मांगें उठ रही हैं। कई लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं कि छात्र खराब मौसम की स्थिति में बिना किसी डर के सुरक्षित और उचित माहौल में पढ़ाई कर सकें। आगे सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक फेसबुक चैनल पर देखने को मिला। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज स्कूल के बुनियादी ढांचे की कमजोर हालत को उजागर करता है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलने के बजाय क्लासरूम के अंदर ही खुद को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस घटना ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया। इस तरह फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में इस दावे को गलत पाया है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये वीडियो भारत के किसी सरकारी स्कूल का नहीं है, बल्कि वीडियो नेपाल का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
15: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
16: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
15: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
16: They score!
15: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
10: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
17: हो जाएगी। जाऊंगी, जल्दी बताइए ना।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी दिखाई देती है। बच्ची मासूमियत भरे अंदाज में अपने पापा से बातें करती नजर आती है। उसकी बातें सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा। बच्ची पिता की तस्वीर को देखते हुए कहती है, सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए, मम्मी आपको मना करती थी लेकिन आप नहीं माने। इतना ही नहीं, बच्ची आगे कहती है, आपने ऐसा क्यों किया मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। उसकी मासूम बातें और दर्द भरी आवाज सुन लोग काफी भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो की कोच अच्छी खासी भरी हुई है। तभी एक दोस्त उठकर अनाउंस करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। वो सभी यात्रियों से दोस्त साहिल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसे विश करने की प्यारी सी अपील करता है। इसके बाद मेट्रो में सफर कर रहे सभी यात्री गाना गाकर उसे विश करते हैं। हालांकि बर्थडे बॉय की शक्ल देखने लायक होती है, वो शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। इसके बाद बर्थडे बॉय का दोस्त अपने बैग से मेलोडी टॉफी का पैकेट निकालता है और दोनों मिलकर पूरी कोच को टॉफियां बांटते हैं। इस दौरान लोग हाथ मिलाकर भी साहिल को जन्मदिन की बधाई देते हैं।

सोशल मीडिया इन दिनों प्यार, भावुकता और संगीत से भरे एक वीडियो से गूंज रहा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपने दो भाइयों के लिए एक सुपरहिट सॉन्ग गाया। अपनी मासूम आवाज से इस बच्ची ने करोड़ों दिल जीत लिए। लोग इसके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची बेहद प्यारे अंदाज में गा रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भाइयों के प्रति प्यार साफ दिखाई दे रहा है। गाने की शुरुआत में वो थोड़ा झेपती है, लेकिन जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है उसके आवाज में जादू उतर आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो बॉलिंग गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो देखने को मिलता है वो काफी मजेदार है। यही कारण है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक युवती उन पिंस के बेहद करीब खड़ी नजर आती है जिन्हें गिराने का टारगेट होता है। आमतौर पर किसी खिलाड़ी या शख्स को वहां खड़े होने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये खेल के नियमों के खिलाफ है। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो में दूसरी ओर से एक बड़ी बॉलिंग बॉल लेन पर उड़कती हुई दिखाई देती है। गेंद तेजी से युवती की ओर बढ़ती है। जैसे ही गेंद उसके पास पहुंचती है वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इसके बाद वो खुद गेंद को आगे की ओर फेंकने की कोशिश करती है ताकि सामने खड़ी सभी पिंस गिर जाए। हालांकि यहां पर कहानी में मजेदार मोड़ आता है। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को आगे फेंकती है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित होती है। हैरानी की बात ये कि गेंद फेंकने के बावजूद एक भी पिन नहीं गिरती। जिस काम को आसान समझकर किया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। युवती का ये असफल प्रयास लोगों को खूब हंसा रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वही इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता। वो कुछ पल रुकता है और फिर अपने हाथों से नल की टोटी को बंद करता है। उसकी एक छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठा कर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों और समय के हैं और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे क्यू मासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह से एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं।
वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास कोई तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नजर दो दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसे लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन ये वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से लौट जाती है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई है। त्योहार से पहले पारंपरिक ड्रैगन बोट पर रस्में निभाई गई, जिसमें लोगों ने अच्छी बारिश, खुशहाली और बेहतर फसल की कामना की।
3: ये तस्वीरें चीन के ग्वांगझोउ की है। नदी किनारे जुटे लोग पूरे उत्साह के साथ ड्रैगन बोट को सजाने और सवारने में लगे हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले होने वाला यह अनुष्ठान यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। रंग बिरंगे झंडों, पारंपरिक छतरियों और धान के पौधों से नाव को सजाया गया। नाव के आगे ड्रैगन का सिर लगाया गया। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया से लंबे समय से विश्राम कर रही ड्रैगन बोट को उत्सव के लिए जगाया जाता है। अनुष्ठान की शुरुआत ड्रैगन के सिर को विशेष पत्तियों और टहनियों से सजाने के साथ हुई। इसके बाद हरी पत्तियों की मदद से नाव पर जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध किया गया। फिर एक बुजुर्ग ने ड्रैगन की आंखों पर सिंदूर लगाकर उसमें जीवन और ऊर्जा का संचार करने की प्रतीकात्मक रस्म निभाई। रस्म पूरी होते ही ड्रैगन बोट नदी में उतरी और पारंपरिक आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। लोगों का ऐसा विश्वास है कि यह अनुष्ठान आने वाले समय में सुख, समृद्धि, अनुकूल मौसम और अच्छी पैदावार का आशीर्वाद लेकर आता है। परंपरा, आस्था और संस्कृति विरासत का अनूठा संगम। ग्वांगझोउ में आयोजित ये ड्रैगन बोट आशीर्वाद समारोह न सिर्फ एक धार्मिक रस्म है, बल्कि स्थानीय समुदाय की पहचान और एकता का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के धार लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहां मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल, जो न सिर्फ हमारे देश के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है, बल्कि अपनी अनूठी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बूते दुनिया भर में खूब मशहूर है। जहाज महल की इन खूबसूरत तस्वीरों को आप तक लाए हैं जीएनटी के ही एक दर्शक।

0: मुंज और कपूर की लहरों पर जहां एक जहान तैरता है, मांडू की फिजा में जहां एक कारवां ठहरता है, इतिहास के पन्नों में पानी पर जो टिका रहे उस जहाज महल में हर मौसम बहार निखरता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में लाए हैं, जहां सुनसान और दूर दराज में बसा जहाज महल 15वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत और अनोखी कारीगरी है। काली रेत, चूना, ईंट, दाल जैसी कई और चीजों का मसाला बनाकर तैयार ये विशाल महल किसी अजूबे से कम नहीं है।
1: उस जमाने में कोई सीमेंट नहीं होती थी, ये बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया, ईंट, काली रेत, चूना, उड़द की दाल, गुड़, बिल पत्ते के फल, इन सारी चीजों को पीस कर मसाला बना के ही सारे बिल्डिंग को बनाया गया है।
0: सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल के पास ही अपनी बेगमों के नाम पर दो झील, मुंज तालाब और कपूर तालाब बनवाए। यही नहीं, महल के नजदीक ही अशरफी महल भी बनवाया। इस जहाज महल में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए कई खास कमरे बनवाए, तो दीवारों में नहरें और फव्वारे तक लगाए ताकि उस वक्त गर्मी की तपिश में महल को ठंडा रखा जा सके। जहाज महल जितना जमीन के ऊपर बना है उतना आप देख सकते हैं जमीन के नीचे भी। लगभग 110 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी इस इमारत की दरों दीवारों पर हिंदू, अफगान और मुगल वास्तुकला का इतिहास आराम से नजर आ जाएगा। आप महल की छत पर आएंगे तो आपको पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अद्भुत तकनीक भी हैरान कर देगी। इससे भी आगे महल के ऊपरी हिस्से में खूबसूरत मेहराब, बैल्कनीज, मंडप और गुंबददार छतरियां भी 15वीं सदी के आर्किटेक्ट की अनूठी मिसालें हैं। मांडू से सबसे पास लगभग 95 किलोमीटर दूर तो इंदौर एयरपोर्ट ही है और सबसे पास रेलवे स्टेशन इंदौर या रतलाम है। तो अगर आप मांडू बाय रोड आ रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर धार और इंदौर से ये जुड़ा हुआ है, जहां से आप बस या टैक्सी से यहां आ सकते हैं। फिलहाल तो आपके लिए सैर सपाटा करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून और विंटर सीजन ही है। ये वो वक्त है जब आसमान में बादलों का डेरा, चारों तरफ फैली हरियाली जहाज महल के इतिहास में चार चांद लगा देते हैं।
2: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करें, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करें, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संकल्प में भागीदार बने। इस बस आपको इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाए कैमरा, बनाए ब्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
5: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, माँ अम्बे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी. ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलैस. भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला. रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल. फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में. कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर. 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना.

0: आपके साथ श्वेता झा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के वीर जवानों की, सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के ऐसे शूरवीरों की जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भी अपने कर्तव्य को निभाया, देश के दुश्मनों का निर्दयता से सामना किया और उन्हें ढेर कर दिया। ऐसे ही शूरवीरों को कुछ रोज पहले राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कुछ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। आज आपको सबसे पहले शहीद बेटे के लिए सम्मान ग्रहण करने गई एक माँ से मिलवाएंगे, जो समारोह के दौरान बिलखकर रो पड़ी और राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। इसके बाद आपको मिलवाएंगे सीआरपीएफ के निडर जवान से, जिन्होंने 3 गोलियां लगने के बावजूद घाटी में आतंकियों को ढेर कर दिया। रीवा में उनके स्वागत का भव्य समारोह हुआ, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। और आखिर में बातचीत होगी पंजाब के मेजर अर्शदीप गिल से, जिन्होंने मणिपुर में 84 घंटे तक चले एक ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम का जबरदस्त नेतृत्व किया और इस ऑपरेशन में 10 उग्रवादी मार गिराए। तो शुरुआत करते हैं सेना के जवान प्रवीण जंजाल से। करीब 2 साल पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए प्रवीण ने अदम्य साहस दिखाया और सिर में गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया। प्रवीण जंजाल ने सर्वोच्च बलिदान देकर अपने कर्तव्य को निभाया और देश के लिए मिसाल बने। मरणोपरांत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण करते हुए उनकी मां बिलख कर रो पड़ी। भावना से भरी ये तस्वीर हर शख्स की आंखें नम कर गई। दिलासा देने के लिए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर इस मां को गले लगाया। बेटी की शहादत और उसे मिले सम्मान पर गर्व करने वाली मां ने गुड न्यूज टुडे की टीम से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट।
1: प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, पहली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बरसों तक उनकी बहादुरी का जिक्र होगा, पीढ़ियों तक उनकी देशभक्ति का किस्सा बयां होगा। देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनकी वीरता का देश ने सम्मान किया।
1: सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो देश के दुश्मनों पर तो भारी पड़े लेकिन लौटकर नहीं आ सके। जब राष्ट्रपति भवन में उनकी वीरता का सम्मान हुआ तो भावनाओं पर जोर नहीं रहा, बरबस आंसू निकल पड़े। सेना के महार बटालियन के सिपाही प्रवीण जंजाल की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। देश की हिफाजत के लिए जान देने वाले बेटे पर इस माँ को भी नाज है। लेकिन माँ तो फिर माँ ही है। जब शहीद बेटे के लिए कीर्ति चक्र सम्मान लेने खड़ी हुई तो भावनाओं का ऐसा झंझावात उठा जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं हुआ। माँ बिलख पड़ी और राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करके उन्हें सहारा दिया, गले लगाकर दिलासा दिया।
0: इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: ये भावुक पल वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गए, पर साथ ही हर देशवासी का सर गर्व से तन गया, क्योंकि जिस मादरे वतन के ऐसे बहादुर बेटे हों, दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जुलाई 2004 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ था। प्रवीण जंजाल ने न सिर्फ आतंकियों को देखकर अपने साथियों को आगाह किया, बल्कि दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए, पर आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे। उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी और माँ को दिया गया, वो माँ जिसकी आंखें पिछले दो वर्षों से अपने बेटे को खोज रही हैं। जब वो मंच पर गई तो उन्हें चारों ओर लोग तो नजर आए, पर बेटा नहीं दिखा। इसी एहसास ने उन्हें भावुक कर दिया और वो राष्ट्रपति से लिपट कर रो पड़ी। बेटे की शहादत पर गर्व तो दिल में रहा, पर उसकी कमी आंखों से दर्द बनकर छलक पड़ी।
1: एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वो एक शहीद की माँ का वीडियो है, जो राष्ट्रपति के हाथ से कीर्ति चक्र लेते हुए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल छोड़कर जो है उस वीर माता को जो है वो अपनी गले लगाया है। वो वीर जवान प्रवीण जंजाल की माँ हमारे साथ है, इन्हीं का वो वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे बोलिए कि आप जब राष्ट्रपति के पास गए कीर्ति चक्र लेने के लिए तो क्या लगा आपको?
2: मला असं वाटलं की माझा मुलगा साला माझ्या जो मला असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोडाला, पण माझा मुलगा मला चेहरा दिसून आला नाही। कीर्ती चक्र दिसूला असं वाटलं माझा मुलगा आला, भावाले भाऊ आला दोन असं वाटलं मला। मला पण असं वाटते की माझ्या मुलाचं ते सपसा मारक बांधलं की असं वाटते की माझा मुलगा जिंदा आहे। गावातनी उर आला मला दिसला की असं वाटते की माझा मुलगा जिंदा आहे असं दिसलं पाहिजे मला। यासाठी माझी महिला मागणी आहे।
1: एक राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन वो भी पीसी की माँ की, आप भी एक वीर जवान की माँ हो। उस वक्त उनकी भी जो है आंखें भर आई होगी। उस समय कैसा लगा आपको कि आपको उनके कंधे का आधार लेना पड़ा?
2: राष्ट्रपति द्यायच्या गळ्यात ने हात टाकले असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड देऊ राहिले ते की जिंदा आहे, पण मला जिंदा दिसू राहिला नाही माझा मुलगा। मी खूप प्रयत्न करू राहिली पाहायचे, पण मला दिसू राहिला नाही। मला असं वाटते की माझ्या पुराचं महाग बांधलं की मला जिंदा दिसेल माझा मुलगा माझ्या जोड लाता येता मी पाहिन माझ्या मुलाला।
0: रक्षा अलंकरण समारोह के अंतर्गत 8 जून को राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये पुरस्कार उन जवानों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह तक न की। इनमें कई जवानों ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अद्भुत बहादुरी दिखाई। कुछ पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, जिसमें प्रवीण जंजाल का नाम भी है।
1: प्रवीण नहीं है, लेकिन प्रवीण ने आज माँ बाप को हवाई सफर भी करवाया, जो भी करवाएगी उसकी जो इच्छा जीवन में थी आज वो नहीं होकर किया है, लेकिन उसकी आज कमी महसूस कैसी होती है, पक्कर उसकी याद आती है।
3: वो हर दिन आया था कि हर दिन आ रहे थे, पूरन इसलिए नहीं गए थे, वो मेरा भाई था। मैं उनको माता पिता को पाला पोसा, मैं उनको सब देखूंगा, उनकी तरफ सब देखूंगा।
1: एक नाच प्रवीण जो है और तुमने दोनों ने साथ में देश की सेवा के लिए गए, लेकिन प्रवीण आगे जाकर जीत गया।
3: जीत गया और देश को कुर्बान हो गया, ये गर्व है मुझे, देश से कुर्बान हो गया। और बहुत अच्छा अभिमान है, लेकिन उनका दुख भी वैसा ही है, माँ बाप को बहुत दुख है। हमारे पास आज ऐसा एक दिन नहीं कि मेरी माँ रोती नहीं, हर दिन रोती है, उनकी याद में हर दिन रोती है।
0: शौर्य, साहस और त्याग का जब भी जिक्र होगा, देशभक्ति की जब भी कहानियां सुनाई जाएंगी, प्रवीण और उनके जैसे बहादुर जवानों को देश सम्मान के साथ याद करेगा। अकोला से धनंजय सामले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। तीन गोलियां लगने के बावजूद वो अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे और एक आतंकी को ढेर कर दिया। वीरता पुरस्कारों के तहत संजय तिवारी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद जब संजय अपने परिवार के साथ पहली बार रीवा पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
1: यूं तो रीवा एक्सप्रेस दिल्ली से हर रोज आती है, पर ऐसा नजारा नहीं होता। यूं तो हजारों लोग इस ट्रेन से उतरते हैं, पर जब संजय तिवारी ट्रेन से उतरे तो जैसे रीवा ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। ये दिन खास बन गया क्योंकि रीवा का बहादुर बेटा या कहें कि शूरवीर राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित होकर आया है। हैरत की बात नहीं कि ढोल नगाड़े और फूल माला से सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से स्टेशन गूंज उठा।
2: गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया।
1: रीवा के डेल्टी गांव के रहने वाले हैं संजय तिवारी, जो अब इस पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोगों ने टीवी पर उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार लेते देखा और उनका सीना गर्व से तन गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के खनियार इलाके में एक आतंकवाद विरोधी अभियान किया गया था। सुरक्षा बलों को लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और भारी गोलीबारी के बीच संजय तिवारी अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे।
2: स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था, काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया।
1: हालांकि मुठभेड़ के दौरान उनकी बांह टूटने और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और एक आतंकी को मार गिराया।
2: बिल्कुल 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में, और
3: 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े, अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे?
2: बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहे।
1: इसी अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए संजय तिवारी को वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उनके साथ सिपाही फिदा हुसैन डार को भी ये सम्मान मिला। पुरस्कार लेने के बाद जब संजय तिवारी रीवा पहुंचे तो लोगों ने अपने वीर सपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय तिवारी की बहादुरी और अदम्य साहस का गर्व वहां मौजूद हर युवा के चेहरे पर नजर आया।
2: रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुँच सके।
1: सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जिन जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सभी की कहानियां देश की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और देश की सुरक्षा में अपनी जान

0: विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। ये ऑपरेशन करीब 84 घंटे तक चला था, जिसमें 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया था, लेकिन इसमें जबरदस्त खतरा था। असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप गिल को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने, सुनिए।
1: दीप सिंह, कवचित कोर, एक असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा, तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह

0: जय जवान जय किसान। आज एक किसान के बेटे ने फक्र किया है क्योंकि उसे कीर्ति चक्र मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं मेजर अर्शदीप गिल, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। 84 घंटे का ऑपरेशन चला मणिपुर में, जिसमें कई दहशतगर्द हैं उनको मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए कि आपकी पहले तो ये जर्नी है, क्योंकि अब कई बार बोलते हैं हम लोग कि युवक नहीं जा रहे हैं, सेना में नहीं जा रहे हैं पंजाब से, लेकिन 2016 में आपने ज्वाइन भी किया आर्मी और आज आपको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं और खासतौर पर।
1: मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा स्कूलिंग फिरोजपुर से ही है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, वो चंडीगढ़ से करी, और जनवरी 2015 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन कर लिया था, और जून 2016 में मैं कमीशन हुआ था 58 आर्मर्ड रेजिमेंट में, द आर्मर्ड कोर। और उसके बाद मैं 2022 दिसंबर में डेप्यूटेशन के ऊपर फर्स्ट असम राइफल्स में गया था, और ये पिछले साल मई 2025 में ये ऑपरेशन हुआ था। और जो आपने बोला है कि पंजाब से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है। मैं तो मे बी आई नो मोर देन 1000, ठीक है, मेरे अपने को मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ, ठीक है, प्योरली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एंड लाइक माय मोटिवेशन वाज कि यहाँ की ऐसी फिरोजपुर कैंट आना जाना होता था, तो वहां पे जो रोड के साइड ही यूनिट्स के क्वार्टर गार्ड्स हैं, तो हम उनको देख के सल्यूट व्यूट करते रहते थे, तो वही मोटिवेशन था कि आगे चल के।
0: कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस था या जस्ट जनरली क्योंकि आपका आना जाना था?
1: मैम आना जाना था वहां से, और उसके बाद फिर जब आगे जाके इंजीनियरिंग करी तो पता चला कि ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो फिर इससे अच्छा कुछ लगा ही नहीं। और वो डिसीजन मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि आज सच में मेरे को लगता है कि मैं इससे अच्छा लाइफ में कर नहीं सकता था। ये
0: एक होता है मैन इन यूनिफॉर्म और एक होता है एक हीरो, तो आज आप एक कीर्ति चक्र अवॉर्डी हैं, तो आप हीरो हैं नेशन के, तो इस ऑपरेशन के बारे में हमें जरूर
1: बताएं। मैम ये ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। वहां पे पोरस बॉर्डर है, वहां पे फेंसिंग का काम नहीं हो रखा है, और जो मणिपुर के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, तो मोस्टली कहीं ना कहीं उसका, अगर वेपन स्मगलिंग को लोगे, ड्रग्स स्मगलिंग को लोगे, तो उसका बेस म्यांमार के साथ बैठता है, वो ओपन बॉर्डर की वजह से। तो उस वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वहां पे फेंसिंग का काम किया जाए, लेकिन वो फेंसिंग का काम अगर वो हो जाता है तो ये सारी हरकतें वहां पे बंद हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए वहां पे लगातार उनके एफर्ट्स होते रहते हैं। तो मेरी यूनिट फर्स्ट असम राइफल्स, हम वहां पे लेबर फेंसिंग की सिक्योरिटी में वहां पे थे। तो ये जो ऑपरेशन है 14 मई 2025 का है, जब उन्होंने लेबर को वहां पे टारगेट किया था, तो वहां पे हम सिक्योरिटी में थे। तो उसके बाद जैसा कि आपने बोला 84 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन था ये। जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जंगल टेरेन है, माउंटेन है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और ये ऑपरेशन मॉर्निंग में 6:35 पे हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड फायर आया था। उसके बाद फिर ये 14 मई को लेके शाम 1800 आवर्स 17 मई तक ये ऑपरेशन चला था। और जो हमारी

0: फ्री थी, मैं उसमें ऑफिसर था, मेरे जेसू साहब थे और 30 अदर रैंक्स हमारे साथ थे। और जिस तरीके का इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सचेंज हो रहा था, तो मेरे को एज पर माई असेसमेंट मेरे को लगा था कि 15 से 20 आर्म कार्डर्स आगे की तरफ हैं। उसके बीच में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वाला कार्डर भी हमने देखा था, जिसको हमने आगे जाके न्यूट्रलाइज किया।
1: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected.
1: This is 80s hits, exclusively on TuneIn.
0: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
2: You're listening to MSNBC.
0: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now, and thank us later.
3: Good news today.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: चार धाम यात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो या बद्री विशाल का दरबार, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में तो आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, ट्रैफिक की समस्या ना हो।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियां डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। चारों धामों में अब तक कुल 33,45,600 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए। यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, पहली बार मैं गई।
2: व्यवस्था यहाँ की हमें अच्छी लगी, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, घोड़ा खच्चड़ वो सबको पानी पीने के लिए और सारी व्यवस्था, सारी चीज बढ़िया है, सुविधा यहाँ की सुविधा है।
3: पहले भी कॉपरेट करते हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्था है घोड़े को, और अच्छा है, सफर अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ केदारनाथ, अच्छा एक्सपीरियंस था, ऊपर में भी अच्छा रहा, नीचे भी उतरते वक्त अच्छा रहा।
0: एक और प्रकृति की कठिन परीक्षा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 11,85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10,00,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10,00,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10,00,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ और ही है। 10 जून तक 10,00,000 का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी तक 10,00,000 से ऊपर यात्री वहां पे पहुंच चुके हैं, और वैसे हेमकुंड साहिब की मैं बात करूं तो 70,000 से ऊपर यात्री लगभग वहां पे पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके प्रॉपर डायरेक्शन के बाद संबंधित विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा इस बार प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उसी का परिणाम है कि इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास श्रद्धालु आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनको हम बहुत बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।
0: खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमलनंद सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, माँ अम्बे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलेस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में, कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर इसे पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को सरेराह पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि भारत का सरकारी स्कूल है जहां बच्चे टेबल के नीचे छिपकर अपने आप को बारिश के पानी से बचा रहे हैं। इस वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
10: राजस्थान के गांवों से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग चंदा मांगते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान धार्मिक पहचान और शब्दों के अर्थ को लेकर भी चर्चा हो रही है, उसके बाद स्कूटी सवार शख्स थप्पड़ों की बारिश करने लग जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि एक आदमी ने राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
11: अरे रहने दे बेटा, छोड़ो मेरा चंदा, छोड़ो बड़े भाई,
12: छोड़ो। सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक आदमी 3 लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो राजस्थान का है। यहां के एक गांव में मदरसा के लिए 4 लोग चंदा मांग रहे थे, इसके बाद एक आदमी ने उन्हें पीटकर वहां से भगा दिया। इस वीडियो को हालिया दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि राजस्थान के एक गांव में मदरसा के नाम पर 4 लोग चंदा मांगने आए थे, छोटू सिंह नाम के एक भाई ने चंदा मांगने वालों को थप्पड़ों का चंदा दे दिया। इस वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह तेजी से वायरल हो रहा है।
10: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। धार्मिक एंगल देते हुए कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो राजस्थान का है, जहां पर मदरसे के लिए चंदा मांग रहे लोगों को एक आदमी ने खूब पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक जगह ये सुनने को मिला कि एक शख्स स्कूटी से उतरता है और वहां पर इस्लामिक टोपी पहने लोगों से आधार कार्ड मांगता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि मारने वाला शख्स इन लोगों की धार्मिक पहचान जानना चाहता है और उसी को लेकर पहले कहां सुनी हुई और फिर इन लोगों पर थप्पड़ों की बारिश हुई। इसके बाद वीडियो में आगे एक बाइट भी नजर आ रही है जिस पर यूपी की नंबर प्लेट दिख रही है। इसे देखकर हमें थोड़ा शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो की जानकारी जुटाने के लिए लगातार सर्च किया इसे, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि ये वीडियो राजस्थान का है। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
12: वायरल वीडियो की जांच के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे। इस रिपोर्ट को 23 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट को प्रकाशित करके लिखा गया था, बदायूं तीन मुस्लिम बुजुर्गों की पिटाई वाला वीडियो वायरल। आगे बताया गया था कि इसमें एक युवक तीन मुस्लिम बुजुर्गों को थप्पड़ मारते दिख रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद अक्षय शर्मा उर्फ छोटू नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर है। अब्दुल सलाम ने इस घटना के बारे में कहा, 16 फरवरी को हम मोहल्ला कटरा के रहने वाले अपने साथी आरिफ और मोहल्ला सिस्टम टोला के रहने वाले जावेद के साथ बिलसी तहसील के थाना इस्लाम नगर रुदायन गए थे। हमें वहां से चंदा इकट्ठा करना था। एक युवक पीछे से आया और उसने हमारा आधार कार्ड दिखने को मांगा। इसके बाद उसने हम पर धार्मिक टिप्पणी की, मारा पीटा, टोपी तक उतारने को कहा। सर्च के दौरान हमें एक और प्रमाणिक रिपोर्ट मिली जिसके जरिए ये जानकारी मिली कि यूपी के बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदायन में पीटे गए जावेद के भाई अरमान ने बताया कि भाई समेत तीन लोग मुस्लिम मोहल्ले में रमजान आने के चलते जकात मांगने गए थे। एक युवक स्कूटी से जा रहा था, उससे सिर्फ यही पूछा कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ला कहाँ है और हाईवे का रास्ता किधर है। इतना सुनते ही वह भड़क गया, कहने लगा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बुजुर्ग भाई की टोपी उतरवाई, तीनों लोगों को थप्पड़ मारे, 200 मीटर तक पीटते हुए और अपशब्द बोले, गली के बाहर तक दौड़ा कर भगाया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो राजस्थान का नहीं बल्कि यूपी के बदायूं का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारत के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति बताकर इसे शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक महिला तेज बारिश के बीच टेबल पकड़कर बच्चों को पानी से बचाने की कोशिश करती नजर आ रही, जबकि कई बच्चे टेबल के नीचे बैठे नजर आते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दृश्य भारत के किसी सरकारी स्कूल का है, लेकिन जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
13: सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए है। वीडियो में दिख रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए भी दिख रही है। बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है। इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। यहां बच्चों को बारिश से बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए खड़ी है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हैं और बच्चे किसी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए दिख रही है, बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है और इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो नेपाली भाषा जैसा कुछ सुनाई दिया। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को भारत का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
13: गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया आउटलेट है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इस वीडियो में छोटे छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे कक्षा के अंदर ही खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक सुरक्षित और महफूज माहौल में होना चाहिए था। इस घटना ने स्कूल के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत को उजागर किया है, जहां खराब मौसम के दौरान बुनियादी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसी स्थितियों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि स्कूल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और छात्रों की सुरक्षा करने के लिए कितने तैयार हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम जनता में चिंताएं बढ़ गई हैं और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की मांगें उठ रही हैं। कई लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं कि छात्र खराब मौसम की स्थिति में बिना किसी डर के सुरक्षित और उचित माहौल में पढ़ाई कर सकें। आगे सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक फेसबुक चैनल पर देखने को मिला। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज स्कूल के बुनियादी ढांचे की कमजोर हालत को उजागर करता है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलने के बजाय क्लासरूम के अंदर ही खुद को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस घटना ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया। इस तरह फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में इस दावे को गलत पाया है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये वीडियो भारत के किसी सरकारी स्कूल का नहीं है, बल्कि वीडियो नेपाल का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
14: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
15: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
14: Smartless.
16: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
14: Marketplace.
17: Big three on the program today, or you know, the big three of the
14: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
18: क्यों बताइए, जल्दी बताइए, तुम्हें कट्टी शो
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी दिखाई देती है। बच्ची मासूमियत भरे अंदाज में अपने पापा से बातें करती नजर आती है। उसकी बातें सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा। बच्ची पिता की तस्वीर को देखते हुए कहती है, सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए, मम्मी आपको मना करती थी लेकिन आप नहीं माने। इतना ही नहीं, बच्ची आगे कहती है, आपने ऐसा क्यों किया मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। उसकी मासूम बातें और दर्द भरी आवाज सुन लोग काफी भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो की कोच अच्छी खासी भरी हुई है। तभी एक दोस्त उठकर अनाउंस करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। वो सभी यात्रियों से दोस्त साहिल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसे विश करने की प्यारी सी अपील करता है। इसके बाद मेट्रो में सफर कर रहे सभी यात्री गाना गाकर उसे विश करते हैं। हालांकि बर्थडे बॉय की शक्ल देखने लायक होती है, वो शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। इसके बाद बर्थडे बॉय का दोस्त अपने बैग से मेलोडी टॉफी का पैकेट निकालता है और दोनों मिलकर पूरी कोच को टॉफियां बांटते हैं। इस दौरान लोग हाथ मिलाकर भी साहिल को जन्मदिन की बधाई देते हैं।

सोशल मीडिया इन दिनों प्यार, भावुकता और संगीत से भरे एक वीडियो से गूंज रहा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपने दो भाइयों के लिए एक सुपरहिट सॉन्ग गाया। अपनी मासूम आवाज से इस बच्ची ने करोड़ों दिल जीत लिए। लोग इसके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची बेहद प्यारे अंदाज में गा रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भाइयों के प्रति प्यार साफ दिखाई दे रहा है। गाने की शुरुआत में वो थोड़ा झेपती है, लेकिन जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है उसकी आवाज में जादू उतर आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो बॉलिंग गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो देखने को मिलता है वो काफी मजेदार है। यही कारण है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक युवती उन पिंस के बेहद करीब खड़ी नजर आती है जिन्हें गिराने का टारगेट होता है। आमतौर पर किसी खिलाड़ी या शख्स को वहां खड़े होने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये खेल के नियमों के खिलाफ है। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो में दूसरी ओर से एक बड़ी बोलिंग बॉल लेन पर उड़कती हुई दिखाई देती है। गेंद तेजी से युवती की ओर बढ़ती है। जैसे ही गेंद उसके पास पहुंचती है वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इसके बाद वो खुद गेंद को आगे की ओर फेंकने की कोशिश करती है ताकि सामने खड़ी सभी पिंस गिर जाए। कि यहाँ पर कहानी में मजेदार मोड़ आता है। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को आगे फेंकती है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित होती है। हैरानी की बात ये कि गेंद फेंकने के बावजूद एक भी पिन नहीं गिरती। जिस काम को आसान समझकर किया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। युवती का ये असफल प्रयास लोगों को खूब हंसा रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वही इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है और फिर अपने हाथों से नल की टोटी को बंद करता है। उसकी एक छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठा कर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों और समय के हैं और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे क्यू मासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह से एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं।
वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास कोई तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नजर दो दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसे लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन ये वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से लौट जाती है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई है। त्योहार से पहले पारंपरिक ड्रैगन बोट पर रस्में निभाई गई, जिसमें लोगों ने अच्छी बारिश, खुशहाली और बेहतर फसल की कामना की।
4: ये तस्वीरें चीन के गुआंगझोउ की है। नदी किनारे जुटे लोग पूरे उत्साह के साथ ड्रैगन बोट को सजाने और सवारने में लगे हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले होने वाला यह अनुष्ठान यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। रंग बिरंगे झंडों, पारंपरिक छतरियों और धान के पौधों से नाव को सजाया गया। नाव के आगे ड्रैगन का सिर लगाया गया। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया से लंबे समय से विश्राम कर रही ड्रैगन बोट को उत्सव के लिए जगाया जाता है। अनुष्ठान की शुरुआत ड्रैगन के सिर को विशेष पत्तियों और टहनियों से सजाने के साथ हुई। इसके बाद हरी पत्तियों की मदद से नाव पर जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध किया गया। फिर एक बुजुर्ग ने ड्रैगन की आंखों पर सिंदूर लगाकर उसमें जीवन और ऊर्जा का संचार करने की प्रतीकात्मक रस्म निभाई। रस्म पूरी होते ही ड्रैगन बोट नदी में उतरी और पारंपरिक आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये अनुष्ठान आने वाले समय में सुख, समृद्धि, अनुकूल मौसम और अच्छी पैदावार का आशीर्वाद लेकर आता है। परंपरा, आस्था और संस्कृति विरासत का अनूठा संगम। गुआंगझोउ में आयोजित ये ड्रैगन बोट आशीर्वाद समारोह न सिर्फ एक धार्मिक रस्म है, बल्कि स्थानीय समुदाय की पहचान और एकता का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जानें, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के धार लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहां मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल, जो न सिर्फ हमारे देश के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है बल्कि अपनी अनूठी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बूते दुनिया भर में खूब मशहूर है। जहाज महल की इन खूबसूरत तस्वीरों को आप तक लाए हैं जीएनटी के ही एक दर्शक।

0: मुंज और कपूर की लहरों पर जहां एक जहान तैरता है, मांडू की फिजा में जहां एक कारवां ठहरता है, इतिहास के पन्नों में पानी पर जो टिका रहे उस जहाज महल में हर मौसम बहार निखरता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में लाए हैं, जहां सुनसान और दूर दराज में बसा जहाज महल 15वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत और अनोखी कारीगरी है। काली रेत, चूना, ईंट, दाल जैसी कई और चीजों का मसाला बनाकर तैयार ये विशाल महल किसी अजूबे से कम नहीं है।
1: उस जमाने में कोई सीमेंट नहीं होती थी, ये बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया, ईंट, काली रेत, चूना, उड़द की दाल, गुड़, बिल पत्ते के फल, इन सारी चीजों को पीस कर मसाला बना के ही सारे बिल्डिंग को बनाया गया।
0: सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल के पास ही अपनी बेगमों के नाम पर दो झील, मुंज तालाब और कपूर तालाब बनवाए। यही नहीं, महल के नजदीक ही अशरफी महल भी बनवाया। जहाज महल में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए कई खास कमरे बनवाए, तो दीवारों में नहरें और फवारे तक लगाए ताकि उस वक्त गर्मी की तपिश में महल को ठंडा रखा जा सके। जहाज महल जितना जमीन के ऊपर बना है उतना आप देख सकते हैं जमीन के नीचे भी। लगभग 110 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी इस इमारत की दरों दीवारों पर हिंदू, अफगान और मुगल वास्तुकला का इतिहास आराम से नजर आ जाएगा। आप महल की छत पर आएंगे तो आपको पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अद्भुत तकनीक भी हैरान कर देगी। इससे भी आगे महल के ऊपरी हिस्से में खूबसूरत मेहराब, बैल्कनीज, मंडप और गुंबददार छतरियां भी 15वीं सदी के आर्किटेक्ट की अनूठी मिसालें हैं। मांडू से सबसे पास लगभग 95 किलोमीटर दूर तो इंदौर एयरपोर्ट ही है और सबसे पास रेलवे स्टेशन इंदौर या रतलाम है। तो अगर आप मांडू बाई रोड आ रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर धार और इंदौर से ये जुड़ा हुआ है, जहां से आप बस या टैक्सी से यहां आ सकते हैं। फिलहाल तो आपके लिए सैर सपाटा करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून और विंटर सीजन ही है। ये वो वक्त है जब आसमान में बादलों का डेरा, चारों तरफ फैली हरियाली जहाज महल के इतिहास में चार चांद लगा देते हैं।
2: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करें, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करें, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संकल्प में भागीदार बने। इस बस आपको इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाए कैमरा, बनाए व्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर, हम उसे TNT पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: Die Hard Music Fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, जमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलैस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।

0: आपके साथ श्वेता झा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के वीर जवानों की, सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के ऐसे शूरवीरों की जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भी अपने कर्तव्य को निभाया, देश के दुश्मनों का निर्दयता से सामना किया और उन्हें ढेर कर दिया। ऐसे ही शूरवीरों को कुछ रोज पहले राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कुछ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। आज आपको सबसे पहले शहीद बेटे के लिए सम्मान ग्रहण करने गई एक मां से मिलवाएंगे, जो समारोह के दौरान बिलखकर रो पड़ी और राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। इसके बाद आपको मिलवाएंगे सीआरपीएफ के निडर जवान से, जिन्होंने 3 गोलियां लगने के बावजूद घाटी में आतंकियों को ढेर कर दिया। रीवा में उनके स्वागत का भव्य समारोह हुआ, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। और आखिर में बातचीत होगी पंजाब के मेजर अर्शदीप गिल से, जिन्होंने मणिपुर में 84 घंटे तक चले एक ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम का जबरदस्त नेतृत्व किया और इस ऑपरेशन में 10 उग्रवादी मार गिराए। तो शुरुआत करते हैं सेना के जवान प्रवीण जंजाल से। करीब 2 साल पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए प्रवीण ने अदम्य साहस दिखाया और सिर में गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया। प्रवीण जंजाल ने सर्वोच्च बलिदान देकर अपने कर्तव्य को निभाया और देश के लिए मिसाल बने। मरणोपरांत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण करते हुए उनकी मां बिलख कर रो पड़ी। भावना से भरी ये तस्वीर हर शख्स की आंखें नम कर गई। दिलासा देने के लिए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर इस मां को गले लगाया। बेटी की शहादत और उसे मिले सम्मान पर गर्व करने वाली मां ने गुड न्यूज टुडे की टीम से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट।
1: प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, पहली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बरसों तक उनकी बहादुरी का जिक्र होगा, पीढ़ियों तक उनकी देशभक्ति का किस्सा बयां होगा। देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनकी वीरता का देश ने सम्मान किया।
1: सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो देश के दुश्मनों पर तो भारी पड़े लेकिन लौट कर नहीं आ सके। जब राष्ट्रपति भवन में उनकी वीरता का सम्मान हुआ तो भावनाओं पर जोर नहीं रहा, बरबस आंसू निकल पड़े। सेना के महार बटालियन के सिपाही प्रवीण जंजाल की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। देश की हिफाजत के लिए जान देने वाले बेटे पर इस माँ को भी नाज है। लेकिन माँ तो फिर माँ ही है। जब शहीद बेटे के लिए कीर्ति चक्र सम्मान लेने खड़ी हुई तो भावनाओं का ऐसा झंझावात उठा जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं हुआ। माँ बिलख पड़ी और राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करके उन्हें सहारा दिया, गले लगाकर दिलासा दिया।
0: इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: ये भावुक पल वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गए, पर साथ ही हर देशवासी का सर गर्व से तन गया, क्योंकि जिस मादरे वतन के ऐसे बहादुर बेटे हों, दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जुलाई 2004 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ था। प्रवीण जंजाल ने न सिर्फ आतंकियों को देखकर अपने साथियों को आगाह किया, बल्कि दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए, पर आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे। उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी और माँ को दिया गया, वो माँ जिसकी आंखें पिछले दो वर्षों से अपने बेटे को खोज रही हैं। जब वो मंच पर गई तो उन्हें चारों ओर लोग तो नजर आए, पर बेटा नहीं दिखा। इसी एहसास ने उन्हें भावुक कर दिया और वो राष्ट्रपति से लिपट कर रो पड़ी। बेटे की शहादत पर गर्व तो दिल में रहा, पर उसकी कमी आंखों से दर्द बनकर छलक पड़ी।
1: एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वो एक शहीद की माँ का वीडियो है, जो राष्ट्रपति के हाथ से कीर्ति चक्र लेते हुए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल छोड़कर जो है उस वीर माता को जो है वो अपनी गले लगाया है। वो वीर जवान प्रवीण जंजाल की मां हमारे साथ है, इन्हीं का वो वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे बोलिए कि आप जब राष्ट्रपति के पास गए कीर्ति चक्र लेने के लिए तो क्या लगा आपको?
2: मला असं वाटलं माझा मुलगा साला माझ्या जू, मला असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड आला, पण माझा मुलगा मला चेहराच दिसून आला नाही। कीर्ती चक्र दिसून आलं असं वाटलं, माझा मुलगा आला, भावाले भाऊ आला दोन असं वाटलं मला। मला पण असं वाटतं की माझ्या मुलाचं ते सपसा मारक बांधलं की असं वाटतं की माझा मुलगा जिंदा आहे। गावातनी ऊर आला, मला दिसला की असं वाटतं की माझा मुलगा जिंदा आहे, असं दिसलं पाहिजे मला। यासाठी माझी महिला मागणी आहे।
1: एक राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन वो भी पीसी की माँ की, आप भी एक वीर जवान की माँ हो। उस वक्त उनकी भी जो है आंखें भर आई होगी। उस समय कैसा लगा आपको कि आपको उनके कंधे का आधार लेना पड़ा?
2: कीर्ति चौकती राष्ट्रपति चौकसी मी असं त्याच्या गळ्यात हात टाकले, असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड देऊ राहिले ते कि जिंदा आहे, पण मला जिंदा दिसून आला नाही माझा मुलगा। मी खूप प्रयत्न करून राहिली पाहायचे, पण मला दिसून आला नाही। मला असं वाटतं की माझ्या पुराचं महाग बांधलं की मला जिंदा दिसेल माझा मुलगा माझ्या जोड, लाता येता मी पाहिन माझ्या मुलाला।
0: रक्षा अलंकरण समारोह के अंतर्गत 8 जून को राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये पुरस्कार उन जवानों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह तक न की। इनमें कई जवानों ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अद्भुत बहादुरी दिखाई। कुछ पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, जिसमें प्रवीण जंजाल का नाम भी है।
1: प्रवीण नहीं है, लेकिन प्रवीण ने आज माँ बाप को हवाई सफर भी करवाया, जो भी करवाएगी उसकी जो इच्छा जीवन में थी आज वो नहीं होकर किया है, लेकिन उसकी आज कमी महसूस कैसी होती है, पक्कल उसकी याद आती है।
3: वो हर दिन आया था कि हर दिन आ रहे थे, पर इसलिए नहीं गए, तो वो मेरा भाई था, मैं उनको माता पिता को पाला पोसा, मैं उनको सब देखूंगा, उनकी तरफ सब देखूंगा।
1: एक नाच प्रवीण जो है और तुमने दोनों ने साथ में देश की सेवा के लिए गए, लेकिन प्रवीण आगे जाकर जीत गया।
3: जीत गया और देश को कुर्बान हो गया, ये गर्व है मुझे, देश से कुर्बान हो गया और बहुत अच्छा अभिमान है, लेकिन उनका दुख भी वैसा ही है, माँ बाप को बहुत दुख है। हमारे पास आज ऐसा एक दिन नहीं कि मेरी माँ रोती नहीं, हर दिन रोती है, उनकी याद में हर दिन रोती है।
0: शौर्य साहस और त्याग का जब भी जिक्र होगा, देशभक्ति की जब भी कहानियां सुनाई जाएंगी, प्रवीण और उनके जैसे बहादुर जवानों को देश सम्मान के साथ याद करेगा। अकोला से धनंजय सामले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। तीन गोलियां लगने के बावजूद वो अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे और एक आतंकी को ढेर कर दिया। वीरता पुरस्कारों के तहत संजय तिवारी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद जब संजय अपने परिवार के साथ पहली बार रीवा पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
1: यूं तो रीवा एक्सप्रेस दिल्ली से हर रोज आती है, पर ऐसा नजारा नहीं होता। यूं तो हजारों लोग इस ट्रेन से उतरते हैं, पर जब संजय तिवारी ट्रेन से उतरे तो जैसे रीवा ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। ये दिन खास बन गया क्योंकि रीवा का बहादुर बेटा या कहें कि शूरवीर राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित होकर आया है। हैरत की बात नहीं कि ढोल नगाड़े और फूल माला से सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से स्टेशन गूंज उठा।
2: गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया।
1: रीवा के डेल्टी गांव के रहने वाले हैं संजय तिवारी, जो अब इस पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोगों ने टीवी पर उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार लेते देखा और उनका सीना गर्व से तन गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के खनियार इलाके में एक आतंकवाद विरोधी अभियान किया गया था। सुरक्षा बलों को लश्करे तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और भारी गोलीबारी के बीच संजय तिवारी अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे।
2: स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था, काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने ऑर्डर सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया।
1: हालांकि मुठभेड़ के दौरान उनकी बांह टूटने और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और एक आतंकी को मार गिराया।
2: बिल्कुल 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में, और
3: 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े, अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे?
2: बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहे।
1: इसी अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए संजय तिवारी को वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उनके साथ सिपाही फिदा हुसैन डार को भी ये सम्मान मिला। पुरस्कार लेने के बाद जब संजय तिवारी रीवा पहुंचे तो लोगों ने अपने वीर सपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय तिवारी की बहादुरी और अदम्य साहस का गर्व वहां मौजूद हर युवा के चेहरे पर नजर आया।
2: रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुँच सके।
1: सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जिन जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सभी की कहानियाँ देश की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और देश की सुरक्षा में अपने जान की चिंता नहीं की। ऐसे वीर जवानों पर देश को नाज है। रीवा से हरिओम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
0: और अब बात मोहाली के मेजर अर्शदीप सिंह गिल की, जिन्होंने मणिपुर में एक चुनौतीपूर्ण आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। ये ऑपरेशन करीब 84 घंटे तक चला था, जिसमें 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया था, लेकिन इसमें जबरदस्त खतरा था। असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप गिल को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने, सुनिए।
4: दीप सिंह, कवचित कोर, 1 असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह।

0: की उसे कीर्ति चक्र मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं मेजर अर्शदीप गिल, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। 84 घंटे का ऑपरेशन चला मणिपुर में, जिसमें कई दहशतगर्द हैं उनको मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए कि आपकी पहले तो ये जर्नी है, क्योंकि अब कई बार बोलते हैं हम लोग कि युवक नहीं जा रहे हैं, सेना में नहीं जा रहे हैं पंजाब से, लेकिन 2016 में आपने ज्वाइन भी किया आर्मी और आज आपको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं और खासतौर पर।
1: मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा स्कूलिंग फिरोजपुर से ही है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, वो चंडीगढ़ से करी, और जनवरी 2015 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन कर लिया था, और जून 2016 में मैं कमीशन हुआ था 58 आर्मर्ड रेजिमेंट में, द आर्मर्ड कोर। और उसके बाद मैं 2022 दिसंबर में डेपुटेशन के ऊपर फर्स्ट असम राइफल्स में गया था, और ये पिछले साल मई 2025 में ये ऑपरेशन हुआ था। और जो आपने बोला है कि पंजाब से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है। मैं तो मे बी आई नो मोर देन 1000, ठीक है, मेरे अपने को मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ, ठीक है, प्योरली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एंड लाइक माय मोटिवेशन वाज कि यहाँ की ऐसी फिरोजपुर कैंट आना जाना होता था, तो वहां पे जो रोड के साइड ही यूनिट्स के क्वार्टर गार्ड्स हैं, तो हम उनको देख के सल्यूट व्यूट करते रहते थे, तो वही मोटिवेशन था कि आगे चल के।
0: कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस था या जस्ट जनरली क्योंकि आपका आना जाना था?
1: मैम आना जाना था वहां से, और उसके बाद फिर जब आगे जाके इंजीनियरिंग करी तो पता चला कि ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो फिर इससे अच्छा कुछ लगा ही नहीं। और वो डिसीजन मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि आज सच में मेरे को लगता है कि मैं इससे अच्छा लाइफ में कर नहीं सकता था। ये
0: एक होता है मैन इन यूनिफॉर्म और एक होता है एक हीरो, तो आज आप एक कीर्ति चक्र अवॉर्डी हैं, तो आप हीरो हैं नेशन के, तो इस ऑपरेशन के बारे में हमें जरूर
1: मैम। ये ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर, वहां पे पोरस बॉर्डर है, वहां पे फेंसिंग का काम नहीं हो रखा है, और जो मणिपुर के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, तो मोस्टली कहीं ना कहीं उसका, अगर वेपन स्मगलिंग को लोगे, ड्रग स्मगलिंग को लोगे, तो उसका बेस म्यांमार के साथ बैठता है, वो ओपन बॉर्डर की वजह से। तो उस वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वहां पे फेंसिंग का काम किया जाए, लेकिन वो फेंसिंग का काम अगर वो हो जाता है तो ये सारी हरकतें वहां पे बंद हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए वहां पे लगातार उनके एफर्ट्स होते रहते हैं। तो मेरी यूनिट फर्स्ट असम राइफल्स, हम वहां पे लेबर फेंसिंग की सिक्योरिटी में वहां पे थे, तो ये जो ऑपरेशन है 14 मई 2025 का है, जब उन्होंने लेबर को वहां पे टारगेट किया था, तो वहां पे हम सिक्योरिटी में थे। तो उसके बाद जैसा कि आपने बोला 84 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन था, ये जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जंगल टेरेन है, माउंटेन है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और ये ऑपरेशन मॉर्निंग में 6:35 पे हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड फायर आया था। उसके बाद फिर ये 14 मई को लेके शाम 1800 आवर्स 17 मई तक ये ऑपरेशन चला था, और जो हमारी नफरी थी, मैं उसमें ऑफिसर था, मेरे जेसू साहब थे और 30 अदर रैंक्स हमारे साथ थे, और जिस तरीके का इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सचेंज हो रहा था, तो मेरे को एज पर माई असेसमेंट मेरे को लगा था कि 15 से 20 आर्म कार्डर्स आगे की तरफ हैं, उसके बीच में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वाला कार्डर भी हमने देखा था, जिसको हमने आगे जाके न्यूट्रलाइज किया।
2: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: हम यात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो या बद्री विशाल का दरबार, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में तो आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, ट्रैफिक की समस्या ना हो।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियां डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। चारों धामों में अब तक कुल 33,45,600 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए। यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, पहली बार मैं गई।
2: व्यवस्था यहाँ की हमें अच्छी लगी, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, घोड़ा खच्चड़ वो सबको पानी पीने के लिए और सारी व्यवस्था, सारी चीज बढ़िया है, सुविधा यहाँ की गवर्नमेंट की सुविधा है।
3: ले भी कॉपरेट करते हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्था है घोड़े को, और अच्छा है, सफर अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ केदारनाथ, अच्छा एक्सपीरियंस था, ऊपर में भी अच्छा रहा, नीचे भी उतरते वक्त अच्छा रहा।
0: एक ओर प्रकृति की कठिन परीक्षा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 11,85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ और ही है। 10 जून तक 10 लाख का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी तक 10 लाख से ऊपर यात्री वहां पे पहुंच चुके हैं, और वैसे हेमकुंड साहिब की मैं बात करूं तो 70,000 से ऊपर यात्री लगभग वहां पे पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके प्रॉपर डायरेक्शन के बाद संबंधित विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा इस बार प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उसी का परिणाम है कि इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास श्रद्धालु आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनको हम बहुत बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।
0: खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमलन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
9: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, जमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलैस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में, कंगना रनौत की भारत भागी विधाता से सीधी टक्कर, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर इसे पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को सरेराह पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि भारत का सरकारी स्कूल है जहां बच्चे टेबल के नीचे छिपकर अपने आप को बारिश के पानी से बचा रहे हैं। इस वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: राजस्थान के गांवों से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग चंदा मांगते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान धार्मिक पहचान और शब्दों के अर्थ को लेकर भी चर्चा हो रही है, उसके बाद स्कूटी सवार शख्स थप्पड़ों की बारिश करने लग जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि एक आदमी ने राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
12: अरे रहने दे बेटा, मेरा चंदा छोड़ो बड़े भाई।
13: सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक आदमी 3 लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान का है। यहाँ के एक गांव में मदरसा के लिए 4 लोग चंदा मांग रहे थे, इसके बाद एक आदमी ने उन्हें पीट कर वहाँ से भगा दिया। इस वीडियो को हालिया दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि राजस्थान के एक गांव में मदरसा के नाम पर 4 लोग चंदा मांगने आए थे। छोटू सिंह नाम के एक भाई ने चंदा मांगने वालों को थप्पड़ों का चंदा दे दिया। इस वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह तेजी से वायरल हो रहा है।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। धार्मिक एंगल देते हुए कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो राजस्थान का है, जहां पर मदरसे के लिए चंदा मांग रहे लोगों को एक आदमी ने खूब पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक जगह ये सुनने को मिला कि एक शख्स स्कूटी से उतरता है और वहां पर इस्लामिक टोपी पहने लोगों से आधार कार्ड मांगता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि मारने वाला शख्स इन लोगों की धार्मिक पहचान जानना चाहता है और उसी को लेकर पहले कहां सुनी हुई और फिर इन लोगों पर थप्पड़ों की बारिश हुई। इसके बाद वीडियो में आगे एक बाइट भी नजर आ रही है जिस पर यूपी की नंबर प्लेट दिख रही है। इसे देखकर हमें थोड़ा शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो की जानकारी जुटाने के लिए लगातार सर्च किया इसे, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि ये वीडियो राजस्थान का है। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
13: वायरल वीडियो की जांच के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे। इस रिपोर्ट को 23 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट को प्रकाशित करके लिखा गया था, बंदायू तीन मुस्लिम बुजुर्गों की पिटाई वाला वीडियो वायरल। आगे बताया गया था कि इसमें एक युवक तीन मुस्लिम बुजुर्गों को थप्पड़ मारते दिख रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद अक्षय शर्मा उर्फ छोटू नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर है। अब्दुल सलाम ने इस घटना के बारे में कहा, 16 फरवरी को हम मोहल्ला कटरा के रहने वाले अपने साथी आरिफ और मोहल्ला सिस्टम टोला के रहने वाले जावेद के साथ बिलसी तहसील के थाना इस्लाम नगर रुदायन गए थे। हमें वहां से चंदा इकट्ठा करना था। एक युवक पीछे से आया और उसने हमारा आधार कार्ड देखने को मांगा। इसके बाद उसने हम पर धार्मिक टिप्पणी की, मारा पीटा, टोपी तक उतारने को कहा। सर्च के दौरान हमें एक और प्रमाणिक रिपोर्ट मिली जिसके जरिए ये जानकारी मिली कि यूपी के बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदायन में पीटे गए जावेद के भाई अरमान ने बताया कि भाई समेत तीन लोग मुस्लिम मोहल्ले में रमजान आने के चलते जकात मांगने गए थे। एक युवक स्कूटी से जा रहा था, उससे सिर्फ यही पूछा कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ला कहाँ है और हाईवे का रास्ता किधर है। इतना सुनते ही वह भड़क गया, कहने लगा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बुजुर्ग भाई की टोपी उतरवाई, तीनों लोगों को थप्पड़ मारे, 200 मीटर तक पीटते हुए और अपशब्द बोले, गली के बाहर तक दौड़ाकर भगाया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो राजस्थान का नहीं बल्कि यूपी के बदायूं का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, भारत के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति बताकर इसे शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक महिला तेज बारिश के बीच टेबल पकड़कर बच्चों को पानी से बचाने की कोशिश करती नजर आ रही, जबकि कई बच्चे टेबल के नीचे बैठे नजर आते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दृश्य भारत के किसी सरकारी स्कूल का है, लेकिन जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
14: सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए है। वीडियो में दिख रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए भी दिख रही है। बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है। इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, यहाँ बच्चों को बारिश से बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
15: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
16: Third period comes to an end, game two. That is to overtime.
15: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
17: They score!
15: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
11: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी दिखाई देती है। बच्ची मासूमियत भरे अंदाज में अपने पापा से बातें करती नजर आती है। उसकी बातें सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा। बच्ची पिता की तस्वीर को देखते हुए कहती है, सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए, मम्मी आपको मना करती थी लेकिन आप नहीं माने। इतना ही नहीं, बच्ची आगे कहती है, आपने ऐसा क्यों किया मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। उसकी मासूम बातें और दर्द भरी आवाज सुन लोग काफी भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो की कोच अच्छी खासी भरी हुई है। तभी एक दोस्त उठकर अनाउंस करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। वो सभी यात्रियों से दोस्त साहिल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसे विश करने की प्यारी सी अपील करता है। इसके बाद मेट्रो में सफर कर रहे सभी यात्री गाना गाकर उसे विश करते हैं। हालांकि बर्थडे बॉय की शक्ल देखने लायक होती है, वो शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। इसके बाद बर्थडे बॉय का दोस्त अपने बैग से मेलोडी टॉफी का पैकेट निकालता है और दोनों मिलकर पूरी कोच को टॉफियां बांटते हैं। इस दौरान लोग हाथ मिलाकर भी साहिल को जन्मदिन की बधाई देते हैं।

सोशल मीडिया इन दिनों प्यार, भावुकता और संगीत से भरे एक वीडियो से गूंज रहा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपने दो भाइयों के लिए एक सुपरहिट सॉन्ग गाया। अपनी मासूम आवाज से इस बच्ची ने करोड़ों दिल जीत लिए। लोग इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची बेहद प्यारे अंदाज में गा रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भाइयों के प्रति प्यार साफ दिखाई दे रहा है। गाने की शुरुआत में वो थोड़ा झेपती है, लेकिन जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है उसकी आवाज में जादू उतर आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो बॉलिंग गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो देखने को मिलता है वो काफी मजेदार है। यही कारण है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक युवती उन पिंस के बेहद करीब खड़ी नजर आती है जिन्हें गिराने का टारगेट होता है। आमतौर पर किसी खिलाड़ी या शख्स को वहां खड़े होने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये खेल के नियमों के खिलाफ है। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो में दूसरी ओर से एक बड़ी बॉलिंग बॉल लेन पर उड़कती हुई दिखाई देती है। गेंद तेजी से युवती की ओर बढ़ती है। जैसे ही गेंद उसके पास पहुंचती है वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इसके बाद वो खुद गेंद को आगे की ओर फेंकने की कोशिश करती है ताकि सामने खड़ी सभी पिंस गिर जाए। हालांकि यहां पर कहानी में मजेदार मोड़ आता है। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को आगे फेंकती है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित होती है। हैरानी की बात ये कि गेंद फेंकने के बावजूद एक भी पिन नहीं गिरती। जिस काम को आसान समझकर किया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। युवती का ये असफल प्रयास लोगों को खूब हंसा रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वही इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता। वो कुछ पल रुकता है और फिर अपने हाथों से नल की टोटी को बंद करता है। उसकी एक छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठा कर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों और समय के हैं और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे क्यू मासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह से एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं।
वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास कोई तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नजर दो दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसे लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन ये वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से लौट जाती है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई है। त्यौहार से पहले पारंपरिक ड्रैगन बोट पर रस्में निभाई गई, जिसमें लोगों ने अच्छी बारिश, खुशहाली और बेहतर फसल की कामना की।
3: ये तस्वीरें चीन के ग्वांगझोउ की है। नदी किनारे जुटे लोग पूरे उत्साह के साथ ड्रैगन बोट को सजाने और सवारने में लगे हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले होने वाला यह अनुष्ठान यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। रंग बिरंगे झंडों, पारंपरिक छतरियों और धान के पौधों से नाव को सजाया गया। नाव के आगे ड्रैगन का सिर लगाया गया। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया से लंबे समय से विश्राम कर रही ड्रैगन बोट को उत्सव के लिए जगाया जाता है। अनुष्ठान की शुरुआत ड्रैगन के सिर को विशेष पत्तियों और टहनियों से सजाने के साथ हुई। इसके बाद हरी पत्तियों की मदद से नाव पर जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध किया गया। फिर एक बुजुर्ग ने ड्रैगन की आंखों पर सिंदूर लगाकर उसमें जीवन और ऊर्जा का संचार करने की प्रतीकात्मक रस्म निभाई। रस्म पूरी होते ही ड्रैगन बोट नदी में उतरी और पारंपरिक आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। लोगों का ऐसा विश्वास है कि यह अनुष्ठान आने वाले समय में सुख, समृद्धि, अनुकूल मौसम और अच्छी पैदावार का आशीर्वाद लेकर आता है। परंपरा, आस्था और संस्कृति, विरासत का अनूठा संगम। ग्वांगझोउ में आयोजित ये ड्रैगन बोट आशीर्वाद समारोह न सिर्फ एक धार्मिक रस्म है, बल्कि स्थानीय समुदाय की पहचान और एकता का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के धार लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहां मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल, जो न सिर्फ हमारे देश के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है बल्कि अपनी अनूठी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बूते दुनिया भर में खूब मशहूर है। जहाज महल की इन खूबसूरत तस्वीरों को आप तक लाए हैं जीएनटी के ही एक दर्शक।

0: मुंज और कपूर की लहरों पर जहां एक जहान तैरता है, मांडू की फिजा में जहां एक कारवां ठहरता है, इतिहास के पन्नों में पानी पर जो टिका रहे उस जहाज महल में हर मौसम बहार निखरता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में लाए हैं, जहां सुनसान और दूर दराज में बसा जहाज महल 15वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत और अनोखी कारीगरी है। काली रेत, चूना, ईंट, दाल जैसी कई और चीजों का मसाला बनाकर तैयार ये विशाल महल किसी अजूबे से कम नहीं है।
1: उस जमाने में कोई सीमेंट नहीं होती थी, ये बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया, ईंट, काली रेत, चूना, उड़द की दाल, गुड़, बिल पत्ते के फल, इन सारी चीजों को पीस कर मसाला बना के ही सारे बिल्डिंग को बनाया गया।
0: सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल के पास ही अपनी बेगमों के नाम पर दो झील, मुंज तालाब और कपूर तालाब बनवाए। यही नहीं, महल के नजदीक ही अशरफी महल भी बनवाया। जहाज महल में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए कई खास कमरे बनवाए, तो दीवारों में नहरें और फवारे तक लगाए ताकि उस वक्त गर्मी की तपिश में महल को ठंडा रखा जा सके। जहाज महल जितना जमीन के ऊपर बना है उतना आप देख सकते हैं जमीन के नीचे भी। लगभग 110 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी इस इमारत की दरों दीवारों पर हिंदू, अफगान और मुगल वास्तुकला का इतिहास आराम से नजर आ जाएगा। आप महल की छत पर आएंगे तो आपको पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अद्भुत तकनीक भी हैरान कर देगी। इससे भी आगे महल के ऊपरी हिस्से में खूबसूरत मेहराब, बैल्कनीज, मंडप और गुंबददार छतरियां भी 15वीं सदी के आर्किटेक्ट की अनूठी मिसालें हैं। मांडू से सबसे पास लगभग 95 किलोमीटर दूर तो इंदौर एयरपोर्ट ही है और सबसे पास रेलवे स्टेशन इंदौर या रतलाम है। तो अगर आप मांडू बाय रोड आ रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर धार और इंदौर से ये जुड़ा हुआ है, जहां से आप बस या टैक्सी से यहां आ सकते हैं। फिलहाल तो आपके लिए सैर सपाटा करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून और विंटर सीजन ही है। ये वो वक्त है जब आसमान में बादलों का डेरा, चारों तरफ फैली हरियाली जहाज महल के इतिहास में चार चांद लगा देते हैं।
2: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करें, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करें, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संकल्प में भागीदार बने। इस बस आपको इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाए कैमरा, बनाए ब्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर, हम उसे TNT पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, माँ अम्बे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलेस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।

0: आपके साथ श्वेता झा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के वीर जवानों की, सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के ऐसे शूरवीरों की जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भी अपने कर्तव्य को निभाया, देश के दुश्मनों का निर्दयता से सामना किया और उन्हें ढेर कर दिया। ऐसे ही शूरवीरों को कुछ रोज पहले राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कुछ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। आज आपको सबसे पहले शहीद बेटे के लिए सम्मान ग्रहण करने गई एक मां से मिलवाएंगे, जो समारोह के दौरान बिलखकर रो पड़ी और राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। इसके बाद आपको मिलवाएंगे सीआरपीएफ के निडर जवान से, जिन्होंने 3 गोलियां लगने के बावजूद घाटी में आतंकियों को ढेर कर दिया। रीवा में उनके स्वागत का भव्य समारोह हुआ, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। और आखिर में बातचीत होगी पंजाब के मेजर अर्शदीप गिल से, जिन्होंने मणिपुर में 84 घंटे तक चले एक ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम का जबरदस्त नेतृत्व किया और इस ऑपरेशन में 10 उग्रवादी मार गिराए। तो शुरुआत करते हैं सेना के जवान प्रवीण जंजाल से। करीब 2 साल पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए प्रवीण ने अदम्य साहस दिखाया और सिर में गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया। प्रवीण जंजाल ने सर्वोच्च बलिदान देकर अपने कर्तव्य को निभाया और देश के लिए मिसाल बने। मरणोपरांत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण करते हुए उनकी मां बिलख कर रो पड़ी। भावना से भरी ये तस्वीर हर शख्स की आंखें नम कर गई। दिलासा देने के लिए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर इस मां को गले लगाया। बेटी की शहादत और उसे मिले सम्मान पर गर्व करने वाली मां ने गुड न्यूज टुडे की टीम से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट।
1: प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, पहली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बरसों तक उनकी बहादुरी का जिक्र होगा, पीढ़ियों तक उनकी देशभक्ति का किस्सा बयां होगा। देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनकी वीरता का देश ने सम्मान किया।
1: सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो देश के दुश्मनों पर तो भारी पड़े लेकिन लौट कर नहीं आ सके। जब राष्ट्रपति भवन में उनकी वीरता का सम्मान हुआ तो भावनाओं पर जोर नहीं रहा, बरबस आंसू निकल पड़े। सेना के महार बटालियन के सिपाही प्रवीण जंजाल की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। देश की हिफाजत के लिए जान देने वाले बेटे पर इस माँ को भी नाज है। लेकिन माँ तो फिर माँ ही है। जब शहीद बेटे के लिए कीर्ति चक्र सम्मान लेने खड़ी हुई तो भावनाओं का ऐसा झंझावात उठा जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं हुआ। माँ बिलख पड़ी और राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करके उन्हें सहारा दिया, गले लगाकर दिलासा दिया।
0: इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: ये भावुक पल वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गए, पर साथ ही हर देशवासी का सर गर्व से तन गया, क्योंकि जिस मादरे वतन के ऐसे बहादुर बेटे हों, दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जुलाई 2004 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ था। प्रवीण जंजाल ने न सिर्फ आतंकियों को देखकर अपने साथियों को आगाह किया, बल्कि दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए, पर आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे। उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी और माँ को दिया गया, वो माँ जिसकी आंखें पिछले दो वर्षों से अपने बेटे को खोज रही हैं। जब वो मंच पर गई तो उन्हें चारों ओर लोग तो नजर आए, पर बेटा नहीं दिखा। इसी एहसास ने उन्हें भावुक कर दिया और वो राष्ट्रपति से लिपट कर रो पड़ी। बेटे की शहादत पर गर्व तो दिल में रहा, पर उसकी कमी आंखों से दर्द बनकर छलक पड़ी।
1: एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वो एक शहीद की माँ का वीडियो है, जो राष्ट्रपति के हाथ से कीर्ति चक्र लेते हुए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल छोड़कर जो है उस वीर माता को जो है वो अपने गले लगाया है। वो वीर जवान प्रवीण जंजाल की मां हमारे साथ है, इन्हीं का वो वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे बोलिए कि आप जब राष्ट्रपति के पास गए कीर्ति चक्र लेने के लिए तो क्या लगा आपको?
2: मला असं वाटलं माझा मुलगा झाला माझ्या जू, मला असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड आला, पण माझा मुलगा मला चेहरात दिसून आला नाही। कीर्ति चक्र दिसून आलं असं वाटलं माझा मुलगा आला, भावाने भाऊ आला दोन असं वाटलं मला। मला पण असं वाटतं की माझ्या मुलाचं ते सपसा मारक बांधलं की असं वाटतं की माझा मुलगा जिंदा आहे। गावातनी ऊर आला मला दिसला की असं वाटतं की माझा मुलगा जिंदा आहे असं दिसलं पाहिजे मला। यासाठी माझी महिला मागणी आहे।
1: एक राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन वो भी पीसी की माँ की, आप भी एक वीर जवान की माँ हो। उस वक्त उनकी भी जो है आंखें भर आई होगी, उस समय कैसा लगा आपको कि आपको उनके कंधे का आधार लेना पड़ा?
2: कीर्ति द्यायच्या राष्ट्रपति द्यायच्या गड्यात हात टाकले असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड देऊ राहिले ते कि जिंदा आहे, पण मला जिंदा दिसून आला नाही माझा मुलगा। मी खूप प्रयत्न करून राहिली पाहायचे, पण मला दिसून आला नाही। मला असं वाटतं की माझ्या पुराचं महाग बांधलं की मला जिंदा दिसेल माझा मुलगा माझ्या लाता येता मी पाहिन माझ्या मुलाला।
0: रक्षा अलंकरण समारोह के अंतर्गत 8 जून को राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये पुरस्कार उन जवानों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह तक न की। इनमें कई जवानों ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अद्भुत बहादुरी दिखाई। कुछ पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, जिसमें प्रवीण जंजाल का नाम भी है।
1: प्रवीण नहीं है, लेकिन प्रवीण ने आज माँ बाप को हवाई सफर भी करवाया, जो भी करवाएगी उसकी जो इच्छा जीवन में थी आज वो नहीं होकर किया है। लेकिन उसकी आज कमी महसूस कैसी होती है, पक्कल उसकी याद आती है?
3: वो हर दिन आया था के आते नहीं आ रहे थे, फौरन में इसलिए नहीं गए थे, वो मेरा भाई था। मैं उनको माता पिता को पाला पोसा, मैं उनको सब देखूंगा, उनकी तरफ सब देखूंगा।
1: एक नाच प्रवीण जो है और तुमने दोनों ने साथ में देश की सेवा के लिए गए, लेकिन प्रवीण आगे जाकर जीत गया।
3: जीत गया और देश को कुर्बान हो गया, ये गर्व है मुझे, देश से कुर्बान हो गया। और बहुत अच्छा अभिमान है, लेकिन उनका दुख भी वैसा ही है, माँ बाप को बहुत दुख है। हमारे पास आज ऐसा एक दिन नहीं कि मेरी माँ रोती नहीं, हर दिन रोती है, उनकी याद में हर दिन रोती है।
0: शौर्य, साहस और त्याग का जब भी जिक्र होगा, देशभक्ति की जब भी कहानियां सुनाई जाएंगी, प्रवीण और उनके जैसे बहादुर जवानों को देश सम्मान के साथ याद करेगा। अकोला से धनंजय सामले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। 3 गोलियां लगने के बावजूद वो अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे और एक आतंकी को ढेर कर दिया। वीरता पुरस्कारों के तहत संजय तिवारी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद जब संजय अपने परिवार के साथ पहली बार रीवा पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
1: यूं तो रीवा एक्सप्रेस दिल्ली से हर रोज आती है, पर ऐसा नजारा नहीं होता। यूं तो हजारों लोग इस ट्रेन से उतरते हैं, पर जब संजय तिवारी ट्रेन से उतरे तो जैसे रीवा ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। ये दिन खास बन गया क्योंकि रीवा का बहादुर बेटा या कहें कि शूरवीर राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित होकर आया है। हैरत की बात नहीं कि ढोल नगाड़े और फूल माला से सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से स्टेशन गूंज उठा।
2: गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया।
1: रीवा के डेल्टी गांव के रहने वाले हैं संजय तिवारी, जो अब इस पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोगों ने टीवी पर उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार लेते देखा और उनका सीना गर्व से तन गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के खनियार इलाके में एक आतंकवाद विरोधी अभियान किया गया था। सुरक्षा बलों को लश्करे तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और भारी गोलीबारी के बीच संजय तिवारी अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे।
2: स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था, काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने ऑर्डर सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया।
1: हालांकि मुठभेड़ के दौरान उनकी बांह टूटने और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और एक आतंकी को मार गिराया।
2: बिल्कुल 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में, और
3: 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े, अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे?
2: बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहे।
1: इसी अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए संजय तिवारी को वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उनके साथ सिपाही फिदा हुसैन डार को भी ये सम्मान मिला। पुरस्कार लेने के बाद जब संजय तिवारी रीवा पहुंचे तो लोगों ने अपने वीर सपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय तिवारी की बहादुरी और अदम्य साहस का गर्व वहां मौजूद हर युवा के चेहरे पर नजर आया।
2: रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहे, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुँच सके।
1: सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जिन जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सभी की कहानियां देश की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और देश की सुरक्षा में अपनी जान की चिंता नहीं की। ऐसे वीर जवानों पर देश को नाज है। रीवा से हरिओम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ शो।
0: और अब बात मोहाली के मेजर अर्शदीप सिंह गिल की, जिन्होंने मणिपुर में एक चुनौतीपूर्ण आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। ये ऑपरेशन करीब 84 घंटे तक चला था, जिसमें 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया था, लेकिन इसमें जबरदस्त खतरा था। असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप गिल को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने, सुनिए।
4: दीप सिंह, कवचित कोर, 1 असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह।

0: जय जवान जय किसान। आज एक किसान के बेटे ने फक्र किया है क्योंकि उसे कीर्ति चक्र मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं मेजर अर्शदीप गिल, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। 84 घंटे का ऑपरेशन चला मणिपुर में, जिसमें कई दहशतगर्द हैं उनको मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए कि आपकी पहले तो ये जर्नी है, क्योंकि अब कई बार बोलते हैं हम लोग कि युवक नहीं जा रहे हैं, सेना में नहीं जा रहे हैं पंजाब से, लेकिन 2016 में आपने ज्वाइन भी किया आर्मी और आज आपको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं और खासतौर पर।
1: मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा स्कूलिंग फिरोजपुर से ही है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, वो चंडीगढ़ से करी, और जनवरी 2015 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन कर लिया था, और जून 2016 में मैं कमीशन हुआ था 58 आर्मर्ड रेजिमेंट में, द आर्मर्ड कोर। और उसके बाद मैं 2022 दिसंबर में डेपुटेशन के ऊपर फर्स्ट असम राइफल्स में गया था, और ये पिछले साल में 2025 में ये ऑपरेशन हुआ था। और जो आपने बोला है कि पंजाब से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है। मैं तो मे बी आई नो मोर देन 1000, ठीक है, मेरे अपने को मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ, ठीक है, प्योरली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एंड लाइक माय मोटिवेशन वाज कि यहाँ की ऐसी फिरोजपुर कैंट आना जाना होता था, तो वहां पे जो रोड के साइड ही यूनिट्स के क्वार्टर गार्ड्स हैं, तो हम उनको देख के सल्यूट व्यूट करते रहते थे, तो वही मोटिवेशन था कि आगे चल के।
0: कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस था या जस्ट जनरली क्योंकि आपका आना जाना था?
1: मैम आना जाना था वहां से, और उसके बाद फिर जब आगे जाके इंजीनियरिंग करी तो पता चला कि ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो फिर इससे अच्छा कुछ लगा ही नहीं। और वो डिसीजन मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि आज सच में मेरे को लगता है कि मैं इससे अच्छा लाइफ में कर नहीं सकता था। ये
0: एक होता है मैन इन यूनिफॉर्म और एक होता है एक हीरो, तो आज आप एक कीर्ति चक्र अवार्डी हैं, तो आप हीरो हैं नेशन के, तो इस ऑपरेशन के बारे में हमें जरूर
1: बताएं। मैम ये ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। वहां पे पोरस बॉर्डर है, वहां पे फेंसिंग का काम नहीं हो रखा है, और जो मणिपुर के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, तो मोस्टली कहीं ना कहीं उसका, अगर वेपन स्मगलिंग को लोगे, ड्रग स्मगलिंग को लोगे, तो उसका बेस म्यांमार के साथ बैठता है वो ओपन बॉर्डर की वजह से। तो उस वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वहां पे फेंसिंग का काम किया जाए, लेकिन वो फेंसिंग का काम अगर वो हो जाता है तो ये सारी हरकतें वहां पे बंद हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए वहां पे लगातार उनके एफर्ट्स होते रहते हैं। तो मेरी यूनिट फर्स्ट असम राइफल्स, हम वहां पे लेबर फेंसिंग की सिक्योरिटी में वहां पे थे। तो ये जो ऑपरेशन है 14 मई 2025 का है, जब उन्होंने लेबर को वहां पे टारगेट किया था, तो वहां पे हम सिक्योरिटी में थे। तो उसके बाद जैसा कि आपने बोला 84 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन था। ये जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जंगल टेरेन है, माउंटेन है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और ये ऑपरेशन मॉर्निंग में 6:35 पे हमारे ऊपर अनप्रोवोक फायर आया था। उसके बाद फिर ये 14 मई को लेके शाम 1800 आवर्स 17 मई तक ये ऑपरेशन चला था। और जो हमारी नफरी थी, मैं उसमें ऑफिसर था, मेरे जेसू साहब थे और 30 अदर रैंक्स हमारे साथ थे, और जिस तरीके का इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सचेंज हो रहा था, तो मेरे को एज पर माई असेसमेंट मेरे को लगा था कि 15 से 20 आर्म कार्डर्स आगे की तरफ हैं। उसके बीच में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वाला कार्डर भी हमने देखा था, जिसको हमने आगे जाके न्यूट्रलाइज किया।
2: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: चारधाम यात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो या बद्री विशाल का दरबार, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में तो आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालु

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियां डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। चारों धामों में अब तक कुल 33,45,600 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए। यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, पहली बार मैं गई।
2: व्यवस्था यहाँ की हमें अच्छी लगी, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, घोड़ा खच्चर वो सबको पानी पीने के लिए और सारी व्यवस्था, सारी चीज बढ़िया है, सुविधा यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा है।
3: पहले भी कॉपरेट करते हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्था है घोड़े को, और अच्छा है, सफर अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ केदारनाथ, अच्छा एक्सपीरियंस था, ऊपर में भी अच्छा रहा, नीचे भी उतरते वक्त अच्छा रहा।
0: एक ओर प्रकृति की कठिन परीक्षा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 11,85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ और ही है। 10 जून तक 10 लाख का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी तक 10 लाख से ऊपर यात्री वहां पे पहुंच चुके हैं, और वैसे हेमकुंड साहिब की मैं बात करूं तो 70,000 से ऊपर यात्री लगभग वहां पे पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके प्रॉपर डायरेक्शन के बाद संबंधित विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा इस बार प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उसी का परिणाम है कि इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास श्रद्धालु आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनको हम बहुत बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।
0: खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमलन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: खबरें तो
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते

0: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने वर्धा नदी में लगाई डुबकी, माँ अम्बे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलेस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में, कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर इसे पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को सरेराह पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि भारत का सरकारी स्कूल है जहां बच्चे टेबल के नीचे छिपकर अपने आप को बारिश के पानी से बचा रहे हैं। इस वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: राजस्थान के गांवों से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग चंदा मांगते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान धार्मिक पहचान और शब्दों के अर्थ को लेकर भी चर्चा हो रही है, उसके बाद स्कूटी सवार शख्स थप्पड़ों की बारिश करने लग जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि एक आदमी ने राजस्थान में मस्जिद बनाने के लिए चंदा मांग रहे लोगों को पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
4: अरे
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक आदमी 3 लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान का है। यहाँ के एक गांव में मदरसा के लिए 4 लोग चंदा मांग रहे थे, इसके बाद एक आदमी ने उन्हें पीट कर वहाँ से भगा दिया। इस वीडियो को हालिया दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि राजस्थान के एक गांव में मदरसा के नाम पर 4 लोग चंदा मांगने आए थे। छोटू सिंह नाम के एक भाई ने चंदा मांगने वालों को थप्पड़ों का चंदा दे दिया।
4: करना।
5: इस वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह तेजी से वायरल हो रहा है।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। धार्मिक एंगल देते हुए कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो राजस्थान का है, जहां पर मदरसे के लिए चंदा मांग रहे लोगों को एक आदमी ने खूब पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक जगह ये सुनने को मिला कि एक शख्स स्कूटी से उतरता है और वहां पर इस्लामिक टोपी पहने लोगों से आधार कार्ड मांगता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि मारने वाला शख्स इन लोगों की धार्मिक पहचान जानना चाहता है और उसी को लेकर पहले कहां सुनी हुई और फिर इन लोगों पर थप्पड़ों की बारिश हुई। इसके बाद वीडियो में आगे एक बाइट भी नजर आ रही है, जिस पर यूपी की नंबर प्लेट दिख रही है। इसे देखकर हमें थोड़ा शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो की जानकारी जुटाने के लिए लगातार सर्च किया इसे, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे यह साबित हो सके कि यह वीडियो राजस्थान का है। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
5: वायरल वीडियो की जांच के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे। इस रिपोर्ट को 23 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट को प्रकाशित करके लिखा गया था, बदायूं तीन मुस्लिम बुजुर्गों की पिटाई वाला वीडियो वायरल। आगे बताया गया था कि इसमें एक युवक तीन मुस्लिम बुजुर्गों को थप्पड़ मारते दिख रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद अक्षय शर्मा उर्फ छोटू नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर है। अब्दुल सलाम ने इस घटना के बारे में कहा, 16 फरवरी को हम मोहल्ला कटरा के रहने वाले अपने साथी आरिफ और मोहल्ला सिस्टम टोला के रहने वाले जावेद के साथ बिलसी तहसील के थाना इस्लाम नगर रुदायन गए थे। हमें वहां से चंदा इकट्ठा करना था। एक युवक पीछे से आया और उसने हमारा आधार कार्ड देखने को मांगा। इसके बाद उसने हम पर धार्मिक टिप्पणी की, मारा पीटा, टोपी तक उतारने को कहा। सर्च के दौरान हमें एक और प्रमाणिक रिपोर्ट मिली, जिसके जरिए ये जानकारी मिली कि यूपी के बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदायन में पीटे गए जावेद के भाई अरमान ने बताया कि भाई समेत तीन लोग मुस्लिम मोहल्ले में रमजान आने के चलते जकात मांगने गए थे। एक युवक स्कूटी से जा रहा था, उससे सिर्फ यही पूछा कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ला कहाँ है और हाईवे का रास्ता किधर है। इतना सुनते ही वह भड़क गया, कहने लगा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बुजुर्ग भाई की टोपी उतरवाई, तीनों लोगों को थप्पड़ मारे, 200 मीटर तक पीटते हुए और अपशब्द बोले, गली के बाहर तक दौड़ा कर भगाया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो राजस्थान का नहीं बल्कि यूपी के बदायूं का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, भारत के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति बताकर इसे शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक महिला तेज बारिश के बीच टेबल पकड़कर बच्चों को पानी से बचाने की कोशिश करती नजर आ रही, जबकि कई बच्चे टेबल के नीचे बैठे नजर आते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दृश्य भारत के किसी सरकारी स्कूल का है, लेकिन जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए है। वीडियो में दिख रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए भी दिख रही है। बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है। इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। यहां बच्चों को बारिश से बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला बड़े से टेबल को पकड़े हुए खड़ी है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि इस टेबल के नीचे बहुत से बच्चे बैठे हैं और बच्चे किसी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहुत तेज बारिश होते हुए दिख रही है, बारिश का पानी एक कमरे के अंदर आ रहा है और इसी बारिश के पानी से महिला बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि ये भारत सरकार के सरकारी स्कूल का हाल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो नेपाली भाषा जैसा कुछ सुनाई दिया। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को भारत का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
6: गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया आउटलेट है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इस वीडियो में छोटे छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे कक्षा के अंदर ही खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक सुरक्षित और महफूज माहौल में होना चाहिए था। इस घटना ने स्कूल के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत को उजागर किया है, जहां खराब मौसम के दौरान बुनियादी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसी स्थितियों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि स्कूल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और छात्रों की सुरक्षा करने के लिए कितने तैयार हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम जनता में चिंताएं बढ़ गई हैं और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की मांगें उठ रही हैं। कई लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं कि छात्र खराब मौसम की स्थिति में बिना किसी डर के सुरक्षित और उचित माहौल में पढ़ाई कर सकें। आगे सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक फेसबुक चैनल पर देखने को मिला। ये नेपाल का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस वीडियो को 6 मई को अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, कपिल वस्तु के श्री राम शरण बेसिक स्कूल का एक वीडियो सामने आने के बाद गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। छोटे छात्र तेज हवाओं और बारिश के दौरान अपनी डेस्क के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज स्कूल के बुनियादी ढांचे की कमजोर हालत को उजागर करता है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलने के बजाय क्लासरूम के अंदर ही खुद को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस घटना ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और स्कूल की सुविधाओं में तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया। इस तरह फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में इस दावे को गलत पाया है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये वीडियो भारत के किसी सरकारी स्कूल का नहीं है, बल्कि वीडियो नेपाल का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला।
3: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी दिखाई देती है। बच्ची मासूमियत भरे अंदाज में अपने पापा से बातें करती नजर आती है। उसकी बातें सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा। बच्ची पिता की तस्वीर को देखते हुए कहती है, सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए, मम्मी आपको मना करती थी लेकिन आप नहीं माने।
4: इतना ही नहीं, बच्ची आगे कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताइए नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। उसकी मासूम बातें और दर्द भरी आवाज सुन लोग काफी भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो की कोच अच्छी खासी भरी हुई है। तभी एक दोस्त उठकर अनाउंस करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। वो सभी यात्रियों से दोस्त साहिल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसे विश करने की प्यारी सी अपील करता है। इसके बाद मेट्रो में सफर कर रहे सभी यात्री गाना गाकर उसे विश करते हैं। हालांकि बर्थडे बॉय की शक्ल देखने लायक होती है, वो शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। इसके बाद बर्थडे बॉय का दोस्त अपने बैग से मेलोडी टॉफी का पैकेट निकालता है और दोनों मिलकर पूरी कोच को टॉफियां बांटते हैं। इस दौरान लोग हाथ मिलाकर भी साहिल को जन्मदिन की बधाई देते हैं।

सोशल मीडिया इन दिनों प्यार, भावुकता और संगीत से भरे एक वीडियो से गूंज रहा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपने दो भाइयों के लिए एक सुपरहिट सॉन्ग गाया। अपनी मासूम आवाज से इस बच्ची ने करोड़ों दिल जीत लिए। लोग इसके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वीडियो में छोटी बच्ची बेहद प्यारे अंदाज में गा रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भाइयों के प्रति प्यार साफ दिखाई दे रहा है। गाने की शुरुआत में वो थोड़ा झेपती है, लेकिन जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है उसके आवाज में जादू उतर आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो बॉलिंग गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो देखने को मिलता है वो काफी मजेदार है। यही कारण है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक युवती उन पिंस के बेहद करीब खड़ी नजर आती है जिन्हें गिराने का टारगेट होता है। आमतौर पर किसी खिलाड़ी या शख्स को वहां खड़े होने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये खेल के नियमों के खिलाफ है। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो में दूसरी ओर से एक बड़ी बॉलिंग बॉल लेन पर उड़कती हुई दिखाई देती है। गेंद तेजी से युवती की ओर बढ़ती है। जैसे ही गेंद उसके पास पहुंचती है, वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इसके बाद वो खुद गेंद को आगे की ओर फेंकने की कोशिश करती है ताकि सामने खड़ी सभी पिंस गिर जाए। हालांकि यहां पर कहानी में मजेदार मोड़ आता है। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को आगे फेंकती है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित होती है। हैरानी की बात ये कि गेंद फेंकने के बावजूद एक भी पिन नहीं गिरती। जिस काम को आसान समझकर किया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। युवती का ये असफल प्रयास लोगों को खूब हंसा रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वही इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है और फिर अपने हाथों से नल की टोटी को बंद करता है। उसकी एक छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई, जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं इस जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठा कर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों और समय के हैं और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे क्यू मासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह से एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं।
वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास कोई तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुँचती है, उसकी नजर दो दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसे लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन ये वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से लौट जाती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
2: How they looked after game one.
3: I mean, they were frustrated.
1: The Daily.
4: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: चारधाम में यात्रियों की आस्था रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो या बद्री विशाल का दरबार, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में तो आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, ट्रैफिक की समस्या ना हो।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियां डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। चारों धामों में अब तक कुल 33,45,600 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए। यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, पहली बार मैं गई।
2: व्यवस्था यहाँ की हमें अच्छी लगी, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, घोड़ा खच्चड़ वो सबको पानी पीने के लिए और सारी व्यवस्था, सारी चीज बढ़िया है, सुविधा यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा है।
3: ले भी कॉपरेट करते हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्था है घोड़े को, और अच्छा है, सफर अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ केदारनाथ, अच्छा एक्सपीरियंस था, ऊपर में भी अच्छा रहा, नीचे भी उतरते वक्त अच्छा रहा।
0: एक ओर प्रकृति की कठिन परीक्षा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 11,85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10,00,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10,00,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10,00,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
0: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ और ही है। 10 जून तक 10,00,000 का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
5: देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी तक 10,00,000 से ऊपर यात्री वहां पे पहुंच चुके हैं, और वैसे हेमकुंड साहिब की मैं बात करूं तो 70,000 से ऊपर यात्री लगभग वहां पे पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके प्रॉपर डायरेक्शन के बाद संबंधित विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा इस बार प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उसी का परिणाम है कि इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास श्रद्धालु आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनको हम बहुत बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।
0: खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमलन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के धार लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहां मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल, जो न सिर्फ हमारे देश के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है बल्कि अपनी अनूठी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बूते दुनिया भर में खूब मशहूर है। जहाज महल की इन खूबसूरत तस्वीरों को आप तक लाए हैं जीएनटी के ही एक दर्शक।

0: मुंजौर कपूर की लहरों पर जहां एक जहान तैरता है, मांडू की फिजा में जहां एक कारवां ठहरता है, इतिहास के पन्नों में पानी पर जो टिका रहे उस जहाज महल में हर मौसम बहार निखरता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में लाए हैं, जहां सुनसान और दूर दराज में बसा जहाज महल 15वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत और अनोखी कारीगरी है। काली रेत, चूना, ईंट, दाल जैसी कई और चीजों का मसाला बनाकर तैयार ये विशाल महल किसी अजूबे से कम नहीं है।
1: उस जमाने में कोई सीमेंट नहीं होती थी, ये बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया, ईंट, काली रेत, चूना, उड़द की दाल, गुड़, बिल पत्ते के फल, इन सारी चीजों को पीस कर मसाला बना के ही सारे बिल्डिंग को बनाया गया।
0: सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल के पास ही अपनी बेगमों के नाम पर दो झील, मुंज तालाब और कपूर तालाब बनवाए। यही नहीं, महल के नजदीक ही अशरफी महल भी बनवाया। जहाज महल में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए कई खास कमरे बनवाए, तो दीवारों में नहरें और फव्वारे तक लगाए ताकि उस वक्त गर्मी की तपिश में महल को ठंडा रखा जा सके। जहाज महल जितना जमीन के ऊपर बना है उतना आप देख सकते हैं जमीन के नीचे भी। लगभग 110 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी इस इमारत की दरो दीवारों पर हिंदू, अफगान और मुगल वास्तुकला का इतिहास आराम से नजर आ जाएगा। आप महल की छत पर आएंगे तो आपको पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अद्भुत तकनीक भी हैरान कर देगी। इससे भी आगे महल के ऊपरी हिस्से में खूबसूरत मेहराब, बैल्कनीज, मंडप और गुंबददार छतरियां भी 15वीं सदी के आर्किटेक्ट की अनूठी मिसालें हैं। मांडू से सबसे पास लगभग 95 किलोमीटर दूर तो इंदौर एयरपोर्ट ही है और सबसे पास रेलवे स्टेशन इंदौर या रतलाम है। तो अगर आप मांडू बाई रोड आ रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर धार और इंदौर से ये जुड़ा हुआ है, जहां से आप बस या टैक्सी से यहां आ सकते हैं। फिलहाल तो आपके लिए सैर सपाटा करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून और विंटर सीजन ही है। ये वो वक्त है जब आसमान में बादलों का डेरा, चारों तरफ फैली हरियाली जहाज महल के इतिहास में चार चांद लगा देते हैं।
2: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करें, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करें, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संकल्प में भागीदार बने। इस बस आपको इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाए कैमरा, बनाए व्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303-409922 पर, हम उसे TNT पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
5: Jack, you're killing me.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अमरावती के धार्मिक स्थल कौनन्यापुर में लगा भक्तों का तांता, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने अवर्धा नदी में लगाई डुबकी, मां अंबे और देवी रुक्मिणी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS दूनागिरी का प्रतीक चिन्ह किया जारी, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से हिलैस। भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ी पहुंचे हिमाचल। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों पर दस्तक दे रही है 8 बॉलीवुड फिल्में। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता से सीधी टक्कर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की सच्ची घटना।

0: आपके साथ श्वेता झा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के वीर जवानों की, सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के ऐसे शूरवीरों की जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भी अपने कर्तव्य को निभाया, देश के दुश्मनों का निर्दयता से सामना किया और उन्हें ढेर कर दिया। ऐसे ही शूरवीरों को कुछ रोज पहले राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कुछ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। आज आपको सबसे पहले शहीद बेटे के लिए सम्मान ग्रहण करने गई एक मां से मिलवाएंगे, जो समारोह के दौरान बिलखकर रो पड़ी और राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। इसके बाद आपको मिलवाएंगे सीआरपीएफ के निडर जवान से, जिन्होंने 3 गोलियां लगने के बावजूद घाटी में आतंकियों को ढेर कर दिया। रीवा में उनके स्वागत का भव्य समारोह हुआ, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। और आखिर में बातचीत होगी पंजाब के मेजर अर्शदीप गिल से, जिन्होंने मणिपुर में 84 घंटे तक चले एक ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम का जबरदस्त नेतृत्व किया और इस ऑपरेशन में 10 उग्रवादी मार गिराए। तो शुरुआत करते हैं सेना के जवान प्रवीण जंजाल से। करीब 2 साल पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए प्रवीण ने अदम्य साहस दिखाया और सिर में गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया। प्रवीण जंजाल ने सर्वोच्च बलिदान देकर अपने कर्तव्य को निभाया और देश के लिए मिसाल बने। मरणोपरांत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण करते हुए उनकी मां बिलख कर रो पड़ी। भावना से भरी ये तस्वीर हर शख्स की आंखें नम कर गई। दिलासा देने के लिए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर इस मां को गले लगाया। बेटी की शहादत और उसे मिले सम्मान पर गर्व करने वाली मां ने गुड न्यूज टुडे की टीम से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट।
1: प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, पहली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बरसों तक उनकी बहादुरी का जिक्र होगा, पीढ़ियों तक उनकी देशभक्ति का किस्सा बयां होगा। देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनकी वीरता का देश ने सम्मान किया।
1: सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।

0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो देश के दुश्मनों पर तो भारी पड़े लेकिन लौटकर नहीं आ सके। जब राष्ट्रपति भवन में उनकी वीरता का सम्मान हुआ तो भावनाओं पर जोर नहीं रहा, बरबस आंसू निकल पड़े। सेना के महार बटालियन के सिपाही प्रवीण जंजाल की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। देश की हिफाजत के लिए जान देने वाले बेटे पर इस माँ को भी नाज है। लेकिन माँ तो फिर माँ ही है। जब शहीद बेटे के लिए कीर्ति चक्र सम्मान लेने खड़ी हुई तो भावनाओं का ऐसा झंझावात उठा जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं हुआ। माँ बिलख पड़ी और राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करके उन्हें सहारा दिया, गले लगाकर दिलासा दिया।
0: इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: ये भावुक पल वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गए, पर साथ ही हर देशवासी का सर गर्व से तन गया, क्योंकि जिस मादरे वतन के ऐसे बहादुर बेटे हों, दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जुलाई 2004 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ था। प्रवीण जंजाल ने न सिर्फ आतंकियों को देखकर अपने साथियों को आगाह किया, बल्कि दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए, पर आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे। उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी और माँ को दिया गया, वो माँ जिसकी आंखें पिछले दो वर्षों से अपने बेटे को खोज रही हैं। जब वो मंच पर गई तो उन्हें चारों ओर लोग तो नजर आए, पर बेटा नहीं दिखा। इसी एहसास ने उन्हें भावुक कर दिया और वो राष्ट्रपति से लिपट कर रो पड़ी। बेटे की शहादत पर गर्व तो दिल में रहा, पर उसकी कमी आंखों से दर्द बनकर छलक पड़ी।
1: एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वो एक शहीद की माँ का वीडियो है, जो राष्ट्रपति के हाथ से कीर्ति चक्र लेते हुए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल छोड़कर जो है उस वीर माता को जो है वो अपने गले लगाया है। वो वीर जवान प्रवीण जंजाल की माँ हमारे साथ है, इन्हीं का वो वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे बोलिए कि आप जब राष्ट्रपति के पास गए कीर्ति चक्र लेने के लिए तो क्या लगा आपको?
2: मला असं वाटलं की माझा मुलगा साला माझ्या जवळ, मला असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जवळ आला, पण माझा मुलगा मला चेहरा दिसून आला नाही। कीर्ति चक्र दिसून आलं असं वाटलं, माझा मुलगा आला, भावाले भाऊ आला दोन असं वाटलं मला। मला पण असं वाटते की माझ्या मुलाचं ते सपसा मारक बांधलं की असं वाटते की माझा मुलगा जिंदा आहे। गावातनी उर आला, मला दिसला की असं वाटते की माझा मुलगा जिंदा आहे, असं दिसलं पाहिजे मला। यासाठी माझी महिला मागणी आहे।
1: एक राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन वो भी पीसी की माँ की, आप भी एक वीर जवान की माँ हो। उस वक्त उनकी भी जो है आंखें भर आई होगी। उस समय कैसा लगा आपको कि आपको उनके कंधे का आधार लेना पड़ा?
2: राष्ट्रपति द्यायच्या गळ्यात ने हात टाकले, असं वाटलं की माझा मुलगा माझ्या जोड देऊ राहिले ते की जिंदा आहे, पण मला जिंदा दिसू राहिला नाही माझा मुलगा। मी खूप प्रयत्न करू राहिली पाहायचे, पण मला दिसू राहिला नाही। मला असं वाटते की माझ्या पुराचा महाग बांधलं की मला जिंदा दिसेल माझा मुलगा माझ्याजवळ, लाता येता मी पाहिन माझ्या मुलाला।
0: रक्षा अलंकरण समारोह के अंतर्गत 8 जून को राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये पुरस्कार उन जवानों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह तक न की। इनमें कई जवानों ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अद्भुत बहादुरी दिखाई। कुछ पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, जिसमें प्रवीण जंजाल का नाम भी है।
1: प्रवीण नहीं है, लेकिन प्रवीण ने आज माँ बाप को हवाई सफर भी करवाया, जो भी करवाएगी उसकी जो इच्छा जीवन में थी आज वो नहीं होकर किया है, लेकिन उसकी आज कमी महसूस कैसी होती है, पक्कर उसकी याद आती है।
3: वो हर दिन आया था कि हर दिन आ रहे थे, पर इसलिए नहीं है तो वो मेरा भाई था। मैं उनको माता पिता को पाला पोसा, मैं उनको सब देखूंगा, उनकी तरफ सब देखूंगा।
1: एक नाच प्रवीण जो है और तुमने दोनों ने साथ में देश की सेवा के लिए गए, लेकिन प्रवीण आगे जाकर जीत गया,
3: जीत गया और देश को कुर्बान हो गया। ये गर्व है मुझे, देश से कुर्बान हो गया और बहुत अच्छा अभिमान है, लेकिन उनका दुख भी वैसा ही है, माँ बाप को बहुत दुख है। हमारे पास आज ऐसा एक दिन नहीं कि मेरी माँ रोती नहीं, हर दिन रोती है, उनकी याद में हर दिन रोती है।
0: शौर्य, साहस और त्याग का जब भी जिक्र होगा, देशभक्ति की जब भी कहानियां सुनाई जाएंगी, प्रवीण और उनके जैसे बहादुर जवानों को देश सम्मान के साथ याद करेगा। अकोला से धनंजय सामले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। तीन गोलियां लगने के बावजूद वो अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे और एक आतंकी को ढेर कर दिया। वीरता पुरस्कारों के तहत संजय तिवारी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद जब संजय अपने परिवार के साथ पहली बार रीवा पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
1: यूं तो रीवा एक्सप्रेस दिल्ली से हर रोज आती है, पर ऐसा नजारा नहीं होता। यूं तो हजारों लोग इस ट्रेन से उतरते हैं, पर जब संजय तिवारी ट्रेन से उतरे तो जैसे रीवा ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। ये दिन खास बन गया क्योंकि रीवा का बहादुर बेटा या कहें कि शूरवीर राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित होकर आया है। हैरत की बात नहीं कि ढोल नगाड़े और फूल माला से सीआरपीएफ के कांस्टेबल संजय तिवारी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से स्टेशन गूंज उठा।
2: गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया।
1: रीवा के डेल्टी गांव के रहने वाले हैं संजय तिवारी, जो अब इस पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोगों ने टीवी पर उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार लेते देखा और उनका सीना गर्व से तन गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के खनियार इलाके में एक आतंकवाद विरोधी अभियान किया गया था। सुरक्षा बलों को लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और भारी गोलीबारी के बीच संजय तिवारी अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे।
2: स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था, काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया।
1: हालांकि मुठभेड़ के दौरान उनकी बांह टूटने और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और एक आतंकी को मार गिराया।
2: बिल्कुल 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में, और
3: 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े, अदम साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे?
2: बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें।
1: इसी अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए संजय तिवारी को वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उनके साथ सिपाही फिदा हुसैन डार को भी ये सम्मान मिला। पुरस्कार लेने के बाद जब संजय तिवारी रीवा पहुंचे तो लोगों ने अपने वीर सपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय तिवारी की बहादुरी और अदम्य साहस का गर्व वहां मौजूद हर युवा के चेहरे पर नजर आया।
2: रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुँच सके।
1: सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जिन जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सभी की कहानियां देश की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और देश की सुरक्षा में अपनी जान की चिंता नहीं की। ऐसे वीर जवानों पर देश को नाज है। रीवा से हरिओम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज शो।
0: और अब बात मोहाली के मेजर अर्शदीप सिंह गिल की, जिन्होंने मणिपुर में एक चुनौतीपूर्ण आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। यह ऑपरेशन करीब 84 घंटे तक चला था, जिसमें 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया था, लेकिन इसमें जबरदस्त खतरा था। असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप गिल को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने, सुनिए।
4: दीप सिंह, कवचित कोर, 1 असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह

0: जय जवान जय किसान। आज एक किसान के बेटे ने फक्र किया है क्योंकि उसे कीर्ति चक्र मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं मेजर अर्शदीप गिल, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। 84 घंटे का ऑपरेशन चला मणिपुर में, जिसमें कई दहशतगर्द हैं उनको मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए कि आपकी पहले तो ये जर्नी है, क्योंकि अब कई बार बोलते हैं हम लोग कि युवक नहीं जा रहे हैं, सेना में नहीं जा रहे हैं पंजाब से, लेकिन 2016 में आपने ज्वाइन भी किया आर्मी और आज आपको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं और खासतौर पर।
1: मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूं, मेरा स्कूलिंग फिरोजपुर से ही है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, वो चंडीगढ़ से करी, और जनवरी 2015 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन कर लिया था, और जून 2016 में मैं कमीशन हुआ था 58 आर्मर्ड रेजिमेंट में, द आर्मर्ड कोर। और उसके बाद मैं 2022 दिसंबर में डेप्यूटेशन के ऊपर फर्स्ट असम राइफल्स में गया था, और ये पिछले साल मई 2025 में ये ऑपरेशन हुआ था। और जो आपने बोला है कि पंजाब से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है। मैं तो मे बी आई नो मोर देन 1000, ठीक है, मेरे अपने को मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ, ठीक है, प्योरली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एंड लाइक माय मोटिवेशन वाज कि हाँ कि ऐसी फिरोजपुर कैंट आना जाना होता था, तो वहां पे जो रोड के साइड ही यूनिट्स के क्वार्टर गार्ड्स हैं, तो हम उनको देख के सल्यूट व्यूट करते रहते थे, तो वही मोटिवेशन था कि आगे चल के।
0: कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस था या जस्ट जनरली क्योंकि आपका आना जाना था?
1: मैम आना जाना था वहां से, और उसके बाद फिर जब आगे जाके इंजीनियरिंग करी तो पता चला कि ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो फिर इससे अच्छा कुछ लगा ही नहीं। और वो डिसीजन मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि आज सच में मेरे को लगता है कि मैं इससे अच्छा लाइफ में कर नहीं सकता था। ये
0: एक होता है मैन इन यूनिफॉर्म और एक होता है एक हीरो, तो आज आप एक कीर्ति चक्र अवॉर्डी हैं, तो आप हीरो हैं नेशन के, तो इस ऑपरेशन के बारे में हमें जरूर
1: बताइए। मैम ये ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर, वहां पे पोरस बॉर्डर है, वहां पे फेंसिंग का काम नहीं हो रखा है, और जो मणिपुर के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, तो मोस्टली कहीं ना कहीं उसका, अगर वेपन स्मगलिंग को लोगे, ड्रग्स स्मगलिंग को लोगे, तो उसका बेस म्यांमार के साथ बैठता है, वो ओपन बॉर्डर की वजह से। तो उस वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वहां पे फेंसिंग का काम किया जाए, लेकिन वो फेंसिंग का काम अगर वो हो जाता है तो ये सारी हरकतें वहां पे बंद हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए वहां पे लगातार उनके एफर्ट्स होते रहते हैं। तो मेरी यूनिट फर्स्ट असम राइफल्स, हम वहां पे लेबर फेंसिंग की सिक्योरिटी में वहां पे थे, तो ये जो ऑपरेशन है 14 मई 2025 का है, जब उन्होंने लेबर को वहां पे टारगेट किया था, तो वहां पे हम सिक्योरिटी में थे। तो उसके बाद जैसा कि आपने बोला 84 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन था ये। जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जंगल टेरेन है, माउंटेन है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और ये ऑपरेशन मॉर्निंग में 6:35 पे हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड फायर आया था। उसके बाद फिर ये 14 मई को लेके शाम 1800 आवर्स 17 मई तक ये ऑपरेशन चला था, और जो हमारी नफरी थी, मैं उसमें ऑफिसर था, मेरे जेसू साहब थे और 30 अदर रैंक्स हमारे साथ थे, और जिस तरीके का इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सचेंज हो रहा था, तो मेरे को एज पर माई असेसमेंट मेरे को लगा था कि 15 से 20 आर्म कार्डर्स आगे की तरफ हैं। उसके बीच में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वाला कार्डर भी हमने देखा था, जिसको हमने आगे जाके न्यूट्रलाइज किया,

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियां डरा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। मौसम की चुनौतियों पर आस्था भारी है। चारों धामों में अब तक कुल 33,45,600 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी है, घोड़ों के लिए मतलब व्यवस्था अच्छी है, और पैदल गए हैं हम, पैदल ही आए। यात्रा बहुत अच्छी हुई और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। पहली बार मैं गई,
2: व्यवस्था यहाँ की हमें अच्छी लगी, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, घोड़ा खच्चर वो सबको पानी पीने के लिए और सारी व्यवस्था, सारी चीज बढ़िया है, सुविधा यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा है।
3: पहले भी कॉपरेट करते हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्था है घोड़े को, और अच्छा है, सफर अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ केदारनाथ, अच्छा एक्सपीरियंस था, ऊपर में भी अच्छा रहा, नीचे भी उतरते वक्त अच्छा रहा।
0: एक ओर प्रकृति की कठिन परीक्षा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे पहाड़ी मार्गों के बावजूद विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 11,85,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। पैदल रास्तों से लेकर मंदिर परिसर के भीतर की अलग अलग जगहों तक हर तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
4: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तमाम जगहों पर जबरदस्त श्रद्धालुओं का उत्साह है। पिछले वर्ष 25 जून को 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचे थे, ऐसे में इस बार 10 जून को ही जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहुंच चुकी है। वहीं हेमकुंड साहिब में 70,000 श्रद्धालु अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन

0: श्रद्धालुओं को उत्साह, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, हर तरफ अद्भुत बना हुआ है।
1: बद्रीनाथ यात्रा हर साल नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है, लेकिन इस साल का उत्साह कुछ और ही है। 10 जून तक 10 लाख का आंकड़ा पार करना ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है।
2: देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी तक 10 लाख से ऊपर यात्री वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और वैसे हेमकुंड साहिब की मैं बात करूँ तो 70,000 से ऊपर यात्री लगभग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके प्रॉपर डायरेक्शन के बाद संबंधित विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा इस बार प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उसी का परिणाम है कि इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास श्रद्धालु आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनको हम बहुत बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।
1: खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की ये संख्या साबित करती है कि बाबा केदार के प्रति लोगों की आस्था किसी भी बाधा से बड़ी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमलन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं का आठवां स्थान भी उनके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है? किस देवी देवता की निरंतर पूजा से महिलाएं अपने विवाह और वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं? क्या है महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके